मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्स एवं FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 10वीं तिथि, तदनुसार 1 जुलाई सन 2026, प्रातः के 5:56 हुए हैं। मीडियम वेव और FM पर हमारी प्रातःकालीन सभा अब एक साथ आरंभ हो रही है।

0: विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने विभिन्न पक्षों के बीच मौजूदा सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने का भारत का रुख दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर भी बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। भारत की उनकी ये पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक की अध्यक्षता की। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को कल से अगले वर्ष 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू होगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था कल भगवती नगर आधार शिविर से रवाना होगा। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। श्री मनोज सिन्हा अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। 57 दिन की यात्रा पारंपरिक नुनवान पहलगाम मार्ग और गांदरबल जिले के बालतल मार्ग से 3 जुलाई को शुरू होगी। उत्तर रेलवे ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए विस्टाडोम विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन 2 महीने के लिए कम कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आमतौर पर कटरा और बडगाम रेलवे स्टेशनों के बीच चलने वाली विस्टाडोम रेलगाड़ी आज से 31 अगस्त तक या अगले आदेश तक सिर्फ बनिहाल और बडगाम के बीच चलेगी। ये फैसला जम्मू कश्मीर पुलिस से मिली सुरक्षा जानकारी और सुझावों के आधार पर लिया गया है। रेलवे ने 200 करोड़ रुपए की लागत से दक्षिण पूर्व रेलवे में शेष 48 फाइबर ऑप्टिकल फाइबर केबल लगाने को मंजूरी दे दी है। इससे रेलवे का डिजिटल संचार नेटवर्क मजबूत होगा। इस परियोजना से दक्षिण पूर्व रेलवे के 4 बड़े संभाग में 1600 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में 48 फाइबर ओएफसी कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में आगे बढ़ने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दमन और दीव तथा राजस्थान में भी मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह बनाई। अब नॉर्वे का मुकाबला रविवार को ब्राजील से होगा। मोरक्को, पैराग्वे, ब्राजील और कनाडा भी राउंड 16 में पहुंच चुके हैं। राउंड 32 के एक अन्य मैच में आज शाम मेक्सिको का सामना इक्वाडोर से होगा। आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव और FM 102.9 MHz पर 6:00

जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं ना ही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखे माही।

परमपिता परमात्मा कण कण तेरा वास, करण करावन हार तू सब कुछ तेरे पास। अंग संग तुझको देख के भक्त करे अरदास, तू शाहों का शहंशाह मैं दासों का दास।

कल भी तेरा आसरा, आज भी तेरी आस, घड़ी घड़ी तेरा आसरा, छह ऋतु 12 मास।

अभी आप हरिओम शर्मा शरण, जगजीत सिंह, मोहम्मद रफ़ी, अरविंद सिंह और लता मंगेशकर के स्वर पे भक्ति रचनाएं सुन रहे थे। वंदना अब संपन्न होती है।

0: अभी आप सुन रहे थे वंदना, ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। वंदना के पश्चात आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
1: सुख के अनेक मार्गों में एक मार्ग है अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध रखना, बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकना और स्वस्थ जीवन व्यतीत करना। अपना पर्यावरण अथवा चारों तरफ का वातावरण शुद्ध रखना सुखद जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। आज के इस उद्योग प्रधान युग में अनेक प्रदूषणों से प्रदूषित वातावरण को अपने पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए एक सहज मार्ग और सुखद उपाय है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण से ही और वनों के संरक्षण से ही हम सुख और स्वास्थ्य पा सकते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा देश भारतवर्ष प्राकृतिक वन संपदा से परिपूर्ण है। प्रकृति की देन है कि अत्यंत ही विस्तृत, सघन, उन्नत तरुवरों से शोभायमान अनेक वन उपवन हमारी भारत भूमि पर हैं। इन्हीं वन उपवनों के कारण हम भारतवासी अपने को सब प्रकार से सुरक्षित और खुशहाल अनुभव करते हैं। लेकिन उद्योगों के प्रचार प्रसार से, उनकी चिमनियों से निकलने वाले धुएं से, अपने तुच्छ स्वार्थों के कारण निरंतर वनों को उजाड़ने और काटने से तथा बढ़ती हुई आबादी के कारण अब हमारा पर्यावरण प्रतिदिन दूषित होता जा रहा है। हम अपने को असुरक्षित और असहाय सा अनुभव करने लगे हैं। अनेक प्रकार के प्रदूषण से हमारा जीवन विषाक्त होता जा रहा है। अतः जलवायु की शुद्धता के लिए, अधिक वर्षा के लिए, सुखद जीवन के लिए अति आवश्यक हो गया है वनों को सुरक्षित रखना तथा अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना। वनों के उजड़ने से, वृक्षों के कटने से वर्षा कम होने लगी है। जिन प्रदेशों में सघन वन नहीं है उनमें अपेक्षाकृत वर्षा कम होती है। वृक्षों का न होना पृथ्वी पर मरुस्थल के प्रसार और विस्तार को सूचित करता है। मरुस्थल, रेगिस्तान और शुष्क प्रदेशों की सूखा, अकाल और जलाभाव की विभिन्न समस्याओं का एकमात्र हल है अधिक से अधिक वृक्षों का लगाना और प्राकृतिक रूप से सुलभ वनों को सुरक्षित रखना। तभी हमारा जीवन सुरक्षित रह सकता है और हम अनेक समस्याओं से बच सकते हैं, समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। भूमि कटाव तथा भूभ्रंश या भूस्खलन को रोकने के लिए भी वृक्षों का अस्तित्व और वनों की सुरक्षा आवश्यक है। वृक्षों को काटकर, वनों को उजाड़कर हम भूस्खलन को बढ़ाते हैं और अपना विनाश हम स्वयं करते हैं। पेड़ पौधों से प्राप्त स्वच्छ वायु, प्रकृति का उन्मुक्त स्वच्छ वातावरण, वनों का सौंदर्य और उनका हरा भरा रूप रंग असाध्य रोगों और बीमारियों से बचाकर हमें उत्तम स्वास्थ्य और सौंदर्य प्रदान करता है, हमें निरोग बनाता है। तभी तो हम कश्मीर, शिमला, मसूरी, नैनीताल इत्यादि अनेक रमणीय पर्वतीय प्रदेशों और नगरों की यात्रा कर वहां अधिक से अधिक दिनों तक रहने की कामना करते हैं और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सुखद जीवन यापन करते हैं। इन पर्वतीय प्रदेशों की उपयोगिता और इनका सौंदर्य देवदास, तमाल, साल, शीशम, सागौन आदि अनेक उन्नत तरुवरों की सघनता के कारण ही तो है। कश्मीर का गौरव, कश्मीर को भारत का भाल या भारत का स्वर्ग, इन्हीं वन उपवनों की सघनता के कारण ही तो कहा जाता है। हमारी नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए नैसर्गिक सुषमा, हरियाली, स्वाभाविक या अकृत्रिम रूप रंग जितना पेड़ पौधों से, हरे भरे वृक्षों से, सघन वनों से मिलता है उतना अन्यत्र कहीं से नहीं मिलता। हम अपने घरों में स्वच्छ वातावरण और शुद्ध जलवायु प्राप्त करने के लिए छोटे से फुलवारी, बगीचा या वाटिका लगाकर कितना सुखद अनुभव करते हैं।
0: ये था आज का चिंतन। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है।

0: 6:35 हुए हैं। ये समय है स्वास्थ्य संदेश का। स्वास्थ्य संदेश में आज जानकारी का विषय है गुर्दे, शरीर का महत्वपूर्ण अंग। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर विनय वर्मा।
1: स्वास्थ्य संदेश कार्यक्रम के श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, किडनी अर्थात गुर्दे हमारे शरीर की आंतरिक स्वच्छता, बाहरी सुंदरता बनाए रखने के साथ साथ सभी अंगों को स्वस्थ रखने का कार्य करते हैं। शरीर के भीतरी स्वास्थ्य और स्वच्छता के बिना बाहरी सुंदरता और स्वास्थ्य को बनाए रखना संभव नहीं है। भीतरी स्वच्छता और स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो व्यक्तित्व का आकर्षण और चमक क्षीण हो जाएगी। आहार में ग्रहण किए गए प्रोटीन्स से अमीनो एसिड और यूरिया का निर्माण होता है। जब अनेक विषाक्त द्रव्य, यूरिया और क्रिएटिनिन आदि अधिक बनने लगते हैं तो धीरे धीरे गुर्दे खराब होने लगते हैं। इसके अलावा मधुमेह, उच्च रक्तचाप जैसे रोग एवं अनेक दवाइयों के दुष्परिणाम गुर्दे की खराबी के अहम कारण बनते जा रहे हैं। गुर्दे की खराबी होने से वे अपनी कार्यक्षमता से कार्य करना कम कर देते हैं और धीरे धीरे पूरी तरह से काम करना बंद कर देते हैं। इसे चिकित्सीय भाषा में रेनल फेल्योर कहते हैं। श्रोताओं, हमारे शरीर में दो गुर्दे होते हैं। काजू के आकार के ये गुर्दे सामान्यतः 10 सेंटीमीटर लंबे, 5 सेंटीमीटर चौड़े और 4 सेंटीमीटर मोटे होते हैं। प्रत्येक का वजन 150 से 170 ग्राम होता है। आहार में विविधता के कारण शरीर में जल, अम्ल व क्षारीय तत्वों की मात्रा परिवर्तित होती रहती है। गुर्दे आवश्यक अम्ल, क्षार व जल को तथा विषाक्त तत्वों को पेशाब के द्वारा शरीर से बाहर निकालकर और आवश्यक तत्वों को शरीर के अंदर रोककर संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं, जिससे शरीर स्वस्थ और स्वच्छ रहता है। गुर्दे शरीर में खनिज लवण, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, फास्फोरस आदि को भी संतुलित रखते हैं, क्योंकि इनकी मात्रा कम ज़्यादा होने से शरीर के अन्य महत्वपूर्ण अंगों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त गुर्दे कई प्रकार के हार्मोन्स बनाने का कार्य भी करते हैं, जैसे एल्डोस्टेरॉन, प्रोस्टाग्लैंडिन, रेनिन आदि। इनसे अम्ल क्षार का संतुलन बनता है और रक्तचाप सामान्य रहता है। इरिथ्रोपायटिन हार्मोन भी गुर्दों में बनता है, जिसकी सहायता से खून के रक्त कणों का अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो में निर्माण होता है। जब गुर्दे खराब होने लगते हैं तब यह कम बनता है या बिल्कुल ही नहीं बनता। परिणाम स्वरूप खून की कमी होने में एनीमिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। गुर्दे विटामिन के निर्माण में भी मदद करते हैं, जो अस्थियों को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होता है। गुर्दों में सफाई का कार्य निरंतर चलता रहता है। ये 24 घंटे में 1700 लीटर खून को शुद्ध करते हैं। इस कार्य को करने वाली स्मॉल यूनिट को नेफ्रान कहते हैं। छलनी नुमा नेफ्रांस के दो भाग होते हैं, एक ग्लोमेरुलस और दूसरा ट्यूबुल्स। ग्लोमेरुलस से 24 घंटे में 180 लीटर द्रव्य छन कर ट्यूबुल्स में आता है। इस छने हुए 180 लीटर द्रव्य में अनावश्यक तत्वों के साथ उपयोगी तत्व भी होते हैं। ये ट्यूबुल्स से गुजरते वक्त शरीर के लिए आवश्यक तत्वों का पुनः अवशोषण कर रक्त में पहुंचा दिया जाता है। यहाँ पर 98 से 99% द्रव्य का अवशोषण होता है और अंततः 1 से 2 लीटर पेशाब के रूप में मूत्राशय में पहुंचकर बाहर निकल जाता है। यदि 0.5 लीटर से कम और 3 लीटर से अधिक पेशाब आने लगे तो जांच अवश्य करानी चाहिए। हालांकि सर्दी, गर्मी और पेय पदार्थों को कम ज़्यादा मात्रा में लेने का भी पेशाब की मात्रा पर असर पड़ता है। श्रोताओं, आज की जानकारी बस यहीं तक। नमस्कार।
0: गुर्दे, शरीर का महत्वपूर्ण अंग। अभी आपने इस विषय पर डॉक्टर विनय वर्मा की ये जानकारी सुनी। स्वास्थ्य संदेश अब समाप्त होता है।

कार्यक्रम विवरण में सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सुबह 7 बजे अमृत काव्य कलश पे आज आप सुनेंगे श्री योगेंद्र कुमार वर्मा व्योम की काव्य रचनाएं। सुबह सवेरे कार्यक्रम अब तक पहुंचेगा 7:31 पर। सुनिएगा कुछ नए फिल्मी गीत। कार्यक्रम होगा 102.9 मॉर्निंग हिट्स। प्रेरक प्रसंग आप सुनेंगे 9:25 पर। इसमें आज आप सुनेंगे भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ा प्रेरक प्रसंग। उर्दू प्रोग्राम सुबह 9:30 लखनऊ से रिले होगा। 9:50 पर उपशास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुनिएगा चित्रंजन देव शुक्ल का पखावज वादन। आपके अनुरोध पर फिल्मी गीत आप सुनेंगे 10:05 पर और 10:30 पर सुनहरा दौर में आज हम आपको सुनवाएंगे 80 के दशक के कुछ यादगार फिल्मी गीत।

धरोहर के अंतर्गत 11 बजे सुनिएगा डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल का लिखा नाटक ले चल मुझे। प्रस्तुति होगी विनोद आनंद दयाल की। मन भवन कार्यक्रम में 11:30 पर एक ही गीतकार के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाएंगे हसरत जयपुरी के कलमबद्ध कुछ फिल्मी गीत। 12:10 पर कार्यक्रम होगा गीत आपके नाम। धरती गति कार्यक्रम में 1:15 पर आज कलाकार होंगे राम नारायण मौर्य। कुमकुम कार्यक्रम प्रसारित होगा 1:30 पर। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी 5:00 आज शाम के साथ। 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। 6:20 पर कृषि जगत में आज चर्चा का विषय होगा वन महोत्सव सप्ताह और आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग। सफल कृषक संजीव कुमार के साथ भेंटवार्ता का विषय होगा धान की सीधी बुवाई की देखभाल। वार्ता का आपके साथ भेंट करेंगे प्रवीण कुमार। प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है आप सुनेंगे 7:00। 7:31 पर सुगम संगीत में आज कलाकार होंगी प्रियंका माल। गीत गाता चल ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:00। 10:00 आप सुनेंगे रूपक मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत अल्पसंख्यक कल्याण। संकलन शिखा दीक्षित का होगा लेख मनोज कुमार का और प्रस्तुति होगी अवधेश कुमार गौतम की। 10:30 पर गीतांजलि का प्रसारण होगा। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय आप सुन रहे हैं हमारी पहली सभा के प्रसारण। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान से आज का प्रसंग। आज आप सुनेंगे कड़ी संख्या 345।

रावण का वध हो चुका है। उसके कटे सिर और भुजाएं मंदोदरी के सामने धूल में लिपटी पृथ्वी पर पड़ी हैं। वो विलाप कर रही है, श्री हरि को तुमने मनुष्य मान लिया। जन्म से ही तुम परद्रोही और पापमय रहे, किंतु श्री रघुनाथ ने अपने हाथों तुम्हारा वध करके तुम्हें वो गति प्रदान की जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। ऋषि मुनि तथा देवता प्रभु का रूप निरख सुख और संतोष प्राप्त कर रहे हैं। स्त्रियों का विलाप सुनकर विभीषण विचलित हो जाते हैं तो लक्ष्मण उन्हें धीरज बंधाते हैं। प्रभु का आदेश पाकर विभीषण अपने अग्रज की अंत्येष्टि करते हैं। क्रियाकर्म के विधिपूर्वक समाप्त हो जाने के बाद लंका नरेश के रूप में विभीषण का राज तिलक संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय प्रसारण। गायक स्वर शोभना राव का था, संगीत निर्देशक थे सतीश भाटिया। कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही देर में संस्कृत में समाचार दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।

देर नहीं लगती पल भर में समय बदलते, शाम सुखों की होते दुख का सूर्य निकलते, तपिश दुखों की मानव को सोने से कुंदन, तपिश दुखों की मानव को सोने से कुंदन कर देती है जीवन पथ पर चलते चलते, कर देती है जीवन पथ पर चलते चलते। एक और मुक्तक देखिए कि प्रेम कोई न शतरंज का खेल है, प्रेम कोई न शतरंज का खेल है, स्वार्थ की भी नहीं यह सरल बेल है, प्रेम तो त्याग का नाम है दूसरा, प्रेम तो त्याग का नाम है दूसरा, प्रेम तो पुष्प से गंध का मेल है। और एक मुक्तक और देखिए, सस्वर पढ़ाऊं इसको, फूल

एक और मुक्तक देखिए कि त्याग कर स्वार्थ का छल भरा आवरण, त्याग कर स्वार्थ का

उत्साह की प्रस्तावना भी हो, शून्यता में नव सृजन संभावना भी हो, मंजिलें निश्चित मिलेंगी, शर्त इतनी है कोशिशों

एक गीत रख रहा हूं कि नई बहू घर में आई है बंधन बार लगे, नई बहू घर में आई है बंधन बार लगे, चीजों से जोड़ना बतियाना पीछे छूट गया, चीजों से जुड़ना बतियाना पीछे छूट गया, पहली बारिश की बूंदों सा सब कुछ नया नया, चीजों से जुड़ना बतियाना।

0: पीछे छूट गया पहली बारिश की बूंदों सा, सब कुछ नया नया, कुछ महका सा कुछ बहका सा, कुछ महका सा कुछ बहका सा, यह संसार लगे, कुछ महका सा कुछ बहका सा, यह संसार लगे, नई बहू घर में आई है बंधन बार लगे। अगला बंद है कि संकेतों की भाषा नूतन, अर्थ गढ़े पल पल। संकेतों की भाषा नूतन, अर्थ गढ़े पल पल, मूक बधिर अंखियां भी करती कभी कभी बेकल। संकेतों की भाषा नूतन, अर्थ गढ़े पल पल, मूक बधिर अखियां भी करती कभी कभी बेकल। अंतिम बंद है कि परीलोक की किसी कथा सा आने वाला कल। परीलोक की किसी कथा सा आने वाला कल, ऊबड़ खाबड़ धरा कहीं पर और कहीं समतल। परीलोक की किसी कथा सा आने वाला कल, ऊबड़ खाबड़ धरा कहीं पर और कहीं समतल। कोमल मन में आशंकाओं के अंबार लगे, कोमल मन में आशंकाओं के अंबार लगे, नई बहू घर में आई है बंधन बार लगे। नई बहू घर में आई है बंधन बार लगे। और एक गीत और रखता हूं आपके सामने कि तन के भीतर बसा हुआ है मन का भी एक गांव। तन के भीतर बसा हुआ है मन का भी एक गांव, बेशक छोटा है लेकिन यह झांकी जैसा है। बेशक छोटा है लेकिन यह झांकी जैसा है, जिसमें अपनेपन से बढ़कर बड़ा न पैसा है। जिसमें अपनेपन से बढ़कर बड़ा न पैसा है। बेशक छोटा है लेकिन यह झांकी जैसा है, जिसमें अपनेपन से बढ़कर बड़ा न पैसा है। दूसरा बंद है इसका कि चौपालों पर आकर यादें जमकर बतियाती। चौपालों पर आकर यादें जमकर बतियाती, हंसी ठिठोली करती सुख दुख गीतों में गाती। चौपालों पर आकर यादें जमकर बतियाती, हंसी ठिठोली करती सुख दुख गीतों में गाती। माटी का फसलों से जैसा, माटी का फसलों से जैसा इनका रहा जुड़ाव। माटी का फसलों से जैसा इनका रहा जुड़ाव, तन के भीतर बसा हुआ है मन का भी एक गांव। तन के भीतर बसा हुआ है मन का भी एक गांव। अंतिम बंद है कि चंचलता की नदी पास में इसके बहती है। चंचलता की नदी पास में इसके बहती है, जो जीवन को नई ताजगी देती रहती है। चंचलता की नदी पास में इसके बहती है, जो जीवन को नई ताजगी देती रहती है। बाढ़ कभी जब आती इसमें उगते बहुत तनाव। बाढ़ कभी जब आती इसमें उगते बहुत तनाव, तन के भीतर बसा हुआ है मन का भी एक गांव। तन के भीतर बसा हुआ है मन का भी एक गांव।
1: श्री योगेंद्र कुमार वर्मा व्योम से अभी आप सुन रहे थे काव्य पाठ। कार्यक्रम अमृत काव्य कलश अब समाप्त होता है।

0: यह वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।

0: आज की सबसे पहली जरूरत ERSS
1: यानी इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम,
0: और ये उपलब्ध है हेल्पलाइन नंबर 112 पर।
1: आपातकाल में साथ निभाए,
0: तुरंत सहायता उपलब्ध कराए
1: 112।
0: सवाल चाहे महिला सुरक्षा का हो
1: या सार्वजनिक स्थानों पर आत्मरक्षा का,
0: यदि चाहिए पुलिस सहायता
1: या फिर अग्निशमन सेवा की हो आवश्यकता,
0: बुलाना हो एम्बुलेंस को,
1: मिटाकर हर सस्पेंस को
0: डायल 112।
1: कोई भी राज्य हो कोई भी इलाका,
0: 112 सच्चा हम सफर है आपका।
1: कॉल 112, SMS करें या पैनिक बटन दबाएं,
0: या फिर भेजें ईमेल always use 112 India Mobile App।
1: जब घेरे कोई भी आपदा,
0: तुरंत मिले सहायता
1: डायल 112।
0: चिंता से पाएं छुटकारा,
1: पुष्पा झुकेगी नहीं,
2: 112 की सेवा रुकेगी नहीं।

0: पानी पानी
1: कहाँ से लाऊं पानी?
0: पानी
1: एक बूंद भी पानी नसीब नहीं।
0: पानी
1: कई दिन हो गए पानी हलक से नहीं उतरा।
0: पानी पानी
2: ये तस्वीर है आने वाले कल की। अगर अब भी नहीं सोचा तो बहुत देर ना हो जाए। पानी बचाने के प्रयास आज से, अभी से शुरू कीजिए।
3: हमने अपनाई है एक नई संस्कृति, उपयोग करो और फेंक दो।
4: सामने है इस संस्कृति के विनाशकारी परिणाम, प्लास्टिक कचरे और पॉलीथीन के बड़े बड़े ढेर।
5: रेलवे लाइन हो या सड़क का किनारा, हर जगह प्लास्टिक कचरे का नजारा।
4: ये प्लास्टिक कचरा खासकर पॉलीथीन पैदा करता है नालियों और डिस्पोजल पाइपों में अवरोध।
3: और हमें अब भी नहीं हो रहा आने वाले संकट का बोध।
4: जागिए और जगाइए,
5: पहले तो कभी न नष्ट होने वाली प्लास्टिक को अपनी जिंदगी से हटाइए
3: और फिर प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की समुचित तकनीक अपनाइए।
4: हर परिवार को लेना होगा संकल्प, पॉलीथीन का छोड़ना होगा विकल्प।
6: से नो टू प्लास्टिक।
7: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
8: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
7: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
8: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
7: डायल कीजिए 8700014242।
8: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: और भी आज़ादी भारत की अलामत है अपना तिरंगा भी अहिंसा की निशा में। उर्दू हो वो हिंदी हो वो इंग्लिश हो कि संस्कृत, कोई भी नहीं गैर मोहब्बत की ज़बा में।
1: आइए हिफाजत करें अपनी विरासत की
0: और मोहब्बत करें अपने वतन से।

0: फूलों का कुंज दिलकश भारत में एक बनाएं, हुब्बे वतन के पौधे इसमें नए लगाएं।
1: मिल मिल के हम तराने हुब्बे वतन के गाएं, बुलबुल हैं जिस चमन के गीत उस चमन के गाएं।
0: हम सब भी मिलकर गीत गाएं
1: अमन के भाईचारे के।

0: ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो न जाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो।
1: आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीयता के पथ पर सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और समरसता के फूल खिलाएं।

आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है, मीडियम वेव और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7:18 होने वाले हैं, कुछ ही देर में आप हमारा अगला प्रसारण सुनेंगे।

0: का धर्म है मनन करना। मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
0: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है, और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
0: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी आयोजित करने का लिया निर्णय। यूपी टीईटी 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षकों को मिलेगा विशेष अवकाश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में 700 करोड़ रुपए की 102 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बरेली में नगर निगम के वेस्ट मैनेजमेंट वाहनों को दिखाई हरी झंडी। आगरा में आयोजित

0: लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कहा स्वशासन सेवा और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देता है उनका जीवन। और प्रदेश में मॉनसून ने दी दस्तक, मौसम विभाग ने कई जिलों में जताई भारी बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी आयोजित करने का निर्णय लिया है। यूपी टीईटी 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल इस संबंध में अधिकारियों को विस्तृत निर्देश दिए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कल से लेकर 4 जुलाई तक आयोजित हो रहे यूपी टीईटी 2026 परीक्षा की शुचिता, पारदर्शिता और अभ्यर्थियों की सुविधा सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। इस बीच प्रदेश सरकार ने यूपी टीईटी 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को विशेष अवकाश स्वीकृत करने का भी फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल रामपुर में 700 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 102 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किए, साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लैपटॉप और अनुदान राशि के चेक भी बांटे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार रामपुर सहित प्रदेश के पौराणिक और आध्यात्मिक विरासत स्थलों के पुनरुद्धार के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर शामली नया इकोनॉमिक कॉरिडोर रामपुर से होकर गुजरेगा, जो गोरखपुर को सिलीगुड़ी और शामली को पानीपत से जोड़कर क्षेत्र में विकास को और मजबूत करेगा।
1: विरासत के संरक्षण का कार्य हो या विकास की प्रक्रिया को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य, बिना भेदभाव के सुरक्षा देने का कार्य हो या फिर बिना भेदभाव के शासन की योजना हर गरीब के लिए, हर नौजवान के लिए, हर महिला के लिए, अन्नदाता किसान के लिए, जिनके लिए भी योजना है, उन सब तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र सबका साथ सबके विकास के भाव के साथ सरकार कार्य करने को प्रतिबद्ध है।
0: रामपुर के बाद मुख्यमंत्री ने बरेली में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की, साथ ही नगर निगम के वेस्ट मैनेजमेंट वाहनों को हरी झंडी भी दिखाई। विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीवीजी रामजी अधिनियम 2025 आज से पूरे ग्रामीण भारत में लागू हो रहा है। इसके राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की पूर्व संध्या पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कहा कि कोई भी पात्र ग्रामीण श्रमिक एक दिन भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं, कार्यान्वयन प्रणालियां पूरी तरह से तैयार हैं और चल रहे कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। श्री चौहान ने कहा कि 125 दिनों के वेतन भोगी रोजगार की बढ़ी हुई गारंटी से ग्रामीण आजीविका मजबूत होगी। यह अधिनियम प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक वेतन भोगी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है। प्रदेश के सभी जिलों में आज से ग्राम सचिवालयों में लेखपालों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। इस संबंध में राजस्व परिषद की ओर से सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक जनपद में लेखपालों का रोस्टर तैयार किया जाएगा। इसके अनुसार प्रत्येक लेखपाल अपने कार्य क्षेत्र के ग्राम पंचायत भवन अथवा ग्राम सचिवालय में निर्धारित दिवस पर उपस्थित रहेंगे। इससे ग्रामीणों को पहले से जानकारी रहेगी कि उनके क्षेत्र का लेखपाल किस दिन उपलब्ध रहेगा, जिससे उन्हें अनावश्यक रूप से तहसील अथवा अन्य स्थानों के बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस पहल से ग्राम सचिवालय केवल विभिन्न योजनाओं के आवेदन केंद्र ही नहीं बल्कि ग्रामीणों के लिए वन स्टॉप सर्विस सेंटर के रूप में विकसित होंगे। इससे आम नागरिकों को राजस्व सेवाएं गांव स्तर पर ही सुलभ होंगी और राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जन केंद्रित बनेगी। समाचार कक्ष से तन्वीर फातिमा।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कल आगरा में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज जब भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का जीवन हमें सुशासन, सेवा और राष्ट्र निर्माण की अमूल्य प्रेरणा देता है।
1: वो लोक माता थी, जन जन की माता थी, जिनमें जन जन के प्रति संवेदना थी, लोगों के दुख पीड़ा को एहसास करकर शासन से कैसा न्याय मिल सकता है, शासन कैसे समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है, कैसा नीतिगत रूप से शासन होना चाहिए, वो आज हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। जन भागीदारी के साथ, जन सहयोग के साथ विकसित भारत में हमारा भी योगदान हो, ताकि हम देश और राष्ट्र के पुनर्निर्माण की ओर आगे बढ़ सके।
0: उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग आज से 15 जुलाई तक प्रदेश स्तर पर मिशन सेफ फ्यूचर नाम का अभियान चलाएगा। इस अभियान में कार्यालय स्तर से बिना फिटनेस, बिना परमिट स्कूल वाहन के धारक स्कूलों के प्रबंधकों व प्रधानाचार्यों को नोटिस या फोन द्वारा सचेत किया जाएगा कि वे जुलाई के पहले सप्ताह तक 100% स्कूल वाहनों का फिटनेस कराएं और वैध परमिट प्राप्त करें। प्रदेश के सभी जिलों में आज से संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत हो रही है। इसके तहत करीब 1 दर्जन सरकारी विभाग आपसी समन्वय बनाकर पूरे माह संचारी रोगों की रोकथाम से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन करेंगे। राज्य के लगभग सभी जिलों में मॉनसून की दस्तक हो गई है। मॉनसूनी वर्षा शुरू हो जाने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। पीलीभीत, अमरोहा, कानपुर, अंबेडकर नगर और गोरखपुर सहित कई जिलों में कल से रुक रुक कर वर्षा हो रही है। इसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने प्रदेश के कई स्थानों पर भारी वर्षा का पूर्वानुमान जताया है।
3: 30 जून को वो मानसून की पूर्वी शाखा सक्रिय हुई और उत्तर प्रदेश में इसने प्रवेश किया और अगले 2 दिनों में के और आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। आने वाले 3 दिनों के दौरान पूरे प्रदेश में 75% स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। 2 और 3 जुलाई को प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों, विशेष रूप से विंध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र से लगे हुए जो जिले हैं, वहां पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 2 जुलाई तक पूरे प्रदेश में प्रिवेलिंग टेम्परेचर की तुलना में 7 से 9 डिग्री तापमान कम हो जाएंगे।
0: प्रदेश में टाइगर रिजर्व के लिए 1 नवंबर 2025 से जारी पर्यटन सत्र कल संपन्न हो गया। 8 महीने तक चले इस सत्र के दौरान लखीमपुर खीरी के दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटकों ने वन्य जीवों का अवलोकन किया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का लिया निर्णय। UPTET 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले शिक्षकों को मिलेगा विशेष अवकाश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामपुर में 700 करोड़ रुपए की 102 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। बरेली में नगर निगम के वेस्ट मैनेजमेंट वाहनों को दिखाई हरी झंडी। आगरा में आयोजित लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, कहा सुशासन, सेवा और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देता है उनका जीवन। और प्रदेश में मॉनसून ने दी दस्तक, मौसम विभाग ने कई जिलों में जताई भारी बारिश की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी

0: कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय 7:32 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का इन्फोटेनमेंट प्रोग्राम सुबह सवेरे।

0: चलो जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। जो उम्मीद दूसरों से की थी वो अब खुद से करते हैं। फूल खिलते हैं, गिरते हैं, पेड़ नहीं सूखा करते। गम को देखकर खुशियों की आशाएं नहीं छोड़ा करते। चलो फिर से बहारों का आगाज करते हैं। ये जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। इन्हीं कामनाओं के साथ आज सुबह सवेरे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कीजिए स्वीकार नमस्कार रेणु तिवारी की ओर से।
1: दिन है सुहाना, आज पहली तारीख है। दिन है सुहाना।

बड़े ही शरीफ हैं, पुराने मेहरबान हैं, बड़े ही शरीफ हैं, पुराने मेहरबान हैं। अरे जेब को बचाना बचाना बचाना, जेब को बचाना।

श्रोताओं, आज पहली तारीख है, यानी एक नए महीने का पहला दिन। मौसम ने भी यहाँ करवट ले ली है और अब गर्मी की जगह रिमझिम बारिश ने दस्तक दे दी है। आज यानी 1 जुलाई का दिन समर्पित है नई शुरुआत को। क्या क्या हुआ था आज के दिन और क्यों खास है 1 जुलाई, आइए डालते हैं इस पर एक नज़र। 1 जुलाई 1781 को हैदर अली और ब्रिटिश सेना के बीच युद्ध शुरू हुआ था। 1 जुलाई 1852 में सिंध के मुख्य आयुक्त बर्टले फ्लोरे द्वारा सिंध राज्य में एवं सिंध कराची मार्ग पर प्रयोग के लिए सिंध डाक टिकट जारी किया गया। 1862 में इसी दिन कलकत्ता उच्च न्यायालय का उद्घाटन भी किया गया। 1 जुलाई 1879 में भारत में पोस्टकार्ड की शुरुआत की गई थी। इस दिन को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। श्रोताओं, 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। 1 जुलाई 1964 को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई। 1 जुलाई 1996 को इच्छा मृत्यु कानून विश्व में पहली बार ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी प्रांत में लागू किया गया। 1 जुलाई 2017 को भारत में अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में GST को लागू किया गया। इसीलिए 1 जुलाई को GST दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 जुलाई 2017 को GST कानून लागू हुए, जिसने केंद्र और राज्य की जटिल कर व्यवस्था का स्थान ले लिया। GST के तहत वस्तुओं और सेवाओं को 5, 12, 18 और 28% सहित श्रेणियों में बांटा गया। आज CA दिवस भी है। ये दिन चार्टर्ड अकाउंट के योगदान को सम्मानित करने और उनके महत्व को रेखांकित करने के लिए मनाया जाता है। अगर बात की जाए आज जन्मी प्रसिद्ध हस्तियों की, तो 1 जुलाई 1933 को जन्म हुआ परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद का। 1938 की 1 जुलाई को जन्म हुआ प्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का। आज पुण्यतिथि है राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी की। ये बात हुई आज यानी 1 जुलाई के इतिहास की। और अब एक नज़र आज के समाचार पत्र की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने जनपद दौरे के दौरान मेधावियों, किसानों और उद्यमियों को किया सम्मानित। शाहबाद में आयोजित जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से जिले के मेधावियों, जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों और क्षेत्र के विकास में योगदान देने वाले प्रमुख उद्यमियों को सम्मानित किया। जनरल धीरज सेठ देश के 31वें सेना प्रमुख बने। जनरल धीरज सेठ ने मंगलवार यानी कल नए सेना

अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के नाम पश्चिमी मोर्चे पर दो ऑपरेशन आर्मी कमांड का नेतृत्व करने वाले जनरल के नाम ये उपलब्धि दर्ज है। उत्तर प्रदेश पर छाए मानसूनी बादल जमकर बरसेंगे। मानसून यूपी में प्रवेश कर चुका है। पूरब से पश्चिम तक कई जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा दर्ज की गई है। यूपी उत्तराखंड के अमौसी स्थित मौसम मुख्यालय के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बरेली के बहेड़ी में सबसे ज़्यादा 157 मिलीमीटर मूसलाधार बारिश हुई। पूर्वी हिस्सों में भी जमकर पानी बरसा है। मौसम विभाग ने 30 जिलों में भारी या बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। रामपुर में भीषण गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग के अनुसार आज भी बारिश के आसार हैं। बारिश से तपती गर्मी से लोगों को राहत मिली है। पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी और उमस झेल रहे लोगों को मंगलवार को हुई झमाझम बारिश ने बड़ी राहत दी। आसमान में काले बादलों के डेरे और ठंडी हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया। आज से खुलेंगे माध्यमिक विद्यालय। गर्मी की छुट्टियों के बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक विद्यालय आज से फिर खुल जाएंगे। जुलाई में नियमित पठन पाठन के साथ शैक्षणिक सहशैक्षणिक और मूल्यांकन संबंधी गतिविधियों का विस्तृत कार्यक्रम लागू होगा। आज से चलेगा स्कूल चलो अभियान का दूसरा चरण। जिले भर के परिषदीय स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र में अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करने के लिए आज से स्कूल चलो अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत विद्यालय से बाहर रह गए बच्चों को स्कूल से जोड़ने, नए प्रवेश बढ़ाने तथा अभिभावकों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यूपी टीईटी कल से 20 लाख अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 गुरुवार से शुरू होगी। प्रदेश के 60 जिलों में बने 955 परीक्षा केंद्रों पर 5 पालियों में करीब 20 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। यूपी टेट में शामिल होने वाले लोगों को मिलेगा विशेष अवकाश। शासन ने जारी किए निर्देश। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट में शामिल होने वाले बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। शासन ने परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सेवारत शिक्षकों के लिए विशेष अवकाश स्वीकृत कर दिया है। ये थे आज के अखबार की सुर्खियां और अब समय है एक अल्प विराम का। ब्रेक के उस पार कुछ और बातें, कुछ और गीत कर रहे हैं आपका इंतजार। बने रहिए हमारे साथ।

ब्रेक के बाद सुबह सवेरे कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज यानी 1 जुलाई को मनाया जाता है डॉक्टर्स डे। भारत में के महान शिक्षक, स्वतंत्रता सेनानी और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की याद में डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। ये दिन चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर्स के अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा भाव को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। 1 जुलाई 1991 को भारतीय मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा पहली बार डॉक्टर्स डे मनाया गया। भगवान के बाद डॉक्टर ही वो व्यक्ति होता है जो किसी व्यक्ति को नया जीवन दे सकता है। हम आभारी हैं अपने चिकित्सकों के, जो जीवन के सबसे कठिन समय में हमारा सहारा बनते हैं। श्रोताओं, आज के दिन एक और महत्वपूर्ण शुरुआत का दिन है। आज यानी 1 जुलाई से आरंभ होता है वन महोत्सव। राष्ट्रीय वन महोत्सव प्रतिवर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। ये समय है वृक्षारोपण का, यानी पेड़ों के त्योहार का। वन महोत्सव का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण एवं वनों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस अभियान की शुरुआत 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि एवं खाद्य मंत्री कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी के द्वारा की गई थी। हमारे देश में इस समय मानसून चल रहा होता है और नए वृक्षों के पनपने और विकास के लिए ये समय सर्वाधिक अनुकूल होता है। यही वो समय है जब हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर इस धरती को हरा भरा बना सकते हैं, अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। तो आइए हम और आप संकल्प करें कि अपने अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर इस धरती का श्रृंगार करेंगे और पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देंगे।

किसी भी सबल और शक्तिशाली राष्ट्र की नींव होती है उसका शिक्षित समाज। शिक्षा एक व्यक्ति को न सिर्फ सबल बनाती है बल्कि समझदार भी बनाती है, और प्रत्येक बच्चे का अधिकार है कि उसको शिक्षा मिले, वो स्कूल से जुड़े और पढ़ने का, आगे बढ़ने का उसे अवसर मिले। श्रोताओं, आज सुबह से ही एक अलग रौनक नजर आ रही है। आज से विद्या के मंदिर यानी स्कूल खुल गए हैं और आज आरंभ हो रहा है स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण का। इस अभियान का पहला चरण 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक होता है और दूसरा चरण 1 जुलाई से 15 जुलाई तक चलता है। इस अभियान का उद्देश्य है सभी पात्र बच्चों का 100% नामांकन। 3 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चे आंगनवाड़ी केंद्रों में और 6 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों का प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश सुनिश्चित किया जाए, ऐसी सरकार की मंशा है। शिक्षक घर घर जाकर संपर्क कर रहे हैं, पर यहाँ पर अभिभावकों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि शहरी क्षेत्रों में तो बच्चे फिर भी आसानी से स्कूल जाते हैं, पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति अभी भी इस स्थिति पर कार्य किया जाना बाकी है। कई बार अशिक्षित अभिभावकों के कारण तो कई बार अनेक बाधाओं के कारण बच्चे स्कूल जाने से छूट जाते हैं, तो ज़रूरी है कि हम किसी भी मुश्किल को किनारे रखकर अपने बच्चों को स्कूल तक पहुंचाएं। सरकार के प्रयास जारी हैं, अब आपकी बारी है। विकसित समाज का आधार सुरक्षित और शिक्षित बचपन है। याद रखिए, बच्चों के हाथों में औजार नहीं कलम सौंपिए, उनको शिक्षित बनाने की पूरी कोशिश की जाए क्योंकि उन्नत समाज की नींव को मजबूत करने के लिए नन्हे हाथों में कलम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कलम की जो लिखाई है वो कल उनकी किस्मत बनेगी और वो इस समाज में सूरज बनकर चमकेंगे और अपनी किस्मत खुद लिखेंगे।

0: हम सब सुखी हों, आगे बढ़ें और सबका कल्याण हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का सुबह सवेरे कार्यक्रम समाप्त करने की रेणु तिवारी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे, ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 8 बजने वाले कुछ ही पलों में अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से रिले होगा।

मुख्य समाचार। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी।

0: प्रावधान किया गया है।
1: वीबीजी रामजी अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले रोजगार की कानूनी गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इस बढ़ी हुई रोजगार गारंटी का मकसद ग्रामीण विकास की तेज रफ्तार को बढ़ावा देना है, लोगों की आय को अधिक सुरक्षित बनाना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है। इस कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ सुनिश्चित करने पर विशेष दिया गया है। अगर तय समय के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस कानून में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी राम जी एक व्यापक कानून है जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्र लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें अधिसूचित कर दी हैं। ये दरें आज से लागू हो जाएंगी। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मजदूरी दर में 15 से 25% की वृद्धि वाले राज्यों में शामिल है। मंत्रालय ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में लगभग 24.5% की सर्वाधिक वृद्धि की गई है। हरियाणा में अब मजदूरी दर 409 रुपए, गोवा में 406 रुपए और केरल में 401 रुपए प्रतिदिन होगा। सिक्किम की ऊंचाई वाली ग्राम पंचायतों में ये दर 450 रुपए प्रतिदिन निर्धारित की गई है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संशोधन को गांवों की वृद्धि के माध्यम से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम गरीब कल्याण, अंत्योदय और 2047 तक विकसित भारत की सरकार की प्रतिबद्धता में मील का पत्थर है। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने श्री मोदी को पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न पक्षों के बीच बनी सहमति का स्वागत किया तथा सभी मुद्दों का समाधान बातचीत और राजनयिक माध्यम से किए जाने के भारत के रुख को दोहराया। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता तथा सुरक्षित नौवहन वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। ईरान के राष्ट्रपति ने शांति, स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों की सराहना की। ईरानी दूतावास ने बताया कि बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने भारत में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक के सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त किया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही हैं। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन दोनों देशों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा और इसे सुदृढ़ बनाने के साथ ही परस्पर हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा।
3: भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को वर्ष 2014 में विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। अगले वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस अवसर की ओर बढ़ते हुए दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, आर्थिक सुरक्षा, रक्षा एवं सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा जन से जन संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग लगातार गहरा हो रहा है। भारत जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता 1 अगस्त 2011 से प्रभावी है। पिछले वित्तीय वर्ष में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार $27 अरब से अधिक रहा। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखते हुए महत्वपूर्ण पेट्रो रसायन उत्पादों को 15 जुलाई तक सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। पहले ये छूट कल मंगलवार तक के लिए दी गई थी। ये रियायत घरेलू बाजारों में पेट्रोकेमिकल उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता

0: एकता को बनाए रखने के लिए की गई है। इस छूट से प्लास्टिक पैकेजिंग, कपड़ा, फार्मास्यूटिकल, रसायन, मोटर वाहन और पेट्रो रसायन उत्पादों पर आधारित कई सेक्टर्स को लाभ होगा। बीमित व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आज से अगले वर्ष 30 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही नए ईएसआई अस्पतालों का प्रबंधन अब सीधे निगम द्वारा किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की बैठक में ये फैसले लिए गए। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा राजस्थान सरकार मिलकर आयोजित कर रहे हैं।
1: सम्मेलन में 1000 से अधिक स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थाओं के 400 से ज्यादा प्रतिनिधियों सहित करीब 2700 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। पहले दिन 3 प्लेनरी और 6 ब्रेकआउट सत्र होंगे, वहीं दूसरे दिन 3 प्लेनरी सत्रों के बाद राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार वितरण के साथ सम्मेलन का समापन होगा। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग, वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य विषयों पर चर्चा होगी। यह आयोजन समावेशी, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित डिजिटल शासन की दिशा में महत्वपूर्ण मंच साबित होगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: उत्तराखंड की मदरसा शिक्षा व्यवस्था में आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो जाएगा। नई व्यवस्था के अंतर्गत उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। राज्य में अल्पसंख्यकों के सभी शैक्षणिक संस्थान नए ढांचे के अंतर्गत संचालित होंगे।
2: उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और समान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजानदास ने बताया कि वर्तमान में संचालित सभी मान्यता प्राप्त मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन लाया जाएगा। साथ ही इन संस्थानों को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद से संबद्ध किया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप शिक्षा मिल सके। उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यवस्था केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं होगी, बल्कि सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों पर भी सामान्य रूप से लागू होगी।
3: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा।
2: सभी मदरसों को यूडायस, यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन नंबर आवंटित किया जाएगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: देशव्यापी जनगणना के अंतर्गत आज केरल में घर घर जाकर आंकड़ों के सत्यापन का चरण शुरू हो रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से।
4: स्वगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फील्ड सत्यापन का चरण शुरू हो गया है। यह प्रक्रिया कल खत्म हुई। इस दौरान परिवार जनगणना पोर्टल के जरिए अपने सदस्यों की जानकारी डिजिटल रूप से जमा कर सकते थे। जिन लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लिया है, उन्हें घर पर आने वाले जनगणना कर्मचारी को सेल्फ एन्यूमरेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होगा। इसके बाद कर्मचारी यह जांच करेगा कि ऑनलाइन दी गई जानकारी मौजूदा रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। अगर कोई अंतर मिलता है या किसी परिवार ने स्वगणना पूरी नहीं की है, तो कर्मचारी घर पर आने के दौरान जरूरी जानकारी फिर से इकट्ठा करेंगे। स्मिथी एम पुल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय UPTET की समीक्षा बैठक में लिया गया। TET परीक्षा गुरुवार से 4 जुलाई तक राज्य के 60 जिलों के 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुरम जिले के जंतुलुरु में आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने वाले 1268 छात्रों को उपाधि प्रदान करेंगी। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस जन स्वास्थ्य की रक्षा के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और उनके अमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। ये दिवस हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती और पुण्यतिथि की स्मृति में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर दिवस पर देश के सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी हैं।

0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस के अवसर पर सभी चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। श्रृंखला का पहला मैच भारतीय समय अनुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से हरा दिया है और इसके साथ ही उसने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली है। इससे पहले नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। राउंड 32 में मैक्सिको और इक्वाडोर के बीच मुकाबला जारी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ ही बाजार की स्थितियों और पर्यावरण के सरोकारों को भी जगह दी गई है। दैनिक भास्कर ने केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण को शीर्ष समाचार बनाया है। एथेनॉल से पेट्रोल गाड़ियों को किसी नुकसान का कोई सबूत नहीं। अखबार ने यह भी स्पष्ट किया है कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी की बीमा पॉलिसी पर असर नहीं पड़ता है। पत्र ने सोने चांदी के भावों और सेंसेक्स में गिरावट की स्थिति अगले 6 माह में सुधरने की आशा व्यक्त की है। पंजाब केसरी ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पीएम की हाई लेवल मीटिंग और बॉक्स में प्रकाशित किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समेत कई मुद्दों पर पीएम ने चर्चा की और कहा कि सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। ईरान के राष्ट्रपति से बात करते हुए हॉर्मुज में प्रधानमंत्री की ओर से नौवहन की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिए जाने को भी पत्र ने शीर्ष समाचार बनाया है। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है ओजोन प्रदूषण बना रहा दिल्ली एनसीआर को बीमार। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर आलेख प्रकाशित किया है एक नए दौर की शुरुआत। लेख में कहा गया है कि आज भारत के 2 पड़ोसी चीन और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न हैं और उनकी वायुसेनाएं तेजी से आधुनिक हो रही हैं। ऐसे में DRDO द्वारा नेत्र प्रणाली को अंतिम परिचालन की मंजूरी मिलना भारत की हवाई निगरानी क्षमता और तकनीकी आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की शुरुआत जैसा है।
0: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजिश्कियान से बात की। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति और स्थिरता बहाल करने तथा सुरक्षित नौवहन और वाणिज्य के लिए सतत प्रयासों पर बल दिया। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने स्वीडन को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला आज से। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। विकसित भारत जी राम जी स्कीम कम्स इनटू फोर्स अक्रॉस द कंट्री टुडे, रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग एमजी नरेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीक्स टू ईरानियन प्रेसिडेंट, स्ट्रेस्ड need for continued efforts to secure lasting peace in West Asia and safeguarding freedom of navigation and commerce. Japanese Prime Minister Sanae Takaichi to arrive in New Delhi this evening on a 3-day visit to India. France beat Sweden 3-0 to enter round of 16 at FIFA World Cup football, and India's men's cricket team to begin their 5-match 2020 international series against hosts England today. विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 विल कम इनटू फोर्स अक्रॉस रूरल इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम टुडे। द रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री सेज दैट द एक्ट विच गारंटीज 125 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर विल एम्पावर रूरल इंडिया। Our correspondent reports that a provision of 95,692 crore rupees has been made in the current financial year for operationalization of the new framework across the country.
3: VBG Ramji Act replaces the 20-year-old Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005. The new act aims to enhance the statutory employment guarantee from 100 days to 125 days in a financial year. This enhanced employment guarantee is intended to support the accelerated pace of rural development, provide greater income security, and empower rural households. The Act places strong emphasis on timely, transparent, and accountable wage payments. The new Act also provides for an unemployment allowance if work is not provided within the stipulated time. The Viksit Bharat Ji Ramji Act is a comprehensive legislative framework designed to align rural employment generation with the national vision of Viksit Bharat by 2047. Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
2: The central government has notified revised wage rates under the Viksit Bharat Ji Ramji Act 2025 effective from today. According to the notification issued by the Rural Development Ministry, wage rates have been enhanced across all states and union territories. It said, for the first time, an interim base wage rate of 300 rupees per day has been introduced, ensuring that no notified wage under the program falls below this level. The national average wage has risen from 298.8 rupees per day under MG Narega to 327.4 rupees per day under Viksit Bharat Ji Ramji, marking an average increase of over 10%. 21 states and administrative units, which previously had wages below 300 rupees, have now been brought up to the new benchmark. The states of Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, West Bengal, Assam, Arunachal Pradesh, and Himachal Pradesh are among those witnessing significant hikes ranging from between 15 and 25%. The ministry highlighted that Arunachal Pradesh and Nagaland have received the highest percentage increase of nearly 24.5%. States with already higher wages have also seen upward revisions. Haryana will now have a wage rate of 409 rupees, Goa 406 rupees, and Kerala 401 rupees per day. In Sikkim's high altitude Gram Panchayats, the rate has been set at 450 rupees per day. Union Minister for Rural Development, Shivraj Singh Chauhan, described the revision as a historic step towards building a Viksit Bharat through prosperous villages. The Uttarakhand Minority Education Authority has come into existence today, replacing the Madrasa Board in the state. With this, all 456 madrasas in Uttarakhand will now be monitored by both the state government and the central government. More from our correspondent.
4: The Uttarakhand government has taken this significant step to make the education system more modern, transparent and inclusive. State Minister for Social Welfare, Shri Khajandas, said that all recognized madrasas currently operating in the state will now come under the Uttarakhand Minority Education Authority. They will also be affiliated with the Uttarakhand Board for School Education to ensure that students receive education in line with the national education standards. He said that the new system will not only be limited to institutes of the Muslim community alone, but will also apply equally to the educational institute run by Sikh, Jain, Buddhist, Christians and Parsi minority communities. Sakshi Singh, Akashvani News, Dehradun.
2: The house-to-house data verification phase of the census begins across Kerala today as part of the nationwide census exercise. More from our correspondent.
5: The field verification follows the completion of the self-enumeration process, which ended at midnight yesterday. During the self-enumeration phase, households were able to digitally submit details of family members through the census portal. Residents who completed the online registration are required to provide the self-enumeration identification number to the census enumerator during the household visit. The enumerator will verify whether the information submitted online matches the existing records. If any mistakes are found or if a household has not completed self-enumeration, the enumerator will collect the required information afresh during the visit. Midhi M. Palluruthi, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
2: President Draupadi Murmu will grace the first convocation of the Central University of Andhra Pradesh in Jantaluru in Ananthapuramu district today. The president will confer degrees on 1,268 students who have successfully completed undergraduate and postgraduate programs. She will also present gold medals to 56 students for their outstanding academic performance. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on IX handle at AIR News.

0: alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Prime Minister Narendra Modi held a telephone conversation with the Iranian President Dr. Masoud Pezeshkian yesterday. During the talks, President Pezeshkian briefed Mr. Modi on the recent developments in West Asia and the way forward. The Prime Minister welcomed the understanding reached and reiterated India's consistent position that all issues must be resolved through dialogue and diplomacy. Mr. Modi reiterated the need for continued efforts to ensure lasting peace and stability in the region and for safeguarding freedom of navigation and commerce. The Iranian president also appreciated Prime Minister Modi's personal role in supporting peace, stability and regional cooperation during their telephone conversation. According to the Embassy of Iran in India, during the conversation, President Pezeshkian expressed his satisfaction with the successful planning and hosting of the BRICS Energy Ministers meeting in India. He voiced hope that cooperation and engagement between Iran and India within multilateral frameworks such as BRICS would continue to expand. Emphasizing Iran's commitment to strengthening and deepening relations with India, the Iranian president said that the relations between the two countries are founded on a long-standing historical legacy and mutual respect. Japanese Prime Minister Sanae Takaichi is arriving in New Delhi this evening on a three-day visit to India. This marks her first official visit to India. She will attend the 16th India-Japan Annual Summit tomorrow with Prime Minister Narendra Modi. The summit will provide an opportunity for both sides to review and strengthen the full spectrum of bilateral cooperation as well as exchange views on regional and global issues of mutual interest. Our correspondent reports that India and Japan share a long-standing friendship rooted in centuries of cultural and civilizational exchange, spiritual affinity, and shared values of freedom, democracy, and respect for the rule of law.
1: India-Japan bilateral relationship was elevated to a special strategic and global partnership in 2014 as the two countries approached the 75th anniversary of the establishment of diplomatic relations in 2027. Cooperation continues to deepen across a wide range of sectors. These include trade and investment, economic security, defense and security, science and technology, culture and people-to-people ties. India-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement came into effect on 1st August 2011. In 2025-26, bilateral trade crossed $27 billion. Japan is the fifth largest investor in India with investment of $48.17 billion between April 2000 and March 2026. Cultural cooperation also remains strong, with the Japanese showing great interest in Indian culture, including yoga, and finding connections through Buddhism and cultural symbolism. Suparna Saikya, Akashvani News, Delhi.
0: The 29th National E-Governance Conference will begin in Jaipur today. The two-day conference will be held at the Rajasthan International Center and is being jointly organized by the Department of Administrative Reforms and Public Grievances, the Ministry of Electronics and Information Technology, and the Government of Rajasthan. More from our correspondent.
2: Around 2,700 delegates will participate in this conference, including representatives from more than 1,000 startups and over 400 academia. The first day will feature three plenary sessions and six breakout sessions. On the second day, the plenary sessions will be followed by the presentation of the National E-Governance Award, marking the conclusion of the conference. The discussions will be focused on artificial intelligence, deep tech, quantum computing, voice-first solutions, secure digital infrastructure, and other emerging technologies. The conference is expected to serve as a key platform for advancing inclusive, transparent, and citizen-centric digital governance. Jitendra Dwivedi, Akashvani News, Jaipur.
0: Seven people were killed and more than 12 others injured after a sleeper bus caught fire following a collision with a truck on the Delhi-Mumbai expressway in Rajasthan's Dausa district. The accident occurred at around 3 a.m. near Tanawara village, close to Bandikui. The bus, which was travelling from Rishikesh to Indore, rammed into a truck and caught fire soon after. Several passengers were trapped inside the burning bus and did not get an opportunity to escape. In football, Kylian Mbappe further enhanced his FIFA World Cup legacy to lead France to a comfortable win against Sweden. In the round of 32 clash, France defeated Sweden 3-0 at New York's New Jersey Stadium this morning to storm into round of 16. Mbappe struck twice to take his World Cup tally to 18 goals, now two clear of Miroslav Klose and only one behind Lionel Messi. Earlier, Norway beat Ivory Coast 2-1 in Texas, USA to advance to the round of 16. Antonio Nusa scored in the 39th minute to give Norway the lead, but Ivory Coast's Amad Diallo equalized in the 74th minute. However, Erling Haaland's 86th minute goal secured Norway's spot in the round of 16. Norway will now face Brazil in the round of 16 on Sunday night. India's men's cricket team will begin their five-match 2020 national series against hosts England today. The opening match will be played at the Riverside Ground in Chesley Street starting at 10 p.m. Indian time. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
3: Thank you, Sunil. In their first conversation after Iran-US MOU, Iran's President Pezeshkian briefs Prime Minister Modi on developments in West Asia and the way forward, reports the Indian Express. The Hindu quotes a Union Finance Ministry report that reveals that Gulf remittances rose in April despite West Asia crisis. The lead story in Hindustan Times is what the newspaper calls a grim forecast by India Meteorological Department, predicting that July is likely to be drier and hotter than normal across India. The special intensive revision of electoral rolls kicks off in Delhi, Jharkhand, Meghalaya, Maharashtra and Karnataka, reports the Asian Age. Niti Aayog has proposed a sweeping overhaul of India's tourism regulations as part of its latest report, Unlocking Growth in Tourism and Hospitality Sector, reports the Pioneer. In its editorial piece titled Safer Chats, the Tribune argues that WhatsApp's introduction of usernames is a long overdue privacy reform because it lets users communicate without exposing their phone numbers. And finally, work has begun on war footing on India's wrist petroglyph conservation park at Sindhu Ghat in Leh with the relocation of centuries-old rock carvings, writes the Statesman. And with that, it's back to you, Sunil.
0: Thank you, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Vikasit Bharat G. Ramji scheme comes into force across the country today, replacing existing MG Narega. Prime Minister Narendra Modi speaks to Iranian President, stressed need for continued efforts to secure lasting peace in West Asia and safeguarding freedom of navigation and commerce. Japanese Prime Minister Sanae Takaichi to arrive in New Delhi this evening on a three-day visit to India. France beats Sweden 3-0 to enter round of 16 at FIFA World Cup football. And India's men's cricket team to begin their five-match 2020 international series against hosts England today. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
4: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास-खास खबरें। विकसित भारत जी रामजी स्कीम आज से पूरे मुल्क में नाफिज हो रही है, जो मौजूदा एमजी नरेगा की जगह लेगी। وزیراعظم نریندر مودی نے ایران کے صدر سے فون پر بات چیت کی اور مغربی ایشیا میں پائیدار امن کے حصول کے لیے کوششیں جاری رکھنے نیز بحری جہازوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت اور تجارت کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا جاپان کی وزیراعظم سنائی تائکیچی بھارت کے تین دن کے دورے پر آج شام نئی دلی پہنچ رہی ہے فٹبال میں فرانس سویڈن کو 3-0 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے اور بھارتی مردوں کی کرکٹ ٹیم آج میزبان انگلینڈ کے خلاف 5 T20 میچوں کی سیریز کا آغاز کر رہی ہے اب خبریں تفصیل سے وکسد بھارت روزگار گارنٹی اور آجیوکا مشن گرامین وی بی جی رام جی ایکٹ 2025 آج سے پورے دیہی بھارت میں نافذ ہو جائے گا دیہی ترقی کی وزارت نے بتایا کہ اس قانون سے جس میں ہر مالی سال میں 125 دن کے اجرت والے روزگار کی گارنٹی دی گئی ہے دیہی بھارت با اختیار بنے گا हमारे नवनिगार ने बताया है कि मुल्क भर में नए फ्रेमवर्क पर अमल दरामद के लिए रवा माली साल में 95,692 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। तफसील हमारे नवनिगार से।
5: वीबी जी रामजी कानून ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी कानून एमजी नरेगा 2005 की जगह ली है। इस नए कानून का मकसद गारंटी वाले रोजगार में इजाफा करना है। इस कानून के तहत माली साल में अब तक 100 दिन की गारंटी दी जाती थी, लेकिन अब से 125 दिन की गारंटी दी जाएगी। गारंटी वाले रोजगार में इस इजाफे का मकसद देही तरक्की की रफ्तार में तेजी लाना, मजीद आमदनी की यकीन दहानी करना और देही घरों को बाख्तियार बनाना है। इस कानून में बरवक्त शफाफ और जवाबदेही पर मबनी उजरत की अदायगी पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की गई है। इस नए कानून के तहत ये सहूलत फराहम की गई है कि अगर किसी को मुकर्र वक्त के अंदर अंदर काम फराहम नहीं किया गया तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। विकसित भारत जी रामजी कानून एक जामे फ्रेमवर्क है जिसे 2047 तक विकसित भारत के कौमी तस्वूर के मुताबिक देही रोजगार फराहम करने के लिए तश्कील दिया गया है। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कलीम अहमद।
4: देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने इस मिशन पर अमल दरामद के बारे में कहा कि कोई भी अहल देही वर्कर एक दिन के लिए भी बगैर कामकाज के न रहे। जनाब चौहान ने कहा कि हुकूमत ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ करीबी काम रखते हुए सभी इंतजामी माली और तकनीकी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं ताकि नए फ्रेमवर्क पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। वजीर मौसूफ ने कहा कि भरपूर माली वसाइल दस्तयाब कराए गए हैं, लिहाजा अमल दरामद का निजाम पूरी तरह तैयार है और जो काम जारी हैं वो बिला रुकावट जारी रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 125 दिन की उजरत वाले रोजगार की इस गारंटी से देही गुजर बसर को इस्तेहकाम हासिल होगा, लोगों को मुस्तकिल असासे फराहम होंगे और विकसित भारत के तसव्वुर पर अमल दरामद में तेजी आएगी। मरकजी हुकूमत ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबी जी राम जी कानून 2025 के लिए गारंटी के तहत उजरतों में तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी किया है जो आज से लागू हो गया है। देही तरक्की की वजारत की तरफ से जारी किए गए इस नोटिफिकेशन के मुताबिक उजरत की शरहों में सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में इजाफा किया गया है। इसमें कहा गया है कि ऐसा पहली बार है कि 300 रुपए रोजाना की उजरत आरजी बुनियाद पर शुरू की गई है, जिसके तहत इस बात को यकीनी बनाया गया है कि इस प्रोग्राम के तहत नोटिफिकेशन में शामिल कोई भी उजरत इस सतह से कम न हो। एमजी नरेगा के तहत कौमी सतह पर औसत उजरत पहले 298.80 रुपए थी, जिसे अब वीबी जी रामजी के तहत 327.40 रुपए रोजाना कर दिया गया है, जो औसतन 10% से ज्यादा है। उत्तराखंड अकीलती तालीमी इतारे अथॉरिटी आज से नाफिज हो गई है, जो रियासत में मदरसा बोर्ड की जगह लेगी। इस तरह उत्तराखंड में सभी 456 मदरसे रियासती सरकार और मरकजी हुकूमत दोनों के जेरे निगरानी रहेंगे। रियासत के समाजी बहबूद और अकलियतों की बहबूद के वजीर खजान सिंह ने कहा कि रियासत में सभी मौजूदा तस्लीम शुदा मदरसे अब उत्तराखंड अकलियती तालीमी इदारे अथॉरिटी के तहत आएंगे। ये मदरसे उत्तराखंड के स्कूली तालीम के बोर्ड के साथ भी मुंसलिक होंगे ताकि तलबा कौमी तालीमी मयारात के ऐन मुताबिक पढ़ाई कर सकें।
6: भारत में शिक्षा एक समान सबको होनी चाहिए, उसी के निमित्त हमारी सरकार ने 452 मदरसों को चिन्हित किया और उनसे कहा भी गया, उनको समय भी दिया गया कि आप उत्तराखंड की जो हमारा शिक्षा प्रणाली है उससे संबंध होइएगा और इससे जुड़िएगा, सबकी एक शिक्षा होगी, एक सम्मान होगा। ये बहुत ही अच्छा निर्णय है और अल्पसंख्यक में मुस्लिम ही नहीं है, सिख भी है तो ईसाई भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है।
4: सभी मदरसों को तालीम से मुतालिक मुत्तहिदा जिला इत्तिलाती निजाम के नंबर अलॉट किए गए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज अनंतपुर जिले में जंतुलूरू के मकाम पर आंध्र प्रदेश की मरकजी यूनिवर्सिटी के पहले तकसीम असनाद जलसे में शिरकत करेंगी। वो उन 1268 तलबा को डिग्रीज अता करेंगी जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामों में कामयाबी हासिल की है। वो 56 तलबा को उनकी गैर मामूली तालीमी कारकर्दगी पर गोल्ड मेडल भी अता करेंगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेजिशकियां से टेलीफोन पर बात की। इस गुफ्तगू के दौरान ईरान के सदर ने जनाब मोदी को मगरबी एशिया के हालात और वाकयात और आगे बढ़ने के लिए इकदाम से वाकिफ कराया। وزیر اعظم نریندر مودی نے مفاہمت پر اتفاق رائے ہونے کا خیر مقدم کیا اور بھارت کے اس موقف کو دہرایا کہ سبھی معاملات مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے حل کیے جانے چاہیے۔ جناب مودی نے خطے میں

0: साइड ग्राउंड पर खेला जाएगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगा। श्रेयस अय्यर के जेरे कमान भारतीय टीम गुजश्ता सीरीज में आयरलैंड से 2-0 से हारने के बाद खेल में वापसी की भरपूर कोशिश करेगी। सबकी निगाहें उभरते हुए नौजवान खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर होंगी। इसके बाद भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3 एक रोजा मैचों की सीरीज भी होगी। खवातीन के आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में लंदन के ओवल मैदान पर खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंच गया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्ट इंडीज की टीम ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेट पर 125 रन बनाए। ओवल मैदान पर ही कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका की टीम ने आमने सामने होंगी। राजस्थान के दौसा जिले में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक ट्रक से टकराने के बाद स्लीपर बस में आग लगने के वाकये में 7 अफराद की मौत हो गई जबकि 12 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। यह हादसा बंदीकुई के नजदीक रात देर गए 3 बजे के आसपास पेश आया। यह बस ऋषिकेश से इंदौर जा रही थी। भारत के महकमे मौसमियात ने कहा है कि जुनू मगरबी मानसून के अगले 2 दिन के दौरान दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ और पंजाब में पहुंचने का इम्कान है। इधर मानसून मध्य प्रदेश के कुछ और इलाकों छत्तीसगढ़ झारखंड और बिहार के बकिया हिस्सों उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के कुछ हिस्सों नीज उत्तराखंड के बेशतर हिस्सों में मजीद आगे बढ़ गया है। ये थी खबरें। अब अखबार के आईने के साथ हैं कलीम अहमद।
1: शुक्रिया असलम। दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबार ने अलग अलग खबरों को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मुख्तलिफ वजारतों और महकमों के सेक्रेटरियों के साथ मीटिंग को नुमाया किया है जिसमें कारोबार और रहन सहन में आसानी और खुदकफील भारत जैसे अहम मौजूद पर तबादला ख्याल किया गया। अखबार की एक और अहम सुर्खी है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी आर्मी चीफ के उहदे से सुबुकदोश, नए जनरल धीरज सेठ ने फौजी सरबराह की जिम्मेदारी संभाली। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, दिल्ली समेत 5 रियासतों में SIR का अमल शुरू, महाराष्ट्र कर्नाटक मेघालय और झारखंड में होगा SIR। अखबार की बैनुल अक्वामी सुर्खियां इस तरह हैं, खाने काबा को गुस्ल देने की रूह परवर सालाना तकरीब मुनकिद, यूरोप दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला बर्रे आजम।
0: और आखिर में खास खास खबरों का खुलासा एक बार फिर, विकसित भारत जी राम जी स्कीम आज से पूरे मुल्क में नाफिज हो रही है जो मौजूदा MG नरेगा की जगह लेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ईरान के सदर से फोन पर बात की और मगरबी एशिया में पायदार अमन के हुसूल के लिए कोशिशें जारी रखने, नीज बहरी जहाजों की बिला रुकावट आमदोरफ्त और तिजारत के तहफ्फुज की जरूरत पर जोर दिया। जापान की वज़ीर-ए-आज़म सनाई तकाईची भारत के 3 दिन के दौरे पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच रही है। फुटबॉल में फ्रांस स्वीडन को 3-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। और भारतीय मर्दों की क्रिकेट टीम आज मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज का आगाज कर रही है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है, मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। 8:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स।

एनिमल इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना अरिजीत सिंह की आवाज़ में। आइए अब सुनते हैं ये गीत पोपोन और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है सर्कस।

ड्रीम गर्ल टू, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना जुबिन नौटियाल की आवाज में। आकाशवाणी रामपुर से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स। कार्यक्रम का अगला गीत वरुण जैन, सचिन जिगर और राघव चैतन्य की आवाजों में। फिल्म का नाम है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया।

रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी। इस फिल्म का गीत अभी आपने प्रीतम, अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों पर सुना। आइए अब सुनते हैं ये गीत राघव चैतन्य और सचिन जिगर की आवाजों में। फिल्म का नाम है विक्की विद्या का वो वाला वीडियो।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स। ये आकाशवाणी रामपुर है। 9:15 होने वाले हैं। जिले की हलचल कुछ ही देर में लखनऊ केंद्र से रिले होगी।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए भदोही और हाथरस जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं भदोही जिले की हलचल। आलेख है संजय कुमार का।
1: भदोही में अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों के विकास को नई गति देने के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत जिले के 30 गांवों का चयन किया गया है। इन गांवों में लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य कराए जाएंगे। प्रत्येक गांव में करीब 20-20 लाख रुपए की लागत से इंटरलॉकिंग सड़क, नाली निर्माण, सोलर स्ट्रीट लाइट तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग द्वारा चयनित गांवों का सर्वे पूरा कर प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। बजट स्वीकृत होते ही विकास कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। अधिकारियों के अनुसार वर्ष 2019-20 से अब तक जिले के 128 गांव इस योजना में शामिल किए जा चुके हैं, जिनमें से 50 से अधिक गांवों में कार्य चल रहा है, जबकि शेष गांवों में ग्राम विकास योजना और बजट की स्वीकृति मिलने के बाद कार्य प्रारंभ होंगे। शासन की इस योजना से अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा और ग्रामीणों को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। लखनऊ के अलीगंज स्थित कोचिंग सेंटर में हुई भीषण अग्निकांड के घटना के बाद भदोही जिले में भी प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर DIOS भदोही, औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा और अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम लगातार होटल, रेस्टोरेंट, कोचिंग सेंटर, डिजिटल लाइब्रेरी और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर रही है। विशेष अभियान में कुल 145 प्रतिष्ठानों की जाँच की गयी। जाँच के दौरान अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले 85 संचालकों को नोटिस जारी किया गया, जबकि गंभीर अनियमितता मिलने पर 6 कोचिंग सेंटर और डिजिटल लाइब्रेरी को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। जांच में यह भी सामने आया कि जिले के कई प्रतिष्ठानों ने अब तक अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र तक नहीं लिया था। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो। साइबर थाना पुलिस ने निवेश और ट्रेडिंग के नाम पर देश भर में लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले बड़े साइबर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ज्ञानपुर के नंदापुर निवासी मन्नू सिंह और चख सिखारी निवासी ओम प्रकाश गौतम ने लोगों को कम समय में 3 गुना लाभ देने का झांसा देकर फर्जी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से ठगी करते थे। जांच में सामने आया है कि इनके नेटवर्क से जुड़े 50 से अधिक खातों के माध्यम से 50 करोड़ रुपए से अधिक की साइबर ठगी की गई है। इनके खिलाफ केरल, हरियाणा, दिल्ली, तेलंगाना, बिहार और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में 50 से अधिक NCRP शिकायतें दर्ज हैं। 5 ATM कार्ड, 3 पासबुक, 3 चेकबुक, 47 फर्जी आधार और पैन कार्ड, बायोमेट्रिक मशीन, स्टाम्प पैड तथा अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं। पुलिस जांच में विभिन्न बैंकों के खातों से करोड़ों रुपए के लेन देन की जानकारी मिली है। गिरोह के सरगना सुमित सिंह समेत 4 अन्य आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। औराई क्षेत्र के समधा गांव में 106 हेक्टेयर में फैले विशाल ताल को राज्यपाल द्वारा आधिकारिक रूप से वेटलैंड अर्थात आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन योजना के तहत चयनित इस ताल को अब इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए जिला वेटलैंड समिति का गठन किया जाएगा, जो विकास की विस्तृत कार्य योजना तैयार करेगी। यहाँ प्रवासी पक्षियों के अनुकूल प्राकृतिक वातावरण विकसित करने के साथ साथ पर्यटकों के लिए वन डे टूर, भ्रमण पथ, बैठने की व्यवस्था और अन्य सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। इससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और जिले में पर्यटन की नई संभावनाएं भी विकसित होंगी। नगरपालिका प्रशासन ने लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं की प्रतीक्षा कर रहे नए शहरवासियों को राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। सड़क, नाली, पेयजल, स्ट्रीट लाइट और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है। शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इन क्षेत्रों में तेजी से विकास कार्य कराए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि वर्षों से उपेक्षित क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे नागरिकों को बेहतर शहरी जीवन मिल सके। पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से गोपीगंज में भदोही साइकिलिंग क्लब की ओर से साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। बड़ा चौराहा से शुरू हुई यह यात्रा क्लब अध्यक्ष अताउल मुस्तफा अंसार के नेतृत्व में निकाली गई। जिला शिक्षा अनुश्रवण समिति की बैठक में जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने परिषदीय विद्यालयों के जर्जर भवनों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि जिले के सभी जर्जर विद्यालय भवनों को प्रत्येक प्रवेश द्वार पर ताला लगाकर उन्हें पूरी तरह बंद कराया जाए, ताकि कोई भी छात्र या अन्य व्यक्ति उनके अंदर प्रवेश न कर सके।
0: भदोही जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हाथरस जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश कुमार का।
2: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कलेक्टर सभागार में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए स्टॉलों का प्रदेश की महिला कल्याण मंत्री तथा जिले की प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने जनप्रतिनिधियों के साथ अवलोकन किया। प्रभारी मंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों व संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की उपलब्धियों के विषय में जानकारी दी। इस उपलक्ष्य में सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 12 वर्ष विषयक समेकित जन कल्याण का एवं जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत विकासखंड मुरसान ग्राम पंचायत रायक नगला लच्छी सैनपुर अर्जुनपुर में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अभियान के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों में केंद्र सरकार द्वारा विगत 12 वर्षों में संचालित जन कल्याणकारी योजना गरीब कल्याण कार्यक्रम एवं विकास कार्यों की जानकारी ग्रामीणों को प्रदान की गई। साथ ही आम जन को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया। प्रदेश की महिला कल्याण बाल विकास सेवा एवं पुष्टार मंत्री तथा जिले की प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने यहां अवस्थापना विकास निधि के अंतर्गत वर्ष 2026-27 में तहसील सदर हाथरस में के ग्राम अधीसा भगवंतपुर में अटल कन्वेंशन सेंटर व गेस्ट हाउस निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया एवं शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि लगभग 200 लोगों की क्षमता वाले इस कन्वेंशन सेंटर में सामाजिक सांस्कृतिक शैक्षिक प्रशासनिक एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि अभी तक लोगों को विभिन्न आयोजनों के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध नहीं हो पाता था, लेकिन इस कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के बाद यह समस्या समाप्त हो जाएगी और जनपद को एक आधुनिक एवं सुव्यवस्थित आयोजन स्थल प्राप्त होगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर लगभग 7 से 7.5 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है। प्रदेश के पर्यटन एवं सांस्कृतिक विभाग के मंत्री जयवीर सिंह ने केलोला चौरा स्थित ठाकुर मलकान सिंह जी की मूर्ति का अनावरण करने के साथ ही जनपद हाथरस में पर्यटन एवं संस्कृति विभाग से संबंधित विभिन्न परियोजना का अवलोकन पर एवं शिलान्यास किया तथा जनपद में धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण विकास हेतु जनपद वासियों के लिए सौगात दी। कार्यक्रम के दौरान मंत्री जी द्वारा 1,024.70 लाख रुपए लागत की 9 पर्यटन विकास परियोजनाओं का लोकार्पण पर किया। इनके विकास भवन स्थित पर्यटन केंद्र निर्माण एवं विकास कार्य मुड़ा बाली माता मंदिर दावजी महाराज मंदिर प्राचीन हनुमान मंदिर उदय सिंह की कचहरी परिसर में लैंडस्केपिंग एवं जनसभा कार गंगागढ़ी स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर सिद्धपीठ पर्वशाला तीर्थ भूमि कर ढकपुरा मंदिर सड़क आश्रम तथा काली माई मंदिर के पर्यटन विकास कार्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 308.80 लाख रुपए लागत की 4 परियोजना का शिलान्यास भी किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम पर्यावरण चेतना अभियान की शुरुआत की गई। इस खास मौके पर वन विभाग के तत्वाधान में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत एक वृद्ध वृक्षारोपण कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम शासनीय स्थित नगर वन में संपन्न हुआ, जिसमें पर्यावरण संरक्षण को भारी उत्साह देखने को मिला। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर जनपद के बाल श्रम उन्मूलन एवं बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से श्रम विभाग द्वारा कलेक्टर परिसर में हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया गया।
0: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: अभी आप सुन रही थी जिले की हलचल।
4: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। इस समय आप सुन रहे हैं हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारण। 9:25 हुए हैं। प्रेरक प्रसंग इस श्रृंखला में आज आइए सुनते हैं भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ा ये प्रेरक प्रसंग।

ये प्रेरक प्रसंग भगवान बुद्ध के जीवन से है। भगवान बुद्ध उस समय मृत्युशैया पर थे। निकट बैठा हुआ उनका शिष्य आनंद सेवा कर रहा था। तभी भद्रक नाम का एक अन्य शिष्य रोता हुआ वहां आया। रोने की आवाज भगवान बुद्ध के कानों में पड़ी। उन्होंने आनंद से पूछा, आनंद कौन रो रहा है? बंते, भद्रक आपके दर्शन के लिए आया है, आनंद ने उनसे कहा। तो उसे मेरे पास भेज दो, भगवान ने स्नेह से कहा। आते ही भद्रक उनके चरणों में गिर पड़ा, फूट फूट कर रोने लगा। तब भगवान ने उससे रोने का कारण पूछा। भद्रक ने कहा, भगवान जब आप हमारे बीच नहीं होंगे तब हमें प्रकाश कौन दिखाएगा? यही मेरे रोने का कारण है, भद्रक भर्राई हुई आवाज में बोला। भगवान बुद्ध ने स्नेह से उसके माथे पर हाथ रखा, उपदेश दिया, भद्रक प्रकाश तुम्हारे अंदर है, उसे बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं। जो अज्ञानी इसे देवालयों, तीर्थों, कंदराओं, गुफाओं में भटककर खोजने की चेष्टा करते हैं उन्हें अंत में निराशा ही प्राप्त होती है। इसके विपरीत मनसा वाचा कर्मणा एक निष्ठ होकर साधनारत जनों के लिए उनका अंतःकरण स्वयं दीप्त हो उठता है। अपने दीपक आप बनो, अपदीपो भव। यही था भगवान बुद्ध का अंतिम संदेश और इसी के प्रचार के लिए उन्होंने अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया। उन्हीं से जुड़ा एक और प्रसंग है कि श्रावस्ती में जब एक बार अकाल

0: क्योंकि बच्चों के आसपास जो माहौल होता है वही उनके मिजाज का हिस्सा बनता है। लिहाजा वो वालदेन जो अपने औलाद की जिस्मानी, दीनी, रूहानी बामकसद ज़िंदगी गुजारने और उनके शऊर की तरबियत करने के मुतमन्नी हैं, उनके लिए बेहद ज़रूरी है कि पहले वो अपने आप को इन सिफात का हामिल बनाएं। हमेशा ये बात जहन में रखें कि बच्चे नसीहतों और बातों से उतना नहीं सीखते जितना कि वो अपने बड़ों के रवैयों को देख कर सीखते हैं। अगर माँ बाप ही हक के रास्ते पर नहीं, उनको खुद ही मकसद ज़िंदगी का शऊर नहीं, तो वो हरगिज़ भी औलाद को ईमानदार, परहेजगार और एक बामकसद ज़िंदगी गुजारने की तरबियत देने में कामयाब नहीं हो सकते। वालिदैन को अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के बुनियादी उसूलों के बारे में मुकम्मल आगाही होनी चाहिए। मसलन, बच्चों की जिस्मानी और जहनी तरबियत का पहला उसूल यह है कि उनको अच्छी ग़िज़ा दी जाए और ऐसी ग़िज़ाओं से बचाया जाए जो उनको नुकसान पहुँचा सकती हैं। बाहर के खानों की वजह से बच्चों की तबीयत और मिजाज पर बहुत ही मनफी असरात मुरतब होते हैं। जंक फूड हमारे बच्चे आज बहुत खाते हैं। इस फूड में ग़िज़ाइयत की कमी होती है जिसकी वजह से बच्चों के मिजाज में चिड़चिड़ापन, मोटापा, शुगर और दीगर बहुत सी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। ख़राब सेहत की वजह से उनकी तालीमी सरगर्मियां भी मुतासर होती हैं। मगर अफसोस कि आजकल बच्चों की ग़िज़ा के सिलसिले में वालदेन की तरफ से बड़ी गफलत इख्तियार की जा रही है और ये बेएहतियाती बाज़ औक़ात बच्चों में मुस्तकिल जिस्मानी कमज़ोरियों का सबब बन जाती है और उनकी पूरी ज़िंदगी को तबाह कर देती है। लिहाजा ज़रूरी है कि वालदेन एक प्रॉपर डाइट प्लान बनाएं और अपने बच्चों के लिए सेहत बख्श ग़िज़ा फराहम करें। दूसरी अहम चीज़ जो बच्चों की जिस्मानी और जहनी सरगर्मियों पर असरअंदाज होती है वो अच्छी नींद है। सही और वक्त पर नींद ना होने की वजह से बच्चों की तबीयत और मिजाज पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए वालदेन बिलखसूस माँ की ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चों की नींद की सही तरतीब बनाए और उस पर सख्ती के साथ अमल करें। नींद सही ना होने की सूरत में भी बच्चों की जिस्मानी और जहनी नश्वोनुमा रुक जाती है और उनकी तालीम पर भी ख़राब असर पड़ता है। एक और बहुत अहम चीज़, वालदेन को चाहिए कि वो अपने बच्चों की तालीम में गहरी दिलचस्पी लें, पढ़ाई के दौरान पेश आने वाले मसाइल को हल करने की कोशिश करें, खुद भी किताबें पढ़ें और अपने बच्चों को भी अच्छी किताबें पढ़ने की तरगीब और तशवीक दिलाएं और पढ़ाई के लिए ऐसा माहौल फराहम करें जहां हमारे बच्चे खुद को महफूज और पुरएतमाद महसूस कर सकें। उन्हें तालीम हासिल करने के लिए हर मुमकिन सहूलत देने की कोशिश करें। इसके साथ साथ उन्हें ये भी समझाएं कि तालीम सिर्फ सर्टिफिकेट या डिग्रियों की जमा आवरी का नाम नहीं है बल्कि ज़िंदगी को बेहतर और सरबुलंद तरीके से जीने का एक बड़ा ज़रिया है। यानी अपने बच्चों को ज़िंदगी गुजारने के फ़ायदेमंद तरीके सिखाएं, ऐसी महारतें और सलाहियतें उनमें परवान चढ़ाएं जो उनको उनकी अमली ज़िंदगी गुजारने में मददगार साबित हों। इसी के साथ साथ बच्चों की जज्बाती और नफ्सियाती तरबियत भी ज़रूरी है। वालदेन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को नफ्सियाती तौर पर मजबूत बनाएं, उन्हें कम्फर्ट जोन से बाहर निकालें और ज़िंदगी के चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार करें ताकि वो आगे बढ़ सकें। इस ज़माने में वही कौम तरक्की कर सकती है जो इल्म और टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे है। इसलिए ये हमारी अहम तरीन जिम्मेदारी है कि हम इस बात को अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझाएं कि तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया बना के अपना रास्ता जो इस भीड़ से निकल गया। लिहाजा वालिदैन अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी का दुरुस्त इस्तेमाल सिखाएं ताकि वो जदीद दुनिया के तकाजों के पेश नज़र अपने कामों को दुरुस्तगी के साथ अंजाम दे सकें। और एक आखिरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि किसी इंसान का मकसद कितना ही आला हो और उसमें काम करने का जज्बा कितनी ही शिद्दत से क्यों ना पाया जाता हो, लेकिन उस काम के लिए जिन सलाहियतों की ज़रूरत है, अगर वो सलाहियतें और लियाकतें उसमें मौजूद ना हों तो फिर जज्बात या अजायम काम नहीं आते। इसलिए वालिदैन की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों के अंदर वो सलाहियतें पैदा करें जो किसी भी मकसद के हुसूल के लिए ज़रूरी हैं। माँ और बाप के दरमियान का मजबूत तावुन और मुश्तरका कोशिशें ही बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की जमानत दे सकती हैं। इसलिए वालिदैन को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए और वक्त की नज़ाकत के पेश नज़र अपनी औलाद को बेहतरीन और आला तरीन तालीम और तरबियत देने की कोशिश करना चाहिए।
1: बच्चों की तालीम व तरबियत में वालिदैन का किरदार, इस मौजू पर अभी आप मकाला समाप्त फरमा रहे थे। मकाला निगार थी डॉक्टर नीलोफर हफीज। और अब समाप्त फरमाइए जनाब असलम आदिल से उनका कलाम।
2: गजल का मतलब समाप्त फरमा।

0: अभी आप जनाब असलम आदिल से उनका कलाम समाप्त फरमा रहे थे और इसी के साथ आकाशवाणी के प्रयागराज मरकज पर तैयार उर्दू प्रोग्राम को खत्म करने की अपनी मेजबान निकहत सिद्दीकी को दीजिए इजाजत। इस प्रोग्राम की पेशकश थी प्रदीप मिश्रा की।
1: आज के उर्दू कार्यक्रम की पेशकश थी आकाशवाणी प्रयागराज के मरकज से। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र धड़कन देश की। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक रंग। इसमें आज के हमारे कलाकार हैं हरीश चंद्र गिरी व साथी। तो आइए सुनते हैं इनका गाया आल्हा गायन।
2: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है, मीडियम वेव और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत। आज उपशास्त्रीय संगीत में आइए सुनते हैं चित्रंजन देव शुक्ल का पखावज वादन।

धनपति धनपति राज राज राज मुकुट धुरंधर।

अभी आप चित्रंजन देव शुक्ल का पखावज वादन सुन रहे थे। उपशास्त्रीय संगीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर। दस बजकर 5 मिनट हुए हैं। अब हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ फिल्मी गीत आपके अनुरोध पर।

आपके अनुरोध पर कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को रेणु तिवारी का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत आशा भोसले की आवाज में, थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का ये गीत सुनने का अनुरोध किया है हमारे इन सभी श्रोताओं ने। पंजू सराय संभल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी, सईद मुख्तार अंसारी और असद अंसारी, कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता, मोहल्ला झंडा बड़े पीर साहब निकट बालाजी मंदिर, रामपुर से लियाकत भाई, गौसिया सिद्रा, उबैद खां, प्रेम प्रकाश, मास्टर अनुराज और जमील भाई, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णो कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और शादाब खत्री, परीमहल कासकन से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान और एम असलम सैफी, गंज डुनवारा से शमसुल कमर, मास्टर जाहिद अली, दीदार रेडियो श्रोता संघ बिलराम गेट कासकन से एम असलम सैफी, जैबुनिशा बेगम, अकरम सैफी और आबाद खान, नाज मंजिल महसूल बिहार से अकरम हुसैन, इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुवीना वसीम, आरिज वसीम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, अरहान बाबू, हमजा बाबू, मुजम्मिल बाबू, हुमेरा नाज, सुमेरा नाज, अबीहा नाज, शाजिया शाहीन नाज, नाजिया नूरी नाज, बच्चू शेख और चीना शेख, शेख टोली समस्तीपुर से शहनवाज परवेज और मुसरत जहां।

नाज। डाज द्वारा रोड मीठा कुआं रामपुर से आकाश रस्तोगी, दीपक रस्तोगी, रवि रस्तोगी, फिरासत अभय, अर्पित रिया और आरुष रस्तोगी। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयवंत्री केवट, अंजलि रुद्राणी और कृष्णा केवट। सावरगांव महाराष्ट्र से रघुनाथ नारे और पुष्पताई नारे। नई बस्ती पते खालसा जिला अमरोहा से बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, बिटिया अलीशा सिद्दीकी, शकील सिद्दीकी, सलीम सिद्दीकी, फहीम सिद्दीकी, यासीन अंसारी और सुदेश चौहान। थाना टीन ऊंची मस्जिद रामपुर से इरफान खान, पीडब्ल्यूडी वाले शाहिदा परवीन, इमरान खान, रेहान खान, इकराम खान, समीना, आसिफा और शबीना। रेलवे कॉलोनी बठिंडा से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। भाटापारा दत्रेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा। गणेशपुर गंजुंडवारा से एम फारूक कादरी, विरासत हुसैन वरलल्ला, पप्पू शेख, शमा परवीन, अल कमर बेगम, अफसाना बेगम, महजबी शेख और मिर्जा नसरीन बेगम। सिमंदर पार्क बीरमगांव से अजीत, प्रेमिला, भावेश, सन्नी, हेतल, कृष्णा और जैमिन भावसार। मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा। छत्रपति शंभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश। बठिंडा रोड डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल, शीला, गायत्री धनजे। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद्रानी, महिमा और नीतू वैद। मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा, अनमोल, धनपाल, वीर सिंह लाठी, विवान, लखविंदर संधु, महावीर संधु, गुरचरण ग्रोवर और रमेश मिगलानी। आप सभी के अनुरोध पर ये गीत आशा भोसले की आवाज़ में, फिल्म का नाम है थोड़ी सी बेवफाई।

आकाशवाणी रामपुर से समय आप सुन रहे हैं आपके अनुरोध पर फिल्मी गीत। कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के अनुरोध पर कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और प्रांजल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय, कटरा चांदखा मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, एरोही और स्वाति मौर्य, आदर्श नगर मलूट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा, लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम, परमजीत, पंडित नगला बाईपास मुरादाबाद से अख्तर हुसैन, बहरनिशा असलम हुसैन, महमूद हसन, बीवीपुर से मकसूद हुसैन और नाजिम अली, इपरसोगा तालुका जिला लातूर से उरमान शेख, सायरा बानो शेख, दस्तगीर शेख, फैज नबी शेख, शाकिर शेख, इस्लामी शेख, बाबा शेख, करिश्मा शेख, सिमर सानिया, गदर शेख, नीलोफर शेख, संगमित्रा श्रोता संघ पोफाली जिला यमतमाल से जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर, वंदना धुले और अर्पिता, मोहल्ला पोस्ट बुरला धारण ताले मालेगांव से दत्ता घायल, सुनीता बाई घायल, सानिका और गजानंद घायल, रामनगर रोड शांतिनगर इंदौर से खुशी खर्चे, ब्रोनो गणेश, कार्तिक खर्चे, संजना परी, ललिता नारायण खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी, कस्बा शीशगढ़ से गुड्डू इदरीसी और मोहम्मद फरहान इदरीसी, वारणा शाहपुर कोल्हापुर से विजय चौहान, तेजस्विनी चौहान, अंकिता चौहान, अनिकेत और माया चौहान, चंदन नगर सतारा से सतीश बागमारे, अतीश बागमारे, स्वाति, वर्षा, श्रमण बागमारे, श्रमेण बागमारे, जातुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नाज, सिराजपुर गणेशपुर से हिना कैसर, मोहम्मद वकील राही, फिरोज आलम और नाज परवीन, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, अमनदीप, कालका से शुभ चंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल, ये श्रोता हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेराज जहां, डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये, बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल, अर्जुन गवनीकर और धीरज सभ्य शेरे। आप सभी ने सुनना चाहा है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत। फिल्म का नाम है दो रास्ते।

और अब कार्यक्रम का अंतिम गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के अनुरोध पर मोहल्ला अलवायन शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया साजदारानी और हेना कौसर, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारनी, सूरज सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, राही सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, सिद्धांत प्रणेता गवाणकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवाणकर, श्वेता सुमित गवाणकर, ध्वनि गवाणकर और टुक टुक, संबल रोड बस्तौर से अतर सिंह सैनी, मुन्नी पवित्रा, अजय आंचल, आकांक्षा आकाश, विक्की सैनी, दक्ष काव्य, कृष्णा सैनी और इनकी माताजी, डाबर तालाब लोनी से रजा अहमद, आरिश हुसैन, ईशान हुसैन, मरियम और बुशरा, महाराष्ट्र हिंगोली से शाहजी बोट के, नंदा बोट के और हनुमान बोट के, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, बेड़ी से हुकुम करमरकर, सुनीता हार्दिक, प्राची और तनु करमरकर, मिलक भूजपुरा शाह जिला मुरादाबाद से रजा हुसैन, शाहिद हुसैन, आदिल हुसैन, शहजाद हुसैन, शहनाज बी और आसिया बी, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, समरीन परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर, गांधी समाधि रोड रामपुर से गफ्फार खान, रजिया खान, सिमरन खान, रूमा खान, बॉबी खान, शमा, विक्की, बुशरा, आसिम खान, गज्जन जिला अस्पताल के पास से गज्जन खान, शमा परवीन, शमशद अली अजम, गुलफशाह, शहनाज, बाबू अंसारी, रजिया गफ्फार और हबीब अहमद इदरीसी। आप सभी के अनुरोध पर ये गीत मुकेश की आवाज़ में, फिल्म का नाम है सबक।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीत आपके अनुरोध पर। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। 10:30 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरा दौर। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं 80 के दशक के यादगार फिल्मी गीत।

सुनहरा दौर। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं 80 के दशक के कुछ फिल्मी गीत। कार्यक्रम के आरंभ में ये गीत अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में, फिल्म का नाम है बंटवारा।

सूर्या, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना अलका याग्निक की आवाज में, सुनहरा दौर। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं 80 के दशक के फिल्मी गीत। अब ये गीत अनुराधा पौडवाल, पंकज उदास और साथियों की आवाजों में, फिल्म का नाम है बहार आने तक।

अनुराधा पौडवाल और पंकज उदास को भी आपने सुना फिल्म बहार आने तक में, और अब ये गीत अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है इज्जतदार।

तेरी मेहरबानियाँ। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल और शब्बीर कुमार की आवाज़ों में। इसी गीत के साथ सुनहरा दौर कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज आपने इस कार्यक्रम में सुने 80 के दशक के कुछ फिल्मी गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरा दौर। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है, मीडियम वेव और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय आप सुन रहे हैं हमारी पहली सभा के प्रसारण। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम धरोहर। धरोहर के अंतर्गत आज सुनिए डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल का लिखा नाटक ले चल मुझे। प्रस्तुत करता है विनोद आनंद दयाल।

0: बबुआ एक बात पूछें, नाराज तो नहीं होगे?
1: नहीं नहीं दीनू काका, पूछो क्या पूछना चाहते हो?
0: अब बहू जी को गए कितने दिन हो गए?
1: यही कोई 10 महीने से ज्यादा हो गए हैं।
0: कोई खोज खबर मिली?
1: नहीं दीनू काका।
0: तो अब और कितना इंतजार करोगी उनका? देखो भैया, कोई कैसा भी प्यारा हो, पर उसके जाने से दुनिया का कोई कारोबार रुक नहीं जाता है बबुआ। आदमी को घर गृहस्थी तो चलानी ही पड़ती है ना। हमारी बात सुन रहे हो ना? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, सो तुम हमारी मानो तो दूसरी शादी कर लो। एक से एक अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे। हाँ, तुम कहो तो हम पास पड़ोस में 2-4 घर से चर्चा करें।

0: इनके काम न होगा, हाँ हमसे न ही रह जाएगा यहाँ। सो या तो शादी कर लो, नहीं तो हम भी अपना बोरिया बिस्तर बांध के अपने गांव चले जाएंगे। हाँ
1: और हमारा क्या होगा दीनू काका?
0: सो तुम जानो, अब हम तुमसे तुम्हारी हालत देख नहीं सकते, हम बात नहीं करेंगे। हाँ तुमसे तभी बात करेंगे जब तुम कह दोगे हाँ।
1: अच्छा दीनू काका, बहुत जल्दी हाँ कहूंगा, बहुत जल्दी।
0: सच बबुआ?
1: हाँ दीनू काका।

0: हेलो हेलो, मैं विभा बोल रही हूँ।
1: हाँ, मैं विनय हूँ विभा। शाम को डोली लेकर आ रहा हूँ, तैयार रहना।
0: हटो भी।
1: क्यों? अब हटो क्यों? मेरी जीत का इनाम तो तुम्हें देना ही पड़ेगा।
0: मेरे पास तो जो कुछ है सब सदा से तुम्हारा ही है विनय।
1: और मेरे पास तो तुम्हारे सिवा कुछ है ही नहीं विभा। अच्छा अच्छा ये बताओ, किस रंग की साड़ी पहन रही हो?
0: जिस रंग की तुम कहो।
1: उस दिन कैसी पहनी थी?
0: किस दिन?
1: जब पहली बार चाय का प्याला लेकर आई थी।
0: तब? हाँ, तब तो बसंती रंग की थी शायद।
1: तब वही रंग पहनना विभा। तुम्हारी वही छवि देखकर महसूस करना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें उसी दिन से पा लिया है। बीच में जो कुछ भी घटित हुआ वो सिर्फ एक स्वप्न था।
0: बहुत रोमांटिक हो रहे हो।
1: तुम्हारी गंध जो यहां तक आ रही है।
0: झूठे कहीं के।
1: सच विभा, मेरे तो रोम रोम में सिर्फ तुम ही तुम हो। ये 2-3 घंटे पता नहीं कैसे बीतेंगे।
0: मेरा नाम जपते रहना।
1: वो तो पिछले 1.5 महीने से रात दिन जप रहा हूं।
0: और कुछ कहना है कि रखूं?
1: हाँ, कहना तो बहुत कुछ है पर फिलहाल रखते हैं। तैयार रहना।
0: पागल कहीं का।

भला कौन हो सकता है, बिना ही होंगे इस समय। लगता है फोन रखकर यहां के लिए ही चल दिए होंगे, नहीं तो इतनी जल्दी कैसे आ जाते। देखती हूँ क्या बहाना बनाकर आए हैं जनाब।

0: बच्ची, ओ आप खड़े क्यों हैं? अंदर आइए, अंदर आइए, आइए आइए, हाँ, अंदर आइए, बैठिए, बैठ जाइए। बेबी को यहाँ पलंग पर लेटा दीजिए।
1: एक गिलास पानी मिलेगा?
0: हाँ हाँ, अभी लाई।

अरे दीदी, प्रमिला दीदी, आप इस हालत में और ये छोटी सी

0: ये लीजिए, आराम से बैठ जाइए, और ये बिस्कुट भी है। पानी और लाऊं दीदी?
1: नहीं, मैं तुम्हारी दीदी होने के लायक नहीं हूँ। मुझे मुझे माफ कर सकोगी विभा? मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है, शायद उसी का फल मुझे।
0: कैसी बातें कर रही हैं आप दीदी, शांत हो जाइए
1: प्लीज। नहीं, अब सब कुछ तुम्हारे सामने कमिट कर लेने के बाद ही मुझे शांति मिलेगी। विभा, विभा, ये बच्ची देख रही हो ना, ये विनय की नहीं है
0: दीदी।
1: लेकिन इसके लिए मैं विनय से उनका नाम मांगने आई हूँ, नहीं तो इस बेचारी का क्या फ्यूचर होगा यही सोचकर।
0: दीदी रोइए मत दीदी, सब ठीक हो जाएगा।
1: सच कहती हूँ विभा, कितनी बार ट्राई किया कि इसे गोद में लेकर किसी ट्रेन के सामने लेट जाऊं, पर माँ हूं ना, शायद इसीलिए इसका कुछ नहीं कर पाई। बेबी के बारे में तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, जानती थी कि उसके पास उसके पापा हैं, लेकिन ये तो एक नाम के बिना यतीम है विभा, इसका क्या होगा। खुद मरने से पहले इसे कहाँ छोड़ूं यही सोचकर अब तक जिंदा हूँ।
0: दीदी दीदी हिम्मत रखिए, विनय
1: विनय के सामने किस मुंह से जाऊं, उन्होंने तो मुझे सब कुछ दिया, मुझे ही अपनी मेरिट का घमंड था, मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थी विभा, इसीलिए एक अनसर्टेन फ्यूचर के लिए सब कुछ ठुकरा कर चली गई। पर मुझे क्या मिला, क्या मिला मुझे? मैं भूल गई थी कि हर रिलेशन के साथ कुछ वैल्यूज भी जुड़ी होती हैं। मैंने तो अपने आप ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली विभा, ऊपर से ये बच्ची, मैं क्या करूं?
0: आप इतनी दुखी ना हो दीदी, विनय आकर सब संभाल लेंगे, मैं अभी उन्हें फोन करती हूँ।
1: नहीं नहीं, ऐसा मत करना विभा, मैं तो उनसे क्षमा मांगने के लायक भी नहीं रही, मैं तो तुम्हारे पास आई हूँ।
0: दीदी
1: मुझे भरोसा है कि तुम मेरे मन का दर्द बिना कुछ बताए समझ लोगी। मैं अब कुछ नहीं चाहती विभा, सिर्फ इस बच्ची के सिर पर अपना हाथ रख दो, बस मैं चली जाऊंगी। अपने अपराधों का बोझ लेकर अब मैं जीना नहीं चाहती, मुझे जाने दो।
0: नहीं दीदी नहीं, अब आप कहीं नहीं जाएंगी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, आपको अपनी बच्ची के साथ अपने घर जाना है।
1: ये तुम क्या कह रही हो विभा, प्लीज मुझे जाने दो।
0: नहीं, आप बहुत थकी हुई हैं, आप आराम कीजिए, मैं अभी आती हूँ।
1: तुम कहाँ जा रही हो विभा, मुझे अब अकेलेपन से बहुत डर लगने लगा है, ऐसे ही एक अकेलेपन में तो मेरा सब कुछ छिन गया था। नहीं नहीं, तुम कहीं मत जाओ विभा, कहीं मत जाओ।
0: मैं दूर नहीं जा रही हूँ दीदी, जरा बाहर जाकर किसी से बच्ची के लिए थोड़ा सा दूध मंगा लूँ, आप ले जाइए दीदी।
1: विभा

0: हेलो।
1: हेलो, कौन? अरे विभा, क्या बात है भाई, तो तुमसे भी समय काटे नहीं कट रहा है क्यों? हाँ भाई, कभी कभी ऐसा ही होता है। जी करता है कि पंख होते तो उड़कर इसी क्षण तुम्हारे पास आ जाता। विभा विभा, मुझे लगता है कहीं मैं खुशी के मारे पागल ना हो जाऊं। और सुनाओ, तुम्हारा क्या हाल है विभा? अरे कुछ तो बोलो।
0: विनय, तुम्हें अपना वचन याद तो है ना?
1: वचन? कौन सा वचन? और तुम इस समय इतनी सीरियस क्यों हो रही हो? क्या हुआ?
0: मैं उस वचन की बात पूछ रही हूं विनय, जो तुमने अपनी शर्त रखने से पहले मुझे दिया था।
1: शर्त रखने से पहले? अच्छा, वो प्रमिला वाला वचन? हाँ भाई याद है, पर उससे अब क्या, वो समय तो बीत गया। अब तो हम बाकायदा दूल्हा बनकर आपको विदा करवाने आ रहे हैं। महारानी तैयार रहिएगा।
0: विनय,
1: विभा विभा, तुम्हारा गला इतना क्यों भर रहा है? बात क्या है?
0: तुम शर्त हार गए हो विनय। दीदी मेरे पास है, मेरे घर में अपनी बच्ची के साथ।
1: क्या कह रही हो तुम विभा? प्रमिला, प्रमिला तुम्हारे घर में है, तुम्हारे पास, बच्ची के साथ? बच्ची? वो कब कब आई? क्यों आई वो? ये सब क्या हो गया विभा, क्यों हो गया? लेकिन लेकिन मुझे उससे अब कोई मतलब नहीं है। अब मैं तुम्हें लेने ही।
0: विनय, मैंने शहलाई के लिए कह दिया है, पाजे वाले आते ही होंगे। विनय, तुम बकायदा दूल्हा बनकर ही आना, मैं दीदी को दुल्हन बनाकर अपनी ढोली में विदा करूंगी। हाँ विनय, हाँ, उन्हें फिर से अपना घर मिल जाएगा और तुम्हें अपनी पत्नी मिल जाएगी, और
1: विभा,
0: मैं भी नहीं। तुम हमेशा मुझसे गीत सुनाने की हट करते थे ना, और मैं हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे टाल देती थी।
1: विभा,
0: विनय, विनय, मैं वो गीत इसलिए नहीं गा पाती थी कि उसके शब्दों के साथ मेरे अधूरे सपने जुड़े हैं। लेकिन आज मेरा मन कह रहा है कि मैं तुम्हारे बिना कहे ही तुम्हें वो गीत सुनाऊं।
1: विभा,
0: सुनोगे ना विनय?
1: विभा,
0: लो सुनो, तुम्हें तुम्हारा प्रिय गीत सुना रही हूं। फिर कभी जीवन में गा पाई ना गा पाई कौन जाने। तुम सुन रहे हो ना विनय? ले गए चल मुझे भुलावा दे कर मेरे नाविक, धीरे धीरे ले गए चल मुझे भुलावा
1: बस विभा,

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे धरोहर के अंतर्गत नाटक ले चल मुझे। लेखक थी डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल और प्रस्तुति थी विनोद आनंद दयाल की। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।

श्रोताओं आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म टू स्टेट से, जिसे गाया है अरिजीत सिंह और चिन्नमयी श्रीपदा ने। बोल लिखे हैं इस गीत के अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म एक विलेन से, जिसे गाया है अंकित तिवारी ने। बोल लिखे हैं इस गीत के मनोज मुंतशिर ने और संगीत है अंकित तिवारी का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर। श्रोताओं, 11:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं मन भावन।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी श्रोताओं का मन भावन में। आज आपकी रेडियो साथी नेहा है आपके साथ। श्रोताओं, हमारा आज का मन भावन है एक ही गीतकार, और आज एक ही गीतकार में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं हसरत जयपुरी के लिखे कुछ गीत। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिल एक मंदिर से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। बोल हैं हसरत जयपुरी के और संगीत दिया है इस गीत को शंकर जयकिशन ने।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म तेरे घर के सामने से। गीत को गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने, संगीत से सजाया है एसडी बर्मन ने और बोल लिखे हैं इस गीत के हसरत जयपुरी साहब ने।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए
3: श्रोताओं आज मन भावन में हम आपको सुनवा रहे हैं हसरत जयपुरी के लिखे कुछ गीत। बहुत कम लोगों को पता होगा कि हसरत जयपुरी साहब का जन्म का नाम इकबाल हुसैन था और उन्हें दो बार फिल्म फेयर के पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका था। आपको पता है श्रोताओं अगला गीत हम जो आपको सुनवाने जा रहे हैं प्रिंस फिल्म से। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी साहब ने और इस गीत को लिखने की प्रेरणा हसरत जयपुरी साहब को पेरिस में सितारों से सजी एक महिला थी जो साड़ी पहन रखी थी, इसने बहुत ही चमकीली, उसको देखकर इस गीत को लिखने की प्रेरणा मिली। तो आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म प्रिंस का ये गीत हसरत जयपुरी साहब की कलम से लिखा हुआ।

कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनते हैं फिल्म संगम से, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने। बोल है हसरत जयपुरी के और संगीत है शंकर जयकिशन का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मन भावन। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्स पर। दिन के 12 बजने को हैं। कुछ ही पलों में होंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: करने की लागत अब 2,500 रुपए होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या दोबारा जारी पासपोर्ट की लागत अब 3,500 रुपए, जबकि तत्काल पासपोर्ट बनवाने के लिए यह 6,000 शुल्क निर्धारित की गई है। यूपीआई के माध्यम से पिछले माह 22 अरब से अधिक लेन देन हुए, यह पिछले वर्ष इसी अवधि के मुकाबले 23% अधिक। उत्तर प्रदेश सरकार के सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया। परीक्षा कल से 4 जुलाई तक आयोजित की जाएगी। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगी। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। अमेरिका में 9वें यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि भारत भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखलाओं में वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है। अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में पहुंचने की संभावना। और अब खेलों में, फीफा विश्व कप में फ्रांस, नार्वे और मैक्सिको अपने अपने मुकाबले जीतकर अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला आज से इंग्लैंड में शुरू हो रही है। पहला मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे चेस्टर ली स्ट्रीट में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ICC महिला T20 विश्व कप में वेस्ट इंडीज को हराकर फाइनल में पहुंचा। रविवार को फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का सामना इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। तो ये थे अभी तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।
1: 282 करोड़ रुपया होती है, इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गाँव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
2: अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि भारत भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखलाओं में वैश्विक नेता के रूप में उभर रहा है। वाशिंगटन DC में आयोजित 9वें यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के वार्षिक शिखर सम्मेलन में श्री क्वात्रा ने कहा कि ये परिवर्तन मजबूत आर्थिक विकास और संरचनात्मक सुधारों से प्रेरित है। श्री क्वात्रा ने इसका श्रेय भारत के घरेलू आर्थिक विकास और संरचनात्मक सुधारों को दिया। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा।

0: नरेंद्र मोदी को दोनों केंद्रीय मंत्रियों को भेजने में उनकी तत्परता और समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कल मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। इस दौरान श्री खांडू ने गृहमंत्री को मौजूदा स्थिति, राहत बचाव और पुनर्वास के चल रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में तेजी का रुख रहा। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 428 अंक की बढ़त के साथ 76,906 पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी 137 अंक चढ़कर 24,003 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। श्रोताओं, दिन के 12:05 हो रहे हैं। आइए आपको देते हैं जानकारी खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में पहली सूचना हमें प्राप्त हुई है। प्रभारी थाना निरीक्षक हजरत नगर गढ़ी जिला संभल हमें ये सूचित करते हैं कि अंजू पुत्री श्याम सिंह ग्राम भारतल मदापुर थाना हजरत नगर गढ़ी दिनांक 9/6/2026 से लापता हैं। इनकी उम्र 22 वर्ष है। कद इनका 5 फुट है और रंग गेहूआ है। अंजू के शरीर की बनावट सामान्य है। चेहरा लंबा है और इनकी आँखें काली हैं और अंजू ने सूट सलवार पहना हुआ है। यदि किसी व्यक्ति को अंजू के बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी मिलती है या किसी भी तरह की कोई सूचना प्राप्त होती है तो कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। थाना हजरत नगर गढ़ी आप फ़ोन नंबर के जरिए भी सूचना दे सकते हैं। फ़ोन नंबर है 9149282354।

खोए हुए व्यक्ति के संबंध में एक अन्य सूचना। प्रभारी थाना निरीक्षक रायासत्ती जिला संभल हमें ये सूचित करते हैं कि कुमारी मेहर पुत्री इमरान निवासी मोहल्ला मियां सराय थाना रायासत्ती से विगत दिनांक 13/6/2026 से मोहल्ला मियां सराय से लापता हैं। मेहर की उम्र 22 साल है। इनका कद 5 फुट है। रंग सांवला है। मेहर ने काला बुरखा सफ़ेद स्टॉल और पैरों में सफ़ेद चप्पल पहन रखी हैं। यदि किसी व्यक्ति को मेहर के बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी मिलती है या किसी भी तरह की कोई सूचना प्राप्त होती है तो कृपया इस पते पर सूचित करने का कष्ट करें। पता है थाना रायासत्ती जिला संभल। फ़ोन नंबर के जरिए भी आप सूचना दे सकते हैं। फ़ोन नंबर है 9458767396। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। श्रोताओं अभी आप सुन रहे हैं हमारी प्रथम सभा के प्रसारण।

0: भी आज़ादी भारत की अलामत है, अपना तिरंगा भी अहिंसा की निशा में। उर्दू हो वो हिंदी हो वो इंग्लिश हो कि संस्कृत, कोई भी नहीं गैर मोहब्बत की ज़बान में।
1: आइए हिफाजत करें अपनी विरासत की
0: और मोहब्बत करें अपने वतन से।

0: फूलों का कुंज दिलकश भारत में एक बनाएं, हुब्बे वतन के पौधे इसमें नए लगाएं।
1: मिल मिल के हम तराने हुब्बे वतन के गाएं, बुलबुल हैं जिस चमन के गीत उस चमन के गाएं।
0: हम सब भी मिलकर गीत गाएं
1: अमन के भाईचारे के।

ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। श्रोताओं, 12:10 हुए हैं। प्रस्तुत है ईमेल फरमाइशी कार्यक्रम गीत आपके नाम।

स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम गीत आपके नाम में। स्वीकार कीजिए अपनी रेडियो दोस्त नेहा का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हमारे श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं अपनी फरमाइशों के जरिए और लगातार हमें भेज रहे हैं अपनी फरमाइशें। तो अगर आप भी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद के गीत तो लिख भेजिए हमें अपनी फरमाइश अपने नाम के साथ। हमारी ईमेल आईडी, जी हाँ, हमारी ईमेल आईडी वही जानी पहचानी पुरानी, गीत आपके नाम airrampur@gmail.com। तो फटाफट से लिख भेजिए हमें अपनी ईमेल अपने नाम के साथ अपने पसंद के गीत की। तो कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं फिल्म मोहरा से, जिसे गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने, संगीत दिया है बीजू शाह ने और बोल हैं आनंद बख्शी साहब के। और सुनना चाहा है हमारे इन सभी श्रोताओं ने, ये पहली ईमेल हमारे जो श्रोता हमें लिख भेज रहे हैं वो है यवतमाल से राहुल मनवर, सल्ला मनवर, रोशनी, चेतन और विशाल साथ में हैं, बेबी प्रियांशी। सनावत से हमारे श्रोता हैं शेख मूसा मोहसिन। विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से हमारे श्रोता हमें फरमाइश करते हैं ऐसे गीत की, दिनेश काले, वंदना काले, सहानुभूति चक्रधर, आदेश कुमार और वसुधा बज्र से। सेक्टर 67 मोहाली से हमारे श्रोता हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर, अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। गणेशवाड़ी कोल्हापुर से संभाजी सुतार, चेतन सुतार और सारिका सुतार। अगली ईमेल हमें मिली है हमारे श्रोता की महबूबपुरा सनाबद मध्य प्रदेश से, भेजने वाले हमारे श्रोता हैं मोहम्मद जावेद खत्री, बेगम सवीना, मोहम्मद जैद खत्री और इनकी बेटी मुनीरा, मोहम्मद इकबाल खत्री और इस्लामपुरा सनाबद मध्य प्रदेश से ही हमें फरमाइश करते हैं साइनावी खत्री, रानी और बेनू खत्री। ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निहत परवीन निवासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अवान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य इस गीत की फरमाइश करते हैं। अगली ईमेल हमें लिख भेजी है पिपरिया से, लिखने वाले हमारे श्रोता हैं कमलकांत गुप्ता, साथ में हैं इनके दीपा और रिमझिम गुप्ता। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरबाल, कमला रानी, गीतिका और भानु प्रकाश इस गीत की फरमाइश करते हैं। और बिस्मिल्ला मस्जिद रामपुर से हमारे श्रोता हैं फौजिया रोशनी, शनाया काजल और इनके साथ हैं इनके भाई शहजाद अली। इन सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं फिल्म मोहरा का ये गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की युगल आवाज़ों में।

श्रोताओं, अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ, जिसे गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। बोल है रानी मलिक के और संगीत से सजाया है अनु मलिक ने, और फिल्म का नाम है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, और सुनने की फरमाइश की है हमारे इन सभी श्रोताओं ने। शहबाजपुर कला कस्बा पाकवाड़ा जिला मुरादाबाद से मज़ाहिर हुसैन अंसारी, बेगम राइसा नाज, मुजक्किर बाबू, राइसा मज़ाहिर, मज़हर आसिम और इनकी बेटी सुमाया महक। अगली फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं इसी गीत की, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान और पूजा परिहार। कुंभार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, प्रतीक्षा प्रथमेश और पांडु रंग कुंभार। अगली ईमेल हमें लिख भेजिए हमारे श्रोता ने, नाला पारबाग छोटे साहब रामपुर से। लिखने वाले श्रोता हैं नवाबुद्दीन, निज़ामुद्दीन, मोहम्मद जमालुद्दीन, सादिया अक्सा और हम्माद। कोटबा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से हमारे श्रोता हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय, दुविहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और साथ में है प्रांजल राय। स्टेशन रोड जमशेदपुर से ये ईमेल हमें लिख भेजी है हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू और साथ में है इनके पप्पी भाटिया। अगली ईमेल हमें लिख भेजी है इसी गीत के लिए, जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना और साथ में है इनके मोहम्मद कैफ अंसारी। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गवाया मल्होत्रा और भाई सुच्चा सिंह पाठक इसी गीत की फरमाइश करते हैं। रहाट गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से हमारे श्रोता हैं हर्षा रामेकर, दिलीप, अक्षय, रुद्रा, रुचिका और समस्त रामेकर परिवार। इन सभी श्रोताओं की पसंद पर सुन लेते हैं फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी का ये गीत, कुमार सानू और अलका याग्निक की युगल आवाज़ों में।

श्रोताओं, कार्यक्रम गीत आपके नाम में लगातार हम आपकी फरमाइशों को शामिल कर रहे हैं और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं फिल्म खुदगर्ज का ये गीत, जिसे गाया है मोहम्मद अजीज और साधना सरगम ने। संगीत है राजेश रोशन का और बोल लिखे हैं इस गीत के इंदिवर ने और सुनना चाहा है हमारे इन सभी श्रोताओं ने। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर, छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। सदर बाजार कोरावली से हमारे श्रोता हैं अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार और साथ में हैं सोनम वर्मा। जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से हमारे श्रोता हैं योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका, सुशांत और साथ में हैं सुरेश चौरसिया, फरुक्कावादी। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्नामाला और ओम कुमार सुरलकर। ईमेल के जरिए हमारे श्रोता कलानौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। ये फरमाइश हमें भेजी है मनाली हिमाचल से। भेजने वाले श्रोता हैं हर्ष, विनय, विनीत, रोजस भाई, चंडीगढ़ से शेफाली, शेफी, डेविस, बिमला और सतीश अनेजा। बिलराम गेट कासगंज से एम असलम सैफी, जयबन निशा बेगम, अक्रम सैफी, जाहिद, सद्दाम सैफी, सोनी सैफी और साथ में हैं इनके आवाद खान। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद और राजेंद्र वर्मा। शीशगढ़ बरेली से हमें लिख भेजी है ईमेल हमारे श्रोता ने इलियास इदरीसी, नाजरा, नईम, नदीम, असद बाबू। तहसील स्वार मोहल्ला पंजाबी कॉलोनी से हमारे श्रोता हैं त्रिलोकीनाथ राठौर, अजय, विजय, विनय, विकास, आकाश, शिवांशी, प्रियंका और साथ में हैं शिवाय राठौर। शहबाजपुर कला कस्बा पाकबड़ा जिला मुरादाबाद से मजाहिर हुसैन अंसारी, बेग राइशा नाज और साथ में हैं राइसा मजाहिर, इनके साथ हैं बेटी सुमया महक। इन सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं फिल्म खुदगर्ज का ये गीत मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की युगल आवाज़ों में।

श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म बरसात से, जिसे गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। बोल हैं समीर के और संगीत है नदीम श्रवण का, और सुनने की पेशकश की है हमारे इन सभी श्रोताओं ने। गांव लोहागढ़ ठकुरावाला से हमारे श्रोता हैं स्वर्ण सिंह गिल, दजीत सिंह, राजदीप, गुरलाल, अविराज, गुरनूर और साथ में है शुभदीप सिंह। मारहरा दरवाज़ा ईटा से नवी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन, अनम यशफ, सुहेल हसन, रसीद बारसी, किदवई नगर सिद्धापुरा से, सिद्धापुरा टाउन से जुबैर अली खान। गांव बड्डाघर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से हमारे श्रोता हैं जसवीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लपप्रीत कौर और करमजीत कौर।

छपरा टाउन से जुबैर अली खान, गांव बडाघर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से हमारे श्रोता हैं जसवीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरुप्रीत सिंह, लपप्रीत कौर और करमजीत कौर हमारे श्रोता हैं, सिद्धार्थ गुड़ाने, अर्चना गुड़ाने, प्रेरणा प्रसिद्धि और हीरामड़ सेंडे, छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मंगोली से मोहम्मद इसाक, खातिजा बेगम, मोहम्मद असफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलोफर फातिमा, छत्तीसगढ़ रायपुर से मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन, मोहम्मद हसनैन रजा और गौसिया फातिमा, वाइट फील्ड बेंगलुरु से हमारे श्रोता हमें लिख भेजते हैं इसी गीत की फरमाइश, भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिबेंदु भूषण, संस्कृति पौरुष, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी और कुलदीप कंबल, शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा से ये ईमेल हमें लिख भेजिए हमारे श्रोता हैं, आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और साथ में हैं इनके आलिया, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना इस गीत की फरमाइश करते हैं। इन सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं फिल्म बरसात का ये गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की युगल आवाज़ों में।

श्रोताओं, कार्यक्रम गीत आपके नाम में आप हैं अपने रेडियो साथी नेहा के साथ, और हम तक आपकी ईमेल पहुंच रही हैं लगातार, जिन्हें हम शामिल भी कर रहे हैं अपने कार्यक्रम में। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ, जिसे गाया है अलका याग्निक, उदित नारायण और अमित कुमार ने, बोल हैं समीर के और संगीत है बीजू शाह का, फिल्म है बड़े मियाँ छोटे मियाँ, और सुनने की फरमाइश की है हमारे इन सभी श्रोताओं ने। करणवीर हाउस भुचो कैचनिया से हमारे श्रोता हैं, भुचो कैचिया बठिंडा पंजाब से, प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप और एकम, साथ में हैं इनके दमन और अभिजोत। ग्रामबा पोस्ट हररपुर मटकली जिला बरेली से शाहरून नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, मोइन अंसारी, तस्लीम और साथ में हैं इनके डीजे प्रधान। अगले हमारे श्रोता हमें लिख भेजते हैं अपनी फरमाइश, नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर खुश नशीब, अब्दुल हक डवार, जियाउल हक डावर और भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी जी। इसी गीत की फरमाइश हमें लिख भेजिए हमारे श्रोता ने, पुराना शहर बरेली से मोहल्ला कटरा चांद खां, मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं अनोखीलाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, बेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही और साथ में है स्वाति, मोहल्ला हलवाईयान, शेरकोट जिला बिजनौर से। ये ईमेल हमें लिख भेजते हैं हमारे श्रोता मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी, बिट्टू भैया, साजा रानी और हिना कौसर। अगले हमारे श्रोता लिख भेजते हैं हमें इसी गीत की फरमाइश, टोंडी लोहारा बलोदा छत्तीसगढ़ से देवशंकर तमुरिया, अजय देव तमुरिया, तुषार डॉली बेबी पूजा तमुरिया और साथ में हैं इनके राधिका और प्रभा देवी तमुरिया। अगली ईमेल हमें मिली है हमारे श्रोता की, भेजने वाले श्रोता हैं हमारे राहट गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रुचिका और समस्त रामेकर परिवार। अगली ईमेल लिख भेजिए हमारे श्रोता ने हमें, जलगांव जंक्शन से लिखने वाले श्रोता हैं दिनेश काले, वन्ना काले, शहानुभूति, आदेश कुमार और साथ में हैं वसुधा। कुंभार गली श्रीरामपुर से लिखने वाले हमारे श्रोता हैं अशोक दले, सबिता, अनिकेत, ऋषिकेश, जीविका, सानिका, पुना वाले पुणे से, अजय सोनबाने, करिश्मा, अविका और साथ में हैं इनके विशाखा सोनबाने। अगली ईमेल लिखने वाले हमारे श्रोता हैं शेरवानी स्कूल गंज डंडवारा से अफ्ताब रियाज, मोहम्मद कैफ, अनवर, लुबना और आलिया अंसारी। इन सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं अगला गीत, फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ से, जिसे गाया है अलका याग्निक, उदित नारायण और अमित कुमार ने।

श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम की अगली फरमाइश की तरफ पे। ये फरमाइश हमें लिख भेजी है हमारे श्रोताओं ने, रिंगनी छत्तीसगढ़ से, दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा।

राजधानी रायपुर से नीलू मेघ नीलम, वंदना कुमार, बिट्टू कुमार और इनके समस्त मित्रगण और परिवारजन। पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगरकर, दिशांत कुमार सिंगरकर और अर्पिता जी। करनाल से हमारे श्रोता हैं गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा और जी एस रामगढ़िया। सिंदौली मीरगंज से हमें लिख भेजिए ईमेल, हमारे श्रोता हैं जी शान बारसी, इमरान शेख, रिहान से, करूला मुरादाबाद से अयूब खान, एरम गुड़िया और शोएब खान। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोनी चौहान, कल्पित चौहान और बेबी गर्वी, साथ में हैं बेबी बॉय हिमाक्ष। साई बिहार रामपुर उत्तर प्रदेश से लिख भेजिए है हमें ये ईमेल, हमारे श्रोता हैं लिखने वाले सरता मौर्य, गौतम बी प्रकाश, श्रेय गौतम, अनन्या गौतम, ऐश्वर्या गौतम और कुश गौतम। MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर से लिखने वाले हमारे श्रोता हैं तस्नीम कौशल, इशिता सहानी, झुमरी तलैया से, सोनम, बरका काना से, नाजनी तबस्सुम, अफसल इब्राहिम और साथ में हैं इनके मोहम्मद इफ्तिखार इब्राहिम। इसी अगली फरमाइश हमें लिख भेजी है मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यराज, रोहित राज और पीयूष कुमार ने। ये ईमेल हमें मिली है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से लिखने वाले हमारे श्रोता हैं तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित खुराना, केशु और रिधान खुराना। इन सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं फिल्म तुम बिन का ये गीत, जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण ने। बोल है फैज़ अनवर के और संगीत है निखिल विनय का।

श्रोताओं चलते चलते हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे श्रोता बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया, नमन डिंगिया और अपार डिंगिया। अगली ईमेल हमें मिली है फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराज से, नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद गोविंदपुरा से, जुनेद मुजावर, साबिया मुजावर, मिखाइल मुजावर और जैनम मुजावर, धनतेरिंगी भटापारा से, हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि, मोखेलाल। और ये अगली ईमेल यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से।

अभी हमारे श्रोता आनंद ले रहे थे अपनी पसंद के गीतों का। कार्यक्रम था गीत आपके नाम। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्ज पर। दिन का 1 बजने को है कुछ ही परिमोह का अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि वीबी जीरामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। वर्तमान वित्त वर्ष में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत जीरामजी अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रूपये से बढ़ाकर विकसित भारत जीरामजी के अंतर्गत 327.40 रूपये प्रतिदिन कर दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
1: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सतत जल प्रबंधन और सिंचाई के विस्तार से सिंचाई आधारित कृषि के 10 वर्ष से अधिक हो गए हैं। पहली जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेतों में जल दक्षता में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू बाढ़ की स्थिति तथा आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर पहुंचे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोनों केंद्रीय मंत्रियों को भेजने में उनकी तत्परता और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने कल मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। इस दौरान श्री खांडू ने गृहमंत्री को मौजूदा स्थिति, राहत, बचाव और पुनर्वास के चल रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। वस्तु और सेवा कर जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ।

अब से कुछ ही देर में यानी 1:15 पर रहेगा लोकगीतों का कार्यक्रम धरती गाती है, जिसमें आज कलाकार रहेंगे राम नारायण मौर्य। एक 1:30 पर रहेगा समय शहरी महिलाओं के कार्यक्रम कुमकुम का, जिसमें आज चर्चा होगी वन महोत्सव पर, साथ में हरित भविष्य के निर्माण में महिलाओं की भूमिका और वार्ता होगी सुखी दाम्पत्य जीवन का सूत्र, साथ ही रहेगा लोकगीत और क्षेत्र सकृत कार्यक्रम में आज चर्चा होगी किचन गार्डन पर।

और साथ में रहेंगे टिप्स। दो बजकर 30 मिनट पर रहेगा समय प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग का। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी संध्या 5 बजे आज शाम के साथ। पांच बजकर 15 मिनट पर रहेगा युवाओं का दैनिक कार्यक्रम युवाणी। किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत प्रस्तुत होगा शाम 6 बजकर 30 मिनट पर, जिसमें रहेगी चर्चा वन महोत्सव सप्ताह पर। साथ में आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग, भेंट वार्ता होगी सफल कृषक, धान की सीधी बुवाई की देखभाल में श्री संजीव कुमार और प्रवीण कुमार से लोकगीत, साथ में होंगे कृषि संकेत और मौसम का पूर्वानुमान। शाम 7 बजे रहेगा प्रायोजित कार्यक्रम जान है जहान का समय। शाम 7 बजकर 31 मिनट पर रहेगा समय सुगम संगीत का, जिसमें आज होंगे भजन और कलाकार रहेंगी प्रियंका ग्वाल। व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम गीत गाता चल कार्यक्रम प्रस्तुत होगा रात्रि 8 बजे। नौ बजकर 30 मिनट पर रहेगा कार्यक्रम चर्चा का विषय है। रात्रि 10 बजे रहेगा कार्यक्रम रूपक, जिसमें आज आप सुनेंगे मेरी माटी मेरा देश, विषय होगा अल्पसंख्यक कल्याण, संकलन है शिखा दीक्षित का, आलेख मनोज कुमार और प्रस्तुति रहेगी अवधेश कुमार गौतम की। रात्रि 10 बजकर 30 मिनट पर रहेगा गीतांजलि।

ये था विवरण हमारी प्रथम सभा के शेष और द्वितीय सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्स पर। आप सुन रहे हैं हमारी प्रथम सभा के प्रसारण।

0: कुछ ही पलों में रहेंगी इलाकाई खबरें आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र।
1: इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। रियासती हुकूमत ने मुलाजिम असातिज़ा के लिए अलग से टीचर अहलियत टेस्ट TET कराने का फैसला किया है। UP TET 2026 इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लेते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल इस सिलसिले में अफसरान को वाज़ह हिदायत दी। मीटिंग के दौरान वजीर आला ने कल से 4 जुलाई

0: मई तक मुनक्किद हो रहे यूपी टीईटी 2026 इम्तिहान की दयानतदारी और शफाफियत व उम्मीदवारों की सहूलियत को यकीनी बनाने पर खुसूसी जोर दिया। इस दरमियान रियासती हुकूमत ने यूपी टीईटी 2026 के इम्तिहान में शिरकत कर रहे बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्कूलों में मुलाजिम असातिज़ा को खुसूसी छुट्टी देने का भी फैसला किया है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल रामपुर में 700 करोड़ रुपए से ज़्यादा के 102 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। उन्होंने बोर्ड के इम्तहानात में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तलबा को इनामात से नवाजा और मुख्तलिफ स्कीमों के फायजीन को लैपटॉप और ग्रांट के तकसीम किए। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत रामपुर समेत रियासत के रूहानी विरसे के मकामात को जिंदा करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर शामली नया इकोनॉमिक कॉरिडोर रामपुर से होकर गुजरेगा, जो गोरखपुर को सिलीगुड़ी और शामली को पानीपत से जोड़कर इलाके में तरक्की को मजीद मजबूत करेगा।
1: विरासत के संरक्षण का कार्य हो या विकास की प्रक्रिया को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य, बिना भेदभाव के सुरक्षा देने का कार्य हो या फिर बिना भेदभाव के शासन की योजना हर गरीब के लिए, हर नौजवान के लिए, हर महिला के लिए, अन्नदाता किसान के लिए, जिनके लिए भी योजना है, उन सब तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र सबका साथ सबके विकास के भाव के साथ सरकार कार्य करने को प्रतिबद्ध है।
0: रामपुर के बाद वज़ीर आला ने बरेली में तरक्याती काबों और अमन अमान का जायजा लिया। उन्होंने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की वेस्ट मैनेजमेंट गाड़ियों को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। विकसित भारत रोजगार गारंटी और रोजी रोटी मिशन देही वीबीजी रामजी एक्ट 2025 आज से पूरे देही भारत में नाफिज हो गया है। इसके मुल्कगीर निफाज की माकबल शब पर देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कल कहा कि कोई भी अहल देही मजदूर एक दिन के लिए भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुनासिब माली वसायल दस्तियाब करा दिए गए हैं, अमल दरामद का निजाम मुकम्मल तौर पर तैयार है और चल रहे काम बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगे। जनाब चौहान ने कहा कि 125 दिन की तनख्वाहदार मुलाजमत की बढ़ाई गई गारंटी देही माश को मजबूत करेगी। ये एक्ट हर एक अहल देही कुनबे के लिए कानूनी तनख्वाहदार रोजगार की गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करता है। मुतादी बीमारियों पर काबू पाने की मुहिम आज रियासत के तमाम अजला में शुरू हो रही है। इस मुहिम के तहत तकरीबन एक दर्जन सरकारी महकमे पूरे महीने में मुतादी बीमारियों की रोकथाम से मुतालिक सरगर्मियों को मरबूत और मुनज्जम करेंगे। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने देही इलाकों के शहरियों को राहत फराहम करते हुए एक अहम कदम उठाया है। अब रियासत भर के तमाम गाँव सेक्रेटरियटों में लेखपाल बाकायदगी से दस्तयाब होंगे। इस कदम का बुनियादी मकसद गवर्नेंस एट योर डोर स्टेप के अहद को पूरा करते हुए रेवेन्यू सर्विसेज को आसान, तेजतर और ज्यादा शफाफ बनाना है। इस हुकूमती फैसले से देही इलाकों के शहरियों को अब गैर जरूरी तौर पर छोटी और बड़ी रेवेन्यू खिदमात के लिए तहसील हेडक्वार्टर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन आज से 15 जुलाई तक मिशन सेफ फ्यूचर के नाम से रियासत गिर मुहिम शुरू कर रहा है। इस मुहिम में दफ्तर सतह से बिना फिटनेस, बिना परमिट स्कूल गाड़ियों के लिए मैनेजरों और प्रिंसिपलों को नोटिस या फोन के जरिए अलर्ट किया जाएगा कि वो जुलाई के पहले हफ्ते तक 100% स्कूली गाड़ियों का फिटनेस कराएं और दुरुस्त परमिट हासिल करें। मानसून रियासत के तकरीबन तमाम अजला में पहुंच चुका है। मानसून की बारिशों के आगाज से गर्मी की शिद्दत से राहत मिली है। पीलीभीत, अमरोहा, कानपुर, अंबेडकर नगर और गोरखपुर समेत कई अजला में कल से वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है, जिसके नतीजे में दर्जा हरारत में कमी वाक़ हुई है। महकमा मौसमियात के सीनियर साइंसदान अतुल कुमार सिंह ने रियासत के कई हिस्सों में भारी बारिश की पेशगोई की है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
2: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगा हर्ट्ज पर। श्रोताओं, अपराहन के 1:15 हुए हैं। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम धरती गाती है, जिसमें आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राम नारायण मौर्य के गाए कुछ लोकगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम धरती गाती है, जिसमें आज आपने सुने राम नारायण मौर्य के गाए कुछ लोकगीत। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्स पर। श्रोताओं, ये आप सुनते हैं शहरी महिलाओं का कार्यक्रम कुमकुम।

जब नारी संकल्प लेकर हरियाली का बीज बोती है, तभी प्रकृति मुस्कुराती है और हरित भविष्य की राह संजोती है। पेड़ों की छाओ, स्वच्छ हवा और खुशहाल कल की पहचान, आओ मिलकर करें प्रयास, हरियाली बने हमारी शान। इसी खूबसूरत सोच के साथ आप सभी सखियों को मेरा यानी आपकी अपनी सखी श्रद्धा का प्यार भरा नमस्कार। और मैं लेकर आई हूँ कार्यक्रम कुमकुम का ये बेहद खास अंक, जहाँ होती हैं कुछ रोचक बातें और कुछ नई जानकारियाँ। सखियों, आप सभी कैसी हैं? आशा है आप सभी स्वस्थ, प्रसन्न और अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी अपने लिए कुछ अच्छे पल ज़रूर निकाल रही होंगी। यूँ तो हम सभी अपनी जिम्मेदारियों में लगे रहते हैं, लेकिन समय कब पंख लगाकर उड़ जाता है इसका पता ही नहीं चलता। अब देखिए ना सखियो, देखते ही देखते जुलाई का महीना आ गया है और वर्ष अपने आधे सफर को पूरा कर चुका है।

बदलते मौसम के साथ प्रकृति भी मानो एक नए रूप में हमारे सामने आने लगती है। ऐसे में जुलाई का ये महीना अपने साथ हरियाली, ताजगी और प्रकृति के करीब आने का संदेश लेकर आता है। सखियों, इसी खुशनुमा मौसम में हर वर्ष 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। वर्ष 1950 में शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य है लोगों को वृक्षारोपण के प्रति जागरूक करना और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना है। दरअसल बरसात का मौसम पौधों के विकास के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है। यही कारण है कि इस दौरान अधिक से अधिक पौधे लगाने और उन्हें संरक्षित करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता है। वन महोत्सव में हमें ये याद दिलाता है कि पेड़ केवल प्रकृति की शोभा ही नहीं बढ़ाते, बल्कि स्वच्छ हवा, जल संरक्षण और पर्यावरण संतुलन के आधार भी हैं। एक पौधा लगाना प्रकृति को दिया गया एक छोटा सा उपहार है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरित और सुरक्षित भविष्य की नींव बन सकता है। और जब हरित भविष्य के निर्माण की बात होती है तो महिलाओं की भूमिका स्वयं एक प्रेरणा बनकर सामने आती है, क्योंकि प्रकृति की देखभाल और संरक्षण का भाव महिलाओं के जीवन और व्यवहार में स्वाभाविक रूप से दिखाई देता है। घर के आंगन में लगाए गए छोटे से पौधे से लेकर खेत खलियानों की हरियाली तक, जल संरक्षण से लेकर स्वच्छता और पर्यावरण जागरूकता तक महिलाएं सदैव प्रकृति की सच्ची साथी रही हैं। वे केवल परिवार का ही नहीं बल्कि पर्यावरण का भी भविष्य संवारने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। ऐसा ही महिलाओं के योगदान को दर्शाने वाला एक सुंदर उदाहरण सरोज की पहल में देखने को मिलता है। जी हाँ, सरोज एक गांव में रहने वाली साधारण सी महिला थी, लेकिन उनकी सोच और प्रयास असाधारण थे। ऐसा ही प्रयास उन्होंने अपने घर के सामने एक नीम का पौधा लगाकर किया। लोगों ने कहा एक पौधा लगाने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन सरोज ने हार नहीं मानी। वह रोज उस पौधे को पानी देती, उसकी देखभाल करती और अपने बच्चों को भी पेड़ों का महत्व समझाती। धीरे धीरे उस पौधे ने पेड़ का रूप ले लिया। उसकी छाया में राहगीर आराम करने लगे, पक्षियों ने अपना बसेरा बना लिया और आसपास का वातावरण भी पहले से अधिक सुखद हो गया। सरोज की पहल को देखकर गांव की अन्य महिलाओं ने भी पौधे लगाने शुरू कर दिए। कुछ वर्षों में पूरे गांव की तस्वीर बदल गई। जहां पहले खाली जमीन थी, वहां अब हरियाली नजर आने लगी। ये कहानी हमें बताती है कि बदलाव की शुरुआत किसी बड़े अभियान से नहीं बल्कि एक छोटे से संकल्प से होती है। और जब महिलाएं किसी महत्वपूर्ण कार्य का बीड़ा उठाती हैं ना सखियो, तो उसका प्रभाव पूरे समाज पर दिखाई देता है। आज आवश्यकता इस बात की है हम सभी महिलाएं पर्यावरण संरक्षण को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। अपने घर, मोहल्ले, विद्यालय या कार्यस्थल पर एक पौधा अवश्य लगाएं और उसकी देखभाल का संकल्प लें, क्योंकि हर पौधा केवल एक पेड़ नहीं बल्कि आने वाले कल की सांसों का आधार है। और खुशी की बात यह है कि आज पर्यावरण संरक्षण को लेकर देश भर में अनेक अभियान चलाए जा रहे हैं। वृक्षारोपण, जल संरक्षण, स्वच्छता और प्लास्टिक मुक्त वातावरण जैसे प्रयासों में लोगों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। विशेष रूप से महिलाएं, स्वयं सहायता समूह और विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। ये बदलाव इस बात का संकेत है कि हम सभी मिलकर एक हरित, स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कहते हैं जब धरती मुस्कुराती है तो जीवन में खुशहाली अपने आप चली आती है। इसलिए आवश्यक है कि हम प्रकृति के प्रति अपने दायित्व को समझें और पर्यावरण संरक्षण को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। इसी विचार को शब्द देती ये पंक्तियाँ। पेड़ों की छाव में कल की उम्मीद पलती है, धरती की हरियाली में ही जिंदगी खिलती है। और कहते हैं सखियों, प्रकृति जब अपने रंग बिखेरती है तो मन भी आनंद और उत्साह से भर उठता है और कदम भी एक नई लय में चलने लगते हैं और दिल

0: सखियों, हरियाली से सजा ये सुंदर गीत सुनकर मन भी ताजगी और उत्साह से भर गया। रिश्तों की दुनिया भी कुछ ऐसी ही होती है, जहाँ प्रेम, विश्वास और आपसी समझ जीवन को सुंदर बनाते हैं। परिवार की सुख शांति और खुशहाली में दाम्पत्य जीवन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पति पत्नी के बीच प्रेम, सम्मान और सहयोग का भाव पूरे परिवार को मजबूती प्रदान करता है। इसी महत्वपूर्ण विषय पर आधारित है आज की वार्ता। तो आइए सुनते हैं हमारी मेहमान नफीस फातिमा की वार्ता। वार्ता का विषय है सुखी दाम्पत्य जीवन का सूत्र।
1: इंसान जब इस दुनिया में पैदा होता है तो उसके इर्द गिर्द बहुत सारे रिश्ते होते हैं, जो खून के होते हैं और कुदरत की तरफ से मिलते हैं। माता पिता का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, दादा दादी, नाना नानी, अनगिनत रिश्ते होते हैं जो वो चाहकर भी नहीं तोड़ सकता है। इन्हीं रिश्तों की डोर से वो बंधा होता है और इन्हीं से उसकी ज़िंदगी चलती है और इन्हीं के सहारे वो बड़ा होता है और धीरे धीरे जवान हो जाता है। तब उसकी ज़िंदगी में एक हमसफ़र की ज़रूरत होती है और तभी से शुरुआत होती है दाम्पत्य जीवन की। लड़की के लिए उसका पति और लड़के के लिए उसकी पत्नी ज़िंदगी में इतना ख़ास बन जाते हैं कि पता ही नहीं चलता। शादी के बाद पति पत्नी दोनों की ज़िंदगी में ढेर सारे परिवर्तन होते हैं, जिनको उन्हें स्वीकार करना ही होता है और उसी के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ता है, तभी वो दोनों एक खुशहाल दाम्पत्य जीवन जी पाते हैं। अगर वो समय और परिस्थिति के अनुसार नहीं ढल पाते हैं तभी समस्याएं पैदा होती हैं, दाम्पत्य जीवन में दरार आना शुरू होती है। वास्तव में देखा जाए तो पति पत्नी गाड़ी के दो ऐसे पहियों की तरह हैं कि जिनके बिना परिवार की गाड़ी नहीं चल सकती। अगर एक भी खराब हो जाए यानी बिगड़ जाए तो ज़िंदगी की पूरी गाड़ी ही रुक जाती है और जीना मुश्किल हो जाता है। इसी बात को पति पत्नी दोनों को समझना होगा। बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की सफलता की। पत्नी से प्यार का इजहार भी दाम्पत्य जीवन की सफलता का एक बहुत बड़ा सूत्र है। जब भी पत्नी परेशान हो, बहुत ज़्यादा काम में लगी हो या नाराज़ हो तो उनकी थोड़ी सी तारीफ कर दीजिए। उनके प्रति अपना प्यार के जज्बातों का इजहार करने से पत्नी मान भी जाती है और समय समय पर होने वाली छोटी छोटी नोकझोंक भी नहीं होती। पत्नियां दिन भर घर संभालती हैं, घर के सारे काम निपटाती हैं, उन्हें घर गृहस्थी से फुर्सत ही नहीं मिलती। शाम को वो पति का इंतज़ार करती हैं। दिन भर के बाद उसका दिल करता है कि पति प्यार के दो मीठे बोल बोल दे और पत्नी की थोड़ी सी तारीफ कर दे तो पत्नी खुश हो जाती है और पूरे दिन की थकान उतर जाती है, परिवार में खुशहाली बनी रहती है। पति पत्नी के रिश्ते कितने भी पक्के हों, गहरे क्यों ना हों, जब बात बच्चों की होती है तो वो आपस में लड़ जाते हैं। बच्चे माता पिता के लिए बहुत प्रिय होते हैं। बच्चों पर कोई आँच आ जाए तो वो एक दूसरे को दोष देने लगते हैं, एक दूसरे को लापरवाह बताने लगते हैं। ऐसे में उनके मन में एक दूसरे के लिए कड़वाहट आने लगती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चों पर माता पिता बहुत मेहनत करते हैं लेकिन बच्चे इतने लापरवाह होते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाते, गलत कामों में पड़ जाते हैं। कभी कभी बच्चों को लेकर पति पत्नी अलग भी हो जाते हैं। बच्चों की जिम्मेदारी माता पिता दोनों की होती है। दोनों को मिलकर बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए, उनमें अच्छे संस्कार डालने चाहिए। किसी एक को दोष देना गलत होगा। माता बच्चे की पहली शिक्षिका होती है तो पिता उन्हें अनुशासित रखता है। इसीलिए पति पत्नी मिलकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं और दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाएं। अगर परिवार में कलह हो, आपस में एक दूसरे पर यकीन न हो, सुकून, चैन, आराम न हो तो पति पत्नी कभी भी ज़िंदगी में प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं, किसी भी नौकरी या व्यवसाय या अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं करते, इसीलिए जिंदगी की दौड़ में पिछड़ जाते हैं। अगर हम कुछ कर

0: करना चाहते हैं यानी अपने जीवन में अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें शक करना छोड़ना होगा, एक दूसरे पर विश्वास करना होगा। जिंदगी में अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो उसे माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि माफ़ करना आपके बड़कपन की निशानी है। यही नियम दाम्पत्य जीवन में भी लागू होता है। पति पत्नी आपस में एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के दर्द और तकलीफ़ों का एहसास करें तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। गलतियां सबसे होती हैं। अगर कोई काम ख़राब हो जाता है तो उसे नज़रअंदाज करना होता है, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, बहस करना, छोटी छोटी बातों पर बेवजह तूल देना ज़िंदगी को जहन्नुम बना सकता है। इसलिए बर्दाश्त करना सीखिए और उनकी गलतियों को माफ़ कर देने में ही भलाई है। जब बात बिगड़ जाती है तो उसे संभालना मुश्किल हो जाता है और यहाँ तक कि तलाक तक नौबत आ जाती है और बाद में ज़िंदगी भर पछताना पड़ता है। इसीलिए समझदारी से काम लें और बात बिगड़ने से पहले संभाल लें। जब एक लड़की शादी करके दूसरे घर यानी अपने ससुराल आती है तो उसको बहुत उम्मीदें और तमन्नाएं होती हैं कि उसको वहाँ प्यार मिले, सम्मान मिले। भाई बहन को, अपने घर वालों को अपने छोड़कर आती है तो वो ये भी यही चाहती है कि उसको यहाँ पर प्यार मिले। तो ऐसे में अगर उसे नहीं मिलता है तो उसका दिल टूट जाता है और कुंठा से भर जाता है। तो पति का कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी को इतना प्यार और सम्मान दे कि उसकी पत्नी अपना मायका भूलकर पूरी तरह से ससुराल में हो जाए। इसी तरह पत्नी का भी ये कर्तव्य है कि वो भी अपनी जिम्मेदारियों को समझे, अपने पति का सम्मान करे और उसके घर वालों का ध्यान रखे। ऐसे में दोनों के बीच प्यार मोहब्बत बढ़ता है और दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है। कभी कभी पति और पत्नी के बीच रिश्तेदारों को लेकर भी दरारें पैदा हो जाती हैं, एक दूसरे के शिकवे शिकायतें होती हैं। इन सब से कोई फ़ायदा नहीं है। जब कड़वाहट बढ़ने लगे तो रिश्तों को थोड़ा स्पेस देना भी ज़रूरी होता है। वैसे भी कभी कभी बाहर घूमने निकल जाएं, पिकनिक मना लें। ज़रूरत से ज़्यादा चाहते अपेक्षाएं भी जीना मुश्किल कर देती है। संयम से, समझदारी से, एक दूसरे पर विश्वास करते हुए, प्यार और मोहब्बत से एक दूसरे का सम्मान करते हुए अगर पति पत्नी अपने रिश्ते को निभाएं तो उनका रिश्ता दिन ब दिन मजबूत होगा और उनका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भर जाएगा।
1: सखियों, अभी आप सभी ने सुनी हमारी मेहमान नफीस फातिमा की वार्ता। वार्ता का विषय था सुखी दाम्पत्य जीवन का सूत्र। उम्मीद है आपको ये वार्ता पसंद आई होगी और उनसे आपको कुछ नई प्रेरणा भी मिली होगी। सखियों, जीवन को सुखद और संतुलित बनाने में प्रकृति का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब घर आंगन में हरियाली हो तो वातावरण भी खुशनुमा बन जाता है। इसी कड़ी में अब प्रस्तुत है हमारा क्षेत्र संकलित कार्यक्रम।
2: कई महिलाएं अपने घर में ही सब्जियां, मसाले और फूलों के पौधे उगा रही हैं। किचन गार्डन की इसी सुंदर पहल पर हमने स्टूडियो से बाहर जाकर बात की अपनी एक सखी से। तो चलिए जानते हैं उनका नाम। आपका नाम?
3: मेरा नाम ज्योति।
2: ज्योत्सना जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले ज्योत्सना जी आपसे यही जानना चाहेंगे कि किचन गार्डन क्या होता है और आपने इसकी शुरुआत अपने घर पर कैसे की।
3: सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि किचन गार्डन घर का एक छोटा सा बगीचा होता है जिसमें हम धनिया, पुदीना, मिर्च, टमाटर या अन्य सब्जियां आसानी से उगा सकते हैं। इसकी शुरुआत करना बहुत आसान है। मैंने अपने घर में उपलब्ध गमलों में थोड़ी सी खाली जगह से ही शुरुआत की थी। धीरे धीरे कुछ और पौधे लगाए और फिर ये मेरी दिनचर्या का एक हिस्सा बन गया।
2: अच्छा, ज्योत्सना जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, यानी थोड़ी सी जगह और थोड़ी सी मेहनत से कोई भी अब किचन गार्डन शुरू कर सकता है। अच्छा ज्योत्सना जी, कई महिलाएं सोचती हैं कि हमारे पास ना तो बड़ा आंगन है और ना ही खेत, ऐसे में क्या हम भी किचन गार्डन बना सकते हैं?
3: जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। आजकल तो लोग बालकनी, छत और गमलों में भी बहुत अच्छी बागवानी कर रहे हैं। पुराने डिब्बे, बाल्टी, टब या टूटे हुए बर्तन भी काम में आ जाते हैं। शुरुआत में धनिया, पुदीना, मेथी या मिर्च जैसे पौधे आसानी से लगाए जा सकते हैं। इनकी देखभाल भी ज्यादा मुश्किल नहीं होती है, बस थोड़ी धूप, समय पर पानी और थोड़ी सी देखभाल की जरूरत होती है।
2: हाँ, क्योंकि अब बाहर की जो हम सब्जियां यूज करते हैं तो उसमें कई तरह के केमिकल यूज होते हैं, तो उससे कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि घर पर ही हम धनिया पुदीना है और भी कई सब्जियां उगा सकते हैं।
3: जी
2: आप खुद घर में क्या क्या पौधे लगाती हैं और इससे आपको सबसे अच्छा क्या लगता है?
3: अच्छा, मैं घर में ज्यादातर धनिया पुदीना मिर्च या कुछ फूलों के पौधे लगाती हूँ। अच्छा। सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जरूरत पड़ने पर हम कभी भी ताजा धनिया या मिर्च घर से ही ले सकते हैं और पौधे की देखभाल करने में भी मुझे बहुत अच्छा लगता है और घर भी हरा भरा दिखाई देता है इससे।
2: हाँ, कहीं क्या होता है जब किसी सब्जी में धनिया पड़ना है या मिर्च पड़नी है, अब एकदम से बाजार लेने जाओ तो वो घर में ही अवेलेबल होता तो ताजी चीज की तो बात ही अलग होती है।
3: हाँ
2: जी, अंत में जो महिलाएं आज तक किचन गार्डन शुरू नहीं कर पाई उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी?
3: मैं बस ये कहना चाहूंगी कि शुरुआत बहुत छोटी करें, दो चार गमलों से भी काम शुरू हो सकता है। धीरे धीरे अनुभव बढ़ता जाता है और रुचि भी आती है फिर काम को करने में। अपने घर में एक पौधा लगाना भी एक अच्छी शुरुआत है।
2: एक सुकून मिलता है ना, एक हरियाली फैली होती है और अपने हाथ से जब पौधा बड़ा होता है तो कितना अच्छा लगता है। बच्चों में भी आदतें बढ़ती हैं।
3: हाँ बिल्कुल, और इसके साथ ना एक क्या होता है, एक डिसिप्लिन भी मेंटेन होता है अपनी लाइफ में।
2: हाँ।
3: कि मतलब उन चीजों को देखना और मतलब सब्र करना कि कब तक ये फल आएंगे या फूल आएंगे, हम उनको मतलब अनुभव करेंगे अपनी लाइफ में, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है।
2: और बच्चे भी सीखते हैं।
3: हाँ, बच्चे भी सीखते हैं कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि, और फिर हमें घर की अच्छी चीजें मिल जाती हैं, नहीं तो बाजार से इतनी अच्छी चीजें कहाँ मिल पाती हैं खाने के लिए। सभी चीज में केमिकल लगा हुआ आ रहा है आजकल।
2: ये तो ताजी सब्जियां चाहिए तो भाई घर पे किचन गार्डन शुरू करें आज से ही। अच्छा जी, आपने बहुत सुंदर बात की। और तो श्रोताओं, ये थी हमारी सखी ज्योत्सना जी जो हमारे कार्यक्रम से जुड़ी और हमारे साथ इतनी महत्वपूर्ण बातें साझा की। इसके लिए ज्योत्सना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सखी, उम्मीद है कि किचन गार्डन से जुड़ी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप भी अपने घर में हरियाली बढ़ाने के लिए दिशा में एक छोटा सा कदम जरूर उठाएं।
1: सखियों, अभी आप सभी ने सुना हमारा क्षेत्र संकलित कार्यक्रम। सखियों, इसी बीच मुझे एक बात याद आ गई। कल मेरी एक फ्रेंड बता रही थी कि उसके पास एक फोन आया। सामने वाले ने कहा कि आपका बैंक खाता बंद होने वाला है, उसे चालू रखने के लिए एक OTP आएगा, कृपया बता दीजिए। घबराहट में उसने OTP बता दिया और बाद में पता चला कि ये एक धोखाधड़ी थी। ऐसे ही छोटे छोटे झांसे लोगों को डिजिटल फ्रॉड का शिकार बना देते हैं, इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डिजिटल फ्रॉड से बचने के कुछ ज़रूरी टिप्स। सखियों, सबसे पहले ये याद रखें कि OTP, ATM पिन, पासवर्ड या बैंक खाते से जुड़ी कोई भी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा ना करें, चाहे सामने वाला खुद को बैंक कर्मचारी, सरकारी अधिकारी या किसी कंपनी का प्रतिनिधि ही क्यों ना बताए। साथ ही मोबाइल पर आने वाले किसी भी अनजान लिंक या संदेश पर तुरंत भरोसा ना करें। कई बार साइबर ठग आकर्षक ऑफर, इनाम या KYC अपडेट के नाम पर लोगों को जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। ऐसे संदेशों की सत्यता अवश्य जांच लें। ऑनलाइन लेन देन करते समय केवल विश्वसनीय वेबसाइटों और आधिकारिक ऐप्स का ही उपयोग करें। किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। अपने बैंक खाते और डिजिटल भुगतान से जुड़े संदेशों पर भी नजर रखें। यदि कोई संदिग्ध लेन देन दिखाई दे तो तुरंत बैंक से संपर्क करें और आवश्यक कार्रवाई करें। साथ ही सोशल मीडिया का उपयोग करते समय भी सावधानी बरतें। अपनी निजी जानकारी जैसे मोबाइल नंबर, बैंक संबंधी विवरण या अन्य महत्वपूर्ण जानकारी सार्वजनिक रूप से साझा करने से बचें। इसके अलावा अपने मोबाइल और ऑनलाइन खातों के लिए ऐसा पासवर्ड रखें जिसका अनुमान कोई आसानी से ना लगा सके और समय समय पर उसे बदलते भी रहें। इससे आपकी डिजिटल सुरक्षा और अधिक मजबूत होगी। याद रखिए, थोड़ी सी सावधानी और समझदारी आपको बड़ी आर्थिक और मानसिक परेशानी से बचा सकती है। इसलिए जागरूक रहें, सुरक्षित रहें और डिजिटल सुविधाओं का लाभ समझदारी के साथ उठाएं। और अब चलिए सुरक्षा और सजगता के इन संदेशों के बाद संगीत की मधुर हवाओं के साथ बहते हैं।

0: अभी मैं हेलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम कुमकुम।
1: अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम कुमकुम। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी श्रद्धा जिंदल। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर। 2 बजे हैं, अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द मिड डे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says 11 years of digital India empowered the poor and the underprivileged, making life easier for millions.

0: आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस पहल से देश भर में नागरिकों के जुड़ने, सीखने, लेन देन करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के तरीके को बदल दिया है। पिछले 11 वर्ष में भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम में से एक को तैयार किया है। एक रिपोर्ट।
1: भारत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो सकने वाले और नागरिकों पर केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म की मदद से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सहयोग के लिए 24 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों में डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा साझा करने और सरकारी सेवाओं की डिजिटल व्यवस्था जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI अब संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका समेत 8 से अधिक देशों में उपलब्ध है। आधार, डिजीलॉकर, कोविन, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, दीक्षा, उमंग और ई संजीवनी जैसे भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के कई देशों के लिए डिजिटल शासन के मॉडल बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान अब अपने अगले दशक में प्रवेश कर रहा है। इसके साथ भारत तकनीक को समावेशी विकास, डिजिटल सशक्तिकरण और वैश्विक सहयोग का मजबूत माध्यम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। डिजिटल इंडिया अभियान के 11 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने कहा कि इस पहल का असर लोगों के जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार करके, डिजिटल शासन को मजबूत करके और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत को एक डिजिटल राष्ट्र में बदल दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में श्री शाह ने कहा कि देश ने इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी आधारित शासन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। जून महीने में UPI के माध्यम से 22 अरब से अधिक लेन देन हुए। ये पिछले वर्ष जून के मुकाबले 23% अधिक है। इस लेन देन का कुल मूल्य 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा। ये पिछले साल के तुलना में 20% की बढ़ोतरी है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन GRAMJI अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि VBGRAMJI अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। इससे ग्रामीण भारत सशक्त बनेगा। एक रिपोर्ट।
2: वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत GRAMJI अधिनियम के अंतर्गत संशोधित पारिश्रमिक दरें आज से लागू हो गई हैं। राष्ट्रीय औसत पारिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत GRAMJI के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि हुई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी, वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत GRAMJI अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
3: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत GRAMJI योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत GRAMJI योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दल ने पहले पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट का सर्वेक्षण किया, जो सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, और फिर बोइंग गांव जाकर जमीन स्तर पर हुए नुकसान का जायजा लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार

0: सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी।
1: संकट के समय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश के साथ खड़ी है। क्षति का आकलन करके कैसे अधिकतम मदद की जाए, अपने भाई बहनों का अरुणाचल प्रदेश का प्रयास किया जाएगा। गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी होती है, वो पूरी स्थिति का आकलन करके अतिरिक्त सहायता अरुणाचल प्रदेश की करेंगे।
0: राज्य में बाढ़ से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 21 अन्य घायल हुए हैं। लगभग सभी 28 जिलों में 90,499 लोग प्रभावित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने कहा है कि बदलते सुरक्षा माहौल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना का तेजी से आधुनिकीकरण किया जाएगा। 31वें थलसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करने के बाद जनरल सेठ ने मीडिया को बताया कि भारतीय सेना का लक्ष्य ऐसी आधुनिक और तकनीक से सशक्त सेना तैयार करना है जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह सक्षम हो।
2: इस बदलते सिक्योरिटी एनवायरनमेंट की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सेना के मॉडर्नाइजेशन को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाना होगा। हमारा उद्देश्य एक ऐसी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचर रेडी आर्मी का निर्माण करना है जो हर तरीके से मल्टी डोमेन में ऑपरेट करने के लिए सक्षम हो।
0: जनरल सेठ ने कहा कि भारतीय सेना सीमाओं और उभरते खतरों पर लगातार कड़ी नजर रख रही है और किसी भी सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
2: हम अपनी सीमाओं और उभरते खतरों के प्रति निरंतर सतर्कता बरकरार रखेंगे और राष्ट्र सुरक्षा के समक्ष किसी भी चुनौती का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए उच्च स्तर की ऑपरेशनल रेडीनेस बनाए रखेंगे। नवाचार हमारी सोच, कार्य प्रणाली और क्षमता विकास का अभिन्न अंग होगा।
0: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने आज भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लिया। वे एयर मार्शल नागेश कपूर के स्थान पर नियुक्त हुए हैं, जो 4 दशक से अधिक की सेवा के बाद कल सेवानिवृत्त हो गए। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने आज चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते हुए श्री सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्हें तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए युवाओं से समर्पण, ईमानदारी और मजबूत नैतिक मूल्यों के साथ उत्कृष्टता प्राप्त करने का आह्वान किया है। वे आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं। विश्वविद्यालय के दृष्टिकोण की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि ये संस्थान भविष्य में उत्कृष्टता का एक प्रमुख केंद्र बनेगा।
3: I am pleased to know that this university has developed a long-term vision to become a future-ready institution. Its commitment to the sustainable development goals, especially to those on quality education, reflects a sense of responsibility towards inclusive and equitable development.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत वेनेजुएला में राहत कार्यों में जुटे भारतीय डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों की सराहना की है। सोशल मीडिया संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि कठिन समय में जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए उनका समर्पण प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि हर संकट की घड़ी में चिकित्सा कर्मी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा है कि भारत संप्रभु फलस्तीन की स्थापना के लिए बातचीत से द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। इसके अंतर्गत एक ऐसे संप्रभु फलस्तीन की स्थापना हो सकेगी जो सुरक्षित और मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर इसराइल के साथ शांति और स्थिरता से रह सकेगा। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि भारत ने फलस्तीनी लोगों को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर से अधिक की सहायता प्रदान की है।
4: इंडियाज एंगेजमेंट्स
5: भारत फलस्तीन के लोगों की मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार सहयोग कर रहा है। अब तक भारत फलस्तीन को 17.5 करोड़ अमरीकी डॉलर की सहायता दे चुका है। इसके अलावा भारत समय समय पर मानवीय सहायता, आपदा राहत सामग्री, आपातकालीन दवाइयाँ और सामान्य उपयोग की आवश्यक औषधियाँ भी उपलब्ध कराता रहा है,
4: इंक्लूडिंग इमरजेंसी एंड जनरल यूज मेडिसिन।
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ मसूद पेजेश्कियन से टेलीफोन पर बातचीत की। श्री मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थायी शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पिछले 9 वर्ष में वस्तु और सेवा कर जीएसटी ने भारत के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को और मजबूत किया है। जीएसटी से तर्कसंगत कर दरों और मानकीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से पारदर्शिता, जवाबदेही और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। ये 2017 में 1 जुलाई से लागू हुई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये योजना सिंचाई में सुधार, सतत जल प्रबंधन और अधिक कृषि भूमि को सिंचाई के दायरे में लाकर खेती में बड़ा बदलाव लाने में मददगार हुई है। 1 जुलाई 2015 को शुरू की गई इस योजना ने सिंचाई सुनिश्चित की है, खेती में जल के समुचित उपयोग में सुधार किया है और देश में सतत जल संरक्षण को बढ़ावा दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अफगानिस्तान की सेना ने पाकिस्तान में ISIS से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। अफगान मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये हमले कल रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में ISIS के ठिकानों पर किए गए। इन हमलों में ISIS और उसके समर्थकों को भारी नुकसान पहुंचा और आर्थिक रूप से भी भारी क्षति हुई। मंत्रालय ने कहा है कि इनमें कोई नागरिक हताहत नहीं हुआ है। हाल ही में पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के 36 नागरिक मारे गए थे और 163 अन्य घायल हुए थे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने तुरंत शत्रुता समाप्त करने का आह्वान किया है और सभी पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा करने का आग्रह किया है। फीफा विश्व कप के राउंड 32 के मैच में मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया है और अंतिम 16 में पहुंच गया है। इससे पहले फ्रांस ने स्वीडन को 3-0 से और नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर राउंड 16 में जगह पक्की की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब की ओर बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, ओडिशा और विदर्भ में अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले 11 वर्ष के दौरान गरीबों और वंचितों को सशक्त बनाया, इससे लाखों लोगों का जीवन आसान हुआ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से लागू। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। नवनियुक्त सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने बदलते सुरक्षा माहौल की चुनौतियों से निपटने के लिए सेना के आधुनिकीकरण पर बल दिया। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में ISIS के ठिकानों पर हमला किया। मानसून के 2 दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब तक पहुंचने की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: मिनीवेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अपराह्न के 2:30 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग।
7: सबसे

0: शब्दांग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। नए महीने जुलाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: और मैं हूँ अजीत। स्वागत है आप सबका कार्यक्रम उमंग में। आइए शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ, जिसे हमें भेजा है आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है।
1: धन्यवाद आपके इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से। जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास और धनवंतीन बाई जी का। लिखते हैं, जय जोहार बंदगी विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। आगे लिखते हैं,
2: उमंग टीम को बधाई जी। उमंग कार्यक्रम में 3 जून 2026 को पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के पर्यावरण के प्रति लगाव वाली कहानी ने दिल छू लिया। हमें बहुत प्रेरणा और सीख मिली। आपने बहुत प्रेरणादायक और रियल स्टोरी सुनाई। धन्यवाद साहेब।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से अजय देवता मुरिया, तुषार देवता मुरिया, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नीलिमा अजीम।
1: और पुणे से सुयोग बटवे।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
1: स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं विभिन्न खनिज पदार्थों की, और इस क्रम में हमने कल चर्चा की थी कोयले की, जिसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो अजीत जी, आज की चर्चा का विषय तो बताइए, किस खनिज की हम चर्चा करने जा रहे हैं? श्रोताओं की उत्सुकता

0: हिंट देता हूँ। श्रोताओं जरा अंदाजा लगाइए, हिंट है ये बहुत ही लोकप्रिय धातु है
1: जी,
0: मूल्यवान भी है, रंग इसका सुनहरा पीला है, सभी इसे बहुत चाहते हैं।
1: अजीत जी, वैसे तो और भी कई धातुएं मूल्यवान हैं, लेकिन यदि हिंट है कि ये पीले रंग का है और बहुत लोक

0: चक और आश्चर्यजनक बात बता दूं कि कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं।
1: कोयला तो पृथ्वी पर बना लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं, ये क्या बात हुई?
0: यही तो खास बात है जी जी। सोने की उत्पत्ति की कहानी धरती से नहीं बल्कि अंतरिक्ष में तारों की भीषण टक्कर और विस्फोट से हुई है। सोने की उत्पत्ति अरबों साल पहले सुपरनोवा यानी विशाल तारे के फटने और न्यूट्रॉन तारों की टक्कर से हुई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार अंतरिक्ष से विशाल तारों और उल्कापिंडों की टक्कर के कारण उत्पन्न धूल से सोना पृथ्वी पर पहुंचा है।
1: तो ये बात है, शायद इसीलिए सोने और चांदी को स्टार डस्ट भी कहते हैं।
0: जी,
1: जब ब्रह्मांड में कोई विशाल तारा या सुपरनोवा अपना जीवन चक्र पूरा करता है ना, तो भयंकर विस्फोट के साथ फट जाता है, और इस प्रक्रिया में अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव पैदा होता है।
0: जब कोई तारा फटता है और दबाव और गर्मी इतनी अधिक हो जाती है कि हल्के तत्वों के परमाणु आपस में जुड़कर भारी परमाणु बनाने लगते हैं, इसमें एक नया तत्व बनता है जिसे हम सोना कहते हैं।
1: लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है। अब वो ये है कि यदि सोना अंतरिक्ष में पैदा हुआ या उत्पन्न हुआ, तो वो पृथ्वी तक पहुंचा कैसे?
0: ये जानना भी बहुत रोचक है। सोना पृथ्वी पर अंतरिक्ष से मुख्य रूप से तारों के टूटने और उल्कापिंडों की भारी बौछार मीट्रोइड बॉम्बार्डमेंट के जरिए पहुंचा है।
1: इसी बात को चलिए थोड़ा विस्तार और देते। लगभग 4 अरब साल पहले अंतरिक्ष से सोने और अन्य कीमती धातुओं से भरे लाखों विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए।
0: जी,
1: इस भीषण बौछार के कारण उल्कापिंडों में मौजूद सोना पृथ्वी की ऊपरी परत में बिखर गया। आज हम जो भी सोना खदानों से निकालते हैं, वह इसी अंतरिक्षीय बारिश की देन है।
0: जी जी जी, सोना पृथ्वी की ऊपरी परत पर बिखर गया, लेकिन धीरे धीरे उस पर भी मिट्टी और चट्टानों की परतें जमने लगीं और सोना पृथ्वी की गहराइयों में चला गया। उसी सोने को अब हम खदानों से खोदकर निकालते हैं। अब सोने को ठोस रूप देने के लिए उसमें कई धातुएं भी मिलाई जाती हैं।
1: जी, सच्चाई ये है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सोना मानव सभ्यता के प्रारंभ होने से भी अरबों वर्ष पहले बन चुका था।
0: अजीत जी, सचमुच बड़ी अद्भुत कहानी है ना सोने की। एक और रोचक बात साझा करना चाहती हूँ। पता है श्रोताओं, सोने को किसी भी रासायनिक विधि द्वारा पृथ्वी पर नहीं बनाया जा सकता। रसायन शास्त्रियों ने, जिन्हें एल्केमिस्ट कहा जाता है, शताब्दियों तक लोहे, तांबे और पारे जैसी सस्ती धातुओं को सोने में बदलने की कोशिश की थी, लेकिन वे हमेशा असफल रहे, क्योंकि रासायनिक रूप से किसी धातु को सोने में बदलना असंभव है। मान्यता ये है कि प्राचीन काल में भारत में एक पत्थर पाया जाता था जिसे पारस पत्थर कहते थे। इसके स्पर्श मात्र से लोहा सोने में बदल जाता था।
1: जी, लेकिन अब आधुनिक विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि आज के समय में परमाणु रिएक्टर के जरिए वैज्ञानिक कुछ धातुओं से सोना बना सकते हैं। लेकिन इस वैज्ञानिक प्रक्रिया में इतनी अधिक ऊर्जा और पैसा खर्च होता है कि 100 रुपए का सोना बनाने में लाखों रुपए लग सकते हैं।
0: एक बात और, शुद्ध सोना बहुत नरम होता है, इसीलिए उसे आकार देने के लिए उसमें तांबा, चांदी, जस्ता और निकेल जैसी धातुएं भी मिलाई जाती हैं। लेकिन एक बात तो है,
1: और वो ये है श्रोताओं कि जब आप सोना या स्वर्ण आभूषण देखते हैं, तो याद रखिए, ये मूल रूप से पृथ्वी की वस्तु नहीं लेकिन अरबों वर्ष पहले हुई ब्रह्मांडीय घटनाओं का परिणाम है।
0: जी,
1: इसीलिए ये बहुत कीमती मानी जाती है। दूसरे शब्दों में,
0: आपके हाथ के सोने की अंगूठी कभी किसी तारे के फटने या किसी महाविस्फोट का हिस्सा रही होगी।
1: जी, तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अंतरिक्ष की मूल्यवान वस्तु सोने की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से, प्रश्न है, सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं?
1: आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं, और हमारे ईमेल पर भी। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो करना ना भूलिए। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की,
1: तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, अरावली की कहानी।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला की रोचक जानकारी दी गई है और बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण में इस पर्वतमाला की क्या भूमिका है।
1: अरावली की कहानी।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी, यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं। क्योंकि उन्हें

0: जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सर।
0: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
2: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
3: यस मैम।
2: आह, क्या बात है
4: मैम।
2: हाँ बेटी,
4: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
2: बिल्कुल कहा।
4: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं। क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
2: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहां कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियां होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
4: जी, पहाड़ी।
0: अरे वाह। अच्छा, लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
2: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
3: यस मैम।
2: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
3: अच्छा।
2: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
3: अच्छा।
2: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
3: अच्छा, मैंने भी देखा है।
0: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
5: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
2: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। अब जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
6: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
2: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
3: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
0: बहुत अच्छे। तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
2: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
5: जी मैम,
4: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
0: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है? क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
2: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गयी।
6: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
2: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
3: सॉइल इरोजन,
2: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। शेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही है।
0: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
2: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
3: हाँ, जी मैम।
4: यस मैम।
2: अब अरावली पर्वत श्रृंखला

0: राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है। यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
1: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
0: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
2: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
0: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
3: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
0: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
3: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
0: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
3: ओह,
0: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना
3: जी।
0: और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
4: जी मैम।
3: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
4: बहुत अच्छी लगी।
3: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। तो डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
4: धन्यवाद सर।
5: धन्यवाद मैम।
6: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
3: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
6: अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है बांगुई।
7: ये कार्यक्रम अफ्रीका की एक लोक कथा पर आधारित है जिसके द्वारा संदेश दिया गया है कि पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम एक सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

अफ्रीका महाद्वीप का नाम तो आपने सुना होगा। उसके पश्चिमी हिस्से में एक छोटा सा देश है घाना। विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा के निकट होने के बावजूद घाना में सूखे की नहीं

0: बाढ़ की समस्या प्रबल रहती है। कई छोटी बड़ी नदियां इस देश से होकर बहती हैं और इसे हरा भरा बनाए रखती हैं, लेकिन अक्सर इन नदियों में बाढ़ आ जाती है और गांव के गांव डूब जाते हैं। आज सुनते हैं व्हाइट वोल्टा नदी के किनारे बसे एक ऐसे ही गांव के आदिवासियों की कहानी।
1: नमस्कार भाई।
2: नमस्कार भाई। नमस्कार।
1: इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अभी तो खेत में काम करने का समय नहीं हुआ।
2: अरे आज खेतों में नहीं, जंगल में काम करने जा रहा हूँ। ये देखो कुल्हाड़ी।
1: अरे ये क्या, हल वाले हाथ में कुल्हाड़ी लकड़ी काटने जा रहे हो? क्या नया घर बना रहे हो?
2: हाँ भैया, नया घर तो बन रहा है, लेकिन मेरा नहीं, अपने मुखिया बानगुई है ना, वही अपना नया घर बनवा रहे हैं।
1: मुखिया बांगुई का नया घर? लेकिन अभी कुछ ही बरस पहले तो उन्होंने नया घर बनवाया था।
2: तो क्या हुआ, उन्हें अपना वो नया घर अब पुराना और छोटा लगने लगा है। दरअसल जंगल की लकड़ी बेच बेच कर रईस हो गए हैं ना, सो अपनी रईसी की शान दिखाने के लिए फिर नया मकान बनवा रहे हैं।
1: अच्छा तो ये बात है, मुखिया बांगुई ने ही पैसे के लालच में शहर के लोगों को जंगल से लकड़ी काटने की अनुमति दी है। तभी मैं कहूं कि जंगल से आजकल दिन रात लकड़ी काटने की आवाज क्यों आती है? इस तरह तो जंगल के सारे पेड़ कट जाएंगे।
2: अरे और नहीं तो क्या, जंगल से जिस तरह से ये शहरी लोग दिन रात लकड़ी काट रहे हैं ना, देखना थोड़े दिनों में सारा जंगल साफ हो जाएगा। अरे जंगली जानवर गांव पर हमला करेंगे, नदी की धारा जंगल की रुकावट ना पाकर गांव की तरफ बढ़ने लगेगी।
1: और ये सब जानकर भी तुम कुल्हाड़ी लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ भैया, और क्या करूं, मेरे पास खेत तो है नहीं। मुखिया बानगुई के खेतों में काम करता था, लेकिन उन्हें अब खेती बाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं। उन्हें जंगल की कटाई से काफी पैसे मिल जाते हैं ना, बाल बच्चों का पेट पालने के लिए मैंने भी लकड़ी काटना शुरू कर दिया है भैया। फिर शहर के लोग लकड़ी काटने की मजूरी भी अच्छी देते हैं।
1: पर तुम तो मुखिया के मकान के लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ, मुखिया का ये नया मकान शहरी लोग ही बनवा रहे हैं ना, मुखिया ने उन्हें जंगल से लकड़ी काटने की आज्ञा दी है, इसलिए वो लोग उन्हें ऊंची वाली चट्टान पर एक बहुत बड़ा तिमंजिला मकान बना कर दे रहे हैं।
1: तिमंजिला मकान? वो तो बहुत ऊंचा होगा।
2: हाँ, हमारे तीन मकान एक के ऊपर एक रख दिए जाए, इतना ऊंचा होगा।
1: लेकिन ये मकान नदी के इतने नजदीक क्यों बनवा रहे हैं? अगर नदी में बाढ़ आ गई तो?
2: अरे भैया, बाढ़ आती है तो तबाही हमारे कच्चे झोंपड़ों की होती है ना, ऊंची चट्टान पर बने तिमंजिले मकान पर बाढ़ का क्या असर होगा भला? फिर हमें से क्या भैया, हमें तो अपनी मजूरी से मतलब है। अच्छा चलता हूँ, बड़ी देर हो गई।
1: अच्छा भाई, मैं भी चलता हूँ।
2: ए, कहाँ बड़े चले आ रहे हो? अरे जानते नहीं ये मुखिया बानगुई का मकान है?
3: जानते हैं भाई, जानते हैं, तभी तो अपनी फरियाद लेकर यहाँ आए हैं।
2: मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से।
3: अरे भाई, ये भी
2: इस समय कोई फरियाद वरियाद नहीं सुनी जाएगी। अभी मुखिया जी बांसुरी बजा रहे हैं, और जब वो बांसुरी बजा रहे हो तब उन्हें तंग करने का हुक्म नहीं है।
3: लेकिन अगर मुखिया जी हमारी फरियाद नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे भैया?
2: अच्छा भाई बोलो, क्या बात है, बोलो।
3: मैं बोलो। अच्छा अच्छा, देखो भैया, तुम भी तो हमी में से एक हो, गांव की हालत तुमसे छुपी नहीं है। मुखिया जी के सारे खेत खाली पड़े हैं, उनमें काम करने वाले मजदूर बेकार हो गए हैं। जिनके पास थोड़ी बहुत अपनी जमीन थी, जहाँ खेती करके थोड़ा अनाज हो जाता था, उन सारे खेतों में बाढ़ का पानी भर गया है भैया। बारिश के मौसम में लकड़ी की कटाई का काम भी बंद हो गया है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं भैया, इसीलिए हम मुखिया जी के पास आए हैं।
2: अरे तो इसमें मुखिया जी क्या कर सकते हैं?
4: सुना है मुखिया जी के मकान के एक पूरे खंड में अनाज भरा है। अगर इस संकट के समय हम गरीबों को भी एक एक मुट्ठी अनाज मिल जाता तो।
2: अच्छा, और मुखिया जी क्या फाके करे, मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से। बढ़िया अनाज मांगने वाले, करो।
0: बार की बात है, उस इलाके में मूसलाधार वर्षा हुई और लगभग 4 दिनों तक चलती रही।
5: मुखिया जी, मुखिया जी!
6: बदतमीज, ऐसे क्या चिल्ला रहे हो?
5: माफ कीजिएगा, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि...
6: ओहो, आप कुछ बोलो भी, क्या हुआ है?
5: गांव में चारों तरफ पानी भर गया है।
6: तो भरने दो।
5: गांव के सभी लोग, औरतें, बच्चे और मर्द गांव छोड़कर जा रहे हैं।
6: अरे तो जाने दो।
5: लेकिन मुखिया जी, इस मकान के चारों तरफ भी पानी पानी है, अगर हम निकलकर जाना भी चाहें तो भी नहीं जा सकते।
6: अरे बेवकूफ, हम यहाँ से जाएंगे ही क्यों? इस ऊंची चट्टान पर बने 3 मंजिले मकान में पानी आएगा कैसे? हमारे पास यहाँ क्या कमी है? अरे खाना है, पानी है, और ये हमारी बांसुरी भी है।
5: लेकिन मुखिया जी,
6: वो तुमसे कितनी बार कहा है कि जब हम बांसुरी बजा रहे हो तो हमें परेशान मत किया करो।
5: जी मगर
6: जाओ, चले जाओ यहाँ से।
7: मुखिया जी,
6: अब क्या है?
7: नीचे वाली मंजिल में बहुत पानी आ गया है।
6: तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, सब चीजें दूसरी मंजिल पर ले जाओ, और हम 3री मंजिल पर जा रहे हैं।
4: मुखिया जी, मुखिया जी,
6: चैन नहीं लेने देंगे, अब क्या है?
4: जी वो दूसरी मंजिल पर भी पानी
6: चढ़ रहा है। अरे तो 3री मंजिल किस लिए है? देखो सब सामान ऊपर ले जाओ, हम छत पर जा रहे हैं।
4: माफ कीजिएगा मुखिया जी, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। बूढ़ा कालू कह रहा है कि ये साधारण बाढ़ नहीं है, बल्कि नदी ने अपनी धारा बदल दी है। अब नदी इसी जगह से बहेगी, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। हम लोगों ने लकड़ी के तख्ते जोड़ जोड़ कर एक नाव तैयार की है, हम तो जा रहे हैं, आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं।
6: नालायक, डरपोक, अरे भाग रहे हो? इस महल को छोड़कर भाग रहे हो? जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ तुम लोग, मैं यहीं रहूंगा।
4: जैसी आपकी मर्जी।
6: अरे ये तो सचमुच चला गया, कहीं वो बूढ़ा कालू ठीक ही तो नहीं कह रहा? क्या नदी ने सचमुच अपनी धारा बदल दी है? हाँ, छत से देखता हूं मैं। ये कैसा भयानक दृश्य है! दूर दूर तक जहां नजर जाती है पानी ही पानी, कहीं कोई नहीं, ना कोई आदमी, ना जानवर, ना खेत, ना जंगल। अगर मेरे इस मकान की 3री मंजिल में पानी में डूब गई तो ये क्या? अरे ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं, ये इतना मजबूत मकान भी गिर रहा। हे भगवान, मैं क्या कर रहा हूँ? अरे कहाँ जाऊँ मैं? ये पानी में डूब रहा हूँ मैं। अरे मैं अपनी जान कैसे बचाऊँ? अरे कोई है? अरे बचाओ, बचाओ मुझे! अरे मैं डूब रहा हूँ मैं। नहीं, ये क्या? ये लगता है कोई पेड़ अब भी अपनी मजबूत जड़ें धरती पर धंसाए बैठा है। अगर किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं तो मेरी जान बच सकती है। हाँ, मैं उसे पकड़ूंगा किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं। लेकिन ये पानी तो मुझे दूसरी तरफ बाहर ले जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा, उस पेड़ तक जाने की कोशिश करूंगा मैं। वो पेड़,
4: आखिर पहुंच गया। यहाँ तो इस तरह के कितने ही पेड़ थे जो मैंने कटवा दिए, लेकिन ना जाने यही एक इकलौता पेड़ मुझे शरण देने के लिए कैसे बच गया। शायद मेरी आंखें खोलने के लिए, हाँ, शायद मेरी आंखें खोलने के लिए

0: बांगुई, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। आप सुन रहे थे हमारी प्रथम सभा के प्रसारण। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। श्रोताओं, अपराह्न के 3 बज रहे हैं। अभी तक आप सुन रहे थे हमारी प्रथम सभा के प्रसारण। हमारी प्रथम सभा मीडियम वेव पर अब संपन्न हो रही है। FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर अब से लेकर शाम 5 बजे तक विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम विधिवत उपलब्ध रहेंगे। संध्या 5 बजे हमारी द्वितीय सभा मीडियम वेव और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर एक साथ आरंभ होगी। अब मीडियम वेव पर हमें ये सभा संपन्न करने की आज्ञा दीजिए।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार।
2: और मेरा भी यानी कि आरती श्रीवास्तव का भी आप सभी सखियों को, सभी सखाओं को, सभी श्रोताओं को और साथ में मंदाकिनी जी को
1: जी
2: नमस्कार।
1: नमस्कार आरती, कैसी हो?
2: बिल्कुल ठीक हूँ। और ये जो मौसम बदला है ना, सच में इसने बिल्कुल पूरा माहौल बदल दिया है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे ही मौसम बदलता है तो मन का मौसम भी बदल जाता है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ जगह तो अभी मौसम नहीं बदला है, वहाँ उनका मन का मौसम तो वैसा ही है।
2: बिल्कुल, हम प्रार्थना करेंगे जल्दी से वहाँ का भी
1: मौसम बदल जाए। लेकिन हाँ, मुंबई का जो मौसम है वो बिल्कुल बदल गया है। सुबह से लेकर शाम तक, रात तक बरसात हो रही है और मन भी कुछ भीगा भीगा सा है ना?
2: जी हाँ, बिल्कुल।
1: हाँ,
2: और बहुत अच्छा लगता है।
1: अपना एक आनंद अलग ही है आरती
2: जी। बिल्कुल,
1: कभी याद आते हैं वो दिन जब तुम बचपन में भीगा करती थी या कॉलेज के दिनों में जब जाती थी और रस्ते में भीग कर आती थी? मुझे तो याद है
2: बिल्कुल। मतलब ऐसा लगता है ना कि हम जान बूझ के भीगते हैं, फिर ना अगर ऐसा जरूरत हो तो भी निकलेंगे। वैसे भी थोड़ा सा भीगना बनता भी है जब बारिश का मौसम आता है, तो थोड़े समय के लिए सही छातों को एक तरफ रख दीजिए और थोड़ा बारिश में निकल के तो देखिए
1: उसका एक अलग ही मजा है।
2: बिल्कुल,
1: बचपन की यादें हमें है कि हम कितना भीगा करते थे और कभी माता पिता भी नहीं कुछ कहा करते थे, जैसे आजकल कह देते अरे बेटा मत भीगो, जुकाम हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, खांसी हो जाएगी। हमारे माता पिता भी हमें नहाने देते थे बारिश में और हम नहाया करते थे और इतनी इम्यूनिटी मजबूत हुआ करती थी कि मुझे याद नहीं कि कभी बीमार पड़े हूँ बारिश में भीग के। हाँ, कभी कभार ऐसा हो गया होगा कि सर्दी लग गई है, लेकिन बड़ा मजा आता था स्कूल कॉलेज के दिनों में भी जब भीग कर साइकिल चलाते हुए आते थे, वो दिन बहुत याद आते हैं।
2: बहुत, सच में बारिश जो होती है ना एकदम सब कुछ बदल देती है, सब कुछ हरियाली सब जगह छा जाती है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे पूरा आप देखें जंगल हो या कहीं भी छोटा सा भी पेड़ होगा ना, वो भी एकदम खिल उठता है जब बारिश की बूंदे पड़ती
1: है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ऐसे ही जब मन पर कुछ बूंदे ऐसी गिरती हैं तो मन भी खिल उठता है। संगीत की कुछ बूंदे जब गिरती हैं तो हमारा मन खिल उठता है। लेकिन हाँ, उससे पहले हमें ये भी बताना है कि आज हम अपनी सखियों और सखाओं के लिए क्या क्या लेकर आए हैं।
2: तो आज हम लेकर आए हैं, सबसे पहले हम बात बता दें आपको, हम साड़ियों का जो संसार, जो बहुत जिसके बारे में महिलाएं सोचती हैं कि हम कौन सी नई साड़ी खरीद लें, हर महीने खरीद लें या हम थोड़ी थोड़ी बचत करते रहें और खरीदें, तो उन साड़ियों के संसार के अंतर्गत हम लेकर आए हैं टसर या घिचा सिल्क साड़ी, जो कि झारखंड की पहचान है।
1: अरे वाह, झारखंड की साड़ी पहनेंगे आज हम?
2: जी बिल्कुल। और अब हम बात कर लेते हैं, आज हम लेकर आए शब्द हमारा विचार आपके, इसके अंतर्गत हम बात करेंगे प्रतियोगिता पर।
1: आहा, क्या बात है, जो आपके और मेरे बीच भी चलती है।
2: बिल्कुल लेकिन हमारे बीच स्वस्थ जो
1: प्रतिस्पर्धा चलती है। बिल्कुल, हमारे सखियों और सखाओं से हम कहना चाहेंगे कि इस प्रतियोगिता का आपको अर्थ नहीं लिखना है कि जैसे हम एक निबंध लिख देते हैं ना, निबंध नहीं लिखना है कि प्रतियोगिता क्या है। आपको ये बताना है कि आपके जीवन में इस शब्द पर क्या विचार है। आपने कभी जीवन में कोई प्रतियोगिता जीती? आपने जो पढ़ाई से संबंधित जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनमें आपने अटेंड किया, उसको अटेंड किया, या आप किसी से प्रतियोगिता रखते हैं, प्रतिस्पर्धा रखते हैं?
2: प्रतिस्पर्धा में आप कहाँ तक चले गए, कितनी दूर तक चले गए, यानी कि आपने मन से आप कितनी दूर तक चले गए, कि मतलब एक होती ना कि स्वस्थ प्रतियोगिता है कि कोई बात नहीं, चलो उसने आगे किया अब हम भी अच्छा करेंगे। एक होती है कि उसने कैसे किया,
1: मैं करके
2: पीछे खींचे।
1: हाँ,
2: वो आप बताइए कि मतलब कौन सी मतलब आप प्रतियोगिता के बारे में?
1: आपके कहने का मतलब ये है आरती कि कई बार क्या है, कुछ लोग जो है प्रतियोगिता के चक्कर में किसी की टांग खिंचाई कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, है ना? और ये जो ईर्ष्या और जलन हमारे अंदर होती है ना, किसी को बढ़ता हुआ देख करके उसकी शर्ट मेरी शर्ट से सफेद क्यों वाली जो जलन है, वो हमें परेशान भी कर देती है
2: और पीछे भी खींचती है।
1: पीछे भी खींचती है, आप एक ना एक दिन फिर पीछे हो जाते हो। आप उस दौड़ में खरगोश और कछुए वाली कहानी हमने देखी है ना, तो इसलिए आप प्रतियोगिता तो करें लेकिन स्वस्थ प्रतियोगिता रखें। तो बताइए आपके जीवन से जुड़े कुछ
2: आप अपना नजरिया हमें बताइए। और साथ ही आज हम बात करने वाले हैं पारिवारिक चिकित्सक के ऊपर।
1: अच्छा,
2: देखिए चिकित्सक के पास हम सभी जाते हैं, लेकिन हमारा एक फेवरेट डॉक्टर होता है जो घर का डॉक्टर कहते हैं ना, ये हमारे फैमिली डॉक्टर हैं कि कुछ भी हो, सर्दी जुकाम या कुछ बड़ी बात कुछ भी हो, सबसे पहले हम उनके पास

0: चिकित्सक आए और आपकी उन्होंने मुसीबत को हल किया,
1: जी
0: है ना?
1: बिल्कुल, आप
0: तो
1: बताइए
0: इन
1: क्या
0: सभी
1: हुआ।
0: पर हम विचार करेंगे, गीत सुन ले। और
1: देखो
0: अरे
1: ये आप बस मेरे साथ ना ऐसा मत करा करिए
0: व्यंजन
1: ऐसा
0: लेके आई हैं
1: जी
0: आज तो आप।
1: बिल्कुल, मैं व्यंजन इतना अच्छा लेकर आई हूँ और हमारे जो श्रोता हैं वो भी सब सखियां सखा सब लिख रहे हैं पकौड़ों के बारे में। सोचिए कितना, कहां बारिश का मौसम आते ही पकौड़ों की तो मतलब ऐसा रहता है कि बारिश के साथ में जो एक मिट्टी की सुगंध होती है ना उसके साथ पकौड़ों की भी
0: गर्मा गर्म
1: सुगंध घुली
0: पकोड़े
1: मिली
0: मिल
1: होती
0: जाए,
1: है
0: बिल्कुल सही कहा।
1: जी
0: तो बताइएगा आप अपने घर में इस वक्त या बारिश के मौसम में किस तरह
1: जी
0: से पकोड़े बनाते हैं? कई तरह के
1: कौन
0: पकोड़े,
1: कौन से पकौड़े
0: हाँ, कौन
1: बनाते
0: कौन से,
1: हैं
0: बेसन के और
1: ताकि हम
0: बहुत सी
1: उसको
0: तरह
1: एकदम उसको सोच के कल्पना करके उसको हम खा
0: के
1: लें
0: खा ले नहीं भी हमारे लिए भेजेंगे हमारे सखी और सखा, और हम उसे खा भी लेंगे, ठीक है?
1: बिल्कुल
0: क्योंकि मुंबई का जो मौसम है वो पकौड़ों का ही मौसम हो
1: जी
0: रहा है,
1: बिल्कुल। तो
0: ठीक है?
1: एक गीत सुन लेते हैं पहले।
0: बिल्कुल सुनते हैं।

0: तो मन तो भीग गया है, रिमझिम गिरे सावन।
1: जी बिल्कुल, इतना प्यारा गाना है ना, एकदम सावन की खुशबू आती है, इससे मिट्टी की खुशबू आती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और वही बात की मिट्टी की सौंधी खुशबू हम पसंद करते हैं और बरसात में भीगना पसंद करते हैं। पर कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि भाई बरसात में भीगे थे इसलिए बीमार हो गए,
1: जी
0: है ना, जुकाम हो गया, खांसी हो गई, सर दर्द हो गया, और ऐसी स्थिति में हमें कौन याद आता है?
1: डॉक्टर,
0: हमारा डॉक्टर जो हमारा पारिवारिक डॉक्टर है,
1: जहाँ मतलब कभी भी जा सकते हैं।
0: हाँ,
1: और तुरंत हमें लगता है कि हम अभी बाहर नहीं जा सकते या बहुत दूर नहीं जा सकते, ढूंढ नहीं सकते, तो बस हम सबसे पहले अपने पारिवारिक डॉक्टर के पास जाते हैं।
0: जाते ही उन्हें फोन पर बताते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ है और आप क्या कहते हैं, और अगर उन्हें लगता है कि कुछ हल्का फुल्का है तो वो फोन पर ही बता देते हैं, अन्यथा वो घर आकर अगर आप नहीं उठ पा रहे हैं तो वो भी घर आके
1: अक्सर ऐसा होता है।

0: कि आ जाते हैं, मतलब जो पारिवारिक डॉक्टर होते हैं, क्योंकि वो
1: हाँ
0: हमें जानते हैं, मतलब पहचान होती है तो आ जाते हैं।
1: बिल्कुल। तो तेज रफ्तार जीवन और बदलती जीवन शैली और बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं के इस दौर में आरती पारिवारिक चिकित्सक की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है ना।
0: जी बिल्कुल।
1: आज लोग छोटी सी परेशानी के लिए भी अलग अलग अलग जो विशेषज्ञ हैं उनके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन एक ऐसा डॉक्टर जो पूरे परिवार के स्वास्थ्य का, आदतों का, आवश्यकताओं को जो समझता हो, उसकी भूमिका आज भी बहुत महत्वपूर्ण है।
0: बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए कभी ऐसा होता है ना कि हालत इतनी अच्छी नहीं होती कि हम बहुत दूर तक जाएं, या कभी बहुत तेज़ बुखार है, इस तरीके की चीज़ें। तो जब बहुत छोटी मोटी सी कुछ चीज़ें होती हैं तो हम फ़ोन पर बात कर लेते हैं डॉक्टर से, तो पूरा हालचाल वो पूछ लेते हैं, कभी वीडियो कॉल पर देख लेते हैं, तो कहते हैं कि अच्छा आप ये मेडिसिन हमें वो बता देते हैं कि आप ये दवाइयाँ ले लीजिए, तो हम ले लेते हैं तो हमें फ़ायदा हो जाता है। लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत समय से चल रही है, तो वो डॉक्टर खुद ही बताते हैं कि नहीं, अब आप दूसरे डॉक्टर को दिखाइए, जो आप इस जो इस चीज़ का विशेषज्ञ है, तो आप वो उसको दिखाइए, तो वो अपने आप ही सलाह देते हैं आपको।
1: हाँ, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो बीमारी हमें हुई है उसका इलाज किसी और डॉक्टर के पास जाकर संभव है, तो हमारा
0: जी
1: पारिवारिक जो चिकित्सक है वो हमें सलाह देता है कि ये आपको, और कई बार वो भेज भी देते हैं नाम और
0: जी
1: पता लिखकर कि उन डॉक्टर से मिलिए, मेरा नाम
0: जी
1: बताइएगा
0: जी
1: और मेरा रेफरेंस देकर आप उन डॉक्टर से मिलकर अपना इलाज करवाइए। ऐसी
0: बिल्कुल
1: स्थिति भी होती है कई बार।
0: जी
1: तो पहले के समय में क्या होता था, लगभग हर परिवार का एक निश्चित चिकित्सक होता था। घर में किसी को बुखार आ जाए, चोट लग जाए, और कोई भी हमारी पारिवारिक जो स्वास्थ्य संबंधी
0: जी
1: समस्याएं हो जाती थी, तो हम उसी चिकित्सक से संपर्क भी करते थे। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, वो हमारे को दवाई देने के अलावा मानसिक सपोर्ट भी करते थे,
0: बिल्कुल
1: मतलब हमारा मानसिक इलाज भी करते थे। अरे डरो मत, ठीक हो जाओगे,
0: जी
1: सब ठीक होगा, कुछ नहीं हुआ है।
0: जी ये एक एक जो चीज़ होती है ना, जो आप हम मानसिक जो जो आधार दे देते हैं ना, तो वो बहुत फायदेमंद भी होता है ना,
1: हाँ
0: कि आधी जो बीमारी होती है ना, क्योंकि कभी कभी बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाती है कि पता नहीं क्यों नहीं बुखार उतर रहा है, पता नहीं क्या परेशानी है, तो जब हम डॉक्टर को दिखाते हैं, जब हमें वो बताता है कि नहीं, आप इतनी कोई बड़ी परेशानी नहीं है, आप ये दवा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, तो लगता है कि हाँ चलो हमें डॉक्टर को दिखा दिया, अब हम ठीक हो जाएंगे।
1: बिल्कुल सही कहा। और जो पारिवारिक चिकित्सक हैं वो केवल वही की बीमारी का इलाज नहीं करते, बल्कि हमें मार्गदर्शक के रूप में भी वो होते हैं हमारे। और बच्चों के टीकाकरण से लेकर अगर बुजुर्गों की देखभाल तक देखा जाए, परिवार के हर सदस्य के स्वास्थ्य पर वो नजर रखते हैं। और उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो रोगी को केवल एक केस के रूप में नहीं देखते,
0: जी
1: बल्कि एक व्यक्ति के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में समझते
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: क्योंकि बहुत समय से इलाज हम करा रहे होते हैं, तभी वो हमारे फैमिली डॉक्टर बनते हैं, तो वो जो डॉक्टर होते हैं तो वो अच्छे से समझ के करते हैं कि हाँ, वो जानते हैं इतिहास हमारा, कि हम क्या परेशानी हमें रही है, क्यों रही है, कोई एलर्जी तो नहीं है, तो वो हमारे जो फैमिली डॉक्टर है, जो पारिवारिक डॉक्टर है, वो इस चीज़ को अच्छे से समझता है, तो जो हम कहीं बाहर दूसरे डॉक्टर को दिखाने जा रहे होते हैं, तो वो भी बताता है कि आप ये चीज़ें उनको पहले बता दीजिएगा, जिससे कि उस हिसाब से वो आपको दवा दे सकेंगे।
1: बिल्कुल सही कहा। और जैसे आरती, आजकल जो है मधुमेह की बीमारी है, उच्च रक्तचाप हो गया है, तनाव है, हृदय रोग जैसी जीवन शैली संबंधी बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ भी रही हैं, तो
0: जी
1: ऐसे में पारिवारिक जो चिकित्सक है हमारा, वो समय समय पर सलाह देकर इन बीमारियों को गंभीर होने से पहले ही रोक भी देता है
0: जी
1: कि भाई
0: हाँ
1: आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये
0: जी
1: अपनी दिनचर्या रखनी है, इस तरह से एक्सरसाइज करनी है, इस तरह से खाना खाना है,
0: जी
1: इस तरह की
0: और
1: चीजें
0: जी
1: नहीं खानी है।
0: बिल्कुल, और वो डॉक्टर जो है वो हमारी दिनचर्या पर नजर भी रखते हैं कि ऐसा तो नहीं आपने कुछ लापरवाही करी हो, या आपने कुछ इस तरह से कुछ ऐसे खा लिया है, तो वो पूरा ध्यान भी रखते हैं, तो उनको पता होता है कि इनको हमें अभी हम इसको इनकी बीमारी को संभाल सकते हैं या नहीं संभाल सकते, अगर वो नहीं संभाल सकते हैं तो फिर वो हमें दूसरे डॉक्टर को रेफर कर देते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और आज भी क्या है, हमें बहुत जरूरत है एक ऐसे डॉक्टर की जो हमें समझ सके, है ना,
0: जी
1: हमारे परिवार के सदस्यों को समझ सके। और विश्वास का जो रिश्ता होता है डॉक्टर मरीज के बीच, सबसे बड़ी
0: जी
1: बात क्या होती है आरती, की हमें डॉक्टर ने कहा कि भाई आपको ये जो बीमारी है उसमें ये चीजें नहीं खाना है। कई बार मैं कुछ डॉक्टर्स के इंटरव्यू सुनती हूँ तो वो कहते हैं कि मेरे पास वही व्यक्ति आएगा जो खाने का कंट्रोल करेगा।
0: जी हाँ,
1: आपने
0: अक्सर
1: अगर
0: होता है।
1: खाने पर कंट्रोल नहीं करना सीखा है तो फिर डॉक्टर भी लाचार हो जाता है।
0: बिल्कुल
1: जैसे बीपी की समस्या है तो कहते हैं नमक कम खाइए, अब आप क्या कहते हैं, नहीं डॉक्टर साहब मुझे तो नमक के बगैर खाना ही अच्छा नहीं लगता, मैं
0: जी
1: तो नमक ऊपर से और लेती हूँ,
0: जी
1: तो फिर डॉक्टर सोचिए क्या कहेंगे, वो
0: बिल्कुल
1: कैसे आपको ठीक करेंगे। और फिर जब
0: बिल्कुल
1: आप उनका कहना नहीं मानेंगे तो वो आपका कहा भी कैसे मानेंगे।
0: बिल्कुल, और जो फैमिली डॉक्टर होते हैं वो हमें थोड़ा डांट डपट भी देते हैं कि नहीं, आपको ऐसा करना ही है, और वो समझ जाते हैं कि हमने कोई लापरवाही की है, इस बात के बारे में भी, अगर हम ज़्यादा बीमार हो जाते हैं या उनकी बात नहीं मानते या कोई लापरवाही करते हैं, तो फिर जाते हैं उनके पास, तो वो समझ जाते हैं कि नहीं, आपने ये लापरवाही ज़रूर की होगी, या आपको तला हुआ मना किया है तो आपने इसे खाया होगा, तभी आपको ये परेशानी हुई है।

0: तो क्योंकि वो हमारे बीमारी का इतिहास जानते हैं, हमारे बारे में जानते हैं, समझते हैं, तो वो अच्छे से हमारा इलाज भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा, और इसीलिए उनका विश्वास हमें नहीं तोड़ना चाहिए। छोटी
0: जी
1: छोटी चीजों का जो स्वाद जीभ को लग गया है ना, उस पर हमें कंट्रोल
0: बिल्कुल
1: रखना
0: कंट्रोल
1: चाहिए।
0: करना
1: जैसे अब
0: चाहिए
1: तुम आज पकौड़े खिलाएंगे ना
0: जी
1: हमारे श्रद्धा, तो मैं थोड़ा
0: जी
1: कम खाऊंगी।
0: बिल्कुल। और कभी कभी ऐसा नहीं कि आप रोज पकौड़े बनाने बैठ जाएं या रोज इस तरीके की तली हुई चीजें खाएं, कभी कभी चलती हैं ये सब चीजें, लेकिन हर रोज हर समय नहीं
1: बिल्कुल,
0: अच्छा होता, वो
1: आपको सीधा
0: नुकसान
1: साधा
0: करता है।
1: खाना मौसम के
0: बिल्कुल
1: अनुरूप खाना चाहिए, और
0: बिल्कुल
1: सबसे बड़ी बात है कि स्वच्छ खाना, ताजा पका हुआ
0: बिल्कुल,
1: भोजन
0: क्योंकि
1: खाइए।
0: ये जो मौसम रहता है ना, इसमें थोड़ा बैक्टीरिया भी पनप जाते हैं, तो इसलिए बेहतर होगा कि हम ताजा खाना खाएं, रखा हुआ खाना ना खाएं, और बेहतर होगा कि हम तला हुआ ना खाएं, सादा जो भोजन होते हैं वही सादा
1: और
0: भोजन ही
1: फल
0: खाएं।
1: फ्रूट खाएं, ज्यादा से ज्यादा सैलेड खाने की कोशिश
0: जी
1: करें, अंकुरित अनाज खाएं, तो थोड़ा सा
0: जी
1: हमारा जो है स्वास्थ्य है अच्छा रह
0: बिल्कुल,
1: सकता
0: थोड़ा सा
1: है।
0: उसको रोस्ट कर सकते हैं, भून सकते हैं,
1: हाँ,
0: ऐसा
1: बहुत
0: करके
1: तरीके हैं
0: हाँ
1: खाने
0: बिल्कुल,
1: के,
0: बहुत अच्छा
1: तो
0: लगता है।
1: हमारे जो पारिवारिक डॉक्टर है ना आरती, वो भी खुश रहते हैं। वो नहीं चाहते
0: बिल्कुल
1: कि जिस परिवार से वो जुड़े हैं वहां के परिवार के सदस्य बीमार रहे या
0: जी
1: उनके पास इलाज के लिए आए। उनकी सफलता भी तभी होती है जब उस परिवार के सदस्य सब सही रहें, स्वस्थ
0: बिल्कुल।
1: रहें।
0: तो हमारे जो श्रोता हैं वो भी लिख रहे हैं, तो उन्होंने एक हमारे जो श्रोता हैं वो लिखते हैं कि पारिवारिक चिकित्सक यानी फैमिली डॉक्टर की वजह से हमारे परिवार में सब स्वस्थ और सेफ महसूस करते हैं। उन्होंने हम सबको बिना जरूरी दवाइयों से बचाया है, उनका निदान सटीक रहता है। अगर रोग 5 दिन में काबू में नहीं आए तो वो उचित मार्गदर्शन देते हुए किसी सीनियर के पास भी भेज देते हैं। तो ये कहते हैं ये
1: बिल्कुल, और भी किसी ने कुछ लिखा
0: बिल्कुल
1: है?
0: बिल्कुल। एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि फैमिली डॉक्टर अब ये इसकी बारे में बात करें तो ना के बराबर ही रही है। अब नाखून से लेके सर के बाल तक हर अवयव का अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर, अलग विशेषज्ञ डॉक्टर होता है। और फिर ऐसी हालत हो जाती है कि मेरे बचपन में एक ही डॉक्टर बड़ी आत्मीयता से पूरे परिवार की वैद्यकीय देखभाल, उपचार, दवा पानी करते थे। कुटुंब का पूरा इतिहास उन्हें मालूम रहता था, और कठिन जो परिस्थिति होती थी उसमें मैत्री भरा जो सेकंड ओपिनियन होता है वो जो मैत्री भरा व्यवहार भी करते थे, और जो सेकंड ओपिनियन होता है वो जरूर लेना चाहिए। लगता है आपकी वैद्यकीय क्षेत्र में वो नैतिकता नहीं हो पा रही जो अत्यंत जो अत्यंत जरूरी है।
1: जी, एक श्रोता लिखते हैं कि सभी को डॉक्टर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। पारिवारिक चिकित्सक, ये एक बहुत अच्छा विषय रखा है। डॉक्टर दिवस मनाया जाता है डॉक्टर के प्रति हमारे मन में जो व्यवहार या सम्मान है उसको व्यक्त करने के लिए ये आज का दिन है। और ये भगवान जैसे होते हैं, पारिवारिक चिकित्सक हमें हमारे लिए भगवान समान है।
0: जी
1: और मैंने भी एक पारिवारिक चिकित्सक को रखा हुआ है, मतलब उनके परिवार में भी पारिवारिक चिकित्सक है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पारिवारिक चिकित्सक वो प्राथमिक देखभाल विशेषज्ञ होता है जो सभी उम्र, लिंग और बीमारी के लोगों को निरंतर और व्यापक सेवाएं प्रदान करता है। ये चिकित्सक किसी एक बीमारी के बजाय पूरे परिवार के संपूर्ण स्वास्थ्य का ध्यान भी
0: ध्यान
1: रखते
0: रखता है
1: हैं।
0: जी। एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि ये चिकित्सक पद्धति मुख्य रूप से डॉक्टर और मरीज के बीच दीर्घकालिक संबंधों पर आधारित होती है, क्योंकि पारिवारिक चिकित्सक पूरे परिवार के स्वास्थ्य इतिहास को अच्छी तरह से जानता है, इसलिए वो बीमारी के अनुवांशिक और पारिवारिक कारणों को अधिक सटीकता से समझ भी पाता है।
1: और देखिए, हमारे एक श्रोता हैं जो हमारे नियमित श्रोता भी हैं, वो लिखते हैं कि आज डॉक्टर्स डे पर हमारे दोनों बेटों को सुबह सुबह ही हैप्पी डॉक्टर्स डे हमने विश किया है। सखी सहेली की सखी यानी मेरी धर्म पत्नी ने और मैंने और बेटियों ने, यानी उनकी दोनों बच्चे जो हैं डॉक्टर हैं। बड़े बेटे का MBBS कोर्स कंप्लीट हो गया है और छोटा बेटा MBBS थर्ड ईयर में है। बड़े बेटे की आज इमरजेंसी कैजुअल यूनिट गवर्नमेंट हॉस्पिटल अजमेर में ड्यूटी है। हमने बेटे को ये समझाया कि सभी पेशेंट से प्यार से बातें करें, अच्छी तरह चेकअप करें और जल्दी ही ठीक होने की हिम्मत भी बढ़ाए।
0: बहुत अच्छी बात है। तो और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि जैसे पारिवारिक मनोरंजन के लिए विविध भारती है, उसी तरह पारिवारिक स्वास्थ्य के लिए चिकित्सक होता है, यानी कि फैमिली डॉक्टर होना भी जरूरी है। विविध भारती जैसे हमारे दिल के मनोरंजन का ख्याल रखता है, उसी तरह फैमिली डॉक्टर हमारे आपके परिवार समेत सभी का सेहत का ख्याल रखते हैं, जो पूरे परिवार का प्राथमिक स्वास्थ्य बिंदु होता है। नवजात शिशु से लेकर मेरे जैसे बुजुर्ग तक सभी का इलाज करते हैं। इसके चलते आपको अलग से डॉक्टर खोजने की भागदौड़ से राहत मिलती है, आपके पूरे परिवार के स्वास्थ्य से जुड़ी हिस्ट्री उनके पास रहती है, तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट की त्वरित कार्रवाई कर सकते हैं। और साल 1995 से लेकर आज तक हमारा भी एक फैमिली डॉक्टर है, छोटी मोटी बीमारियों में सबसे पहले उनकी विजिट करते हैं, यानी उनके पास जाते हैं, अगर जरूरत हो तभी वो आगे के ट्रीटमेंट करवाने के लिए किसी और डॉक्टर को रेफर करते हैं।
1: अरे वाह, बहुत अच्छी बात। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हर सफल इलाज के पीछे केवल दवा नहीं, डॉक्टर का धैर्य और समर्पण भी होता है। डॉक्टर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और डॉक्टर का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है? मरीज का स्वस्थ होकर मुस्कुराना। वही हमने
0: जी
1: कहा ना कि हमारे फैमिली डॉक्टर कभी नहीं चाहते कि फैमिली के लोग बीमार है, वो चाहते हैं

0: स्वस्थ रहेंगे वो उनकी उतनी ही सफलता होती है।
1: बिल्कुल
0: तो हमें भी अपने डॉक्टर की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए कि वो हमसे क्या चाहते हैं।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आज भले ही अस्पताल और विशेषज्ञ डॉक्टरों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन पारिवारिक चिकित्सक की आवश्यकता आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। वो अनावश्यक जांचों और दवाइयों से बचाते हुए उचित समय पर सही उपचार की दिशा दिखाते हैं। उसकी सलाह से स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल संभव होती है। वो परिवार के प्रत्येक सदस्य के स्वास्थ्य, उनकी पुरानी बीमारियों, जीवन शैली और आवश्यकताओं से भली भांति परिचित होते हैं। इसीलिए वो केवल दवाइयां नहीं देते बल्कि सही सलाह, समय पर सावधानी और मानसिक संबल भी प्रदान करते हैं।
0: क्या बात है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज के दिन की डॉक्टर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर दिवस के प्रति जो सम्मान है, डॉक्टर के प्रति जो सम्मान या जो डॉक्टर की महत्ता है, हमारे जीवन में उसको याद करने और डॉक्टर के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आज का दिन है। विषय बहुत ही अच्छा है, पारिवारिक चिकित्सक। बहुत सारे ऐसे पारिवारिक चिकित्सक हैं जो डॉक्टर कम लेकिन अपने से ज्यादा हमारा ध्यान रखते हैं। उनसे
1: जी
0: इतना अच्छा रिश्ता बन जाता है कि वो अपने हो जाते हैं। और मेरे जीवन में भी एक ऐसे डॉक्टर थे जो डॉक्टर से ज्यादा मेरे अपने हो गए थे, इसलिए मैं इस चीज को बहुत बेहतर समझ सकती हूँ। हालांकि वो डॉक्टर 2-3 सालों से मेरी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन जब भी हमें कुछ होता है, हमें कुछ भी बताना होता है, तो हम उन डॉक्टर साहब को कॉल करते हैं और वो हमें मतलब हमारा चेकअप करने आ जाते हैं। इसलिए
1: जी
0: ये कितने खास होते हैं ये हम ही समझ सकते
1: जी
0: हैं।
1: और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि चिकित्सक बहुत सारे पारिवारिक चिकित्सक बहुत सारे ऐसे पारिवारिक चिकित्सक होते हैं जो डॉक्टर कम लेकिन अपने ज्यादा बन जाते हैं। उनसे इतना अच्छा रिश्ता बन जाता है कि वो अपने हो जाते हैं। और मेरे जीवन में भी ऐसे डॉक्टर थे जो डॉक्टर से ज्यादा मेरे लिए अपने हो गए। इसीलिए मैं इस चीज को बहुत बेहतर समझ सकती हूँ। हालांकि वो डॉक्टर से कुछ 2-3 सालों से मेरी जो मुलाकात है वो नहीं हो पाई है, लेकिन मुझे जब भी कोई परेशानी होती है, मैं कुछ भी खाती हूँ, कोई भी दवाई खाती हूँ, तो उस डॉक्टर का ये ध्यान आता है। इसलिए मैं ये चीज समझ सकती हूँ कि फैमिली डॉक्टर कितने ज्यादा हमारे लिए खास हो जाते हैं। वो अपने हो जाते हैं जैसे घर के सदस्य।
0: बिल्कुल सही कहा। और चलिए, अब संगीत भी तो एक चिकित्सक का काम
1: बिल्कुल
0: करता
1: जी,
0: है।
1: तो एक गीत सुनते
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: सुनते हैं।

0: हाँ, तो मंदाकिनी जी, एक हमारे श्रोता हैं जो जो लिख रहे हैं कि उनका विविध भारती से उनका जो साथ है वो लगभग 25 से 30 साल पुराना है, और कहते हैं कि बचपन में मेरी माँ नियमित रूप से विविध भारती सुना करती थी और उन्हीं के साथ मैंने भी रेडियो सुनना शुरू किया था। और अब ये आते हैं अपने विषय पे, तो कहते हैं कि आज का विषय पारिवारिक चिकित्सक सुनकर मुझे अपने बचपन की याद आ गई। हमारे मोहल्ले के एक डॉक्टर अंकल थे जो घर के हर सदस्य को नाम से जानते थे। जब भी कोई बीमार पड़ता वो सिर्फ दवा ही नहीं देते थे बल्कि हौसला भी देते थे। मुझे लगता है कि एक पारिवारिक चिकित्सक परिवार के सदस्य जैसा ही होता है। तो इस तरह से अपने बारे में इन्होंने बताया।
1: बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी, और हमने अपने कितने ही सारे श्रोताओं के विचार पढ़े हैं, और अब एक संदेश सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल।
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: और अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल
0: जी।

0: इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है आरती
1: जी। और अब हम बात कर लेते हैं साड़ियों के संसार में, थोड़ी देर के लिए चलते हैं।
0: इतने सुंदर संसार में जी, महिलाओं का बड़ा पसंदीदा संसार है ये।
1: जी बिल्कुल, महिलाओं का तो पसंदीदा संसार है ही, और साथ ही जो हमारे सखा हैं उनके लिए थोड़ा सा उनकी जेब खाली करने का संसार है।
0: उनके लिए सिर दर्द है।
1: जी बिल्कुल जी। आज हम आज लेकर आए हैं टसर यानी कि तुसार भी कहते हैं जिसे, घीचा सिल्क साड़ी जो कि झारखंड में होती है उसे।
0: बिल्कुल।
1: तो तुसार या टसर रेशम जो होता है जिसे कोसा रेशम भी कहा जाता है, भारत के जंगली रेशम के कीड़ों से प्राप्त होता है जो मुख्य रूप से झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। और घीचा जो होता है वो घीचा रेशम के कोकून का बुना हुआ अवशेष होता है, मतलब बिना बुना हुआ अवशेष होता है वो, जो अपनी अनूठी खुरदरी बनावट और प्राकृतिक आकर्षण के लिए जाना जाता है। वो और रेशम की जो होती है ना उससे हाँ, थोड़ा अलग होता है ये कोकून से बना होता है तो ये थोड़ा सा अलग होता है उससे जो रेशम
0: हाँ,
1: होती है।
0: तभी तो इस साड़ी की जो विशेषता है वो और साड़ियों से अलग होती है। कई बार हमने देखा है टसर साड़ी कुछ हमारी बहनें पहनती हैं, जब हमें अच्छा लगता है हमारी सखियों को हम देखते हैं ना पहने हुए, कभी शादी समारोह में सहेलियां मिलती हैं, अरे भाई कौन सी साड़ी पहनी है आपने, अरे ये तो टसर साड़ी है, तो लगता है अरे वाह कितनी सुंदर साड़ी। तो बस यही है कि वो अन्य साड़ियों से थोड़ा सा भिन्न होती है। और तुसार रेशम जिसे जंगली रेशम या वन रेशम या तसर रेशम या फिर तुसार रेशम भी कहा जाता है, ये पीले और भूरे रंग के चौड़े पंखों वाले पतंगे से प्राप्त एक उत्कृष्ट धागा माना गया है। और ये रेशम उन रेशम के कीड़ों से बनता है जो जंगली वन वृक्षों पर प्रजनन करते हैं, शहतूत के वृक्षों पर नहीं करते। झारखंड में रेशम निकालने की प्रक्रिया का एक नाजुक हस्तशिल्प है ये
1: जी। और जो टसर रेशम होता है उसकी साड़ियों में हल्की सुनहरी कढ़ाई के साथ साथ प्रकृति से प्रेरित प्रिंट होते हैं, फूलों के पैटर्न के साथ साथ पेड़, बेल, कलियां, पत्तियां और छोटे पत्तों के आकार के पैटर्न होते हैं। तुसार रेशम अन्य सभी प्रकार के रेशम की तुलना में कहीं अधिक बनावटदार होता है। ये कपड़ा अन्य किस्मों की तुलना में ठंडा और अधिक छिद्रयुक्त होता है जो पहनने में बहुत आरामदायक लगता है, मतलब आप गर्मी में आराम से पहन सकते हैं इसको।
0: बिल्कुल सही कहा। और सबसे पहले रेशम के कोकून को चीनी, पानी और सोडा के मिश्रण में भिगोया जाता है और फिर इसे उबाला जाता है। तो उबालने की जो प्रक्रिया है उससे रेशम क्या होता है आरती, नरम हो जाता है थोड़ा, जिससे उसे खोलना थोड़ा आसान हो जाता है। कोकून को जितनी देर तक उबाला जाता है रेशम उतना ही नरम और महीन होता जाता है।
1: बिल्कुल। और परंपरागत रूप से रेशम को सुलझाने की ये प्रक्रिया महिलाओं द्वारा की जाती है। इस बेहद मेहनत के काम में बहुत ज्यादा विशेषज्ञता और धैर्य की जरूरत होती है। रेशम को कोकून से निकालने के बाद अगले चरण में धागों को धूप में सुखाया जाता है और उन्हें नटुआ नामक उपकरण पर अच्छे से लपेटा जाता है।
0: और इस प्रक्रिया के बाद रेशम को रेहती तक पहुंचाने से पहले एक बार फिर से सुखा लिया जाता है। रेहती एक कताई का यंत्र होता है जो धागों को कुंडलित करके सूत बनाता है। तो रेशम के धागे तैयार जब हो जाते हैं तो पारंपरिक हथकरघे का उपयोग करके जटिल पैटर्न बनाए जाते हैं। और असली तुसार धागे की प्रामाणिकता साबित करने के सबसे सरल और पुराने तरीकों में से एक है, इसको जलाकर देखा जाता है।
1: बिल्कुल। और ये असली जो धागा होता है उसके एक छोटे से टुकड़े को जलाएंगे तो उसमें जले हुए बालों जैसी गंध आती है और लौ अदृश्य होती है, लौ नहीं दिखती है।
0: अच्छा
1: जी। और जलने के तुरंत बाद बुझ जाती है जिससे वो सूखकर काली राख में बदल जाती है। इसकी इस प्रकृति जो होती है वो सुनहरी चमक, जो प्राकृतिक चमक होती है इसमें वो सुनहरी चमक होती है जो बहुत सुंदर दिखती है और ये बहुत हल्की और आरामदायक भी होती है।
0: और साथ ही इन्हें गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में आप पहन सकते हैं। और इन साड़ियों को ड्राई क्लीन करवाना बहुत जरूरी हो जाता है। साथ ही इन्हें लंबे समय तक नई सी बनाए रखने के लिए सीधे धूप में लंबे समय तक नहीं रखना है आपको, और कॉटन के कपड़े में इसको लपेट कर रखें, जो हमारी बहनें जानती हैं
1: जो साड़ी इतना ज्यादा पहनता है वो समझता
0: है कि कैसे इसको रखना है। और ध्यान रखना है कि परफ्यूम को सीधे साड़ी पर नहीं छिड़कना है, उसके धब्बे जो है स्पॉट्स पड़ जाते हैं।
1: बिल्कुल। और घीचा सिल्क साड़ी को समय समय पर खोलकर हवा भी लगाते रहें। इन सावधानियों से साड़ियां लंबे समय तक उत्सवों की शान बनी रहती हैं और आप भी जो जितने भी फंक्शन होते हैं उनमें आपकी शान बनी रहती है। और जो तुसार और घीचा सिल्क की साड़ियां हैं वो केवल धागों से नहीं बुनी जाती, इनमें बुनकरों के सपने, परंपराओं की खुशबू और संस्कृति की गरिमा भी पिरोई होती है।
0: बिल्कुल,
1: ये हाथ से और मेहनत से
0: बनाई जाती है और इनके रेशों में प्रकृति की सादगी और भारतीय कला की भव्यता होती है। और इन्हें पहनना केवल फैशन नहीं होता बल्कि अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने का एक माध्यम भी होता है ये।
1: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी होती है साड़ियाँ। हाँ। एक गीत सुन लेते हैं ना?
0: गीत तो सुन लेते हैं, लेकिन मुझे तुमसे कुछ कहना है। अब जब तुम शॉपिंग करने जाओगी ना तो मेरे लिए ये साड़ी भी लेते आना, ठीक है?
1: मुझे मालूम था आप कहने वाली हैं।
0: चलिए सुनते हैं ये गीत।

0: हाँ, तो बेहद ही सुंदर गीत सुनवाया था आरती अभी आपने।
1: जी, अब हम प्रतियोगिता की बात कुछ करना चाह रहे हैं ना।
0: करी
1: बिल्कुल। तो हमारे जो पहले तो हम उस जो हमारे श्रोता ने लिखा है, मैं जो श्रोता लिख रहे हैं,
0: हाँ
1: जो हमारी सखियां लिख रही हैं, जो हमारे सखा लिख रहे हैं, उनके बारे में बात करते हैं कि वो क्या
0: हाँ
1: लिख रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो उनके बारे में हम जान लेते हैं कि हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि प्रतियोगिता को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि ये विकास का नियम है। हालांकि इसे जानलेवा रेस बनने से रोकना जरूरी है। हमें खुद की तुलना दूसरों से करने के बजाय अपने कल से करनी चाहिए। शिक्षा प्रणाली और परिवारों को भी केवल नंबरों के बजाय बच्चों के कौशल और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। और साथ ही एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हमें प्रतिस्पर्धा को एक युद्ध के रूप में नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने के माध्यम के रूप में देखना चाहिए। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हमें सहयोग करना और मानसिक रूप से मजबूत बनना सिखाती है। इसका वास्तविक उद्देश्य दूसरों को नीचा दिखाना नहीं है बल्कि स्वयं की कमियों को दूर करके अपने आप को उत्कृष्ट बनाना होता है।
0: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और वही बात कि आप प्रतियोगिता को लेकर क्या सोचते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि एक बार प्रतियोगिता की बात पे लिखते हैं कि ये जो कंपटीशन है, बराबरी पर स्वस्थ रूप से किसी कंपटीशन को जीतना, आगे बढ़ने और अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने और खुद को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है, वो ज्यादा अच्छा है। ये ठहराव को खत्म करती है, हमें लक्ष्य के प्रति प्रेरित करती है, आलस्य से दूर करती है और जीवन को एक सही दिशा प्रदान करती है। प्रतियोगिता हमें योग्यता परखने का भी मौका देती है, जिससे हम सीखते हैं कि कैसे अपने काम में हम सुधार कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। और देखा जाए तो प्रतियोगिता जीवन की वो पाठशाला है जहाँ व्यक्ति संघर्ष करना, सीखना और आगे बढ़ना सीखता है। ये सफलता की मंजिल तक पहुंचने का एक सशक्त माध्यम है। इसलिए प्रतियोगिता को केवल परिणाम की दृष्टि से नहीं बल्कि आत्म विकास और अनुभव प्राप्ति के अवसर के रूप में देखना चाहिए। यही दृष्टिकोण हमें जीवन में सच्ची सफलता और संतोष भी प्रदान करता है।
0: बिल्कुल। वही एक श्रोता लिखती है कि प्रतियोगिता हमें जीवन में अपना लक्ष्य सेट करने में सहायता करती है। जीवन में हमें कभी भी प्रतियोगिता से पीछे नहीं भागना चाहिए, चुनौती लेना सीखना चाहिए और जीतने की कोशिश करनी चाहिए। प्रतियोगिताएं वर्षों से एकत्रित ज्ञान और कौशल को प्रदर्शित करने के लिए एक शानदार मंच हमें प्रदान करती है।
1: बिल्कुल। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रतियोगिता का उद्देश्य दूसरों को हराना नहीं बल्कि स्वयं को बेहतर बनाना होना चाहिए।
0: बिल्कुल
1: और साथ ही हमारे जो एक और श्रोता है वो लिखते हैं कि हम लोग बता रहे हैं कि प्रतियोगिता स्पर्धा कंपटीशन बराबरी पर स्वस्थ रूप में किसी कंपटीशन को जीतना, जीवन में आगे बढ़ने और अपनी छिपी हुई क्षमताओं को पहचानने और खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा अत्यंत आवश्यक है।
0: हाँ
1: ये
0: बिल्कुल।
1: ठहराव खत्म करती है, हमें लक्ष्य के प्रति प्रेरित करती है और आलस को दूर करके जीवन को एक सही दिशा प्रदान करती है। प्रतियोगिता हमें अपनी योग्यता को परखने का मौका देती है जिससे हम सीखते हैं कि कैसे अपने काम में हम सुधार करें।
0: हाँ, वही एक श्रोता लिखते हैं कि प्रतियोगिता हम सभी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक हम किसी न किसी रूप में प्रतियोगिता का सामना करते हैं। विद्यालय हो, खेल हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, कला हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रतियोगिता जरूरी है और यह हमें अपनी क्षमताओं को पहचानने, उन्हें निखारने और निरंतर बेहतर बनने की प्रेरणा भी देती है।
1: बिल्कुल। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रतियोगिता हम सभी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव तक हम किसी न किसी रूप में इस चीज को देखते ही रहते हैं।
0: और एक श्रोता लिखते हैं कि आजकल हर क्षेत्र में प्रतियोगिता लगातार बढ़ रही है। शिक्षा हो, करियर हो, व्यापार हो, तकनीक हो, अपनी पहचान बनाने के लिए कड़ी मेहनत और नवाचार आवश्यक हो गया है। ये बढ़ती प्रतिस्पर्धा हमें बेहतर बनने और अपने कौशल को निखारने का एक अवसर देती है।
1: बिल्कुल। और प्रतियोगिता केवल जीत और हार का नाम नहीं है, ये स्वयं को पहचानने, अपनी क्षमताओं को निखारने, लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली प्रक्रिया होती है। और जीवन के हर क्षेत्र में, जो भी क्षेत्र है, हर क्षेत्र में प्रतियोगिता का अपना विशेष महत्व होता है। ये मनुष्य को आलस से दूर रखती है और परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास का पाठ पढ़ाती है।
0: बिल्कुल। वही एक श्रोता का कहना है कि प्रतियोगिता को पूरी तरह खत्म तो नहीं किया जा सकता क्योंकि ये विकास का नियम है, हालांकि इसे जानलेवा रेस बनने से रोकना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा कि जानलेवा रेस हमें नहीं बनाना है
1: बिल्कुल।
0: इसको, है ना।
1: प्रतियोगिता एक स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए जिससे कि हमें भी उससे सीख मिले या हम अपना विकास, अपना जो आत्म विकास है, हम वो कर सकें, ना कि हम उसमें लग के अपने अपने को नुकसान पहुंचाएं
0: अपने जीवन जीवन को हम बर्बाद करते हैं, अपने जीवन को खत्म कर लेते हैं कई बच्चे, और की कंपटीशन में हम पिछड़ गए या फेल हो गए। ये जो असुरक्षा की भावना हमारे भीतर है, ऐसी प्रतियोगिता किसी काम की नहीं। अगर आपने अपने जीवन को गंवा कर किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया होगा, क्या मतलब उस प्रतियोगिता के, जहां आप अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं। पढ़िए लिखिए आगे बढ़िए, और या हम नौकरी करते हैं या घर में भी होता है कि हम भाई बहन एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर लेते हैं या पड़ोसी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर लेते हैं।
1: कभी कभी ऐसा होता है मंदाकिनी जी की प्रतिस्पर्धा के चक्कर में हम अपने भाई बहन हो या रिश्ते हो, जो अपने रिश्ते हैं उनसे भी हम हाथ धो लेते हैं। क्योंकि जब हम आपस में प्रतियोगिता करने लगते हैं ना, तो हम बहुत चीजों को गलत भी करने लगते हैं। फिर हमें हम कोई वो जो एक बारीक सी रेखा होती है ना कि सही और गलत की, उसको हम पहचानना भूल जाते हैं। बस हमें रहता है कि हम किसी भी तरह से आगे निकल जाएं।
0: ये जो हमारे अंदर भावना होती है ना, असुरक्षा की भावना कहते हैं। और आरती, सबसे बड़ी बात यह है कि जरूरी नहीं कि हम जीत ही जाएं। कई बार हारने में भी बहुत मजा होता है। आप हार कर भी जीत जाते हैं।
1: किसी आप कभी किसी के चेहरे पे एक खुशी दे सके तो सबसे बड़ी बात ये होती है।
0: प्रतियोगिता
1: चेहरे की हंसी देख के आपको लगेगा
0: मजा आता। अब बच्चों से हम प्रतियोगिता करते हैं, मान लीजिए हमारे माता पिता, तो वो हार जाते थे कि हमारा बच्चा जीत गया है, तो वो खुशी बहुत बड़ी खुशी है। और जीवन में बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती हैं जिसमें हम हिस्सा भी लेते हैं और हमारे जीवन में भी आ जाती हैं, लेकिन उसमें हमें बहुत ही सकारात्मक तरीके से हिस्सा लेना है। वो कोई भी प्रतियोगिता
1: अपने आप को मानसिक रूप से दृढ़ रखिए कि हारना वो नहीं होता कि हम किसी चीज में, खेल में या किसी चीज में हार गए। हारना वहां होता है जब हम अपने दिमाग से, अपने मानसिक जो संतुलन होते हैं वहां से हारते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो उसको मजबूत रखिए।
0: और मन के हारे हारे मन के जीते जीत। अगर आप हार कर भी, आपका मन नहीं हारा है, फिर भी आप जीत जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, हमारे खिलाड़ी खेलते हैं, लास्ट तक हमारी निगाहें होती कि जीतने वाले हैं, जीतने वाले हैं, जीतने वाले हैं, और वो हार जाते हैं, लेकिन हार कर भी पूरी टीम जीत जाती है। कैसे कि उनका बेहतर जो शानदार प्रदर्शन होता है वो हमें,
1: और वो मनोबल जो होता है ना, वो मनोबल अगले मैच में काम आ जाता है।
0: बिल्कुल, इसलिए प्रतियोगिता अगर हम करते हैं अपने जीवन में, जो जरूरी भी है, तो स्वस्थ प्रतियोगिता करें। किसी को पछाड़ने के बजाय खुद को आगे लेकर जाएं।
1: बिल्कुल।

0: हाँ तो मंदा नहीं जिए,
1: हाँ
0: अब हम लोग को जिससे 100 साल पहले प्यार था अभी भी प्यार है
1: और
0: वो
1: आगे
0: है,
1: भी रहेगा
0: हाँ जी हाँ आगे भी रहेगा, वो है बढ़िया बढ़िया से स्वादिष्ट व्यंजन,
1: व्यंजन।
0: और जिसमें से आज हम लेकर आए हैं पकौड़े। हम क्या
1: क्या
0: लेकर आए हैं, हम तो ये गलत कह रहे हैं, हमारे श्रोता लेकर आए हैं
1: बना कर लेकर आए
0: पकौड़े।
1: हमारे
0: बहुत
1: लिए।
0: अच्छी अच्छी रेसिपी भेजी है उन्होंने, तो बात करते हैं। पहले तो एक छोटी सी बात कर लेते हैं,
1: बिल्कुल।
0: जो हमारे जो जो एक श्रोता है वो लिखते हैं कि जैसे ही आसमान में काले बादल छाते हैं और पहली बूंद गिरती है, भारतीय इंसानों के दिमाग का एक खास हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है। वो सिर्फ एक ही सिग्नल भेजता है, किचन में जाओ, बेसन घोलो और कढ़ाई चढ़ाओ। खौलते हुए गर्म तेल की कढ़ाई मुश्किलों में डूबने के बाद ही एक साधारण सा बेसन और प्याज क्रिस्पी और शानदार पकौड़ा बनकर बाहर निकलता है। इसलिए जब भी जिंदगी आपको मुश्किलों के खौलते तेल में डाले तो घबराइए मत, समझ लीजिए कि आप और भी ज्यादा मजेदार बनने वाले। क्या बात
1: बहुत
0: कर रही है,
1: शानदार,
0: सच में
1: बहुत शानदार,
0: क्या
1: बहुत
0: मतलब,
1: शानदार।
0: ऐसे तो मतलब सोच नहीं सकते,
1: बिल्कुल,
0: बहुत
1: इन्होंने
0: बहुत बढ़िया बात
1: देखिए
0: कही है।
1: कितना इसको काव्यात्मक तरीके से,
0: हाँ
1: क्लासिक तरीके से पेश किया है, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा
0: जी
1: लिख भी सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो ये लेखन जारी रखें, आगे भी हमें इसी तरह से,
0: सच में
1: है ना,
0: सच
1: अपने विचार प्रकट करें तो कार्यक्रम का मजा मजा जो है मजा दोगुना हो जाता
0: में,
1: है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि भारत के सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा स्नैक्स में से एक है पकौड़े। ये मुख्य रूप से बेसन, मसाले और अपनी पसंद की कटी हुई सब्जियां जैसे कि प्याज, आलू, पालक को मिलाकर बनाया जाता है, और बारिश के मौसम और शाम की चाय के साथ इनका आनंद लिया जाता है। पकौड़े बनाने की उन्होंने विधि भी डाल दी है कि आपको ओनियन लेना है, मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा बनाना है तो, और सब्जियां 3-4 तरह की लेनी है, प्याज लंबे कटे हुए, 1-2 कटे हुए, आलू, पालक, बेसन लीजिए, और चावल का आटा ले लीजिए 2 बड़े चम्मच कुरकुरेपन के लिए, मसाले ले लीजिए, हल्दी है, मिर्च है, और कुटा हुआ साबुत धनिया है, अजवाइन है, हींग है, और नमक आपके स्वाद के अनुसार ले लीजिए। और इसके अलावा इन्होंने

0: अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट भी बनाया है तलने के लिए। और कहते हैं कि सब्जियां तैयार करें, एक बड़े उस पर एक बड़े बर्तन में कटे हुए प्याज आलू और पालक ले लें, इसमें नमक अदरक लहसुन का पेस्ट कटी हुई हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह मिला लें और 5 मिनट के लिए रख दें ताकि सब्जियां पानी छोड़ दें। मसाले और बेसन मिलाएं, अब इसमें सभी सूखे मसाले डाल दें और इसके बाद बेसन और चावल का आटा मिला लें, घोल बनाए बिना पानी डाले, और जरूरत हो तो थोड़ा सा डाल लें पानी। एक गाढ़ा और खुरदरा मिश्रण तैयार करें, तले एक कढ़ाई में मध्यम आंच पर और इसमें छोटे छोटे बॉल्स बनाकर पकौड़े डाल दें। कुरकुरा होने तक इसको पकाएं मध्यम आंच पर, दोनों तरफ से इसको हिला के पकाते रहें। अंत में कुछ सेकंड के लिए आंच तेज करके निकालें ताकि पकौड़े अतिरिक्त तेल न सोखें। अरे वाह, ये अच्छी बात बताइए, अक्सर तेल आ जाता है पकौड़ों में साथ में ना, और गर्म गर्म पकौड़ों हरे धनिया की चटनी के साथ खाइए आंटी जी।
1: मैं उसमें कल्पना में लग गई थी कि पकौड़े निकल ही रहे,
0: खाने भी लग गई थी पकौड़े ना।
1: एक हमारी श्रोता है जो लिखते हैं कि गुजरात में पकौड़े यानी कि भजिया सिर्फ एक व्यंजन नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा है। बारिश की पहली बूंद गिरते ही हर गुजराती घर और नुक्कड़ पर पकौड़े तलना अनिवार्य हो जाता है। यहाँ आलू प्याज के अलावा मेथी गोटा, डकन भजिया, मिर्च के भजिया और केला पकौड़ा जैसी अनोखी वैरायटी मिलती है। गुजराती पकौड़ों में बेसन के साथ हल्की चीनी, नींबू और तीखी हरी मिर्च का बेजोड़ संतुलन होता है। चटनी का जादू भी होता है इसमें कि इन पकौड़ों का स्वाद कढ़ी या बेसन घोल और तीखी मीठी चटनियों के बिना अधूरा माना जाता है। और शाम की चाय के साथ पकौड़े खाना यहाँ का पारिवारिक जो उत्सव होता है उस तरह से माना जाता है।
0: हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा इन्होंने।
1: और हमारे जो एक है हमारी जो श्रोता है वो लिखती है कि बरसात आई छाई बहार, पकौड़ों की महकी है फुहार, गर्मा गर्म जब थाली आए मन खुश होकर गीत सुनाए, आलू प्याज या पालक वाले सबको लगते बड़े निराले, चाय की प्याली साथ में हो मजा दुगना हर पल हो, दादी की रसोई की खुशबू भर देती है मन में जादू, मिल बैठकर जब सब खाते हंसते गाते पल बिताते, सादा भोजन हो या दावत पकौड़ों की रहती है चाहत, स्वाद और अपनापन देते हर मौसम में दिल को।
0: क्या बात है, देखिए मतलब मौसम बदलते ही मन का मौसम बदल गया इनके, है ना।
1: मैंने कहा ना बारिश,
0: कवि और शायर बन गए हमारे श्रोता। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा पकौड़े का जो शौकीन है, गुजराती पकौड़े के ही शौकीन है जिसे भजिया कहा जाता है, और ये सिर्फ एक व्यंजन नहीं बल्कि जीवन शैली का हिस्सा है। बारिश की पहली बूंद गिरते ही हर गुजराती के घर में ये बनता है, तो ऐसे इन्होंने पकौड़े बनाने की विधि भी बताई है। और देखिए एक श्रोता लिखते हैं कि बेसन के घोल में अजवाइन, हींग, हरी मिर्च, धनिया का सही मिश्रण इसके स्वाद को दोगुना बना देता है। पुदीने की तीखी चटनी भी होनी चाहिए, मीठी की इमली चटनी टोमेटो केचप के साथ इसका कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट होता है। और ये मौसम का साथी है, भारत में बारिश के मौसम हो, सर्दियों का हो और किसी भी तरह का हो, तो पकौड़े हमारे घर में सबसे पहले बनाए जाते हैं। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि सब्जियों की जो एक साथ इकट्ठे करके आप पकौड़े बना सकते हैं, जैसे प्याज है, आलू है ना, इनको काट लें, हरी मिर्च है इसके भी काट लें, अदरक को भी, अदरक भी पकौड़ों के बीच में जब मुंह में आती है ना आरती, बहुत स्वादिष्ट लगती है। और आधा छोटा चम्मच हल्दी, अजवाइन, नमक और पाउडर मिर्च का पाउडर ले लें। पकौड़ों को कुरकुरा तलने के लिए एक चम्मच चावल का आटा लेना बहुत जरूरी है, या फिर कॉर्न स्टार्च भी ले सकते हैं। और तलने के लिए सरसों का तेल ले लें। साथ ही उन्होंने कहा घोल को तैयार करें, एक बड़े बाउल में बेसन, हल्दी, अजवाइन, नमक, लाल मिर्च और कटी हुई हरी मिर्च डाल दें, अदरक डाल दें, सब्जियां मिलाएं, इसमें कटे हुए प्याज आलू डालें, पानी डालें, थोड़ा थोड़ा थोड़ा पानी डालें, थोड़ा गाढ़ा और चिकना घोल बनाएं, ध्यान दें कि घोल ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए ताकि ये सब्जियों पर अच्छी तरह से कोट हो जाए, और फ्राई करें कढ़ाई के माध्यम से, आंच गर्म रखें, तेल गरम होने पर चम्मच से छोटे छोटे पकौड़े तलें और कुरकुरा होने तक इन्हें रखें, पकौड़ों को टिश्यू पेपर पर निकालें ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए, और छमाछम बारिश में गर्मा गर्म खाएं और खिलाएं।
1: बिल्कुल। और एक हमारे जो श्रोता है वो एक बहुत अच्छा सा उन्होंने दाल के पकौड़े का बताया है रेसिपी, तो चना का दाल 4-5 घंटे के लिए भिगो लें, इसमें थोड़ा चावल भी भिगा लें, अब इन्हें दरदरा पीस लीजिए, इसके साथ लहसुन, मिर्च, अदरक भी पीस लीजिए, पीसते समय कम पानी, जब पीस रहे हो तो कम पानी का प्रयोग करें, नहीं तो ये पतला हो जाएगा तो बढ़िया बनाने में मुश्किल होगी। अब इसमें हल्दी, नमक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, कलौंजी, अजवाइन मिलाकर रख लें, धनिया पत्ती भी काट कर मिला सकते हैं, पर बारिश के दिनों में हरी पत्तियों का प्रयोग कम ही करें। कढ़ाही में सरसों का तेल गरम करें, इसमें थोड़ी सी हींग का टुकड़ा डाल दीजिए, अब छोटी छोटी दाल की पकौड़ियों को तेल में तल लीजिए, इसे किसी भी चटनी के साथ परोसें, और बिहार में इस दाल की पकौड़ी को कचरी बोला जाता है, सरसों की चटनी, आम की खटाई की चटनी के साथ परोसा जाता है। दाल में आप चना की दाल के अलावा मसूर की दाल, मूंग की दाल का भी आप पकौड़ा बना सकते हैं, और किसी भी दाल को भिगोते समय उसमें 2 चम्मच चावल, जो 2 चम्मच रहता है चावल, वो जरूर डालें आप।
0: तो पकौड़े बहुत खा लिए, गीतों का आनंद भी
1: लेते हैं पकौड़े खाते खाते।

0: जी तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों के शहर में झिरझिर झिरझिर बरसा बरखा जो है बरसे और उनका मन भी इसी तरह से हर्षे, है ना।
1: बिल्कुल।
0: और इसी उम्मीद के साथ अब कार्यक्रम का समय तो हमें समाप्त करना होगा। तो कार्यक्रम सखी सहेली से मंदाकिनी जोशी और
1: आतिश श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आज के मेहमान। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने लेखक हरिशंकर राढ़ी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, कथाकार, व्यंग्यकार, गजलकार, निबंधकार, आलोचक, समीक्षा लेखक और अनुवादक संपादक हरिशंकर जी राढ़ी साहब को। हरिशंकर जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत

0: बहुत स्वागत है
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका मंदाकिनी जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
0: जी। कैसे हैं आप?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
0: हम भी अच्छे हैं और आज एक लंबी बातचीत आपसे करने वाले हैं।
1: जी अवश्य।
0: आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ और आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई?
1: जी, मेरा जन्म सन 1964 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के एक पिछड़े क्षेत्र में हुआ था। मेरी माताजी अध्यापिका थीं और उन्होंने शिक्षा पर शुरू से ही बड़ा जोर दिया। मेरी प्राथमिक शिक्षा गांव में हुई, उसके बाद मैंने 12वीं तक की शिक्षा पास के कस्बे के इंटर कॉलेज में किया। उच्च शिक्षा के लिए मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय की तरफ गया, वहाँ से मैंने BA किया और सन 1988 में मैंने अंग्रेजी साहित्य में MA किया।
0: जी
1: 1989 में मैंने पूर्वांचल विश्वविद्यालय से BEd किया और उसके बाद दिल्ली में मेरी सरकारी विद्यालय में नियुक्ति हो गई। वहाँ मैं शिक्षण कार्य करता रहा और अभी 2 साल पहले मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ।
0: जी तो आप एक अध्यापक के रूप में कार्य करते रहे,
1: जी
0: तो इस अध्यापन के दौरान ही आपकी जो है साहित्य के प्रति रुचि पैदा हुई या ये रुचि पहले से ही थी, बचपन से ही?
1: मुझे जहाँ तक याद आता है कि मैं किशोरावस्था से ही साहित्य में रुचि लेने लगा था और कुछ तुकबंदियाँ, कुछ कविताएँ, विद्यालय के लिए कुछ नाटक, इस तरह की चीज़ें लिखने लगा था। वो किशोर मन के व्यक्ति थी, देशभक्ति के गीत होते थे, विकास के गीत होते थे। लेकिन उसके बाद मैं गंभीर साहित्य से जुड़ा, पढ़ने लगा, बहुत सारे साहित्यकारों को पढ़ा और दिल्ली में आने के बाद मैंने औपचारिक लेखन शुरू कर दिया था।
0: जी तो हरिशंकर जी, आप एक प्रखर भाषाविद हैं, अनेक पुस्तकों की लेखनी आपने की है, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा के आप ज्ञाता हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कोई विशेष भाषा आपके विचारों की गहराई को सीमित करती है या भाषा हमेशा विचारों की विस्तारक होती है?
1: जी नहीं मंदाकिनी जी, मुझे लगता है कि जितनी ही भाषाओं का ज्ञान हो, मनुष्य उतना ही मजबूत, उतना ही सुदृढ़ और उतने ही बड़ी सोच का हो जाता है।
0: जी
1: तमाम भाषाओं को जानने की मेरी इच्छा थी, 3 भाषाओं पर ही मेरी कुछ पकड़ हो सकी है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत पर। मुझे बल्कि इस बात का कई बार मलाल होता है कि मैं 4-6 भाषाएं और क्यों नहीं जान सका। कुछ देसी बोलियों को भी मैं जानता हूं ठीक से, उनको बोलता भी हूं। तो भाषाएं पुल का काम करती हैं, जोड़ने का काम करती हैं और हर भाषा में कुछ न कुछ अतिरिक्त ज्ञान होता है, उसे प्राप्त करके अपने विचारों को, अपने साहित्य को आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमेशा जोड़ती हैं, तोड़ने का काम नहीं करती हैं भाषाएं।
0: तो हरिशंकर जी, आपने तो व्यंग्य विधा, ललित निबंध और यात्रा संस्मरण लिखे हैं, ये लेखक बनने की शुरुआत कब और कैसे हो गई?
1: जी, जब मैं दिल्ली में आया तब तक मैं साहित्यिक पत्रिकाएं पढ़ता था, हरिशंकर परसाई को पूरा पढ़ चुका था।
0: अच्छा।
1: धर्मयुग, कादंबिनी जैसी पत्रिकाएं मैं नियमित रूप से पढ़ता था, पत्रिकाओं को पत्र लिखता था। सामान्यतः लेखन की शुरुआत यहीं से होती है। यहां पर मुझे लगा कि मुझे भी कुछ लिखना चाहिए और मैंने सबसे पहले एक कहानी लिखी और वो कहानी उस समय की प्रसिद्ध पत्रिका जो महिलाओं की थी, मनोरमा में प्रकाशित हुई सन 1994 में। मनोरमा पत्रिका की उस समय 1 लाख से कम प्रतियां नहीं निकलती थी और वो पढ़ाई लिखाई का युग था। तो उसमें जब पहली कहानी प्रकाशित हो गई तो मुझे लगा कि नहीं, अब मैं लिख सकता हूँ। मेरा बड़ा उत्साह वर्धन हुआ और वहां से मैं कहानियां लिखना शुरू कर दिया। बाद में दूसरी विधाओं में आ गया।
0: तो पहली कहानी कौन सी थी आपकी?
1: मेरी पहली कहानी थी जो मनोरमा में छपी थी, उसका शीर्षक था अपराजेय और वह एक ऐसे मुद्दे पर थी कि एक पीड़िता जो किसी संबंधी से बलात्कार का शिकार होती है और उसका एक रिश्तेदार बाद में उसको स्वीकार कर लेता है और उनका जीवन बड़ा सुखद निकलता है, कहीं न कहीं से यह महिला के उत्थान के की ओर लेके जाती थी।
0: जी जी, जी। हरिशंकर जी, आपने लगभग 500 रचनाएं लिखी हैं, तो ये 500 रचनाएं अलग अलग विधाओं में हैं
1: जी
0: और बहुत सारी राष्ट्रीय स्तर की पत्र पत्रिकाओं में आपकी कहानियां छपी हैं, उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए।
1: जी, कहानियां मैंने जो लिखी वो बड़े लंबे दौर में लिखी। मैं कहानी विधा का इतना बड़ा प्रसारक तो नहीं हो पाया, लगभग 20 कहानियां लिखी मैंने, लेकिन जो कहानियां मैंने लिखी हैं वो कहानियां देश की प्रमुख पत्रिकाओं में जैसे हंस
0: जी,
1: वागर्थ, आजकल और तमाम दूसरी लघु पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। उन कहानियों को स्वीकृति मिली है, उस पर पत्र आए, पाठकों के फोन आए और वे कहानियां कहीं न कहीं स्त्री विमर्श से जुड़ी हुई हैं। ज्यादातर मेरी लिखी हुई कहानियां जो समाज को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर ले जाती हैं, नकारात्मकता को दूर करके।
0: जी, तो आपने जिन पत्रिकाओं को नाम लिया ये लगभग राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाएं हैं और मुझे ध्यान है कि हमारे घर में ये पत्रिकाएं आती थी और इन पत्रिकाओं को पढ़ा करते थे। उस समय हम जब कहानियां पढ़ते थे तो हमारी समझ से ऊपर निकल जाती थी, लेकिन धीरे धीरे पता चला कि राष्ट्रीय स्तर की बहुत ही सारगर्भित कहानियां इन पत्रिकाओं में स्थान पाती हैं। तो आपकी कौन सी कहानी आपके सबसे करीब है?
1: मेरे सबसे करीब कहानी

0: किशोरावस्था से ही मैं कहीं ना कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था।
1: जी
0: हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। भाषा पर तीन भाषाओं को पढ़ने से मुझे लगा कि थोड़ी पकड़ मेरी हो गई है, और जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से मैं व्यंग लिखने लगा। और ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई,
1: जी
0: और व्यंग में ही मैंने सबसे ज्यादा लिखा है, और व्यंग में सबसे ज्यादा मेरी पुस्तकें आई हैं, और व्यंग के विमर्श पर भी मैंने काम किया है।
1: जी तो समाज में इतनी विसंगतियां हैं राणी जी, लेकिन व्यंग्य लिखने का विचार आपके मन में सबसे पहले कब और कैसे आया होगा?
0: जी, एक घटना हुई थी राजनीतिक। उत्तर प्रदेश में एक सरकार गिरी थी और दो तीन राजनीतिक दलों को जोड़ करके, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी मुख्यमंत्री ने एक सरकार बना ली और उसमें मंत्रियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई। कहीं
1: जी
0: न कहीं ये विसंगत थी कि हमारे प्रदेश के, हमारे देश के जो संसाधन हैं, उन सबका प्रयोग इतने बड़े मंत्रिमंडल पर होगा, और ये जोड़ तोड़ करके बनाया गया संगठन कभी चलेगा नहीं। वहीं से मेरा पहला व्यंग शुरू हुआ था, और उसके बाद जब उसकी प्रशंसा हुई, उत्साहवर्धन हुआ, तो मैं और आगे लिखता गया।
1: जी यानी वो प्रोत्साहन आपको उस घटना के बाद
0: जी
1: मिला।
0: जी
1: तो राडी साहब, बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है, इस बीच एक आपकी पसंद का गीत सुन लिया जाए।
0: मुझे थोड़ा सा मेलोडी वाले गाने बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, तो लता मंगेशकर जी का एक गीत है फिल्म ममता से, रहे ना रहे हम महका करेंगे,
1: क्या
0: बड़ा
1: बात,
0: सकारात्मक गीत है,
1: क्या
0: मुझे
1: बात,
0: बहुत अच्छा लगता
1: बहुत
0: है।
1: सुंदर क्लासिक गीत है ये।
0: जी
1: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हरिशंकर जी, बात चल रही थी आपके व्यंग्य लेखन पर, और आपने व्यंग्य विधा पर काफी लिखा है, जैसे कि युधिष्ठिर का कुत्ता
1: जी
0: और गिद्धों का स्वर्णकाल,
1: जी
0: अंधे पीसे
1: जी
0: और साहित्य के शनिदेव,
1: जी
0: ये सबकी लेखन यात्रा के बारे में आप हमें थोड़ा बताइए।
1: जी, मैंने व्यंग्य लेखन 1998 से शुरू कर दिया था और मैं व्यंग्य में सबसे अधिक प्रभावित था हरिशंकर परसाई से।
0: जी,
1: व्यंग्य के पितामह हैं वो, और उनके रचनावली के 6 खंड हैं वो, मैं सारे पढ़ चुका था। पहले जब मैं व्यंग्य लिखना शुरू किया तो मेरे व्यंग्य बड़े विस्तृत होते थे, 3,000 से 3,500 शब्दों के। ज़्यादातर वो व्यंग्य मेरे पहले व्यंग्य संग्रह युधिष्ठिर का कुत्ता में संग्रहित हैं। इसमें युधिष्ठिर का कुत्ता एक व्यंग्य है जिसमें कुत्ते को एक तरफ रख करके उससे तुलना करते हुए मानवीय स्वभावों की खिंचाई की गई है। कुत्ते में बहुत सारे अच्छे गुण होते हैं, लेकिन मनुष्य उन गुणों को ना लेकर के उनके दूसरे गुणों को लेता है। जैसे एक कुत्ता किसी दूसरे अपरिचित पर भौंकता है, यह सीधी सी बात होती है अगर उसकी मानसिकता को समझा जाए, तो जब वह नए कुत्ते पर भौंकता है तो उसे डर होता है कि कहीं ना कहीं ये मेरे साम्राज्य पर, मेरी टेरिटरी पर कब्जा करने आया है। यह प्रवृत्ति मनुष्य में भी पाई जाती है। और दूसरी बात यह होती है मनुष्य में कि थोड़े से स्वार्थ के लिए वे ये नहीं देखते कि किसके आगे पूंछ हिला रहे हैं। मनुष्य को मेरा मानना है कि हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। और यह बात कि आप कहीं न कहीं से कुछ कुत्ते के दुर्गुणों को ले लें तो आपको सत्य के पथ से हटाती है। वैसे युधिष्ठिर का कुत्ता अपने आप में धर्म का प्रतीक है, लेकिन उससे हमारा कितना विचलन हुआ है, यह व्यंग जो मेरा है उसी को दिखाता है। इस व्यंग को मैंने पूरे पुस्तक का शीर्षक बनाया और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस व्यंग संग्रह को पसंद किया गया।
0: जी,
1: उसके बाद दूसरा व्यंग संग्रह मेरा आया गिद्धों का स्वर्णकाल। इसके आप संकेत समझाएं, क्योंकि व्यंग जो होता है वह अभिधा में नहीं, लक्षणा में भी नहीं, बल्कि शब्दों की तीसरी शक्ति होती है व्यंजना,
0: जी,
1: जो बहुत कुछ संकेतों में कह जाती है या कई बार उल्टा अर्थ निकलता है उसको प्रदर्शित करता है। एक बड़ा त्रासद समय हमने देखा कोरोना काल का,
0: जी,
1: जिसमें एक तरफ तो महामारी थी, दूसरी तरफ हमने मनुष्य का बड़ा विकृत चेहरा देखा, जिसमें लोग एम्बुलेंस में कमाई कर रहे हैं, दवाइयों की चोरबाजारी हो रही है, लाशों के यहाँ वहाँ फेंका जा रहा है, लाशें एक तरफ गिर रही हैं। तो उस समय मेरे मन में यह विचार आया था कि ये तो हम गिद्धों के स्वर्ण काल में रह रहे हैं, ये गिद्धों का काल है, मनुष्यों का काल नहीं है। चारों तरफ मौतें हो रही थी और हम उस आपदा को अपने लिए अवसर में बदल रहे थे। तो ये पूरा संग्रह गिद्धों का स्वर्ण काल कोरोना काल में लिखे गए मेरे सारे व्यंग जितने उनका संग्रह है, और उस त्रासद स्थिति पर क्या क्या दृष्टिकोण रहे हैं इसको दिखाने का प्रयास किया गया है।
0: जी, जी।
1: तीसरा जो है वो अंधे पीछे हैं, ये हमारी व्यवस्था में, मशीनरी में एक परंपरा है, ये शीर्षक अपने आप में व्यंग है। पूरा मुहावरा है कि अंधे पीछे कुत्ते खाएं। अंधे पीछे किस लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं वो ये नहीं देख रहे हैं। प्रतीकात्मक रूप से किसी परिपाटी को चलाए जाना है, काम करने के लिए काम किया जाना है, उद्देश्य का पता नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: और उसका दुरुपयोग करने वाले दूसरे हैं, जो कि कुत्ता जिन्हें समझा गया है या कहा गया है। तो इसमें आपको छोटे आकार के व्यंग मिलेंगे, क्योंकि अब तक आते आते पूरा साहित्यिक परिदृश्य बदल गया, हम आ गए मोबाइल युग में जिसमें लोगों पास समय नहीं है, छोटी रचनाएं पढ़ना चाहते हैं, कोई 3 पेज 4 पेज का व्यंग या कोई भी रचना नहीं पढ़ना चाहता है। अखबारों ने, पत्रिकाओं ने स्पेस कम कर दिया, अखबार और उसमें कालम खत्म हो गए, पत्रिकाएं बंद होती गईं, तो थोड़ी थोड़ी जगह लगे देने लगे। तो इसलिए इस कारण से भी हमें एक रणनीतिक बदलाव करना पड़ा कि हम अपने आकार को समेटें। अब तो इसमें आपको जो व्यंग मिलेंगे 800, 1000, 1200 शब्दों के मिलेंगे, उसमें इसका है। और साहित्य के शनिदेव मेरा चौथा व्यंग संग्रह है, जो भी 2026 में ही आया है। इसमें सबसे बड़ी विसंगति यह है कि हम कह सकते हैं कि अगर चिकित्सक ही बीमार हो जाएगा तो रोगी का क्या इलाज करेगा। बहुत सारी विसंगतियां हम साहित्यकारों में भी हैं, और वही विसंगतियां हैं जो मनुष्य में पाई जाती हैं, पाखंड की, उतार चढ़ाव की, गिराने की, जगाड़ने पछाड़ने की, उसको केंद्रित रखते हुए है व्यंग साहित्य का संदर्भ। यह भी इस पूरे संग्रह का एक व्यंग है। उसमें और भी जो व्यंग हैं वो राजनीतिक, सामाजिक घटनाक्रमों पर हैं। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूंगा, व्यंग ये देखता है कि समाज में क्या होना चाहिए और क्या है,
0: हो रहा है,
1: आदर्श और यथार्थ के बीच की जो स्थिति है उस खाई को थोड़ा सा कड़े शब्दों में पाटने का प्रयास जब किया जाता है तो व्यंग होता है, और उसकी झलक आपको साहित्य के सन्निधि में मिलेगी।
0: जी, तो व्यंग्य में अगर हम बात करें परसाई युग से अब
1: जी
0: तक कितना
1: जी
0: बदलाव आया है, आप क्या महसूस करते हैं?
1: जी आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। व्यंग देखिए परसाई के पहले से है, लेकिन परसाई को हम व्यंग का औपचारिक अधिष्ठाता कह सकते
0: बिल्कुल
1: हैं। व्यंग सबसे अधिक मिलता है कबीर में, और हम व्यंगकार दावा करते हैं हम कबीर के वंशज हैं। हालांकि कबीर का वंशज होना आसान काम नहीं है।
0: जी
1: जिस निर्भीकता से कबीर ने कहा है, वो निर्भीकता बहुत कम लोगों में मिलती है। कबीर
0: जी
1: ने कहा, तुलसीदास के ग्रंथों में भी व्यंग मिलता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी व्यंग लिखा है, लेकिन परसाई ने व्यंग को स्थापित किया।
0: जी
1: उस समय की परिस्थितियां कुछ और थी। उस समय सामाजिक पतन इतना नहीं हुआ था जितना अब हो गया है।
0: जी
1: राजनैतिक विसंगतियां इतनी नहीं बढ़ी थी जितनी अब बढ़ी हैं, लेकिन परसाई ने उस समय बहुत दूरदर्शिता दिखाते हुए इन चीजों को पकड़ा था। परसाई के समय में एक आजादी थी कि व्यंग को लंबा लिख सकते थे, कितना भी लंबा आप लिखेंगे,
0: जी
1: पत्रिकाएं छापेंगी। उस समय धर्मयुग जैसी पत्रिकाएं थी जिन्होंने व्यंग को नियमित रूप से प्रकाशित किया। धर्मवीर भारती जैसे संपादक थे जो साहित्य के बहुत बड़े जौहरी थे, बहुत बड़े पारखी थे।
0: जी
1: अब तो दुखद वैसी चीजें नहीं रह गई
0: जी और
1: हैं।
0: पाठक भी, वो एक बड़ा वर्ग था
1: जी
0: पाठक का
1: हाँ, बहुत बड़ा
0: जो
1: वर्ग
0: पढ़ा
1: था। हाँ
0: करता
1: बहुत, हाँ बहुत
0: था।
1: बड़ा वर्ग था पाठक का। और व्यंग साहित्य में उन दोनों स्थापित हो रहा था, लोगों को नई चीज मिल रही थी, मनोरंजक चीज मिल रही थी। तो परसाई के समय में एक तो व्यंग की लंबाई ज्यादा हुआ करती थी, उस समय की स्थितियां कुछ दूसरी थी। अब धीरे धीरे विसंगतियां बढ़ी हैं, विसंगतियों के प्रकार बढ़े हैं, समय कम हुआ है तो व्यंग का आकार कम हुआ है। और एक चीज मुझे थोड़ा सा नकारात्मक लगती है, समाज का शिक्षित होना तो बहुत ही आवश्यक है, लेकिन उच्च स्तरीय साहित्य सभी लोग नहीं लिख पाते हैं।
0: जी
1: जैसे साहित्य की हर विधा में शौकिया लेखकों की भीड़ बढ़ी है, उसी तरह व्यंग में भी लोग आ गए हैं जिनको व्यंग की समझ नहीं है। तो थोड़ा सा एक चुनौती बढ़ी है कि व्यंग को आप परसाई के स्तर पर क्या रख पा रहे हैं, वो अब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है।
0: जी बिल्कुल
1: जी
0: बिल्कुल, क्योंकि जगह जगह एक लेखक वर्ग इकट्ठा हो गया है, हर शहर में लेखक वर्ग है
1: जी
0: और व्यंग्य विधा में हाथ आजमा रहा है।
1: जी
0: अब कितना वो व्यंग्य है, कितना क्या है, कई बार डिजिटल दुनिया में जब हम देखते हैं मीम्स बनते हैं,
1: जी
0: हम उसे भी व्यंग्य समझ लेते हैं और
1: जी
0: लेखन यात्रा शुरू कर देते हैं।
1: जी
0: तो आपसे अगला सवाल मैं करूंगी, लेकिन उससे पहले आपकी पसंद का एक गीत हम सुन लेते हैं राणी जी।
1: जी जरूर जरूर, मुझे गीत बहुत पसंद है। मैं संगीत प्रेमी व्यक्ति हूं,
0: जी
1: और मुझे एक गीत बहुत पसंद है, किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी का, आराधना फिल्म से। कोरा कागज था ये मन
0: मन
1: मेरा,
0: मेरा
1: लिख लिया नाम पे
0: इसमें
1: तेरा।
0: तेरा, तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: जी।

0: एक कोरा कागज लेखक के सामने भी होता है और तभी
1: जी
0: वो अपने मन की बात उस कागज पर लिखता
1: जी
0: है।
1: जी
0: राडी
1: जी
0: साहब,
1: जी
0: व्यंग की बात हम कर रहे हैं तो व्यंग में हास्य की उपस्थिति कितनी जरूरी है, क्या मानते हैं आप, और क्या व्यंग्य हास्य के बिना नहीं हो सकता?
1: जी आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा मंदाकिनी जी। यह हमारे व्यंगकारों में भी विमर्श का विषय रहता है। आप अगर कबीर के व्यंग देखें, जो कि स्वतंत्र व्यंग नहीं है, तो
0: जी
1: कबीर के व्यंग में कहीं आपको हास्य नहीं मिलेगा, बड़ी चुभन मिलेगी।
0: जी
1: भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के व्यंग हैं, उसमें हंसी मिलती है, हास्य है। परसाई के कुछ व्यंग ऐसे हैं जिसमें खूब हास्य है,
0: जी
1: जैसे आप रानी नागफनी की कहानी ले लीजिए, वो उपन्यासिका है। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, उसमें भी खूब व्यंग है। इंस्पेक्टर माता दीन के बाद इंस्पेक्टर राम बाबू की राम सिंह की ट्रेनिंग, उसमें भी हास्य है। लेकिन परसाई के भी यही ऐसे कई व्यंग हैं जिसमें हास्य नहीं है।
0: जी
1: प्रारंभिक दौर में हास्य व्यंग के साथ जुड़ा था तो अच्छा लगता था, धीरे धीरे हास्य का स्तर गिरता गया। हालांकि मैं हास्य को बड़ा जरूरी मानता हूं जीवन के लिए, हास्य एक मान्यता प्राप्त रस है हमारे यहाँ साहित्य में, हास्य होना जरूरी है। हास्य अगर उचित नहीं है, उसकी संगति ठीक नहीं है, तो वह व्यंग की तीव्रता को, गहनता को कम करता है।
0: जी
1: आपने मीम्स की बात की है, मीम्स हमको एक सेकंड के लिए मुस्कुराने के लिए विवश करते हैं, लेकिन हम अगले मिनट भूल जाते हैं। व्यंग वही बहुत दिन तक प्रभावशाली रहता है जिसमें गंभीरता होती है और हास्य कम होता है। अगर स्वाभाविक हास्य आ गया तो उससे परहेज नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि जबरदस्ती हास्य डाला गया है या यह समझा गया है कि व्यंग हास्य के बिना नहीं हो सकता है, तो मेरे ख्याल से यह भ्रम है। हास्य और व्यंग दो चीजें अलग अलग हैं, ये एक हो सकती हैं, लेकिन इनकी संगति, इनका साज ठीक होना चाहिए।
0: जी, बहुत बड़ी बात कही आपने, बिल्कुल
1: जी
0: सही कहा। तो राडी साहब, जब अभी हम बात कर रहे थे कि डिजिटल युग में जहां सोशल मीडिया पर मीम्स और छोटे छोटे
1: जी
0: व्यंग हमें देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिल रहे हैं, वहां छोटे छोटे व्यंग चल रहे हैं, ऐसे में पारंपरिक व्यंग के लेखन का भविष्य ये कैसा लगता है आपको?
1: जी पारंपरिक व्यंग का भविष्य, यानी हम जिसे कहें कि लंबाई वाले व्यंग,
0: जी
1: जो 4,000 5,000 शब्दों के होते थे या उससे बड़े भी होते थे, या 3,000 का भी मान लें, उनकी मांग घटती जा रही है। और खास करके कोई भी लेखक सोचता है कि जो लिख रहा है वो पाठकों के सामने जाए, क्योंकि लिखा जा रहा पाठक के लिए, जनता के लिए। उन तक पहुंचाने वाले जो माध्यम हैं, खास करके समाचार पत्र, उन्होंने इसकी लंबाई कम कर दी है। अब वो यहाँ तक हो गया है कि 250-300 शब्दों का व्यंग मांगते हैं। और कोई व्यक्ति अगर व्यंग लिख करके रखता जाएगा, पाठक तक नहीं पहुंच रहा है, तो उसके लिखने का कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए जो लंबे व्यंग हैं, वो कुछ पत्रिकाएं छाप तो रही हैं, या फिर आप उनको संग्रहों में डाल सकते हैं। आज का जीवन इतना तेज हो गया है कि लोग लंबी रचनाएं देखकर पढ़ने से कतराते हैं।
0: जी
1: हालांकि असली व्यंग उन लंबी रचनाओं में ही होता है, ठीक उसी तरह से जैसे टेस्ट मैच होता है।
0: जी
1: आप लंबी रचना में व्यंग कितना संभाल पाते हैं, ये देखने वाली बात होती है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत लंबे व्यंग भविष्य में ज्यादा चल पाएंगे। हाँ, यह है कि बहुत छोटे भी उसकी तीव्रता को कम करते हैं, मध्यम आकार के व्यंग चलते रहेंगे। एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा कि व्यंग में उपन्यास काफी लिखे गए हैं, लेकिन आज तक श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी का मुकाबला कोई कर
0: नहीं
1: नहीं
0: हो
1: पाया।
0: पाया। जी
1: ऐसा लगता है कि यह व्यंग अपने आप लिखा गया था, क्योंकि वैसा व्यंग उपन्यास कोई लिख नहीं पाया। कुछ और लोगों ने, हमारे समय के व्यंगकारों ने व्यंग उपन्यास लिखे हैं, ज्ञान चतुर्वेदी ने 7-8 व्यंग उपन्यास लिखे हैं, कई और लोगों ने लिखा है, नाम किसका लें किसका ना लें, वो श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी की तीव्रता उसमें नहीं आ पाई है। इसलिए मुझे लगता है कि उपन्यास तो चल जाएंगे अगर उसमें व्यंग के तत्व होंगे, लेकिन स्वतंत्र व्यंग बहुत लंबे भविष्य में चलने वाले नहीं हैं, थोड़ा मध्यम आकार के व्यंग चलते रहेंगे, मेरा अनुमान ऐसा है।
0: क्योंकि समय कम है लोगों के पास, और
1: जी
0: आप जैसे एक कैरिकेचर आता था या कार्टून एक कोने में अखबार के आता है,
1: जी
0: तो हम उसे देखकर और उसमें जो लिखा गया उसे पढ़कर मुस्कुराकर ही हम इतिश्री कर देना चाहते
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: क्योंकि गागर में सागर हमें उस कार्टून में मिल जाता है।
1: जी
0: तो आजकल का समय कुछ ऐसा आ गया है।
1: जी
0: तो हरिशंकर जी, जब बात चल रही है व्यंग की, आप
1: जी
0: व्यंग्य लेखक हैं,
1: जी
0: क्या व्यंग्य सभी पर लिखा जा सकता है या इसमें कुछ विषय वर्जित हैं या कुछ विशेष आवश्यक विषय होते हैं जिस पर लिखा जाना चाहिए?
1: जी ये आपने वाकई बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। व्यंग बहुत अधिक विवेक मांगता है। मुझे लगता है कि साहित्य की सभी विधाओं में सबसे चुनौतीपूर्ण, सबसे मुश्किल व्यंग लिखना होता है। इसमें विवेक की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि यह भी कहा जाता है कि व्यंग दोहरी मार करता, दुधारी तलवार है। व्यंग हमेशा सत्ता के विरुद्ध लिखा जाता है, लेकिन आजकल कुछ लोगों को भ्रम है कि सत्ता का अर्थ केवल किसी राजनीतिक दल से है जो किसी देश या प्रदेश में सत्तासीन है। वह सत्ता तो है निसंदेह, लेकिन राजनीतिक सत्ता के अलावा बहुत सारी सत्ताएं हैं। धर्म की सत्ता है, पाखंड की सत्ता है, अंधविश्वास की सत्ता है, सांप्रदायिकता की सत्ता है, यहां तक कि पंचायतों की भी सत्ता है, और कई बार परिवार में मुखिया की भी सत्ता हो जाती है
0: जी।
1: तो अगर सत्ता कोई विसंगतिपूर्ण कार्य कर रही है, जो समर्थ है वह विसंगतिपूर्ण कार्य कर रहा है, तो व्यंग उस पर लिखा जाएगा। व्यंग कभी भी किसी शोषित, वंचित, पीड़ित पर नहीं लिखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई भूखा व्यक्ति एक रोटी चुरा लेता है तो वह व्यंग का पात्र नहीं है, वह सहानुभूति का पात्र है। जो लोग समाज को देख रहे हैं, संभाल रहे हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, अगर उनके चरित्र में कहीं विसंगति है, पाखंड है, उनके विरुद्ध व्यंग लिखा जाना चाहिए। व्यंग सत्ता के खिलाफ होगा, लेकिन वह सत्ता जो जनता के या आम जन के खिलाफ होती है, उस पर व्यंग लिखा जाना चाहिए। कमजोर पर कभी भी व्यंग नहीं लिखा जाना चाहिए।
0: जी, जी। यानी कि विषय का चयन भी इसी आधार पर होता है कि हमने क्या चुना है।
1: जी, और मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि आप जो व्यंग लिखा है उसका उद्देश्य क्या है। व्यंग हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है। आप किसी ऐसी चीज पर व्यंग लिख दें, बादल पर व्यंग लिख दें, बादल उसको सुनने नहीं आ रहा, समझने नहीं आ रहा है। किसी पशु पर लिख दें, वो सुनने नहीं आ रहा, समझने, उसमें सुधार नहीं होना है।
0: मतलब वैचारिकता होनी चाहिए और वैचारिक बातचीत होनी
1: चाहिए। उसको आप प्रतीक मान करके लिख सकते हैं। किसी पशु को या किसी भी तत्व को आप प्रतीक बना करके व्यंग लिख सकते हैं, और वो संकेतों में अपनी बात को गंभीरता पूर्वक कह जाए। तो व्यंग हमेशा उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए, निरर्थक निर्देश नहीं होना चाहिए। साहित्य तो कोई भी नहीं होना चाहिए निर्देश।
0: जी, हरिशंकर जी, बात चल रही थी आपकी व्यंग लेखन पर और बातचीत तो हमारे बीच चल ही रही है।
1: जी,
0: तो एक गीत सुन लिया जाए इस बीच।
1: जी जरूर, कुदरत फिल्म का गीत है, किशोर कुमार जी का ही। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना।
0: क्या बात है?
1: ये मैं चाहूंगा कि आप सुनवाएं।
0: आई सुनते।

0: हरिशंकर जी,
1: जी,
0: तो आप शुरू में कहानियां लिखते थे, आपने कहा कि आप महिला प्रधान कहानियां लिख रहे थे, तो आपने एक गंभीर साहित्य के बजाय व्यंग्य विधा को क्यों चुना?
1: यह आपकी बात सही लगती मुझे कि यह भी एक विसंगति है या विडंबना है कि समाज में कुछ लोग अभी ऐसे हैं, साहित्यकारों में हैं, आलोचकों में हैं, जो व्यंग को गंभीर कर्म नहीं मानते। और मंदाकिनी जी, आपको जानकर के हैरानी होगी कि साहित्य में अभी व्यंग पर कोई बड़ा विमर्श या कोई बड़ा आलोचक नहीं हुआ है।
0: जी,
1: व्यंग का अभी कोई आलोचना शास्त्र नहीं बना है, क्योंकि कई बार तो कहा जाता है कि व्यंग बिरादरी से बाहर है, लेकिन व्यंग मेरा मानना है कि बहुत ही गंभीर किस्म का लेखन होता है, बहुत गंभीर साहित्य होता है। उसमें आपको भाषा की पकड़, कहने का ढंग, और जो व्यक्ति समाज को हानि पहुंचा रहा है उसको इस प्रकार से प्रहार करना होता है कि वो तिलमिला करके सुधार की तरफ अग्रसर हो।
0: जी, जी।
1: तो मुझे लगता है कि समाज को, साहित्य को सुधारने के लिए व्यंग का होना बड़ा जरूरी है, बशर्ते उसकी भाषा संतुलित हो, गहन हो और अपने लक्ष्य पर सीधा प्रहार करती हो, लेकिन वो प्रहार व्यक्तिगत रूप से नहीं होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि व्यंग एक बहुत गंभीर साहित्यिक लेखन है, वो किसी विधा से कमजोर नहीं है।
0: जी, तो हम समझ लेते हैं कि व्यंग्य केवल एक हास्य की विधा है
1: जी,
0: और स्त्री प्रधान कहानियां या एक गंभीर लेखन अलग किस्म का लेखन होता है।
1: जी,
0: तो इस भ्रम जाल को आपने हटाया है और मुझे लगता है कि जो श्रोता वर्ग आपको सुन रहा है इस बदलाव को, इस अंतर को समझ पाएगा।
1: जी, जी।
0: तो क्या पाठकों का व्यंग्य को समझने का नजरिया बदला है?
1: पाठकों के साथ एक समस्या ये होती है कि पाठक लेखक तो होता नहीं है, उसे हम जो देंगे वो वही लेगा। अगर उसके सामने अच्छे व्यंग जाएंगे तो अच्छे व्यंग पढ़ेगा, अगर उसके सामने खराब व्यंग जाएंगे, खराब व्यंग की श्रेणी में मैं उन व्यंग को रखता हूं जो कि सीधे सीधे किसी पर आरोप लगा देते हैं, सीधे शब्दों में शिकायत कर देते हैं, सीधे किसी दल, किसी पार्टी का नाम लेकर के उस पर आक्षेप लगाते हैं, ये व्यंग नहीं होता है। दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग आजकल ऐसा व्यंग लेखन कर रहे हैं। व्यंग हमेशा अंदर की सतह में जाके मार करता है, व्यंग प्रवृत्ति पर होता है, व्यक्ति पर नहीं होता है। यह बात पाठक को समझाना होगा और समझाने की जिम्मेदारी हम व्यंगकारों की है, पाठक की नहीं है। हम उसका स्तर उठा रहे हैं कि गिरा रहे हैं, यह हमें देखना है। दूसरा, थोड़ा सा मैं जो हमारे समाचार पत्र के संपादक हैं, पत्रिकाओं के संपादक हैं, उनको भी जिम्मेदारी देना चाहूंगा, वो किस तरह का व्यंग उनके पास पहुंचा रहे हैं, क्योंकि पाठक तो पहुंचाने सीधे जाएगा नहीं, वो संपादक को देगा। तो ये विवेक संपादक में होना चाहिए कि वह जिस व्यंग को प्रकाशित कर रहा है उसकी भाषा, उसकी शैली, उसका प्रहार कितना है। हाँ, ये जरूर है कि आज के जमाने में जब पाठक के सामने मोबाइल है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, उसको अपनी पसंद की चीजें तुरंत मिलती जा रही हैं, तो वह उतना महत्व लिखित साहित्य को नहीं देता है, लेकिन अगर उसको अच्छा साहित्य मिलेगा तो वो पढ़ेगा।
0: जी, जी। एक लेखक को कहते हैं कि यायावर होना चाहिए और उसकी जो यायावरी है, उसका जो घुमक्कड़पन है, उसे उसके दिमाग को खोलता है, उसकी लेखनी को खोलता है। तो क्या एक लेखक को यायावरी का शौक होना चाहिए?
1: जी, मंदाकिनी जी ने आपने तो मेरी बात का आधा उत्तर खुद ही दे दिया। लेखक नहीं, मुझे लगता है कि मनुष्य मात्र को यायावर होना चाहिए, घूमना चाहिए। हम किसी चार दीवारी में कैद होकर रह जाएंगे तो हमारे विचारों का, हमारे दृष्टि का विकास नहीं होगा। और हमारे यहाँ एक मुहावरा है और वो व्यंग्यात्मक मुहावरा है कि कुएं का मेढक होना।
0: जी,
1: ये मुहावरा अपने आप में व्यंग है,
0: कुएं
1: का मेढक होना। तो जब तक आप अपने परिवेश से बाहर नहीं निकलेंगे, यात्राएं नहीं करेंगे, दूसरी संस्कृति का आदान प्रदान नहीं करेंगे, तब तक आपका वैचारिक प्रवाह गतिमान नहीं होगा। आप जब घर से बाहर निकलते हैं, देखते हैं, समझते हैं, घूमते हैं, तो आपको नई संस्कृति, नए लोग, नई भाषा का दर्शन होता है और वहां पर आपको बहुत सारे विचार मिलते हैं। उन्हीं विचारों का पल्लवन हम साहित्य के रूप में करते हैं। हम कैद होकर के केवल मानसिक उड़ान से इतना अच्छा साहित्य नहीं लिख सकते हैं जितना कि हम घूम करके, देख करके कर सकते हैं।
0: जी।
1: तो मेरा मानना है कि एक लेखक के लिए यायावरी बहुत ही आवश्यक है।
0: लेकिन जो लोग यायावरी नहीं कर पाए, जो लेखक यायावर नहीं बन पाए, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनका लेखन किस तरह का रहा होगा? क्या उन्होंने उस बात को महसूस किया होगा, उस अभाव को, कि अगर वो यायावरी करके ये लेखन करते या ये रचनाएं करते तो शायद और ज्यादा दर्शकों के या पाठकों के करीब होते?
1: हमारे विश्व साहित्य की बात करूं मैं, तो कुछ लेखक या कवि हम कहें बहुत ही मेधावी हुए हैं, या उनको आप कह सकते हैं उनको प्रकृति प्रदत्त वरदान था। दिव्यांग थे जैसे हमारे यहाँ सूरदास
0: जी,
1: होमर जैसे कवि, इन लोगों ने तो यात्राएं नहीं की थी, लेकिन निश्चित रूप से इनकी जो छठी इंद्री थी वह कहीं हम लोगों से बहुत आगे थी।
0: जी, जी।
1: ऐसे लोग अपवाद स्वरूप होते हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अगर उनको हटा दिया जाए, ऐसे लोगों को हटा दिया जाए, तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो जो लोग समाज में खुले रहे हैं, घूमते रहे हैं, यात्राएं करते रहे हैं, उनके लेखन में जो विविधता मिलती है वो उन लोगों के लेखन में नहीं मिलती है। प्रायः अपवाद हो सकते हैं जो एक जगह स्थिर रहे हैं। यायावरी साहित्य में आप महापंडित राहुल सांकृत्यायन का नाम जरूर लेना चाहेंगे।
0: जी जी,
1: जिन्होंने अथातो घुमक्कर जिज्ञासा लिखी, जिन्होंने पूरे तिब्बत से लेकर के दक्षिण भारत यूरोप तक यात्राएं करके ग्रंथों को इकट्ठा किया, और मुझे लगता है कि यायावरी का उनसे बड़ा प्रेरणा स्रोत दूसरा कोई नहीं हो सकता
0: नहीं।
1: है, और यायावरी के कारण ही उनको इतनी भाषाएं आई और उन्होंने इतना बड़ा साहित्य लिखा। तो मुझे लगता है कि विचारों का पलवन
0: यायावरी से होता है। दैनिक जीवन में भी हम जितना ज्यादा घूमते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा कि जो लोग नौकरी करते हैं और जगह जगह ट्रांसफरेबल जॉब होती है, वो लोग ज्यादा खुलेपन से जी पाते हैं, बजाय पूरी जिंदगी एक ही शहर में जो लोग निकाल देते हैं।
1: निश्चित रूप
0: है ना,
1: निश्चित रूप से।
0: तो जब बात रचनात्मकता की आती है तो घूमना और घूमने के साथ साथ आपको हर एक चीज को समझना बहुत ज्यादा मदद करता है। तो राडी साहब, आपकी यायावरी पर भी अब हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपकी पसंद का एक गीत सुन लेते हैं।
1: जी जरूर।

0: के तले।
1: आपकी जो किताब आई है दर्शन दृष्टि और पांव
2: जी,
1: आपकी यायावरी है, इसमें एक यात्रा संस्मरण है आपका, ये इसके बारे में आप बताइए हमें
2: जी। या

0: प्रवृत्ति रही है और घूमना मुझे शुरू से पसंद था। यहाँ तक कि जब मैं अनौपचारिक यात्राएं करता था या मैं लेखक नहीं था, लेखक बनने के बाद मुझे लगा यात्राएं करता रहा कि इनको लिखना चाहिए, संस्मरण के रूप में इनको दर्ज किया जाना चाहिए। और जब मैंने यात्रा संस्मरण लिखना शुरू किया था तो आज की तरह तकनीक नहीं हुआ करती थी, तब यात्राएं मुश्किल थीं और गूगल बाबा नहीं थे, या रहे भी होंगे तो सामान्य जन तक पहुंच नहीं थी उनकी।
1: जी
0: किस जगह जाना है उसके लिए बड़ा श्रम करना पड़ता था, कैसे जाएंगे कैसे पहुंचेंगे ये सब देखना पड़ता था। और दूसरी बात यह थी कि जैसे आजकल है तो आप देख लें तमाम ऐसे टीवी चैनल्स हैं जो जगहों को दिखा देते हैं, तमाम लोग व्लॉगर्स हो गए हैं जो यात्राएं दिखाते हैं,
1: बिल्कुल
0: इसमें आप ऐसे भी सोच सकते हैं, फिर इस जमाने में यात्रा संस्मरण की क्या जरूरत है। लेकिन मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि यात्रा संस्मरण एक साहित्यिक विधा है और साहित्यिक विधा केवल मनोरंजन नहीं करती है, मनुष्य को सिखाती है, उसके हित की बातें बताती है। जब एक साहित्यकार यात्राएं करता है खास करके, तो वहां वो जिस जगह पे गया है वहां की संस्कृति, वहां की सभ्यता, वहां के खान पान, वहां के लोग को समझता है और समझ करके वह उनको अपने संस्मरण में दर्ज करता है। अगर हम उनको आज के जो सोशल मीडिया के साधन उनसे जोड़े तो आपको सूचनाएं तो मिल जाएंगी,
1: जी
0: लेकिन वह रस जो है जो संस्मरण में मिलता है, साहित्यकार के संस्मरण मिलता है, वो इसमें नहीं मिलेगा। मेरा मानना है कि यात्रा संस्मरण केवल सूचनात्मक नहीं होता है, वो रचनात्मक होता है। वह लोगों के एक दृष्टि देता है और जो उसको पढ़कर के यात्रा करता है उसकी भी दृष्टि खुलती है कि मैं जिस जगह पे जा रहा हूं मुझे क्या देखना है, मुझे क्या समझना है। तो इस तरह के जो यात्रा संस्मरण होते हैं वो संस्कृति को जोड़ते हैं, सभ्यता को जोड़ते हैं और जोड़ते हुए साहित्य को समृद्ध करते हैं। ये काम मैंने अपने यात्राओं में किया है और यात्रा संस्मरण किया है। मैंने मतलब हर तरह की यात्राएं की हैं, मैंने प्राकृतिक स्थलों की यात्राएं की हैं और धार्मिक स्थलों की यात्राएं की हैं।
1: जी
0: मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं सनातन धर्म के चारों धाम और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्राएं कर चुका हूं
1: जी
0: और वहां पर जा करके मैंने केवल आस्था की पूजा नहीं की है, वहां के जन समुदाय को, वहां की संस्कृति को समझने का प्रयास किया है। और मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि वो लोग कितने महान थे जिन्होंने पूरे देश में धार्मिक स्थानों को जगह जगह पर बनाया जिससे लोग इसके वशीभूत होकर के पूरे देश की संस्कृति को समझ सकें। नहीं तो ये स्थल एक जगह पर भी बनाए जा सकते थे। 12 ज्योतिर्लिंग जगह जगह फैले हुए हैं, चारों धाम जगह जगह फैले हुए हैं और इसके जो प्राकृतिक स्थल हैं उनका तो अपना आनंद होता है, प्रकृति जितना तो हमें कुछ दे ही नहीं सकता है।
1: जी
0: जी
1: तो दर्शन दृष्टि और पांव में आपने इन्हीं ज्योतिर्लिंगों का पूरा लेखा जोखा
0: जी
1: लिखा है।
0: हाँ, इसमें केवल ज्योतिर्लिंग नहीं है, आप जैसे शीर्षक से देखेंगी
1: हाँ,
0: दर्शन दृष्टि
1: दृष्टि
0: और
1: और
0: पांव,
1: पांव।
0: दर्शन इसमें मेरा श्लेष है, दर्शन उस ज्योतिर्लिंग या चारों धाम के जो विग्रह है मूर्ति उसके दर्शन से भी है, और जो जीवन दर्शन है वह दर्शन भी इसमें आता है। और उस स्थान को देखने की दृष्टि क्या है, उसको देखने की, उसको समझने की दृष्टि क्या है। क्या आप गए यात्रा किए धार्मिक स्थल पर गए हैं तो वहां आपने दर्शन पूजन किया और आ गए, प्राकृतिक स्थल पर गए हैं तो आपने एंजॉय किया और आ गए, चलते गए चलते आ गए, क्या यही है? नहीं, मेरा मानना है कि जहां आपने दर्शन किया वहां का जीवन दर्शन क्या है इस चीज को देखिए। आपने किसी पर्वतीय या किसी मनोरम स्थल का भ्रमण किया है तो उस पर आपकी दृष्टि क्या है। और पांव यात्राओं से जुड़े होते हैं, बेसिक चीजें हैं, आप जब यात्रा करते हुए अपनी मूल चीजों से जुड़े रहते हैं उसको संकेतित करता है पांव। इन सब चीजों को मिला करके मैंने धार्मिक स्थलों से लेकर के प्राकृतिक स्थलों की यात्राओं का वर्णन इसमें किया हुआ है।
1: काफी जगह आप गए,
0: जी
1: अंडमान निकोबार द्वीप
0: जी
1: समूह और मदुराई सिक्किम वगैरह,
0: जी
1: इन सभी जगहों पर आप गए, अजंता एलोरा पंचमढ़ी,
0: जी
1: इन
0: जी
1: सभी का आपने
0: जी
1: इसमें वर्णन किया है।
0: जी
1: बस एक काम आपने नहीं किया होगा जो
0: जी
1: आम जनता करती है कि कहीं भी हम जाते हैं और अपनी एक सेल्फी खींच लाते हैं।
0: जी जी जी
1: आज हमारा जितना भी उद्देश्य है वो यही है कि हम किसी भी धार्मिक या बड़े जगह जाकर सेल्फी जरूर खींच के आते हैं, इतना हमने कमाया है मुझे लगता है।
0: बड़ा आपने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। मैं देखता हूं कई बार धार्मिक स्थलों पर जाता हूं,
1: जी
0: ज्योतिर्लिंगों में जाता हूं, जहां पर मोबाइल फोन अलाउड है, कैमरा अलाउड है, वहां पर लोग लेके जाते हैं, एक मिनट दो मिनट के उनको दर्शन मिलता है, लेकिन वो खुद दर्शन करने के बजाय मोबाइल को दर्शन कराते रहते हैं। मैं कहता हूं भाई आपको ये चीज तो घर पे टीवी पे मिल जाएगी, आप दर्शन करने गए हैं, आस्था माने तो दर्शन करिए। दूसरी बात, अगर मैं पर्यटक स्थलों की बात करूं तो मैं कहीं प्रकृति में जाता हूं तो प्रकृति में मैं खो जाता हूं। प्रकृति मुझे बहुत प्रिय है, मुझे इस बात की आपको शायद मंदाकिनी जी विश्वास ना हो, मुझे भूल जाता है कि यहाँ फोटो भी खींचनी चाहिए।
1: जी,
0: आते आते टाइम एक दो फोटो खींच लेता हूं मैं, क्योंकि कहीं अपने यात्रा संस्मरण डालना होता है, दिखाना होता है, तो मैं प्रकृति को अपनी आंखों से देखना ज्यादा पसंद करता हूं बजाय मोबाइल कैमरे के।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और बस चलते चलाते एक गीत और सुनना चाहेंगे हम।
0: जी जरूर।

था जाने माने लेखक हरिशंकर राठी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होता है।

मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। अभी तक आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई की प्रसारण सेवा। 5 बजे हैं हमारी द्वितीय सभा के कार्यक्रम मीडियम वेव और FM पर अब एक साथ आरंभ हो रहे हैं। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कंपेयर्ड कार्यक्रम आज शाम

आचाम के सभी श्रोताओं को शाजिया परवीन का नमस्कार। उम्मीद करते हैं हमारे सभी श्रोता खैरियत से होंगे और इस खूबसूरत सी शाम को खूब इंजॉय भी कर रहे होंगे। श्रोताओं, आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

तेरे ख्यालों में खोए रहते हैं, दिन रात बस तुझे ही याद करते हैं। हमारी धड़कनों का हाल तुम ही पूछो जो हर पल सिर्फ तुम्हारा नाम लेते हैं। श्रोताओं, जीवन की सच्चाई है संघर्ष, और संघर्ष को नई दिशा देती है हमारी सकारात्मक सोच। क्योंकि जिंदगी को जीना है तो कुछ उसूल बनाने होंगे, मुश्किलें लाख आए, कदम हमेशा आगे बढ़ाने होंगे।

बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। रिश्ते वही हैं, अदाकार नए हैं, जज्बात वही हैं, जवाबदार नए हैं, मंच वही है, कलाकार नए हैं, जिंदगी वही है, किरदार नए हैं। मोहब्बत वो नहीं है जो लफ्ज़ों में बयां हो, बल्कि मोहब्बत तो वो है जो खामोशी में भी महसूस की जाए।

अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कंपेयर्ड कार्यक्रम आज शाम, ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 5:15 हुए हैं। प्रस्तुत है युवाओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब। स्वागत है आपका अपने प्रोग्राम युववाणी में। आज मैं हूं आपका रेडियो साथी नतांश अग्रवाल।
1: और मैं हूं आपकी रेडियो पार्टनर मेघा सक्सेना। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं अच्छे होंगे और इंतजार कर रहे होंगे आज के सवाल का। तो हमारा आज का सवाल है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
0: दोस्तों, सवाल एक बार फिर सुन लीजिए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस सवाल का सही जवाब देने के लिए आपको सर्च करना होगा आकाशवाणी रामपुर का फेसबुक पेज और आज के अपडेटेड पोस्ट के कमेंट सेक्शन में लिख भेजने अपने जवाब। सही जवाब देने वाले सभी साथियों के नाम अनाउंस करेंगे प्रोग्राम के अंत में। मेघा, क्या कभी सोचा है अगर पेड़ ना हो तो दुनिया कैसी होगी? ना ठंडी छांव, ना पक्षियों की चहचहाट, ना स्वच्छ हवा और ना ही हरियाली। सच तो ये है कि पेड़ सिर्फ प्रकृति की शोभा नहीं बल्कि हमारे जीवन का आधार है।
1: बिल्कुल सही नतांश, यही संदेश देने के लिए वन महोत्सव की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य केवल पौधे लगाना नहीं बल्कि लोगों के मन में प्रकृति के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी की भावना जगाना है।
0: दोस्तों, एक बड़ा पेड़ अपने जीवन काल में लाखों रुपए के बराबर पर्यावरणीय सेवाएं देता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है, ऑक्सीजन देता है, मिट्टी का कटाव रोकता है, भूजल संरक्षण में मदद करता है और असंख्य जीव जंतु का घर भी बनता है।
1: और आज जब जलवायु परिवर्तन बढ़ता तापमान और प्रदूषण पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुका है, तब हर पौधा उम्मीद की एक नई किरण बन जाता है।
0: लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखिए, वन महोत्सव सिर्फ पौधा लगाने का अभियान नहीं है बल्कि पौधा बचाने का संकल्प भी है। यदि लगाए गए पौधे की देखभाल ना हो तो हमारा प्रयास असफल हो जाता है।
1: सही कहा। इस सप्ताह आप भी अपने जन्मदिन, किसी विशेष अवसर या अपने किसी प्रियजन की याद में एक पौधा लगाइए। उससे भी ज्यादा जरूरी है उसकी नियमित देखभाल की जिम्मेदारी निभाना।
0: बिल्कुल। और अगर आपके पास जगह कम है तो चिंता मत कीजिए, आप गमलों में औषधीय पौधे, फूल या छोटे फलदार पौधे लगा सकते हैं। घर की बालकनी भी हरियाली से महक सकती है।
1: हर पौधा केवल धरती को नहीं बल्कि हमारे मन को भी सुकून देता है। शोध बताते हैं कि हरियाली के बीच समय बिताने से तनाव कम होता है, एकाग्रता बढ़ती है और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है।
0: तो आइए इस वन महोत्सव सप्ताह पर हम सब एक छोटा संकल्प लें, एक व्यक्ति एक पौधा और एक पौधा एक जिम्मेदारी, क्योंकि आज लगाया गया एक पौधा आने वाली पीढ़ियों के जीवन का आधार बन सकता है।
1: आइए मिलकर अपनी धरती को और अधिक हरा भरा, स्वच्छ और सुंदर बनाएं।
0: पेड़ लगाइए, पेड़ बचाइए,
1: क्योंकि हरियाली है तो खुशहाली है।
0: दोस्तों, अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, हम फिर लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि उस ब्रेक के उस पार भी है बहुत कुछ खास।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम में। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं हमारे दैनिक सेगमेंट कुछ खास है आज के साथ।
1: कुछ ख्वाबों की बात,
2: कुछ अपनों का साथ,
1: नरम धागे से बंधे कुछ पन्नी
2: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
1: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
2: वाकई कुछ खास है आज,
1: कुछ खास है आज।
3: दोस्तों, सेगमेंट कुछ खास है आज में आज हम बात करेंगे ऐसे महान चिकित्सक, शिक्षाविद और दूरदर्शी नेता की, जिनका जीवन, सेवा, समर्पण और मानवता का अद्भुत उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे विधान चंद्र राय।
0: डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्म 1 जुलाई 1882 को बिहार के पटना में हुआ था। बचपन से ही वे मेधावी और अनुशासित थे। उन्होंने चिकित्सा शिक्षा प्राप्त की और आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए, जहां उन्होंने कठिन परिश्रम से चिकित्सा की प्रतिष्ठित डिग्रियां हासिल की।
3: भारत लौटने के बाद उन्होंने अपना पूरा जीवन मरीजों की सेवा और समाज के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया था। वे केवल एक कुशल डॉक्टर ही नहीं थे, बल्कि एक संवेदनशील इंसान भी थे। उनका मानना था कि डॉक्टर का सबसे बड़ा धर्म है रोगी की निस्वार्थ सेवा करना।
0: चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के साथ साथ उन्होंने सार्वजनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे लंबे समय तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे और राज्य के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और आधुनिक नगरों के निर्माण में उल्लेखनीय योगदान दिया। उनके नेतृत्व में अनेक विकास योजनाएं शुरू हुई, जिनका लाभ लाखों लोगों को मिला।
3: दोस्तों, शायद आप जानते होंगे कि भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक डे मनाया जाता है। ये दिन डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि दोनों के रूप में मनाया जाता है। ये संयोग हमें उनके महान जीवन और चिकित्सा सेवा के प्रति समर्पण की याद दिलाता है।
0: उनके सम्मान में भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक भारत रत्न से भी सम्मानित किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि ज्ञान तभी सार्थक है जब उसका उपयोग मानवता की सेवा के लिए किया जाए।
3: तो दोस्तों, आइए आज हम सभी डॉक्टर विधान चंद्र राय के जीवन से प्रेरणा लें। चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हों, यदि ईमानदारी, मेहनत और सेवा भाव हमारे साथ है, तो हम भी समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, ये था सेगमेंट कुछ खास है आज।
1: कुछ ख्वाबों की बात,
2: कुछ अपनों का साथ,
1: नरम धागे से बंधे कुछ पन्नी
2: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
1: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
2: वाकई कुछ खास है आज,
1: कुछ खास है आज।
0: दोस्तों चलिए बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे, सुनते हैं इस शानदार गीत को।

0: दोस्तों मेगा तो वैसे ही बरसते रहेंगे, लेकिन अब आपको लेकर चलते हैं आज के स्पेशल सेगमेंट व्यक्तित्व विकास की ओर। व्यक्तित्व विकास के पहले सब सेगमेंट व्यक्तित्व विकास के जरूरी गुण में सुनवाते हैं आपको सेगमेंट। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं ऐसे गुण की जो मुश्किल रास्तों को भी आसान बना देता है, अंधेरे में भी रोशनी दिखाता है और हर हार के बाद फिर से उठ खड़े होने का हौसला देता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे आशावादिता की।
1: दोस्तों आशावादिता यानी हर परिस्थिति में उम्मीद की किरण देखना। इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, बल्कि इसका अर्थ है कि चुनौतियों के बीच भी यह विश्वास बनाए रखना कि सब कुछ बेहतर हो सकता है।
0: जरा सोचिए, अगर किसान बीज बोते समय यह सोच ले की फसल अच्छी नहीं होगी तो क्या वो मेहनत करेगा? अगर छात्र पहले से ही मान ले कि वह परीक्षा में अनुत्तीर्ण होगा तो क्या वह पूरे मन से पढ़ पाएगा? बिल्कुल नहीं। सफलता की पहली सीढ़ी ही आशा और सकारात्मक सोच है।
1: आशावादी व्यक्ति असफलता को अंत नहीं बल्कि सीखने का अवसर मानता है। वह हर कठिनाई से कुछ नया सीखने और आगे बढ़ता है। यही सोच उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।
0: जरा सोचिए, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, चिंता और निराशा बहुत आम हो गई है। ऐसे समय में आशावादिता हमें मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। सकारात्मक सोच रखने वाले रिश्तों को बेहतर निभाते हैं, आत्मविश्वास से भरे रहते हैं और अपने आसपास भी उत्साह का वातावरण बनाते रहते हैं।
1: तो दोस्तों अगर कभी जीवन में मुश्किलें आए तो याद रखिए, हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। अपने सपनों पर विश्वास रखिए, मेहनत करते रहिए और उम्मीद का दामन कभी मत छोड़िए।
0: जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आशावादी लोग रास्ते नहीं ढूंढते, वे नए रास्ते बना लेते हैं।

साथियों, अभी आपने सुना था व्यक्तित्व विकास का सब सेगमेंट आशावादिता। अब चलिए सुनते हैं नेक्स्ट सब सेगमेंट कौशल विकास की ओर।

0: साथियों, धरती हमारी है, जिम्मेदारी भी हमारी है, और अगर हम आज संसाधनों को बचाना सीख जाएं, तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य और भी सुनहरा बन सकता है।
1: जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे विचार की जो पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ आर्थिक विकास का भी नया रास्ता दिखा रहा है। इस सोच का नाम है सर्कुलर इकोनॉमी प्रैक्टिसेस, यानी चक्राकार अर्थव्यवस्था।
0: दोस्तों, हम अक्सर कोई चीज इस्तेमाल करते हैं और फिर उसे फेंक देते हैं। इसे यूज एंड थ्रो, यानी लेना, बनाना और फेंकना मॉडल कहा जाता है। लेकिन सर्कुलर इकोनॉमी हमें सिखाती है कि किसी भी वस्तु का अधिकतम उपयोग कैसे किया जाए, यानी रिड्यूस, रीयूज, रिपेयर, रिफर्बिश, रिसाइकिल, कम इस्तेमाल करें, दोबारा उपयोग करें, मरम्मत करें, नया रूप दें और फिर पुनर्चक्रण करें।
1: उदाहरण के लिए, पुराने कपड़ों से बैग बनाना, प्लास्टिक की बोतलों को गमले में बदलना, खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत करके फिर से उपयोग करना, या घर के जैविक कचरे से खाद बनाना, ये सभी सर्कुलर इकोनॉमी के शानदार उदाहरण हैं।
0: दोस्तों, इस सोच से केवल पर्यावरण ही नहीं बचता, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों की भी रक्षा होती है, कचरा कम होता है, ऊर्जा की बचत होती है और नए रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं। आज दुनिया भर में कई स्टार्टअप और उद्योग इसी मॉडल को अपनाकर पर्यावरण के साथ साथ आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहे हैं।
1: दोस्तों, अगर आप भी इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो शुरुआत अपने घर से करें। कपड़े का थैला इस्तेमाल करें, सिंगल यूज प्लास्टिक से बचें, पुराने सामान को फेंकने की बजाय दान करें या उसको नया रूप दें, और जहां संभव हो रिसाइकलिंग को अपनाएं, क्योंकि छोटे छोटे कदम मिलाकर बड़ा बदलाव ला सकते
0: हैं। तो दोस्तों, याद रखिए, धरती हमें विरासत में नहीं मिली है, बल्कि हमने इसे आने वाली पीढ़ियों से उधार लिया है, इसलिए इसे सुरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है।
1: और साथ ही साथ पर्यावरण का सम्मान कीजिए, संसाधनों का समझदारी से उपयोग कीजिए और सर्कुलर इकोनॉमी को अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाइए। दोस्तों, अभी आपने सुना हमारा सब सेगमेंट कौशल विकास। अब बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे, लेकिन उससे पहले एंजॉय कीजिए प्यारा सा गीत।

0: साथियों, अब बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे और सुनवाते हैं आपको नेक्स्ट सब सेगमेंट द वेलनेस जर्नी। साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे रोग की जो इंसान की सबसे कीमती पूंजी है, उसकी यादों को धीरे धीरे प्रभावित करता है। इस बीमारी का नाम है अल्जाइमर रोग।
1: हाँ दोस्तों, अल्जाइमर एक मस्तिष्क संबंधी बीमारी है जो मुख्य रूप से बुजुर्गों में देखने को मिलती है। इस रोग में व्यक्ति की याददाश्त, सोचने समझने की क्षमता और रोजमर्रा के काम करने की क्षमता धीरे धीरे कमजोर होने लगती है।
0: शुरुआत में इसके लक्षण बहुत सामान्य लग सकते हैं, जैसे कि नाम भूल जाना, सामान रखकर उसका स्थान याद न रहना या हाल ही में हुई बातों को भूल जाना। लेकिन समय के साथ ये समस्या बढ़ सकती है। व्यक्ति परिचित लोगों को पहचानने में कठिनाई महसूस कर सकता है, बातचीत में शब्द भूल सकता है और कभी कभी अपने ही घर का रास्ता भी भूल सकता है।
1: और दोस्तों, ये सिर्फ भूलने की बीमारी नहीं है, अल्जाइमर रोग व्यक्ति के व्यवहार, भावनाओं और निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए ऐसे मरीजों को विशेष देखभाल, धैर्य और प्यार की आवश्यकता होती है।
0: अभी अल्जाइमर का पूर्ण इलाज उपलब्ध नहीं है, लेकिन समय पर पहचान और उचित चिकित्सा से इसके प्रभाव को कुछ हद तक कम किया जा सकता है। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, पर्याप्त नींद, मानसिक गतिविधियाँ जैसे किताबें पढ़ना, पहेलियाँ हल करना और सामाजिक रूप से सक्रिय रहना मस्तिष्क को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं।
1: तो दोस्तों, अगर आपके परिवार में किसी बुजुर्ग को ऐसे लक्षण दिखाई दें तो उन्हें नजरअंदाज ना करें, समय रहते डॉक्टर से सलाह लें और याद रखें, अल्जाइमर से जूझ रहे लोगों को दवा के साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरत होती है आपके अपनेपन, सम्मान और धैर्य की। दोस्तों, अभी आपने सुना सब सेगमेंट द वेलनेस जर्नी। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट सेगमेंट सेकंड संतान की ओर, लेकिन उससे पहले सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

0: साथियों, बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे और सुनवाते हैं हमारा नेक्स्ट सब सेगमेंट शैक्षणिक संस्थान।
1: दोस्तों, अगर देश के पशु स्वस्थ होंगे तभी किसानों की मुस्कान बरकरार रहेगी, और इसी मुस्कान को सहेजने का काम करता है एक ऐसा संस्थान जो विज्ञान और सेवा का शानदार संगम है।
0: साथियों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बरेली शहर की शान भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान यानी IVRI की।
1: जब भी आप पशुओं के स्वास्थ्य, नई वैक्सीन, आधुनिक शोध या पशु चिकित्सा शिक्षा की बात करें तो IVRI का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। ये भारत का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1889 में हुई थी। बाद में इसका मुख्य परिसर बरेली के इज्जत नगर में विकसित किया गया।
0: IVRI का उद्देश्य केवल पशुओं का इलाज करना ही नहीं बल्कि पशुओं में होने वाली बीमारियों पर भी गहन शोध करना है, नई दवाइयों और टीकों का विकास करना तथा देश भर के पशु चिकित्सकों और वैज्ञानिकों को उच्च स्तरीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करना भी है।
1: आपको बता दें, यहाँ के वैज्ञानिक पशुओं में फैलने वाली अनेक संक्रामक बीमारियों की रोकथाम पर लगातार काम कर रहे हैं। उनके शोध का सीधा लाभ किसानों, डेयरी उद्योग, पशुपालकों और देश की खाद्य सुरक्षा को मिलता है। यही कारण है कि IVRI को पशु स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का अग्रणी संस्थान माना जाता है।
0: साथियों, अगर आपका सपना विज्ञान अनुसंधान या पशु चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाने का है तो IVRI आपके लिए सुनहरा अवसर हो सकता है। यहाँ स्नातकोत्तर, PhD और विभिन्न शोध कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को विश्व स्तरीय शिक्षा और अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं में काम करने का अवसर मिलता है।
1: IVRI का खूबसूरत और हरियाली से भरपूर परिसर, आधुनिक प्रयोगशालाएं, समृद्ध पुस्तकालय, पशु अस्पताल और अनुसंधान सुविधाएं इसे देश के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों में विशेष पहचान दिलाती हैं।
0: तो दोस्तों, अगली बार जब आप बरेली का नाम सुने तो सिर्फ झुमके ही नहीं बल्कि भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान जैसी वैज्ञानिक उपलब्धि को भी जरूर याद कीजिए। यह संस्थान न केवल पशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा कर रहा है बल्कि किसानों की समृद्धि और देश के कृषि विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
2: दोस्तों, ये था हमारा सेगमेंट संस्थान। अब सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

0: साथियों, अब समय है प्रोग्राम के अंतिम पड़ाव का और पूछे गए सवाल के सही जवाब को जानने का। हमारा आज का सवाल था, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। अब चलिए जानते हैं कि किन श्रोता साथियों ने दिए हैं हमें सही जवाब।
1: शारुन अंसारी, आकाश रस्तोगी, राजवीर सिंह यादव, विजय सिंह महोबिया, नानक खन्ना, चंचल खन्ना, सुदर्शन शाह, भगवत चौबे लाडला जी, आजन कुमार सिंह, नरेन नेताम, अजीत कसाना, जॉन दी कैसरो, चौधरी राजवीर सिंह, सिद्धार्थ गोंडने, अशोक सिंह, उत्तम सिंह जांघिल, सतीश रघुवंशी, अजीत भवसार, भाई रफत साहब, हीरामणि वर्मा, दिनेश वर्मा, किशन सपकाल, मसूर हसन, धर्मेंद्र छिपा, अनिल बी गोडके, बलवंत कुमार वर्मा, रमेश चौहान, भिरुलाल वक्तरे धाकर, राम कुमार रेवार, मास्टर विट्ठल सुरोशे, दिग्दर्शन गौण, मोहम्मद यासीन, मुजफ्फर अली खान, संजय ढींगिया, जगदीश धाकड़, हाजी गफ्फार खान, शाहजी भोडके, निसार सरमानी, राजू मिगलानी, नजमल हुडा जावेद, हल्के जयपाल यादव, रवि कुमार राहुल, सोहन जोशी, मोहम्मद अफजल ताज, जाकिर मंसूरी, हुकुम करम कर, नवी हसन अब्बासी, योगेश गुजराती, फागुराम यादव, लाल मोहम्मद अंसारी, प्रवीण चौहान, विनोद मूनत, सुरेश राठौड़, मोहम्मद आमिर अंसारी, सुरेश गगनेजा, मिसबा शमशी, मोहम्मद अनिस सिद्दीकी, गजनी एले, देवशंकर तामोरिया, राधेश्याम पांडे, मोहम्मद जाहिद अली, बीपी गौतम, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, विजय सुरलकर, मोहम्मद यासिन अंजन, अनोखे लाल, रियासत हुसैन सिद्दीकी, अब्दुल गफूर कौसर, गंगा सिंह रावत, नारायण प्रधान, मुकेश कश्यप, भूपेंद्र जुनेजा, आप सभी को सहयोग देने की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज का मौसम बारिश का हो रहा है और खूब बादल बरस रहे हैं, तो आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताइए हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम चिट्ठी आइए युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर। हमारा पिन नंबर है 244901।
1: आप हमें ईमेल के माध्यम से भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है patramelaairrampur@gmail.com। साथ ही साथ आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमें अपने संदेश भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9410087876।
0: अब दीजिए अपने रेडियो पार्टनर मेघा सक्सेना
1: और नतांश अग्रवाल को इजाजत।
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे युवाओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। प्रस्तुति थी नतांश अग्रवाल और मेघा सक्सेना की। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजे हैं, अब दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्र सरकार ने आज कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग के निर्माण शामिल है।
2: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है। ये प्रपोजल है जो आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया है।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 मानव दिवस का अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
2: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर्स का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर्स का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
1: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। श्री शाह ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया है कि वीबी जी रामजी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉक्टर साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक पीड़ितों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा टी20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 6:05 हुए हैं। सुनते हैं कुछ खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार पुत्र श्री हरि सिंह निवासी मिलक थाना हजरत नगर गढ़ी जनपद संभल, इन्होंने सूचना दी है कि इनकी पत्नी श्रीमती रीना, जिनकी उम्र लगभग 24 वर्ष, जो कि दिनांक 24 मई सन 2026 से बिना बताए घर से कहीं चली गई हैं व अब तक वापस नहीं आई हैं। इनका हुलिया रंग गेहुआ, कद लगभग 5 फुट, इन्होंने पैरों में चप्पल पहने हैं। यदि किसी सज्जन को रीना के संबंध में कोई भी सूचना मिले तो बताए जा रहे नंबरों पर सूचित करने का कष्ट करें। जसवंत सिंह उपनिरीक्षक थाना हजरत नगर गढ़ी जनपद संभल, मोबाइल नंबर 9058865472, नंबर एक बार फिर 9058865472। राजेश कुमार पुत्र हरि सिंह, मोबाइल नंबर 7814819730, नंबर एक बार फिर 7814819730। संजय कुमार थानाध्यक्ष थाना हजरत नगर गढ़ी जनपद संभल, मोबाइल नंबर 9454404058, नंबर एक बार फिर 9454404058।

सूचित किया जाता है कि सुमित पुत्र प्रेमपाल निवासी ग्राम सराय सिकंदर, जिनकी उम्र करीब 19 वर्ष, थाना बनियाठेर जनपद संभल के रहने वाले हैं, जो कि 29 मई सन 2026 7 बजे से घर से बिना बताए कहीं चले गए हैं, अब तक लापता हैं। इन्होंने काले रंग की जीन्स, लाल रंग की

0664, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली संभल जनपद संभल, मोबाइल नंबर 9454404055, नंबर एक बार फिर 9454404055, सूचना समाप्त हुई।

हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

अभी आपने सुना फिल्म दिल धड़कने दो से ये गीत। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म धूम थ्री से

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:20 हुए हैं। प्रस्तुत है किसानों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान साथियों को आपके भैया जसमिंदर
1: और अनिल भैया की
0: राम
1: राम।
0: राम। अनिल भैया
1: हाँ भैया,
0: कैसे हैं आप?
1: हम तो अच्छे हैं और हम उम्मीद करते हैं हमारे जो किसान भैया हैं वे भी अच्छे होंगे। और भैया देखो, हम मना रहे हैं आज वन दिवस।
0: बिल्कुल, वन महोत्सव दिवस जो है, वो जो सप्ताह है वो 1 जुलाई से प्रारंभ ही के और 7 जुलाई तक हम लोग इसको मनाते हैं।
1: बिल्कुल, भारत में प्रत्येक वर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह को वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है और इस अभियान के उद्देश्य से अधिक वृक्ष लगाने को उद्देश्य है
0: बिल्कुल,
1: और
0: और
1: लोगों में पर्यावरण संरक्षण करने हैं और उनके प्रति जागरूकता भी बढ़ाने हैं।
0: बिल्कुल भैया, वन केवल पेड़न को समूह ना होता है बल्कि हमारे जीवन को आधार होता है।
1: बिल्कुल
0: आपने देखी होगी कि शुद्ध हवा, स्वच्छ जल, वर्षा, उपजाऊ मिट्टी, वन्य जीवन को संरक्षण और
1: बिल्कुल
0: जलवायु संतुलन, जो सब जो है वो वन ही हमारे आधार हैं इसको।
1: और भैया देखो, वन महोत्सव सप्ताह के अवसर पर हमारे बहुत सारे किसान भाई वृक्षारोपण भी करते हैं और ये क्यों आवश्यक है और हम सभी इसे अपनो योगदान कैसे दे सकते हैं?
0: देखो भैया, आज आप देख रहे हो कि जो प्रदूषण है ना, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा हुआ है।
1: बिल्कुल
0: घटते भूजल स्तर और बढ़ते तापमान और अनियमित वर्षा जैसी जो समस्याएं आप आज देख रहे हो ना, जाको एक बड़ो कारण है कि वनन की जो लगातार कटाई हमारे देश में हो रही है वह है।
1: और भैया देखो, हमारे बहुत सारे किसान भैया जो है ना, देखो जाते हैं कि जैसे हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको स्वस्थ वातावरण अगर देना चाहते हैं तो हम आज से अधिक पेड़ लगाने होंगे और इस बात को विशेष ध्यान रखने हमारे
0: बिल्कुल
1: किसान
0: भैया,
1: भैया।
0: देखो अनिल भैया, जो आपने बात करी ना कि अगर हम अपने आने वाली इस पीढ़ी के लिए स्वस्थ वातावरण और सुरक्षित भविष्य देना चाह रहे हैं, जाके लिए भैया देखो, हमें एक परिपक्व वृक्ष अपने जीवन काल में हजारों लोगों के लिए उपयोगी ऑक्सीजन जाके साथ साथ छाया, फल, लकड़ी और पर्यावरणीय संतुलन प्रदान करता है।
1: बिल्कुल
0: इसलिए हर व्यक्ति को कम से कम ना अनिल भैया, एक पौधा तो हर साल लगाना चाहिए।
1: बिल्कुल, और किसान भाइयों के लिए हमारे बहुत सारे किसान भाई जो हैं उन्हें इस बात को विशेष ध्यान रखने हैं और हम अपने सभी किसान भाइयों को बता दें कि हम इस समय ना एक और योजना जो चल रही है ना।
0: उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं।
1: हाँ
0: बिल्कुल,
1: भाई
0: आपने सही बात कही। देखो भैया, हम जो बात आप कह रहे हो ना कि एक योजना के बारे में बात करना चाह रहे हैं, वो योजना है प्रधानमंत्री जनधन योजना।
1: बिल्कुल
0: आपने देखी हुई ना भैया, जा योजना को आज 11 वर्ष से अधिक को समय ही हुआ
1: बिल्कुल
0: और जा योजना की घोषणा जो ही ना
1: हाँ
0: 15 अगस्त 2014 को करी गई और इसे औपचारिक रूप से 28 अगस्त 2014 को लॉन्च करूंगा। और हम अपने किसान साथियों को बता दें कि वैसे तो हमारे किसान साथी सब जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना है का।
1: बिल्कुल, तो इसलिए हम अपने सभी किसान भाइयों से कहना चाहेंगे जो योजना है ना, जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है और हर जन जन के लिए है और सुना है कि हमारे बहुत सारे किसान भैया इस योजना को लाभ
0: ले
1: कैसे
0: सकते
1: ले
0: हैं।
1: लें, इसके लिए भैया देखो बहुत सारे जो नियम हैं उनको फॉलो करने हैं।
0: देखो भैया।

0: हम आपको बताए दें अनिल भैया, उनमें जो प्रमुख बातें हैं वो जो है कि न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता ना होती है जाको खाते में,
1: और जीरो बैलेंस खोल सकते हैं
0: बिल्कुल, यानी कि औसत जो मासिक शेष है ना वाको बनाए रखने की कोई बाध्यता ना होती है
1: बिल्कुल।
0: जाके अलावा मुफ्त रुपे डेबिट कार्ड धारकों को भी रुपे डेबिट कार्ड की सुविधा प्राप्त प्रदान करी जाती है।
1: और इसके अलावा भी अगर दुर्घटना बीमा जो हमारे किसान भैया है ना उसको भी उन्हें लाभ मिलता है, 2,00,000 रुपए तक की दुर्घटना बीमा कवर इसमें है।
0: और भैया जाके अलावा एक सुविधा और है, ओवरड्राफ्ट सुविधा।
1: अच्छा,
0: खाता धारकन को बिना किसी शर्त के 10,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त होती है।
1: बिल्कुल, तो इस तरह से हमारे किसान भैया जो हैं इसको लाभ ले सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और भैया देखो, हम आज एक और दिवस मना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो कि हम अपने सभी किसान भैया को बताना चाहेंगे,
0: अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस।
1: बिल्कुल
0: भैया देखो, जौ को मनान को एक प्रमुख उद्देश्य है। आपने देखी हुई भैया, देखो जो हमारे फल है ना, प्रकृति को अनमोल उपहार है।
1: बिल्कुल,
0: ये न केवल हमारे शरीर को पोषण प्रदान करते हैं बल्कि किसानन की जो आय होती है ना उसको भी बढ़ाते हैं
1: और पर्यावरण संरक्षण भी करते हैं और ग्रामीण की जो अर्थव्यवस्था है ना उसको भी मजबूत बनाते हैं। और महत्वपूर्ण भूमिका जो है हमारे किसान भैन के, जो फल बेच कर उनकी जो जो आर्थिक स्थिति मजबूत होती है ना उसको भी निभाता है। अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस मनाने को उद्देश्य जो है ना लोगों में फलों के महत्व के प्रति जो है जागरूकता करना है।
0: बिल्कुल,
1: और अधिक से अधिक फलों के सेवन और फलदार पौधों के रोपण के लिए उन्हें जागरूक करना।
0: देखो भैया, एक पंथ द्विकाज बात है कि अगर हमारे किसान साथी वन महोत्सव को हिस्सा बनाए और बामय फलदार वृक्षण को रोपण करें तो दोनों जो उद्देश्य हैं हमारे किसान साथी इनके भी सफल हो सकते हैं। यानी कि जो वन महोत्सव के थ्रू जो भी पर्यावरण असंतुलन ही रहा या फिर जो दिक्कतें हो रही हैं पैदा, वे भी सुरक्षित हो सकती हैं। और जाके अलावा भैया देखो, अगर फलदार पौधा लगावेंगे तो उनसे फल भी उनको आसानी से मिल जाएंगे।
1: बिल्कुल, तो इस बात को हमारे किसान भैया देख रहे हैं कि जो स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहने हैं उन्हें, क्योंकि खेतीबाड़ी को काम जो है ना बड़ी कड़ी मेहनत को होता है।
0: बिल्कुल,
1: फल हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखते हैं। फल हमारे शरीर के लिए आवश्यक विटामिन, खनिज, फाइबर और प्राकृतिक शर्करा के जो प्रमुख स्रोत हैं, और नियमित रूप से फल खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और शरीर स्वस्थ रहता है।
0: बिल्कुल भैया, देखो एक चीज़ और भी है, पाचन क्रिया को बेहतर भी बनाता है और जो हृदय से रोग संबंधित रोग होता है ना उनके खतरा को भी कम करता है, मधुमेह को भी नियंत्रण करता है। और भैया एक और जरूरी बात है कि जो मोटापा होता है ना वा को भी नियंत्रित रखते हैं। तो हम तो यह कह रहे हैं कि जो प्रमुख फल हैं, चाहे कोई से हो, आम हो, केला हो, अमरूद हो, संतरा हो, भैया देखो मौसम के अनुसार उनको सेवन जो है हमारे किसान साथी उनको करते रहना चाहिए।
1: बिल्कुल, तो इस तरह से अगर हमारे किसान भैया इन बातों को ध्यान रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि वे स्वस्थ रहेंगे।
0: बिल्कुल, आपने सही बात कही भैया। और एक चीज और हम अपने किसान साथियों को बताना चाहेंगे, अगर हमारे जो किसान साथी हैं अगर फलन की खेती करें तो हम समझते हैं कि उनको जो आय है ना उसमें भी बढ़ोतरी हो सकती है और कई सारी चीज़ें हैं वे आसानी से हो सकती हैं। लंबे समय तक नियमित आमदनी मिल रहेगी उनके लिए और रोजगार के अवसर भी हमारे किसान साथी इनके लिए बढ़ सकते हैं।
1: और यदि अगर किसान भाई आधुनिक तकनीकी से, जैसे अगर सिंचाई करें, उसमें ड्रिप सिंचाई है और मल्चिंग है, उच्च गुणवत्ता वाले जो पौधा है उनको संतुलित पोषण आहार, वैज्ञानिक छटाई अपनाएं, तो उत्पादन और गुणवत्ता दोनों को भी बढ़ाया जा सकता है।
0: भैया देखो एक और बात है जो तो आपने बताई थी, देखो फल खान के भी बहुत तरीका होते हैं।
1: अच्छा।
0: फल खाते समय कुछ बातों को हमारे किसान साथियों को या फिर बच्चन को ध्यान रखने हैं। फलन को अच्छी तरीका से धोए कर ही खाएं और जो कटे हुए फल होते हैं ना उनको लंबे समय तक खुले में ना रखें। मौसम के अनुसार जो स्थानीय फल हैं उनको अधिक खाएं, ऐसा ना हो भैया बेमौसमी फलन को ज्यादा सेवन करता ना आजकल तो देखी जाती है कि कई सारे प्रकार की जो समस्याएं हैं वे उत्पन्न हो जाती हैं, तो इन चीज़ों से बच सकते हैं। और अनिल भैया देखो, हमारे जो किसान साथी हैं वो
1: उनके लिए भैया देखो हम समय समय पर बहुत सारी जानकारी सुनवाते हैं। आज भी एक जानकारी लेकर आए हैं जो हमारे किसान भैया हैं, धान की बुवाई करते हैं और धान की बुवाई के बहुत सारे तौर तरीका हैं।
0: बिल्कुल,
1: किस तरह से उनको धान की बुवाई करने हैं, धान की सीधी बुवाई की देखभाल, जब इसे की विस्तार से जानकारी हम अपने किसान भाई तक पहुंचा रहे हैं, श्री संजीव कुमार जानकारी दे रहे हैं और इनसे बातचीत कर जानकारी जुटा रहे हैं भैया। फिर भी
0: और भैया देखो ना, आज आपने देखी बताई जो बात जानकारी दे रहे हैं, जो हम आज विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत आज कृषक भेंटवार्ता सुनवा रहे हैं, सफल कृषक से करी गई भेंट, तो आप सुनते हैं इनसे करी गई बातचीत।
2: किसान भाइयों, आज हमारे कार्यक्रम के बीच हैं श्री संजीव कुमार, जो कि प्रगतिशील कृषक हैं ग्राम खंडिया तहसील बिलासपुर जनपद रामपुर के, और ये पिछले 2-3 सालों से धान की सीधी बुवाई कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा अनुभव इनको इसमें है और इसीलिए आज हमने अपने कार्यक्रम में इनको आमंत्रित किया है। तो संजीव कुमार जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने ये विधि कहाँ से सीखी और किस तरीके से शुरुआत करी।
3: नमस्कार जी, मैं पिछले 3 साल से DSR कर रहा हूँ अपने खेतों में, और मेरे पास 2 मशीनें हैं DSR करने की, जिसके जरिए मैं किराए का काम भी करता हूँ, लोगों की किसानों को मतलब जागरूक भी करने का काम करता हूँ।
2: यहाँ पर हम सबसे पहले आपसे ये बात जानना चाहेंगे कि जो धान हम लोग करह बनाते हैं और इसमें धान सीधे बोते हैं
3: जी,
2: तो क्या अंतर आपको दिखाई दिया और किस तरीके से शुरुआत करी आपने?
3: अंतर तो आप स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे तो बहुत अंतर है, बहुत मतलब सहूलियत है उसमें DSR करने में। उर्वरक का खर्च है वो भी कम है, कीटनाशकों का खर्च भी कम है, लेबर भी कम लगती है
2: जी,
3: पानी भी कम लगता है, यानी एक तरह से माने किसान को सुकून है इसमें
2: जी,
3: पैसा तो, भी कम लगता है।
2: हाँ, तो कहाँ से सीखी आपने ये कला?
3: जी सीखना तो ये है कि हम YouTube पे देखते थे, मोबाइल पे देखते थे कि किस तरह से इस खेती को बदला जाए। हमसे पहले भी किसान कर रहे थे, काफी पहले से किसान कर रहे थे, करीब 8-10 साल से लोग कर रहे थे इस चीज को
2: जी,
3: लेकिन क्या है कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन हमने सर्च किया, कुछ अपने भारत में ऐसी वैरायटियां आई जो ST वैरायटियां थी।
2: अच्छा।
3: हाँ, हर्बिसाइड टॉलरेंस वैरायटियां थी और जिन पे वैज्ञानिक काम कर रहे थे, काफी समय से काम कर रहे थे, वो प्रोजेक्ट उन्होंने दिए लोगों को ट्रायल के लिए
2: जी।
3: एक ट्रायल हमें भी मिला था करीब 2022 या 23 में, एक ट्रायल मिला था किसी कंपनी का, प्राइवेट कंपनी का था
2: जी।
3: हाँ, तो हमने जब वो ट्रायल लिया तो उसका जर्मिनेशन जो था और ST वैरायटी होने के कारण उस पे जो हमने इमिजाथाइपर का प्रयोग किया उससे खेत बिल्कुल साफ हो गया।
2: अच्छा।
3: हाँ, फिर हमने देखा हाँ ठीक है ये लाइन चलेगी आगे, फिर हम उसी में जुड़ गए
2: जी,
3: और तब से लगातार हम DSR ही करते हुए आ रहे हैं
2: जी। तो इसकी अगर हम बात करें बुवाई की, तो किस तरीके से बुवाई करते हैं, किस तरीके से खेत तैयार करते हैं?
3: जी, बुवाई करने का तरीका सबसे बढ़िया जो तरीका है इसका, सबसे पहले आप खेत को जोत के लेवल कर लें, समतल कर लें लेजर लैंड लेबलर लगा के
2: जी,
3: उसके बाद जीरो ड्रिल मशीन से बुवाई करें। ये नहीं टाइन वाली जो खुरपी होती है नीचे लगी, उस मशीन से कदापि ना बोएं, वो बीज को गहरे में बो देती है, और जो जीरो ड्रिल मशीन है उसे बीज की गहराई को आप ऊपर ही रखें, बीज हल्का मिट्टी में छिप जाए, बस 1 इंच हद है इसकी, 1 इंच से ज्यादा गहरा ना जाने पाए।
2: अच्छा।
3: हाँ, इससे ज्यादा अगर जाएगा तो बीज जर्मिनेशन में दिक्कत करेगा धान का बीज।
2: तो ये धान का बीज जो आप बोते हैं तो वो सीधे बोया जाता है या कुछ भिगो के बोया
3: जाता है? नहीं, डायरेक्ट।
2: अच्छा।
3: अगर आप सूखे खेत में बुआई कर रहे हैं तो उसे डायरेक्ट बीज लें, अच्छा सीड हो और उसे मशीन में डालें, सीधा बो दें
2: जी। अच्छा, यहाँ पर यही मन में आ रहा है हमारे किसान भाइयों के कि जो सामान्य प्रजातियां जो चल रही हैं इनको बोना है या अलग कुछ प्रजातियां हैं?
3: नहीं, मैं जो DSR की स्पेशल वैरायटियां हैं, ST वैरायटियां जिन्हें बोलते हैं, हर्बिसाइड टॉलरेंस वैरायटी,
2: तो कौन कौन सी हैं वो?
3: वो 2 वैरायटियां तो हाइब्रिड में हैं, वो किसी प्राइवेट कंपनी की हैं
2: जी,
3: और 2 वैरायटियां अपना पूसा दिल्ली से लॉन्च हुई हैं
2: जी।
3: हाँ, उनका नाम है PB 1985 और PB 1979।
2: अच्छा
3: जी, ये तो दोनों, एक इनमें 1985 है, ये 15-09 सेगमेंट की वैरायटी है, और जो 1979 है ये 11-21 सेगमेंट की वैरायटी है फॉर DSR।
2: अच्छा, तो इस तरीके से हमारे किसान भाई इन प्रजातियों को ले सकते हैं
3: जी।
2: लेकिन देखने में ये भी आता कि कुछ किसान भाई हमारे जो सामान्य प्रजातियां हैं इनको भी बो रहे हैं।
3: देखिए, उसमें ये है जो ST वैरायटियां हैं इनमें रिस्क 0% है।
2: अच्छा
3: जी, DSR में इसमें रिस्क 0% है, और जो सामान्य प्रजातियां हैं नॉर्मल जो अपने कधर करके लगाते हैं
2: जी,
3: ये अगर आप DSR कर रहे हैं तो इसमें रिस्क 100% है और हर साल 100% रिस्क है
2: जी। लेकिन हमारे जो किसान भाई नए इस विधि से धान बोना चाह रहे हैं तो वो जो है जो आपने प्रजातियां बताई उनका चयन करें
3: जी, जी ST वैरायटियों पे जाएं
2: जी, और ये जो हमारी सामान्य प्रजातियां इनका चयन ना करें, क्योंकि शुरुआत जब हम करते हैं
3: जी,
2: तो बड़ी हम लोग कितने भी सावधान रहे लेकिन हम लोगों से उतना अच्छा काम नहीं हो पाता है जितना कि एक पुराना अनुभवी आदमी कर लेता
3: जी,
2: है
3: जी, जी।
2: जब अनुभव हमारे किसान भाइयों के पास हो जाएगा तो वो भी सामान्य प्रजाति बो सकते हैं।
3: हाँ, बो सकते हैं।
2: अच्छा, इस तरीके से हमारे किसान भाई मशीन से बोते हैं तो क्या पलेवा करके बोते हैं या सीधे बोते हैं?
3: नहीं, अगर आप एसटी वैरायटियों पे जा रहे हैं तो पलेवा करने का कोई चक्कर नहीं है आपको, सीधे आप खेत तैयार करिए, जोत के कंप्यूटर लेवल लगाइए उसमें और पीछे से बुआई कर दीजिए, फिर पानी

0: लगा दीजिए।
1: अच्छा, तो पानी लगाने के बाद जो है कुछ दवाएं डालनी पड़ती हैं या ऐसे ही काम चल जाता है?
0: जी, दवा डालनी पड़ेगी सर।
1: अच्छा, कौन सी दवा पड़ती है?
0: दवा एक तो आप उसमें पानी लगाने के बाद अपना पेंडामेथलीन का स्प्रे करें, और उसके करीब बुआई के और पानी लगाने के 12-13 दिन बाद इमीजाथाइपर नाम की दवा आती है,
1: अच्छा
0: और वो सिर्फ ST वैरायटियों पे ही करनी है।
1: जी,
0: नॉर्मल धान पे उसकी स्प्रे नहीं करनी, किसी भी कीमत पे नहीं करनी।
1: क्यों, इसकी वजह क्या है?
0: वो नॉर्मल धान को ख़त्म कर देगी,
1: अच्छा,
0: हाँ, जला देगी उसे।
1: जबकि जो आपके एसटी वैरायटी हैं इनको कुछ
0: हाँ,
1: दिक्कत नहीं
0: इनको
1: आएगी?
0: छोड़ देगी, इसे पहचानती है वो
1: अच्छा,
0: इमीजाथाइपर, इस धान को ST वैरायटी जो है इसे पहचानती है,
1: हाँ,
0: इसे छोड़ देगी, बाकी अदर वैरायटी को नहीं छोड़ेगी।
1: अच्छा। तो जैसे आपने बताया कि 10-15 दिन के अंतर पर जो है आपको ये दवा लगानी है इमीजाथाइपर, तो
0: जी
1: क्या उस समय धान जो है कितना बड़ा हो जाएगा? थोड़ा बहुत छोटा ही धान होगा उस समय
0: नहीं,
1: तो?
0: धान की कंडीशन पे नहीं जाइए आप। धान तो कितना भी बड़ा हो,
1: अच्छा, कितना भी छोटा
0: हाँ,
1: हो।
0: कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो,
1: हाँ,
0: उसका कोई इशू नहीं है। बस आपको घास का ध्यान रखना है,
1: अच्छा,
0: 2 पत्ती 4 पत्ती की अवस्था हो घास की, उसमें ये बिल्कुल बढ़िया कारगर है।
1: अच्छा,
0: हाँ, इमीजाथाइपर पूरा रिजल्ट, 100% रिजल्ट आता है उसका। जी
1: तो इस तरीके से हमारे किसान भाई इन प्रजातियों का चयन करें अगर धान की सीधी बुवाई कर रहे हैं।
0: जी
1: अब जैसे इस समय बुवाई हुई भी है,
0: जी
1: तो इस समय किन-किन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि उस विधि में और इस विधि में काफी अंतर है,
0: जी
1: तो किस तरीके से जैसे कीड़े और बीमारियां लगते हैं तो उनकी किस तरीके से रोकथाम करें?
0: देखिए प्रवीण भाई, इसमें एक तो इंसेक्ट कम आते हैं
1: अच्छा।
0: जी, और अदर जो बीमारियां हैं जो अपने कदर करके लगाते हैं उसमें आती हैं, इसमें कम आती हैं उसकी अपेक्षा।
1: जैसे जो पत्ती लपेटा गाता शुरू में,
0: हाँ
1: इसमें नहीं
0: हाँ
1: आता है?
0: इसमें अगर आपको उस धान में 2 बार स्प्रे करनी है तो इसमें एक ही बार होगी बस।
1: अच्छा।
0: हाँ, ये फ़र्क है इसका। दूसरा, इसमें जिंक की, इस धान में DSR वाले में
1: अच्छा
0: जिंक डालना है किसान को। दूसरा, फेरस सल्फेट की ज़्यादा कमी रहती है,
1: अच्छा
0: लोहा तत्व की ज़्यादा कमी रहती है, उसकी भी पूर्ति करनी है। बाकी कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है जो किसान ना कर पाए। शुरुआत में है, 1 साल किसान को समझने में लगेगा, उसके बाद सिरदर्दी है नहीं इसमें।
1: अच्छा, तो
0: जी
1: इस तरीके से हमारे किसान भाई कीड़े जो हैं जैसा लग जाए तो
0: जी
1: कौन सी दवा लगाएं? जैसे पत्ती लपेटक सबसे पहले लगता है।
0: जी तो ये दवा तो वही है जो अपना नॉर्मल धान में लगाते हैं, दवा वही लगनी है कीड़े की
1: अच्छा।
0: इसमें। जी, इसमें दवा जो है हर्बिसाइड दवा अलग है, बाकी इंसेक्टिसाइड हो गया, फंगीसाइड हो गया, ये तो सब वही लगेंगी जो पहले थी, पहले लग रही थी, पहले
1: अच्छा,
0: चल रही थी।
1: हाँ, तो इसमें दवाएं जो बाद में हम कीटनाशी हैं वो वही उन्हीं का इस्तेमाल करना
0: जी
1: है,
0: जी जी
1: अलग से कोई दवा नहीं
0: नहीं, अलग
1: है।
0: से कुछ भी नहीं है।
1: लेकिन बात यहाँ पर ये करेंगे कि इसमें रोपाई नहीं करनी होती है, सीधे धान बोया जाता है, तो क्या पानी भी हमें इसमें लगातार भर के रखना होता है या पानी समय समय पर लगाना होता है?
0: नहीं, इसमें नमी बना के रखनी है आपको, लगातार भर के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस नमी बना के रखिए आप। इन दिनों में मौसम ज़्यादा गर्म है तो आप ये मान लीजिए 5वें 6वें दिन पानी लगाना पड़ता है,
1: जी।
0: और ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें तानना है। कंप्यूटर लेवल खेत है आपका, इसीलिए हम कंप्यूटर लेवल के लिए सजेस्ट करते हैं किसानों को, ताकि क्या हो, पानी एक लेवल से चले, एक
1: हाँ।
0: बराबर खेत में पानी लगे, धान का जर्मिनेशन बढ़िया हो, और खाद दवा जो भी आप डाल रहे हैं वो एक लेवल से लगे, खेत में एक सार
1: अच्छा।
0: लगे।
1: तो देखो, आपको पुराना भी काफी अनुभव है, 2-3 साल से आप लगातार धान की सीधी बुवाई कर रहे हैं, तो अगर जिंक तत्व की कमी आती है तो क्या लक्षण होते हैं उसके, वो किस तरीके से उसकी स्प्रे करनी है या ऐसी खाद में मिलाकर डालना होता है
0: नहीं,
1: जिंक?
0: खाद में मिला के आप बखेर दीजिए उसे,
1: हाँ।
0: और लक्षण तो क्या है, पत्तियों से पता लग जाता है, पीली पत्तियां पड़ जाएंगी, कई पत्तियों के सिरे पीले पड़ जाते हैं, कई सारे लक्षण हैं, फेरस सल्फेट के भी लक्षण सेम दिखने लगते हैं खेत में। ये मान लीजिए आप, आपको ये दो चीज़ें खेत में डालनी ही डालनी है
1: अच्छा।
0: DSR में, जी, जिंक और फेरस सल्फेट।
1: अच्छा,
0: हाँ,
1: इनको अगर बुवाई करते समय डाल दें या बाद में डाला जाए?
0: नहीं, कभी भी डाल दें आप।
1: अच्छा,
0: हाँ,
1: उससे कोई दिक्कत नहीं
0: नहीं,
1: आएगी।
0: उससे कोई
1: कितनी
0: दिक्कत नहीं।
1: मात्रा डालनी चाहिए लोगों?
0: ये फेरस सल्फेट तो अलग अलग कंपनी की आती है, 2 किलो 3 किलो, जो जैसे दुकान वाला या कंपनी वाला सजेस्ट करे उस तरह से डालनी है।
1: अच्छा।
0: किसी की 2 किलो प्रति एकड़ की है, किसी की 3 किलो प्रति एकड़ की है, ये अलग अलग कंपनियां अलग अलग हिसाब से हैं। जी
1: तो इस तरीके से हमारे किसान भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, यहीं पर बात जानना चाहेंगे कि खाद जो है कितना डालना चाहिए? यूरिया का इस्तेमाल हमारे किसान भाई धान में ज़्यादा करते हैं, तो कितनी बार डालना होगा और कब कब डालना होगा?
0: DSR में यूरिया जो है 1 कुंटल 20 किलो, पूरे उसके एज में, धान की एज में 1 कुंटल 20 किलो से ऊपर नहीं जाना है किसी भी कीमत पे।
1: अच्छा।
0: हाँ, ये हाई है, इससे नीचे तो आप अपनी फसल को देख के आपकी फसल क्या कह रही है, उसे रिक्वायर्ड है या नहीं है आगे, ये नहीं हमने बता दिया 1 कुंटल 20 किलो तो किसान 1 कुंटल 20 किलो एक बार में ही डाल दे, ऐसा नहीं है। उसे 4 बार में डाले, 3 बार में डाले, 4 बार में डाले, 5 बार में डाले, लेकिन डोज इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए।
1: अच्छा, इतनी यूरिया देने से ही अच्छी फसल
0: हाँ
1: आपकी
0: बिल्कुल
1: बर्बाद करेगी।
0: जी
1: लेकिन यहाँ पर यह भी हम जानना चाहेंगे कि हमारे किसान भाइयों के मन में अब ये रहता है कि जो भी यूरिया देनी है वो बुवाई के या रोपाई के, इस समय हम बात करें 1 महीने के अंतर पर देनी है, तो
0: जी
1: इसमें कितने समय तक देनी ज़्यादा
0: आप
1: बेहतर
0: ये
1: रहेगी?
0: मान लीजिए बुआई के 20 दिन बाद शुरू कर दें, बुआई से 50 दिन तक इसे निपटा लें, 45 दिन 50 दिन तक यूरिया के काम को निपटा लें
1: अच्छा,
0: जी,
1: उसके बाद में यूरिया ना दें,
0: ना उसके बाद में यूरिया ना दें।
1: उसकी क्या वजह है?
0: उसकी वजह ये ज़रूरत ही नहीं है उसे, अगर आप ज़्यादा लेट यूरिया देंगे तो ज़्यादा बढ़ जाएगा वो और गिरने के चांस रहते हैं
1: अच्छा,
0: जी।
1: तो इस बात का हमारे किसान भाई ध्यान रखें। अच्छा, इसके अलावा देखने में ये भी आता है कि कुछ बीमारियां भी लगती हैं, जैसे लास्ट में जाके ब्लास्ट है,
0: शीत ब्लाइट है और भी
1: हाँ,
0: है बीमारियां
1: तो ये
0: हैं
1: बीमारियां जो हैं आती हैं, तो
0: जी,
1: इनकी रोकथाम किस तरीके से करते हैं, या इनमें कम आती हैं?
0: इसमें कम आती हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ, DSR में कम आती हैं बारे में बीमारियाँ, ये शीत ब्लाइट लास्ट वाली बीमारियाँ हैं ये, मतलब ये कहीं ना कहीं आप ये मानिए DSR करके आपने अपने खेत में जहर कम डालना है
1: अच्छा।
0: जी, केमिकल कम यूज करना है,
1: जी जी जी
0: ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी तो किसान बिना फालतू में क्यों डालेगा उसे
1: तो इसमें बीमारियां कम आती हैं, रोग भी कम
0: जी।
1: आते हैं, तो इस तरीके से हमारे किसान भाइयों का खर्चा भी कम होता होगा।
0: हाँ बिल्कुल, खर्चा कम है, जेब पे वजन कम पड़ता है, और जब आपकी यील्ड आएगी, यील्ड पे कोई फर्क नहीं है प्रवीण भाई,
1: अच्छा।
0: हाँ उससे ज़्यादा ही आएगी यील्ड, कम नहीं आएगी। पहले साल हो सकता है किसी किसान को अनुभव ना रहे, वो कोई गलती कर दे या कोई मिस्टेक ऐसी कर दे कि वो लॉस हो जाए उसका, बाकी ऐसा है नहीं
1: अच्छा,
0: जी।
1: जैसे मशीन से बोते हैं तो फिर तो लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी बराबर रहती होगी।
0: लाइन से लाइन की दूरी प्रवीण भाई इसमें 9 इंच फिक्स है,
1: हाँ
0: बाकी पौधे से पौधे की दूरी दो तरीके से बुआई करते हैं इसमें,
1: हाँ
0: एक तो नॉर्मल जैसे अपना लाइन से बखेरते हुए मशीन चली गई, और दूसरा स्टेप।
1: अच्छा।
0: हाँ, एक मशीन स्टेप सीडर है, एक नॉर्मल है। तो जो हमारा अनुभव है, हमने 2 साल स्टेप सीडर से बुआई करके और इस साल हमने स्टेप को हटा दिया है।
1: अच्छा।
0: हाँ, लाइन से ही बोया है, स्टेप जो मशीन हमारी स्टेप मारती थी 8 इंच पे, 7 इंच पे, 9 इंच पे, उसे हमने बंद कर दिया है।
1: अच्छा,
0: हाँ, डायरेक्ट बुआई करी हमने इस साल,
1: तो ये
0: अच्छा
1: ऐसा
0: खासा
1: क्यों किया आपने, क्या अंतर दिखाई दिया दोनों चीज़ों में?
0: अंतर यील्ड का फर्क आया जी।
1: अच्छा।
0: हाँ, स्टेप सीडर में और ये नॉर्मल सीडर में यील्ड का फर्क आया, करीब 2 से 3 क्विंटल 4 क्विंटल का फर्क आया था
1: प्रति एकड़?
0: प्रति एकड़
1: अच्छा, तो हमारे किसान भाई स्टेप विधि से ना अपनाकर जो
0: जी।
1: सीधे बुवाई कर रहा है
0: जी
1: उसको
0: जी
1: दें, तो
0: जी
1: इस मशीन में दोनों में ये दोनों ऑप्शन होते हैं
0: नहीं,
1: या?
0: दोनों ऑप्शन होते हैं एक ही मशीन में जी, अलग भी आती है और दोनों ऑप्शन एक मशीन में भी होते
1: जी
0: हैं।
1: जी कहते हैं स्टेप वाली में यह है कि पौधे से पौधे की दूरी मेंटेन हो जाती है, एक जगह 3-4 पौधे बीज गिरते हैं तो कल्ले भी अच्छे बन जाते हैं।
0: नहीं, वो देखने में लगता है प्रवीण भाई, कुछ दिन आप ये मान लीजिए 1 महीना बुआई से 1 महीना तक खेत आपको देखने में सही लगेगा,
1: हाँ।
0: उसमें फार्मर चाहे अपना कितना भी गणित लगा ले, लेकिन जो लास्ट में यील्ड है, मेन चीज़ तो यील्ड है ना, हम
1: जी
0: फसल कर
1: जी
0: रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, यील्ड के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो अंतर नज़र आएगा किसान को तब आएगा समझ में,
1: अच्छा।
0: और ये अंतर हम 2 साल में देख चुके हैं।
1: तो आप तो 2-3 सालों से कर रहे हो, तो कुछ मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें पानी की काफ़ी बचत होती होगी,
0: हाँ बहुत ज़्यादा,
1: हैं?
0: ये ऐसा मान लीजिए आप अभी इस साल बरसात कम हुई है तो किसानों को 2, 3, 4 पानी तक लगाने पड़ गए हैं लगातार, अगर हल्की हल्की बरसात होती रहे तो इसमें पानी लगाने की ज़रूरत ही नहीं है,
1: जी।
0: इसे तो नमी चाहिए बस, कोई भी फसल हो प्रवीण भाई डूब के पानी में नहीं रहना चाहती, उसे नमी चाहिए, और ये DSR में हम नमी पूर्ति करते हैं
1: अच्छा
0: जी
1: भाई, इसमें नमी आपको बनाए रखनी है जिस तरीके से हम
0: जी
1: गेहूं में रखते हैं उस तरीके
0: जी
1: से,
0: जी जी
1: और इसमें जब पानी कम रहता है नमी भी कम रहती है, तो क्या इससे कीड़े और बीमारियां भी कम लगते होंगे,
0: हाँ कम लगते हैं जी
1: क्योंकि उसमें बाद में जो तेला कीट लगता है
0: जी
1: वो
0: जी वो
1: ज़्यादा
0: इसमें नहीं
1: नमी की वजह से
0: आता,
1: लगता है, पानी भर जाता है फसल में?
0: DSR में नहीं आता जी, बिल्कुल नज़दीक ही नहीं आता इसके।
1: अच्छा।
0: हाँ, तेला कीट नहीं आता।
1: और ये जो कंडुआ की बीमारी भी काफ़ी लगती है धान में, तो क्या कंडुआ इसमें आता है या नहीं
0: हाँ
1: आता?
0: वो बिल्कुल आता है जी।
1: अच्छा।
0: हाँ, उसकी रोकथाम तो किसान को पहले करनी है, जैसे अपने दूसरे धान की फसल में करता है उस तरह से रोकथाम की मतलब स्प्रे इसमें करना है पहले, बाद में कंडुआ का कोई इलाज नहीं है जी।
1: अच्छा, इस समय हमारे बहुत से किसान भाई आपको सुन रहे हैं,
0: जी
1: क्या सलाह देना चाहोगे जिससे कि वो धान की अगर सीधी बुवाई करें तो किन किन बातों को ध्यान रखें जिससे कि वो अच्छी पैदावार ले सके?
0: सबसे पहली बात तो ये है कि आप ST वैरायटियों का ही चयन करें, देसी बीज पे ना जाएं, जो दूसरे बीज हैं अपने जो TPR करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, उन बीजों की तरफ ना जाएं। DSR अगर आपको करना है तो ST वैरायटियां ही चुनें, उसमें क्या है आपको रिस्क 0% है,
1: जी
0: कामयाबी 100% है।
1: हाँ
0: आपको शुरू में लगेगा कि हाँ हमने गलती कर दी, थोड़ा दिन ठीक नहीं लगता है खेत, लेकिन उसके बाद रिजल्ट बेहतर आते हैं इसके।
1: अच्छा,
0: जी
1: खाद की मात्रा कम ही रखनी है।
0: जी खाद कम रखनी है इसमें। 25 किलो DAP आप धान के साथ बुआई कर सकते हैं मशीन में, मशीन से डाल के।
1: जी
0: हाँ, उससे इसे बढ़िया जर्मिनेशन होगा। और 20 दिन बाद अपना यूरिया शुरू कर दें खेत में। 1 क्विंटल 20 किलो से ऊपर ना जाएं किसी भी हाल में।
1: अच्छा।
0: हाँ, वो नुकसान देगा फिर, वो बाद में हमें नुकसान देगा, उससे यील्ड घट जाएगी।
1: संजू कुमार जी, आप कार्यक्रम में आए और महत्वपूर्ण जानकारी किसान भाइयों को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अनिल भैया,
3: हाँ भैया।
2: देखो अभी हमारे किसान साथी ने जो सफल कृषक से करी गई भेंट सुनी, हमें उम्मीद है कि हमारे किसान साथी इनको पसंद जरूर आई होगी।
3: जानकारी को विषय हो धान की सीधी बुवाई की देखभाल, और जानकारी दे रहे हैं श्री संजीव कुमार, आपसे बातचीत कर जानकारी जुटा रहे भैया प्रवीण, और हम उम्मीद करते हैं हमारे बहुत सारे किसान भाई ने जानकारी सुनी होगी और जानकारी से लाभ भी लेंगे, क्योंकि अब देखो जा रहे हो कि ना जो धान की फसल है हमारे किसान भैया लगाते हैं उसमें लागत बहुत आ रही है,
2: बिल्कुल।
3: और जो लेबर खर्चा है ना बहुत ज़्यादा आ रहा है।
2: भैया
3: अब
2: देखो,
3: उसमें अगर सीधी बुवाई कर लेंगे ना तो बहुत सारे खर्चन को कम करो जा सकते हैं।
2: समय की भी बचत है, श्रम की भी बचत है, और जाके अलावा जो है ना भैया,
3: हाँ
2: आपने देखी हुई कि मुनाफा भी है, यानी
3: बिल्कुल,
2: कि लागत भी कम है। और भैया
3: आधुनिक कृषि यंत्रण को भी हमारे किसान भैया प्रयोग कर सकते हैं। अब आधुनिक कृषि यंत्रों में भी आपने जैसे नए फसल की धान की सीधी बुवाई कराई, मशीन से के द्वारा एक ही बार में दोनों चीज़ें धान की बुवाई और खाद एक ही बार में बोई दे जाता है,
2: पहुंच गया
3: उसमें रोपाई की जरूरत ना है।
2: भैया।
3: इसी
2: देखो
3: तरह से अगर
2: लेबर को
3: हम
2: कम कम काम कम ही हो भैया।
3: बिल्कुल, और इसी तरह से हम करें आधुनिक कृषि यंत्रों के प्रयोग के बारे में जानते हैं, तो आधुनिक कृषि यंत्रों में बहुत से कृषि यंत्र ऐसे हैं जिनसे जो है हमारी फसलों से बहुत सारे समय को और खर्च को और उसकी लागत को
2: कम कर
3: दोनों को
2: देते
3: कम करो जाए।
2: बिल्कुल भैया। जैसे हम रोटावेटर की बात करें, ट्रैक्टर से चलने वाला यंत्र है, हमारे सब किसान साथी जानते ही हैं, जैसे हम खेत की तैयारी करते हैं तो बहुत कम समय में और बहुत अच्छे तरीका से खेत को तैयार कर देता है। जाके
3: बिल्कुल,
2: अलावा भैया देखो, सीट कम फर्टिलाइजर ड्रिल है, जाके मदद से भी हम एक ही समय में बीज और खाद दोनों सही गहराई में और सही दूरी पर बोए सकते हैं।
3: और खेत को अगर समतल करने हैं तो उसके लिए कंप्यूटर मजा आएगा, वो भैया लेजर लैंड लेबरर, उसके द्वारा हमारे बहुत सारे किसान बहन के जो ऊंचे नीचे खेत है ना उसको समतल करो जा सकता है, और समतल करने से बहुत सारे फायदा भी है।
2: बिल्कुल भैया देखो, हमारे
3: आप अपने खेत में जब फसल को लगाते हैं तो आप अगर पानी एक जगह पाइप को रख देंगे
2: पूरे
3: तो
2: खेत में
3: पूरे
2: समान
3: खेत
2: रूप से पहुंच
3: समान
2: जाए।
3: रूप से पहुंच
2: और
3: जाए।
2: भैया देखो, पानी की अधिकता न हो ना कम लगाए,
3: बिल्कुल
2: पानी की आपकी बचत भी हो जाए। जाके अलावा भैया देखो, कुछ फसल सुरक्षा के लिए, फसल की देखभाल के लिए भी कुछ यंत्र हैं, जैसे स्प्रेयर और फॉगिंग मशीन, आपने देखी हुई कीटनाशक या फिर उर्वरक छिड़कन के लिए ना उपयोग करे जाते हैं, और जो हमारी जो फसलें हैं ना उनको बीमारियों से आसानी से बचा सकते हैं और अक्सर लेबर खर्च जो है वो कम कर सकते हैं।
3: बिल्कुल, इसी तरह से अगर देखो जाए कि जब बहुत सारे फसलों में खरपतवार आ जाते हैं उसको पावर वीडर द्वारा जो है अनचाहे जो पौधा है ना उनको निकालो जा सकता है, और बहुत से कम समय में जो है कृषि यंत्र इसको प्रयोग करके हमारी फसल को खरपतवार से मुक्त करो जा सकता
2: भैया देखो, यंत्र तो बहुत सारे हैं, जैसे कंबाइन हार्वेस्टर आता है,
3: है।
2: मल्टी क्रॉप थ्रेसर आती है, इन सबको भी प्रयोग करके हमारे जो किसान साथी हैं आज श्रम लागत और समय सबकी
3: दोनों
2: बचत
3: तीनों को
2: कर
3: बचा
2: रहे हैं।
3: सकते हैं। बिल्कुल,
2: तो भैया ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे किसान साथी अपने आधुनिक यंत्रण को प्रयोग करके और बचत कर रहे हैं। और अब अनिल भैया देखो, कार्यक्रम में समय है कुछ गीत संगीत को, तो अपने किसान साथियों के लिए आज का सुनवा रहे हो?
3: आज हम सुनवा रहे हैं गोरा बदन काली साड़ी सरता कक्कड़ जी की आवाज में
2: लोकगीत।

0: प्रवीण अनिल भैया,
1: हाँ भैया,
0: देखो अभी हमारे किसान साथी ने जो लोकगीत सुनो, हमें उम्मीद है कि हमारे किसान साथी को पसंद जरूर आओ होगा।
1: बिल्कुल
0: और
1: भैया।
0: अब बात कर लें कुछ कृषि संकेत की, और कृषि संकेत में आज को हमारा विषय जो है ना भैया, वो है बेल वाली जो फसलें हमारे किसान साथी ने लगाई है ना, उनकी देखभाल करने को।
1: और बरसात को मौसम है हमारे बहुत सारे किसान भाइयों के लिए, ऐसी जो सब्जी है ना बेल वाली, उनकी अगर सही से देखभाल ना करेंगे ना, तो देखो जाता है जो उनके फल हैं वे खराब होने लगता है।
0: बिल्कुल आपने सही बात करी।
1: बारिश ज़्यादा होती है तो इस समय कीड़ा मकोड़ा ज़्यादा होता है, कीट ज़्यादा लग जाता है,
0: और भैया जब
1: पत्तियों
0: वो
1: को खाए का नुकसान पहुँचाते हैं, फलन को भी खाए का नुकसान पहुँच सकते हैं, जैसे करेला, खीरा, ककड़ी, कद्दू, पेठा, टिंडा, परवल जैसी बहुत सारी बेल वाली फसलें हैं, इनकी देखभाल बहुत ज़रूरी है। और
0: भैया
1: अगर हमारे किसान भैया के खेत में जल ज़्यादा भर जाए तो उसकी जल निकासी को विशेष ध्यान रखना
0: भैया
1: है।
0: देखो, बारिश के मौसम में आम बात है कि खेत में पानी रुक जाता है और बड़ी समस्या हमारे किसान साथी इनके सामने आ जाती है। तो बेल वाली जो फसलन की जड़ें होती हैं ना, वो अधिक समय तक जो पानी रह जाता है ना खड़ो, वो तो
1: बिल्कुल।
0: वहाँ में सड़न लगती हैं, और जैसा का होता है जो पौधे होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं, धीरे धीरे सूखन लगते हैं। तो आपने लागत तो पूरी लगाई है अपने खेत में, लेकिन
1: बिल्कुल।
0: जब आपकी जो फसल है वो सूखन लग रही तो आपको नुकसान हो जाए। तो भैया जाके ले पानी तुरंत बाहर निकाल दें, और 24 घंटा से अधिक जो है वो पानी खेत में अगर भरो रहता है तो आपकी जो जड़ गलन की समस्या है ना,
1: बिल्कुल।
0: फफूंद जनित रोग हैं, बिनको खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जिस चीज़ को ध्यान रखें कि जल निकासी की व्यवस्था जरूर करें।
1: और अगर हम खरपतवारन की बात करें तो बहुत सारे खरपतवार भी आपने देखो होगा कि बरसात के मौसम में बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, और इन जो भी खरपतवार हैं इनको सबको निकालना बहुत ज़रूरी है। और ये जो है पोषक तत्व उनको बड़ी तेज़ी से लेते हैं,
0: बिल्कुल
1: पानी और प्रकाश को बहुत बड़ा हिस्सा जो है अपने उपयोग में ले लेते हैं।
0: बिल्कुल
1: देखो जाता
0: भैया
1: है हमारे बहुत सारे किसान भैया की जो मुख्य फसल होती है ना वह कमज़ोर हो जाती है,
0: बिल्कुल
1: इसलिए जो है खरपतवारन को तो बिल्कुल ही ना आने अपनी फसल में, और समय समय पर निराई गुड़ाई जरूर कर दें।
0: बिल्कुल। और एक चीज़ को और ध्यान रखें हमारे किसान साथी, जैसे जो बेल वाली फसलें हैं ना, उनको संभव हो सके तो मचान या बांस के सहारे ही ऊपर चढ़ावें। और फल जो होता है ना, अगर ऐसे काम करेंगे हमारे किसान साथी तो फल आकर्षक बन जाएंगे, रोगों कम लगेंगे। जाके अलावा जो फल है ना वो मिट्टी के संपर्क में नहीं आवेंगे, तुड़ाई में भी बहुत आसानी हो जाती है। और भैया देखो अनिल भैया ना, उत्पादन भी जिन्हीं चीज़ों से बढ़ता है
1: और हमारे किसान भैया एक बात को और ध्यान रखें,
0: वो कौन सी भैया?
1: संतुलित पोषण दें। संतुलित पोषण से होता क्या है, बहुत सारे हमारे किसान भाई वर्षा के कारण कई बार पोषक तत्व तो बह जाते हैं, और इस हमारी जो फसल होती है ना उसको समय समय पर संतुलित उर्वरक देना बहुत ही आवश्यक है।
0: बिल्कुल भैया
1: नाइट्रोजन की जो शेष मात्रा होता है वो दो तीन बार में दे दें, और पौधन में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी दिखाई दे तो जरूर वैज्ञानिक की सलाह से उसमें सूक्ष्म पोषक तत्व भी छिड़काव कर दें।
0: भैया देखो एक चीज़ और है, अत्यधिक नाइट्रोजन जो होती है ना बाको देन से भी बचना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा नाइट्रोजन डाल देते ना तो वो भी हमारे फसलन के लिए नुकसानदायक रहती है। तो देख लें संतुलित मात्रा को ही प्रयोग करें।
1: बिल्कुल। और अब बात आती है हमारे किसान भैन की जो फसलें हैं ना उनमें फूल और फल बनने को जो समय होता है ना उसमें कौन कौन सी बातों को विशेष ध्यान रखनी है।
0: बिल्कुल भैया
1: इस समय पौधों में जो नर और मादा होता है ना उनमें दोनों ही प्रकार के फूल आते हैं,
0: अच्छा भैया
1: और इसमें जो है मधुमक्खियाँ बड़ी सहायक हैं,
0: हाँ
1: और हमारी जो मधुमक्खियाँ हैं ना उनकी संख्या कम होती चली जा रही है, क्योंकि इस समय जो है फल फूल बहुत कम आते हैं तो परागण भी कम हो पाता है और फल कम बनते हैं।
0: भैया जाको कारण एक जय है कि जो हमारे किसान साथी हैं ना, भी भैया देखो जो रासायनिक दवाएं हैं ना, बहुत तेज रासायनिक दवाएं उनको छिड़काव कर रहे हैं,
1: और
0: चाहे
1: मधुमक्खी मर
0: हमारी
1: जाती हैं।
0: बिल्कुल भैया जब वो वापस बैठेंगी तो भी मर जाएंगी। तो एक चीज़ को ध्यान रखें हमारे किसान साथी, जब भी रासायनिक दवाओं को छिड़काव करें तो देख लें या तो बिल्कुल सुबह सुबह कर दें,
1: हाँ
0: यानी कि ओस छुटते ही तुरंत कर दें, या फिर शाम के समय जब थोड़ा ठंडो ही जाए मौसम ना,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: उस समय कराएं, क्योंकि उस समय जो है मक्खियाँ कम रहती हैं हमारे फसलन पर, तो
1: बिल्कुल।
0: नुकसान कम होगा।
1: आपकी बात बहुत सही है भैया, देखो जहाँ तक संभव हो ना सो शाम के समय करें, 5 बजे के बाद हमारे किसान भैया जब स्प्रे करेंगे, छिड़काव करेंगे ना, तो शाम के समय होत का है मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो अपने छत्ता में चली जाती हैं, उस समय जो है वो बाहर ना निकलती हैं।
0: बिल्कुल, तो भैया
1: इसलिए जो है मधुमक्खियों को भी बचाने हैं और अपनी फसल को भी बचाने हैं।
0: बिल्कुल भैया, और
1: दोनों ही काम जरूरी है।
0: जाके अलावा रोगन की पहचान और नियंत्रण आप आसानी से कर सकते हैं। बरसात में कई फफूंदी जनित रोग तेजी से फैलते हैं, तो उनको भी नियंत्रण आपको समय रहित करने हैं। कुछ कीट भी लगते हैं, जैसे फल मक्खी है या फिर जो मादा मक्खी होती है ना, वो फलन में अंडा दे देती है, बाद में जो कीड़े होते हैं ना वो फल के अंदर चले जाते हैं और वह गूदा को नष्ट कर देते हैं और देखी जाती है कि फल जो है वो सड़ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखने हैं, इनके भी उपाय आपको लगातार करते रहने हैं। किसान साथियों, जो तो ही कुछ बात हमारी कृषि संकेत में बेल वाली फसलों की देखभाल हमारे किसान साथी कैसे करें।
1: बिल्कुल भैया, देख ले कि हमारे किसान भैया है ना जो इस समय बेल वाली फसल लगाए हुए हैं, इसमें जो जानकारी हमने दी है उसके हिसाब से अपनी जो बेल वाली फसल को उगाएंगे तो जरूर लाभ मिला है। और भैया देखो, अब हम बता दें अपने सभी किसान भैया के लिए जो कल के कृषि जगत कार्यक्रम में का जानकारी सुनवाई जाएगी।
0: देखो भैया, चर्चा को विषय होगा पशुओं में टीकाकरण को महत्व, साथ ही सुनवावेंगे हम विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी गाँव में, क्षेत्र संकलित कार्यक्रम होगा ग्राम पंचायत संकलन विशेष।
1: बिल्कुल, और एक लोकगीत भी सुनवाओ जाएगा, और इसके अलावा जो है हमारे किसान भैया कृषि संकेत कार्यक्रम में जानकारी दी जाएगी धान में खरपतवार नियंत्रण।
0: और जाके अलावा हमारे किसान साथी भैया देखो, मौसम को अनुमान भी सुनवाओ जाएगा। और अब आज हम अपने किसान साथियों को देखो, मौसम की जानकारी तो हम आज भी दे दें अपने किसान साथियों के लिए। हाँ। तो अधिकतम तापमान की बात करें तो आज यानी कि कल लगभग 41 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहने की संभावना व्यक्त करी जा रही है, और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहने की संभावना व्यक्त करी जा रही है। वायुमंडलीय आर्द्रता लगभग 36% और हवा की दिशा पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा से हवा बहने की संभावना व्यक्त करी जा रही है।
1: इस तरह से तो कल को मौसम रहने की संभावना है, और समय हमें आप अनुमति ना दे रहे हो कि हम और बातें करें। तो इसी बातें के साथ अगले कार्यक्रम में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए अपने भैया अनिल
0: और

0: अभी आप सुन रहे थे कृषि जगत, हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 7 बजे हैं, प्रस्तुत है फोकस नेत्रालय बरेली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है।
1: फोकस नेत्रालय, जहां विश्व की सबसे आधुनिक अमेरिकन फेको मशीन से मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है, जो आयुष्मान के अंतर्गत फ्री में होता है। आंख में पड़ने वाले सभी प्रकार के देशी या विदेशी लेंस की सुविधा उपलब्ध, पर्दे, काला पानी, नासूर, पलकबंदी के इलाज की सुविधा। हर माह के आखिरी बृहस्पतिवार को रेटिना का क्लिनिक होता है, जिसमें पर्दे की जटिल समस्याओं का उपचार किया जाता है। फोकस नेत्रालय, राजेंद्र नगर, निकट डेलापीर तालाब, बरेली। डायल करें 9068805050। मोबाइल नंबर पुनः सुने 9068805050।
2: सच्चा मित्र वही है जो अपने दुख को पर्वत के समान बड़ा होने पर भी छोटा यानी धूल समान समझे, और मित्र के छोटे से दुख को भी मेरु पर्वत जितना बड़ा मानकर उसकी चिंता करे।
1: बहनों भाइयों, कीजिए स्वीकार रविंद्र मिश्रा का सप्रेम नमस्कार। जान है तो जहान है कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज कार्यक्रम में उपस्थित हैं फोकस नेत्रालय बरेली की वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
3: श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में विषय है आंखों में मोतियाबिंद। डॉक्टर साहब, ये मोतियाबिंद आखिर है क्या?
3: मोतियाबिंद के बारे में सबसे जरूरी चीज है जो मैं ये कहना चाहूंगी कि मोतियाबिंद जो है वो बीमारी नहीं है। मोतियाबिंद जो है वो आंखों के उम्र का बदलाव है। आंख जैसे शरीर बढ़ रहा है, उम्र के साथ में शरीर में बदलाव आ रहे हैं उम्र के साथ में, वैसे ही मोतियाबिंद भी एक आंखों का बदलाव है और बीमारी नहीं है। जैसे कि हम बड़े होते हैं, हमारी आंख में बदलाव होते हैं। सबसे पहले बदलाव जो शुरू होता है वो 35 से 40 के साल की उम्र में शुरू होता है, और उसको हम कहते हैं पास का नजर का चश्मा आना। ये पास का नजर का चश्मा जो है, इसको हम जो आता है, इस चेंज को हम कहते हैं प्रेस बायोपिया। ये प्रेस बायोपिया में क्या होता है कि हमारे जो आंख जो है पास का कोई भी काम पढ़ने में, उसको फोकस करने में उसकी क्षमता खत्म हो जाती है। ये क्षमता खत्म इसलिए होती है क्योंकि आंख का जो लेंस है वो थोड़ा सा टाइट होने लगता है, जिसकी वजह से जो रेज हैं जो रेटिना पे फोकस होनी चाहिए वो पर्दे पे फोकस ना होके पर्दे के पीछे फोकस होती है, और इससे हमें पास का देखने में दिक्कत होने लगती है। तो सबसे पहला जो आंख में 35 से 40 साल की उम्र में बदलाव आता है उसको हम कहते हैं प्रेस बायोपिया। इस प्रेस बायोपिया में आपको पास का देखने में दिक्कत होना खासतौर से शुरुआती दौर में, क्या कहते हैं, थोड़ा सा जब लाइट कम हो जाती है, आसपास के चारों तरफ की लाइट कम होती है तो देखने में ज्यादा दिक्कत होती है, जबकि वही चीज जब आप धूप में जाएंगे तो थोड़ा सा सही लगता है आपको। पास का पड़ेंगे अगर बहुत लंबे समय तक तो आंखों पे जोर पड़ना, आंखों में थकान, सर में दर्द, ये सारी दिक्कतें, और फिर क्या कहते हैं ये दिक्कतें आने लगती हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो 20 डायोप्टर के आसपास उसकी आंख में क्षमता होती है, वो दूर और पास का आंख जो है अकोमोडेट कर ले उसके हिस्से, लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे ये क्षमता खत्म होती जाती है और 60 साल की उम्र पे लगभग बिल्कुल क्षमता खत्म हो जाती है पास का फोकस करने के लिए।
1: जैसा कि आपने बताया कि देखने में तकलीफ होने लगती है, लेकिन आयु के साथ भी तो कुछ बदलाव होते हैं, तो कैसे जाने कि जो हमारे साथ बदलाव हो रहे हैं उम्र के साथ या मोतियाबिंद के कारण हो रहे हैं?
3: मोतियाबिंद भी और उम्र के बदलाव भी दोनों ही एक उम्र के बदलाव की श्रेणी में ही आता है। 35 से 40 के साल की उम्र में जब आपको पास का देखने में दिक्कत होने लगे, आंख में भारीपन लगने लगे, या आपको ये महसूस हो कि मैं घर के अंदर हूँ तो मुझे पढ़ने में दिक्कत हो रही है और बाहर धूप में पढ़ रहा हूँ तो मुझे हो रही, तो फिर आपको इसीलिए 40 साल की उम्र पे एक गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 40 साल पे आपको एक नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाकर अपनी आंख का इवैल्यूएशन कराना ही है। क्योंकि जो बहुत सारे बदलाव हैं, जैसे चश्मे का नंबर है, मोतियाबिंद है, काला पानी है, सब

0: मलवाई जिसको हम कहते हैं, सारे बदलाव शुरू होने लगते हैं जिसके लिए हमें एक बारी नॉर्मल रूटीन में 40 साल की उम्र में जाके दिखाना जरूरी रहता है।
1: जी, यानी साल में एक बार आंखों के डॉक्टर को जरूर अपनी आंखें दिखानी चाहिए, चेक करानी चाहिए।
0: बिल्कुल। अब इसी तरीके से जब हम आंखों में उम्र के हिसाब से बदलाव की बात कर रहे हैं, तो दूसरा जो बदलाव अब शुरू होता है, शुरू में तो 35 से 40 साल की उम्र में शुरू हुआ प्रेस बायोपिया, पास का चश्मे का नंबर आना। 45 से 50 साल की उम्र में शुरू होता है मोतियाबिंद का डेवलप होना। मोतियाबिंद जो है लेंस होता है, ये लेंस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ताकि रोशनी सारी की सारी पर्दे तक पहुंच पाए। लेकिन इसके जो बनावट में फाइबर्स होते हैं, ये फाइबर्स धीरे धीरे से कमी के कारण, न्यूट्रिशन की कमी के कारण, पानी की कमी के कारण, ये जो है कंडेंस होने लगते हैं, जिसको कहते हैं वो है, और
1: जी
0: सफेद होने लगते हैं, जिसकी वजह से सफेद मोतियाबिंद का डेवलपमेंट होता है और इसकी वजह से हमारे को धुंधलापन आना शुरू होता है। अब ये धुंधलापन मोतियाबिंद की वजह से है या ये धुंधलापन उम्र का बदलाव की वजह से है, इसके लिए एक बार ही आपको अस्पताल आके अपना इवेल्युएशन करवाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये दोनों में से किस कारण की वजह से है।
1: तो डॉक्टर साहब, किस तरह की जांचें होती हैं? क्या कोई ऐसी मशीन होती है या आप विशेषज्ञ लोग अपने आप ऐसे देख करके बता देते हैं?
0: जी, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन हम उसको कहते हैं। एक हमारे पास मशीन होती है, उसको उससे हम देखते हैं और उससे देख पाते हैं कि जो आंख में लेंस है वो लेंस में कितनी सफेदी आई है, कितनी सफेदी नहीं आई है। और इस एग्जामिनेशन के दौरान हमें पता चल जाता है कि जो रोशनी में कमी है वो मोतियाबिंद की वजह से है या ये रोशनी में कमी सिर्फ पास के चश्मे की वजह से है।
1: डॉक्टर साहब, पता चल गया कि मोतियाबिंद है, तो फिर आपकी क्या सलाह होती है मरीजों के लिए?
0: वो फिर से मैं कहूंगी कि उम्र का बदलाव है, मोतियाबिंद होना ही है, सबको ही होना है। तो जब मोतियाबिंद का पता चल जाता है कि मोतियाबिंद है, कितना है मोतियाबिंद इस पे डिपेंड करेगा कि हमें क्या आगे करना है। अगर मोतियाबिंद शुरुआती दौर पे है, शुरुआती दौर पे मोतियाबिंद जो है आपका चश्मे से उसमें आपको बेहतरी हो जाती है निगाह में और आपको बेहतर दिखने लगता है, तो कुछ समय के लिए आप चश्मा भी लगा सकते हैं, तब ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर हमने कह दिया आपको कि मोतियाबिंद आपकी आंख में है, अभी जरूरत नहीं है, तो आप बेफिक्र होके बैठ जाए, ऐसा नहीं है। तीसरे महीने आके आपको दोबारा से चेक कराने की जरूरत है कि मोतियाबिंद बढ़ तो नहीं रहा है। अगर मोतियाबिंद बढ़ रहा है या आप जो चश्मा लगा रहे हैं उस चश्मे से आपको फिर से धुंधलापन आ रहा है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि मोतियाबिंद अब बढ़ रहा है। वो तथ्य खत्म हो चुका है कि पहले कहा जाता था कि मोतियाबिंद पकाकर ही ऑपरेशन किया जाए। उस जमाने में मोतियाबिंद पकाया जाता था जिस जमाने में चीरा लगता था, जिस जमाने में टाका लगता था। जो हम अपना क्या कहते हैं ऑपरेशन कर रहे हैं, वो बिना टीके, बिना चीरे, बिना इंजेक्शन, बिना पट्टी के कर रहे हैं, और इसमें कोई भी चीरा ना लग के मात्र एक छोटे से छेद से ही मोतियाबिंद को निकाला जाता है। तो उसके लिए ये कथन बिल्कुल चेंज हो गया है, मोतियाबिंद जितना पकाया गया उतना ऑपरेशन कराने के बजाय अब ये सेंटेंस चेंज होके आ गया है कि मोतियाबिंद जितना कच्चा उतना अच्छा। तो आप जितने कच्चे मोतिया पे ऑपरेशन करवाएंगे आपकी रोशनी उतनी बेहतर आएगी, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए फेको विधि द्वारा, दूरबीन द्वारा जब हम छोटे से छेद से ऑपरेशन करा रहे हैं तो कच्चा मोतिया पे ही वो ज्यादा सक्सेसफुल है और तभी हमें करा लेना चाहिए, हमें पकने का उसका इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, आपने कहा कि बिना टाका, बिना पट्टी के, छोटे से निशान के द्वारा ऑपरेशन करते हैं, तो थोड़ा विस्तार से बताइए हमारे श्रोताओं को कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन आप कैसे करते हैं। हमारे श्रोताओं को ये भी बताइए कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन पहले कैसे होता था और अब कैसा होता है, क्या अंतर है पहले और अब में?
0: चीरा लगने वाले और बिना चीरे वाला ये ऑपरेशन है, इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। चीरे में हम क्या कहते हैं 6 से 7 mm का चीरा लगाया करते थे। उस चीरे लगाने से आंखों में लाली, गड़न, ऑपरेशन के बाद के परहेज, क्या कहते हैं ऑपरेशन के बाद चश्मे का नंबर का आना, ये सब क्या कहते हैं बहुत हुआ करता था। लेकिन जब से हमने इसको एक मात्र छोटे से छेद से द्वारा करने लगे हैं, तो क्या कहते हैं इसमें आंखों में हम जल्दी अपने ऑपरेशन के बाद अस्पताल अपने उसी दिन हमें अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है, फौरन ही 1 घंटे के अंदर बिना पट्टी के भी हम घर जा सकते हैं। फिर हम तीसरे से चौथे दिन ही अपने काम पर भी जा सकते हैं। इसलिए क्या कहते हैं जो टेक्नोलॉजी है वो पहले से काफी चेंज हो चुकी है। अब एक बात और ये भी है कि जब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो कहीं ना कहीं मोतियाबिंद का ऑपरेशन सर्जन के जो क्या कहते हैं कैलिबर है, क्योंकि सर्जन कितना अच्छा ऑपरेशन करता है, उसका हाथ कितना अच्छा है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिपेंडेंट होता है मशीनों पे भी। तो इसी वजह से हमने सबसे लेटेस्ट जो आप अमेरिका में मशीन पाएंगे वही मशीन हमारे पास भी अवेलेबल है। आपको कहीं पे भी जो विश्व स्तरीय जो क्या कहते हैं मशीनें और विश्व स्तरीय आंखों में

0: चश्मे की जरूरत पड़ती है।
1: डॉक्टर साहब, जिन लोगों ने मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया है, क्या उन लोगों को भी समय समय पर डॉक्टर साहब को आंखें दिखाने की आवश्यकता है, आंखों को चेक कराने की आवश्यकता है क्या?
0: नहीं, वो दे देता है, उसके बाद ज़रूरत नहीं होती है जब तक आपको अपनी दूसरी आंख के बारे में नहीं बनवानी हो। साल में एक बार दिखाना तब रहता है जब अगर आपको शुगर है, अगर आपको बीपी है, तो उसकी वजह से पर्दे में कोई बदलाव हो रहे हैं, या मोतियाबिंद के साथ साथ आपको समलवाई या काले पानी का अगर पहले कोई शक रहा हो या कोई दवाइयाँ चल रही हो तो दिखाने की ज़रूरत होती है। लेकिन मोतियाबिंद एक बार ही ऑपरेशन हो जाता है, बेहतर लेंस पड़ जाता है, तो दोबारा बार बार दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
1: क्या संदेश देना चाहेंगी जो उनकी रोशनी अच्छी रहे, क्या कहना चाहेंगी?
0: अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि इस मिथक को हमें नहीं अपने मन में रखना चाहिए कि मोतियाबिंद किसी ड्रॉप से कट जाएगा। हमें मोतियाबिंद का ऑपरेशन सही समय पर बेहतर लेंस के साथ, बेस्ट से बेस्ट लेंस के साथ, अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छे सर्जन से अपना मोतियाबिंद का ऑपरेशन कच्चे मोतिये पे ही करा लेना चाहिए।
1: डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आज हमारे श्रोताओं को मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बारे में इतने विस्तार से बताया, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रोताओं, वो भी क्या दिन थे जब दोस्तों के साथ महफिलें सजती थीं, यारों के साथ गप्पें तो यारों के साथ मस्ती हुआ करती थीं। वो दिन बहुत कोसते हैं जब बड़े होने का शौक था, बड़े हुए तो घर की जिम्मेदारियों ने घेरा, छोटे थे तो घर की दीवारों ने घेरा, और अब तो वो नींदें वो ख्वाब सब जैसे दीवारों में चुनवा दिए गए हों। कैसे लौटेंगे वो दिन?

0: और अब आज का जान है तो जहान है कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। रविंद्र बिश्ता को दीजिए अनुमति। श्रोताओं नमस्कार, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय। फोकस नेत्रालय, जहां विश्व की सबसे आधुनिक अमेरिकन फेको मशीन से मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है, जो आयुष्मान के अंतर्गत फ्री में होता है। आंख में पड़ने वाले सभी प्रकार के देशी या विदेशी लेंस की सुविधा उपलब्ध, पर्दे, कालापानी, नासूर, पलकबंदी के इलाज की सुविधा। हर माह के आखिरी बृहस्पतिवार को रेटिना का क्लिनिक होता है, जिसमें पर्दे की जटिल समस्याओं का उपचार किया जाता है। फोकस नेत्रालय, राजेंद्र नगर, निकट डेलापीर तालाब, बरेली। डायल करें 9068805050। मोबाइल नंबर पुनः सुने 9068805050। अभी आप सुन रहे थे फोकस नेत्रालय डेलापीर बरेली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है।
1: अभी आप सुन रहे थे फोकस नेत्रालय बरेली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है।

हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 7:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

अब से थोड़ी देर यानी 7:31 पर सुनिए सुगम संगीत के अंतर्गत प्रियंका ग्वाल के गाए कुछ भजन। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल आप सुनेंगे आज रात 8:00। चर्चा का विषय है ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आज रात 9:30 पर। मेरी माटी मेरा देश का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज रात 10:00। विषय है अल्पसंख्यक कल्याण। संकलन है शिखा दीक्षित का, आलेख मनोज कुमार का और प्रस्तुति अवधेश कुमार गौतम की है। समय याद रखिए आज रात 10:00। गीतांजलि अनुरोध गीतों का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आज रात 10:30 पर। भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना आप सुनेंगे कल सुबह 6:05 पर। कल सुबह 6:30 पर सुनिए कार्यक्रम आज का चिंतन। स्वास्थ्य संदेश आप सुनेंगे कल सुबह 6:35 पर। जानकारी देंगे डॉक्टर राम स्वरूप गंगवार। विषय है लहसुन का प्रयोग गुणकारी। श्री रामचरित मानस गान की भाग संख्या 346 आप सुनेंगे कल सुबह 6:45 पर। कलाकार हैं सुरेश वाटकर, अनुराधा पोडवाल और संगीत सतीश भाटिया का है। लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग में आप सुनेंगे मन्ना लाल यादव व साथियों की आवाज में कुछ लोकगीत। समय रहेगा कल सुबह 7:00। फिल्मी गीतों का इंफोटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे आप सुनेंगे कल सुबह 7:31 पर। इसमें आप सुनेंगे विश्व खेल पत्रकार दिवस और विश्व UFO दिवस। 102.9 मॉर्निंग हिट्स फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल सुबह 8:45 पर। ये थी आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 7:18 हुए हैं। अगला प्रसारण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से

0: हम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NH-34 के 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को दी मंजूरी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा ये प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, एयर कनेक्टिविटी से जुड़ेगा शहर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT की समय सीमा बढ़ी। 15 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपने का दिया गया समय। और विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन BBG अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से हुई लागू। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-34 के करीब 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को मंजूरी दी गई है। मीडिया को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की अनुमानित लागत 7,145 करोड़ रुपये है।
1: प्रोजेक्ट है, बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश में कानपुर से भोपाल का सेक्शन है, बीच में आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई 242 किलोमीटर का है। ये एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेसवे की तरह का है। 2.5 इयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा, तीन जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे। BOT टोल मोड पे इसको डेवलप किया जाएगा। अभी जो 3.5 घंटे लगते हैं कानपुर से कबराई, वो मात्र 1.5 घंटे रह जाएगा।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट PM गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज जिन विकास योजनाओं का शुभारंभ हुआ है, वो विकसित भारत की आधारशिला बनेंगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सहारनपुर को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा, जो यहाँ के विकास को और गति देगा।
2: दशकों से लंबित परियोजनाओं को पूरा करने का काम किया गया, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, रोड की कनेक्टिविटी, रेलवे की कनेक्टिविटी के साथ अब सहारनपुर अपना एयर कनेक्टिविटी के लिए भी तैयार हो रहा है। अपना स्वयं का एयरपोर्ट सहारनपुर के पास होगा। ये उड़ान सहारनपुर के नए विकास का आधारशिला बनेगी।
0: इससे पहले मुख्यमंत्री ने सहारनपुर के उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय इस्माइलपुर से राज्यव्यापी स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने सभी से अपील की है कि स्कूल चलो अभियान को जन आंदोलन बनाएं, जिससे भावी पीढ़ी समाज व राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके।
3: पिछले 9 वर्ष में 60 लाख से अतिरिक्त बच्चे बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़े, और ड्रॉप आउट रेट जो पहले 19-20% था, घट करके आज 3-4% तक रह गया है। स्वस्थ समाज के लिए कोई भी बच्चा स्कूल में जाने से वंचित न रहे। अगर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित है, और केवल परिवार की क्षति नहीं, समाज की भी है, राष्ट्र की भी है। यही बच्चे आगे बढ़ेंगे। हमें ऐसी फौज खड़ी करनी है जो राष्ट्र के कर्तव्यशील नागरिक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या तीर्थ क्षेत्र में दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल SIT की समय सीमा 15 जुलाई तक बढ़ा दी है। मामले के विभिन्न पहलुओं की गहन छानबीन के लिए SIT ने मुख्यमंत्री से अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार करते हुए उन्होंने SIT को आगामी 15 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। इससे पहले 23 जून को SIT के प्रमुख सदस्य लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपी थी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर

0: सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन बीवी जीरामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम लागू होने को एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। श्री चौहान ने कहा कि यह अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के रोजगार का वैधानिक अधिकार देता है।
1: आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। विकसित भारत जी राम जी योजना आज से लागू हो गई। हमारी कोशिश रही है कि ट्रांजिशन स्मूथ हो जाए। सभी राज्यों ने बजट में प्रावधान किया है। अकेले केंद्र सरकार ने 95,600 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस साल विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए रखी है। इसमें राज्यों का हिस्सा मिला लिया जाए तो ये 1,51,282 करोड़ रुपया होती है। इतनी विशाल राशि न केवल मजदूर भाइयों और बहनों को रोजगार देगी बल्कि विकसित गांव को बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
0: राष्ट्रीय औसत परिश्रमिक मनरेगा के 298.80 रुपए से बढ़ाकर विकसित भारत जीरामजी के अंतर्गत 327.40 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। इस प्रकार पारिश्रमिक दर में 10% से अधिक की औसत वृद्धि की गई है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जहां पहले मजदूरी 300 रुपए से कम थी वहां अब नई दरें लागू हो गई हैं। डिजिटल इंडिया अभियान के आज 11 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया अभियान ने सुशासन को नई दिशा और देश के समग्र विकास को गति दी है। इसने नागरिकों का सशक्तिकरण भी किया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सरकारी सहायता पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस सृजनशील योजना के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 11 वर्षों में डिजिटल इंडिया के माध्यम से शासन व्यवस्था अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनमोन्मुखी हुई है। इस अभियान के अंतर्गत डिजिटल भुगतान, DBT, UPI, डिजी लॉकर जैसी ऑनलाइन सेवाओं ने नागरिकों के जीवन को अधिक सरल, सुरक्षित और सुगम बनाया है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2026 की परीक्षा कल से 4 जुलाई तक प्रदेश के 60 जनपदों में 955 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा को निष्पक्ष और नकलविहीन ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: TET परीक्षा कुल 5 पालियों में आयोजित होगी। परीक्षा में करीब 19,94,661 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। इनमें लगभग 17,67,000 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के हैं, जबकि 2,27,481 अभ्यर्थी अन्य राज्यों से परीक्षा देने आएंगे। प्रदेश सरकार ने सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से शिक्षक पात्रता परीक्षा TET आयोजित करने का निर्णय लिया है। साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को परीक्षा के लिए विशेष अवकाश देने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के दौरान कहा कि प्रत्येक जनपद में स्थापित कंट्रोल रूम प्रभावी ढंग से सक्रिय कार्य करें। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी रखने और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ से 30 जुलाई तक चलने वाले प्रदेशव्यापी संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने संचारी रोगों से बचाव के लिए जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर जनपदों में मानसून सक्रिय रहा। सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर, बदायूं, सहारनपुर, संभल समेत कई जनपदों में भारी से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग ने कल प्रदेश भर में तेज हवाएं चलने, बिजली गिरने के साथ ही भारी बारिश का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NH-34 के 118 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को दी मंजूरी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेगा ये प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में 613 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा एयर कनेक्टिविटी से जुड़ेगा शहर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर दान प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी की समय सीमा बढ़ी, 15 जुलाई तक रिपोर्ट सौंपने का दिया गया समय। और विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन बीवीजी रामजी अधिनियम के अंतर्गत श्रम दरों में बढ़ोतरी आज से हुई लागू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 7:31 होने वाले हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इसमें आज आप सुनेंगे प्रियंका ग्वाल के गाए कुछ भजन।

0: और भी आज़ादी भारत की अलामत है, अपना तिरंगा भी अहिंसा के निशान में। उर्दू हो वो हिंदी हो वो इंग्लिश हो कि संस्कृत, कोई भी नहीं गैर मोहब्बत की ज़बान में।
1: आइए हिफाजत करें अपनी विरासत की
0: और मोहब्बत करें अपने वतन से।

0: फूलों का कुंज दिलकश भारत में एक बनाएं, हुब्बे वतन के पौधे इसमें नए लगाएं।
1: मिल मिल के हम तराने हुब्बे वतन के गाएं, बुलबुल हैं जिस चमन के गीत उस चमन के गाएं।
0: हम सब भी मिलकर गीत गाएं
1: अमन के भाईचारे के।

हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 8 बजे हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गाता चल।

सभी सुनने वालों को शाजिया परवीन का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म का नाम जिंदगी। फरमाइश आप सबकी पंडित नगला बाईपास कोहिनूर तिराहा के पास से डॉक्टर अख्तर हुसैन, बहारुन्निशा असलम हुसैन, डॉक्टर महमूद हसन, बीबीपुर से मकसूद हुसैन नाजिम अली, मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से भाई रफत साहब मंसूरी, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई, फिरोज़ा मुस्कान और नगमा नाज मंसूरी, लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, सरोजनी कुंती साहू, सरगुजा मेन पार्ट से सोनिया, सोनम, रेशमा, आदिबा, बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन, सरफुद्दीन, जेल रोड मथुरा से वसीम, अकरम, गांधी समाधि रोड रामपुर से गफ़ार खान, राजिया खान, सिमरन खान, रूमा खान, बॉबी खान, शमा खान, मिक्की खान, बुशरा खान, आसिम खान, ज़िला अस्पताल के पास से गज़न खान, शमा परवीन, शमशाद अली अज़म, गुलफशा, शहनाज बाबू अंसारी, रज़िया गफ़ार और हबीब अहमद इदरीसी। महाराष्ट्र बीड शहर से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया, केशव पटेल और रामनिवास अग्रवाल। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक वर्मा, आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, रितेश, कृष्णा और पिहू स्वर्णकार एवं समस्त परिवार। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभय नंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित व मोहित। जरूर वरुड़ महाराष्ट्र से बाबा साहेब वाड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कानीरे, कार्तिक और युवराज। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर ये गीत।

बेरड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सब्बा शेरे। यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार। मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार धंजे, विशाल कुमार धंजे, शीला धंजे, गायत्री धंजे। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद। डबवाली हरियाणा से जेके बोकोलिया, श्रीमती सुनीता बोकोलिया, संजय, अनिल, मीनू बोकोलिया। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा। बोराला धरण से दत्ता घायल, सुनीता घायल, गजानन घायल। जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नाज। सिराजपुर गणेशपुर से हिना कौसर, मोहम्मद वकील राही, फिरोज आलम और नाज प्रवीण। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत।

श्री रोगडेश्वर नगर पांगरा शिंदे तहसील वसमत जिला हिंगोली महाराष्ट्र से टेलर रामचंद्र धोंडीबा इंगोले, सिद्धांत इंगोले, टिकू इंगोले, रमाबाई सुरेंद्र इंगोले, मयूरी सुरभि मंजुषा गौतम इंगोले, नामदेवराव शिंदे पाटिल, मास्टर विलास शिंदे पाटिल, सुनील जबडे, अशोकनगर वसमत जिला हिंगोली महाराष्ट्र से दीपाली राजू ठोके, पार्वती सखाराम ठोके, रोहित सोनू मोनू ठोके, जीजा माता नगर हिंगोली महाराष्ट्र से लक्ष्मी उत्तम कांबले, तामसा रोड तहसील हदगांव से श्यामराव पटघणे, बेबी बिट्टू पटघणे, आशा रेडियो श्रोता संघ भैन नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर राही, श्रीमती सरिता गवाड़कर, प्रिंस एकांश गवाड़कर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से श्रीमती वैशाली शैलेश गवाड़कर, श्वेता सुमित गवाड़कर, ध्वनि गवाड़कर उर्फ परी, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाड़कर, प्रणीता गवाड़कर, लाडला गवाड़कर, करुला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान, नावेद खान, सिंधोली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, पुणे से पंकज बाड़ोदे, आर्या प्रियंका, जरूर वरूर से बाबा साहेब बाड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, चंद्रप्रभा बाड़ोदे, अफजलपुर पट्टी तहसील सदर जिला रामपुर उत्तर प्रदेश से राहुल गौतम, दिलीप सिंह, विशाल, चमनलाल मिस्त्री, रूमा मंजू, प्रियंका, शीतल, पूजा, कविता और आशु गौतम, जामरूनता अर्धापुर से दुर्गादास जोशी, गंगाधर जोशी, गजानन जोशी, संजय जोशी, आशीष जोशी, पृथ्वीराज जोशी, कुमारी साध्वी जोशी, परभणी हुन और गणेश हरगांवकर, मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साइदा रानी।

और हिना कौसर। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलविंदर बिरक, जयतेक बिरक और मीका बिरक। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा। चरडोंगरी पिपरिया जिला कबीरधाम से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, किशन साहू, जय कुमार, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी और माया साहू। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म शर्मिली से, फरमाइश आप सबकी। लेवक हेल मोहल्ला चांदूर बिस्वा से नारायण भाव विठल राव खर्चे, ललिता रानी खर्चे, परी संजना खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, ब्रोनो उषा सोरना खर्चे, स्वाति प्रियाग चौधरी और मालती चौधरी। बटिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग। पंजू सराय संभल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी, सईद मुख्तार अंसारी और असद अंसारी। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां। परी महल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, असलम सैफी। मीरा सराय बदायूं से आफरीन खान और ज़मीर खान। सरोचो कमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा सालिया, शोएब खान, मुश्तबा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। कोल्हापुर से तुषार कुर्णे, प्रसिक कांबले, एकता कांबले, मेघना कुर्णे, उत्कर्षा कांबले, अरुण यलगुणकर। इनके साथ हैं अतुल गौतमी धम्मदिना, अरुण काले, एडी कांबले। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनेद अब्बासी। डाबर तालाब लोनी से रजा अहमद, आरिश हुसैन, ईशान हुसैन, मरियम और बुशरा। नाज मंजिल महसूल सीतामणि बिहार से अक्रम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अक्रम, वसीम अक्रम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अक्रम, शमीम अक्रम, अमन अक्रम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, बच्चू शेख और चीना शेख। कोआत बिहार से शेख जफर हसन, नरगिस जफर। नूर महल महसूल से हुमेरा नाज, सुमेरा नाज, अबीहा नाज, अरहान बाबू, हमजा बाबू और मुजम्मिल बाबू। ज़िला मुरादाबाद संभल रोड बस्तौर से अता सिंह सैनी, मुन्नी पवित्रा, अजय सैनी, आंचल, आकांक्षा, आकाश, विक्की सैनी, छवि, दक्ष, देवव्रत सैनी, मानवी, रुद्र। मझोली से खमानी सिंह, हैरावती देवी और सभी सैनी परिवार। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत।

पोफाली जिला यवतमाल से जय राम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता जी। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांचल राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। बोरखेड़ा प्रामल जिला उज्जैन से विनोद मूड़त, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूड़त, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पंवार, दीक्षा कुश मूड़त। मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार, कुमारी सुजाता पोहरकार। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। चंदन नगर सातारा से सतीश वाघमारे, अतीश वाघमारे, स्वाति वाघमारे, वर्षा वाघमारे, श्रमण वाघमारे, श्रमेण वाघमारे। कोल्हापुर से विजय चेहवाण, तेजस्विनी चेहवाण, अंकिता चेहवाण, अनिकेत चेहवाण, माया चेहवाण। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और बाबू रैयांश ठाकुर। कोल सिटी बरका काना से अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी साहनी और मोहम्मद अफजाल इब्राहिमी। जमशेदपुर से डॉक्टर तस्नीम कौसर, डॉक्टर इशिता साहनी, डॉक्टर प्रियंका मोदी, डॉक्टर सोनम और अफजाल मलिक। मोहल्ला मज़ार चांदशामिया ज़िला रामपुर से मोहम्मद रमज़ान साहब, अदनान अली मंसूरी, अरमान अली मंसूरी, रायना चांदनी, फौजिया रोशनी, शायना काजल, अनमता और आशुभाई मंसूरी। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर फिल्म राजपूत से ये गीत।

ग्राम खंडिया गेट कॉलोनी जिला रामपुर से अमरजीत, शिवम, सुखलाल, अमरपाल, ऋषिपाल, सिद्धार्थ और यक्ष। औरंगाबाद महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोड़के, वैष्णवी घोड़के, गायत्री घोड़के, यज्ञेश घोड़के। मालियान सरदना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन, आदि जैन। ग्राम नागर कोहरा जिला राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी, आराध्या साहू।

पद्मा टाकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगला बेन शाह, राजेंद्र जी शाह। जिला अमरोहा से सोनू, मोनू, ललिता, सुनीता कुमारी वैष्णवी। छत्तीसगढ़ से हमें ये फरमाइश लिख भेजी है अजय, विजय, विकी, जूही, सुखलाल, पलक, मिस्टी। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर कसूर फिल्म से ये गीत।

और अब कार्यक्रम का अगला व अंतिम गीत फरमाइश आप सबकी। दिल्ली से डॉक्टर जोशी, उमा चंद्रा, सौरभ कुमार, नीत बोश, दीपक शर्मा, कृष्णा महातो। मेरठ से सिद्धेश चव्हाण, कृष्ण कुमार, केशव बनर्जी, राज देवी। जमलापुर से कृष्णा कुमार, इन्हीं के साथ हैं साजिदा, सुमैया, श्रेया कुमारी। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर कुमार सानू की आवाज़ में ये गीत, फिल्म का नाम आशिकी।

समय की कमी के कारण हम आपको ये गीत नहीं सुनवा पा रहे हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम गीत आपके गीत गाता चल अब संपन्न करने की शाजिया परवीन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत गाता चल। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 8:45 हुए हैं। अब दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: मार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कम्प्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है बीच में, आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबरई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा कंप्लीट, एक्सप्रेस वे की तरह का है। 2.5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा, 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे।
0: इस परियोजना से लगभग 1,20,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी रामजी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर दी है। एक रिपोर्ट।
2: वीबीजी रामजी योजना के अंतर्गत अब देश में कहीं भी तय की गई प्रतिदिन की मजदूरी 300 रुपए से कम नहीं होगी, जिससे राष्ट्रीय औसत मजदूरी 298.80 रुपए प्रतिदिन से बढ़कर 327.40 रुपए प्रतिदिन हो जाएगी। यह मजदूरी में 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी को दिखाता है। इस कानून को पूरे देश में लागू करने के अवसर पर कल आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में वीबीजी रामजी की औपचारिक शुरुआत, लाभार्थियों को ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड का वितरण, वीबीजी रामजी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का लॉन्च, अहम प्रकाशनों को जारी करना, लाभार्थियों के साथ बातचीत और कानून को असरदार ढंग से लागू करने के उद्देश्य से कई पहलुओं का उद्घाटन शामिल होगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृह मंत्री को बताया कि वह जनसांख्यिकीय परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। गृह मंत्री ने केंद्रीय गृह सचिव को समिति के दैनिक कार्यों और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों के दौरान हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने दिल्ली सरकार के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान और डेंगू की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। श्री नड्डा ने इस अभियान को गति देने के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। श्री नड्डा ने कहा कि व्यापक जनसंचार सुनिश्चित करने के लिए अभियान से संबंधित सभी संचार सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में होना चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में निरंतर बदलाव में विशेषज्ञों की भागीदारी, संस्थागत सहयोग, संवादात्मक शिक्षण और समयानुकूल विषय वस्तु पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि 21वीं सदी में सुशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता है जो निरंतर सीखने, प्रौद्योगिकी, नवाचार और जनभागीदारी के युग में आगे बढ़ने में सक्षम हों। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंची। उनकी ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगी। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। दोनों नेताओं के बीच वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जापान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से काम कर रहा है।
3: पूर्वोत्तर भारत में संपर्क और विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र जापान की स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र की परिकल्पना में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक सेतु का काम करता है। 2025 से अब तक जापान और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच कई उच्च स्तरीय दौरे हुए। इसी वर्ष फरवरी में जापान के विदेश मामलों के राज्य मंत्री इवाओ होरी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने मेघालय और असम के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की। इस वर्ष अप्रैल में मेघालय के मुख्यमंत्री जापान गए थे। इस यात्रा के दौरान एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में मेघालय के 5,000 युवाओं को जापान में कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और पाकिस्तान ने आज एक दूसरे की हिरासत में मौजूद सिविल कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान प्रदान किया। भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 कैदियों और 53 मछुआरों की सूचियां साझा की। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 कैदियों और 198 मछुआरों की सूचियां साझा की। भारत ने 188 भारतीय नागरिकों की रिहाई और 13 लोगों तक कौंसिलर पहुँच की मांग की। भारत ने पाकिस्तान के फरुखाबाद में 125 वर्ष पुराने पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा साहिब को ध्वस्त किए जाने की कड़ी निंदा की है। भारत ने इसे अत्यंत निंदनीय और बर्बरता का कृत्य बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों को निशाना बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। सरकार ने आज देश में व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू करने के संबंध में मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा को 3 दिनों के भीतर यूजर नेम फीचर के बारे में विस्तृत जानकारी देने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि इस मामले पर परामर्श पूरा होने तक यूजर नेम फीचर शुरू न किया जाए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि केंद्र सरकार राज्य में परिवहन ढांचे के विकास को विशेष महत्व दे रही है। आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉक्टर साहा ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के व्यापक विकास ढांचे से जोड़कर सड़क संपर्क को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश दौरे के दूसरे दिन राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से व्यापक वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। 4 जुलाई तक तटीय कर्नाटक, गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और विदर्भ में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच मुंबई में कल से तेज वर्षा हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।
2: बृहन्मुंबई महानगर पालिका के अनुसार आज सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच मुंबई के पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण अंधेरी, दादर सहित कई निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे यातायात और जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने कल के लिए पालघर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है और अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से शैलजा तिवले।
0: वस्तु और सेवा कर जीएसटी से सरकार को जून महीने में 1,94,812 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये पिछले वर्ष जून की तुलना में 13.9% अधिक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 444 अंक बढ़कर 76,923 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 140 अंक बढ़त के साथ 24,006 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 57 पैसे कमजोर होकर 95.24 रुपए पर बंद हुआ।
0: नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में आज फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा विथिका का अनावरण किया गया। पद्म विभूषण बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत की समृद्ध संगीत विरासत को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
5: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच श्रृंखला का पहला मैच आज रात 10 बजे चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 के मैच में आज रात 9:30 बजे इंग्लैंड और DR कांगो आमने सामने होंगे। देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा कल से शुरू होगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर पहुंच चुका है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और आवास सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल सुबह 4 बजे पहले जत्थे को रवाना करेंगे। 57 दिनों की यात्रा 3 जुलाई से नुनवान, पहलगाम और बालतल मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम देश भर में लागू। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें अधिसूचित की। सर्वोच्च न्यायालय ने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में एकरूपता लाने के लिए पीड़ितों की आय का आकलन करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 3 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज रात चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में राउंड ऑफ 32 में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला DR कांगो से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Government approves 2 major highway infrastructure projects in Delhi and Uttar Pradesh worth over 14,000 crore rupees. Vikasit Bharat G. Ramji Act comes into force across the country. Center notifies revised wage rates under the scheme. Supreme Court issues guidelines on assessing income of motor accident victims for uniformity in compensation claims. Prime Minister of Japan Sanae Takaichi arrives in New Delhi on a 3-day visit to India to take part in 16th India-Japan Annual Summit tomorrow. In men's cricket, India to take on hosts England in first T20 international 5-match series tonight. And in FIFA World Cup, England to face DR Congo in round of 32 at Atlanta in US tonight.

0: 1,969 करोड़ रुपए का दिल्ली में सुरंग से मुतालिक एक प्रोजेक्ट है जिसका मकसद बहुत ज्यादा ट्रैफिक को कम करना है। दूसरा प्रोजेक्ट 7,145 करोड़ रुपए के ग्रीन फील्ड शाहरा से मुतालिक है। ये शाहरा उत्तर प्रदेश में बनाई जाएगी। मरकजी काबीना के फैसलों के बारे में कौमी राजधानी में मीडिया से बात करते हुए इत्तिलात और नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने बताया कि इन प्रोजेक्टों का मकसद पीएम गति शक्ति कौमी मास्टर प्लान के तहत कनेक्टिविटी को बढ़ाना, सफर के वक्त को कम करना और इक्तिसादी सरगर्मियों को फरोग देना है। काबीना ने दिल्ली में कौमी शाहरा 148 AE पर 6 लेन वाली 8.1 किलोमीटर तवील सुरंग की तामीर को मंजूरी दी है जो द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज में नेल्सन मंडेला मार्ग से जोड़ेगी। काबीना ने उत्तर प्रदेश में कौमी शाहरा नंबर 34 पर 117.7 किलोमीटर कानपुर कबरई सेक्शन की तामीर को भी मंजूरी दी है जो 4 लेन वाली एक्सेस कंट्रोल राहदारी होगी जिसका ढांचा इस तरह वजह किया जाएगा कि इसे आसानी से 6 लेन वाला बनाया जा सके।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की यह टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 के तहत बढ़ी हुई उजरतों का इतलाक आज से मुल्क भर में हो गया है। देही तरक्यात की वजारत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक उजरत की शरहें तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में बढ़ा दी गई हैं। वजारत ने कहा है कि पहली मरतबा 300 रुपये यौमिया की उजरत की एक अबूरी बुनियादी शरह मुतारिफ कराई गई है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इस प्रोग्राम के तहत कोई भी नोटिफाइड उजरत इस सतह से कम ना हो। विकसित भारत जी राम जी के तहत कौमी औसत उजरत एमजी नरेगा के तहत 298 रुपये 80 पैसे योमिया से बढ़कर 327 रुपये 40 पैसे योमिया हो गई है जो कि 10% का औसत इजाफा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज रहनुमा खतूत जारी किए हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न की बुनियाद पर गाड़ी के हादसे में हलाक होने वाले मुतासरीन या दावा पेश करने वाले जख्मियों की सालाना आमदनी का तायुन अदालतें किस तरह करें। गाड़ियों के हादसे की सूरत में मुआवजों में यकसानियत लाने की गरज से एक अहम फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तनख्वाह पाने वाले अफराद के लिए पिछले बरस की इनकम टैक्स रिटर्न ही सालाना इनकम का तायुन करने के लिए काफी होगी। अपना रोजगार आप चलाने वाले अफराद के सिलसिले में अदालत ने कहा है कि पिछले 3 बरस में दाखिल की गई ITR में बताई गई औसत आमदनी को ही आमतौर पर रेफरेंस पॉइंट बनाया जाएगा। जस्टिस संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह ने कहा कि मोटर गाड़ियों के एक्ट के तहत सालाना आमदनी का हिसाब किताब लगाने के लिए कोई एक तयशुदा फार्मूला नहीं हो सकता, इसलिए उसने तनख्वाह पाने वाले मुलाजमीन और अपना रोजगार खुद चलाने वाले अफराद के दरमियान वाजह तफरीक कायम की है ताकि उनकी अपनी अपनी ITR की बुनियाद पर मुआवजे का तायुन किया जा सके। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आबादी से मुतालिक तब्दीलियों के सिलसिले में आला सतह की कमेटी से कहा है कि वो जल्द अज जल्द अपनी सिफारिशात पेश करे। नई दिल्ली में कमेटी के साथ एक मीटिंग के दौरान जनाब शाह ने यह हिदायत दी। कमेटी ने वजीर दाखिला को मुत्तला किया कि वो मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों का दौरा करेगी ताकि आबादी से मुतालिक तब्दीलियों के बारे में बर मौका इत्तलात हासिल कर सके और मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर सके। कमेटी ने जनाब शाह को बताया कि रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से मुतालिका मालूमात हासिल करने की गरज से एक तफसीली सवालनामा पहले ही तैयार किया जा चुका है जिससे उनके ये दौरे ज्यादा बामानी और ज्यादा तामुल पर मबनी हो सकेंगे। एक मुल्क एक इंतखाब से मुतालिक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के चेयरपर्सन पीपी चौधरी ने लोकसभा और रियासती कानून साज असेंबलियों के इंतखाबात एक साथ मुनक्किद करने की जरूरत पर जोर दिया। नई दिल्ली में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबात का एक साथ इनेकाद करने से हुक्मरानी का निजाम मुस्तहकम होगा, बार बार होने वाले चुनाव से खलल अंदाजी में कमी आएगी और ये मुल्क की मईशत के लिए फायदेमंद रहेगा। जनाब चौधरी ने कहा कि इंतखाबात का एक साथ इनेकाद कराने का ख्याल नहीं है और इंतखाबी कमीशन, लॉ कमीशन और माहिरीन पर मुश्तमिल दीगर इदारे बरसों से इसकी तजवीज पेश करते रहे हैं। एक मुल्क एक इंतखाब के

0: बयान में बताया कि भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 386 ऐसे शहरी कैदियों और 53 माहीगीरों की फहरिस्त उन्हें सौंपी जो पाकिस्तानी हैं या जिनके मुताल्लिक ख्याल है कि वो पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में मौजूद 52 सिविल कैदियों और 198 माहीगीरों की फहरिस्त सुपुर्द की जो भारतीय हैं या जिनके मुताल्लिक ख्याल है कि वो भारतीय हैं। भारत पाकिस्तान के जेर हिरासत शहरी कैदियों, माहीगीरों और उनकी कश्तियों और लापता भारतीय दिफाई अहलकारों की जल्द अज जल्द रिहाई के लिए लगातार जोर देता रहा है। श्री अमरनाथ जी यात्रा के यात्रियों का पहला जत्था जम्मू में भगवती नगर बेस कैंप में पहुंच चुका है और कल से सालाना यात्रा शुरू होने की तमाम तैयारियां हो गई हैं। तमाम जरूरी तैयारियां जिनमें बढ़ी हुई सिक्योरिटी और यात्रियों की रिहाइश के इंतजाम शामिल हैं पूरी हो गई हैं। ये 57 रोजा यात्रा ननवान, पहलगांव और बालतल के रास्ते सख्त सिक्योरिटी में जारी रहेगी। आकाशवाणी ने आज नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में वाकई रंग भवन ऑडिटोरियम में अपनी नशरियाती हाउस की फोटो गैलरी स्वर प्रेरणा विथिका का इफ्तिताह किया। इस फोटो गैलरी का इफ्तिताह पद्म विभूषण बांसुरी नवाज पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने किया। इस तकरीब के दौरान एक मौसीकी रेस कॉन्सर्ट का इनेकाद किया गया जिसमें पंडित रूपक कुलकर्णी ने बांसुरी की धुनों से मन मोह लिया। इस तकरीब के दौरान प्रसार भारती के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी और दूरदर्शन न्यूज के डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार जैन मौजूद थे। इस मौके पर मौजूद अफराद से खिताब करते हुए जनाब द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी ने भारत की फरावा मौसीकी की विरासत को महफूज रखने और फरोग देने में इंतहाई अहम किरदार अदा किया है।
1: आकाशवाणी ने हमेशा से ही अपने कार्यक्रमों में संगीत की सभी विधाओं को स्थान दिया है और संगीत में रुचि रखने वाले कलाकारों को प्रोत्साहन दिया है और साथ ही श्रोताओं की पसंद का भी विशेष ध्यान रखा गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, कर्नाटक संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत, पाश्चात्य संगीत, रवींद्र संगीत, इस प्रकार अनेक विधाओं के संगीत को कोई सुनना चाहे तो आज भी उनके लिए आकाशवाणी सर्वश्रेष्ठ माध्यम है।
0: मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के मैन T20 5 बैन अलावी मैचों की सीरीज का पहला मैच आज रात चेस्टरली स्ट्रीट में होगा। ये मुकाबला भारतीय वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगा। फुटबॉल में फीफा आलमी कप के प्री क्वार्टर फाइनल राउंड में आज रात एटलांटा में इंग्लैंड का मुकाबला जमहूरिया रिपब्लिक कांगो से होगा। और आखिर में बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए की मालियत के शाहराओं के बुनियादी ढांचे से मुताल्लिक दो बड़े प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। विकसित भारत जी राम जी एक्ट आज से मुल्क भर में नाफिज हो गया है। मरकज ने इस स्कीम के तहत उजरत की नजरसानी शुदा शहरों को नोटिफाई किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे के दावों में इकसानियत लाने की गरज से गाड़ियों के हादसे के मुतासरीन की आमदनी का तयन करने के सिलसिले में रहनुमा खतूत जारी किए हैं। जापान की वजीर आजम सनाई तकाईची भारत के 3 रोजा दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गई हैं। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष, एआई, सेमीकंडक्टर और डिजिटल बुनियादी ढांचा। कार्यक्रम का संचालन निखिल कुमार।
1: श्रोताओं नमस्कार, चर्चा का विषय कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर, जिसमें हम बात करेंगे एआई, सेमिकॉन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। आज हमारे साथ जुड़े हैं दो खास मेहमान, जिनमें एक है प्रसून शर्मा जो एआई एक्सपर्ट है। हमारे साथ स्वागत है आपका।
2: नमस्कार।
1: और श्रोताओं हमारे साथ जुड़े हैं एआई एंड टेक एक्सपर्ट उत्पल चक्रवर्ती जी। उत्पल जी, कार्यक्रम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार जी।
1: उत्पल जी, सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे इस बारे में जानना चाहेंगे कि 2015 से लेकर के आज तक की इस पूरी यात्रा को अगर हम देखते हैं तो भारत के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही और किस तरह ये जो उपलब्धि हासिल हुई है, जो भी हमने कार्य किए हैं उन पर आपके क्या विचार हैं?
3: जो ये टाइम फ्रेम जो है, इसके अंदर हम लोग टेक्नोलॉजी फ्रंट पे बहुत एडवांसमेंट किया है, चाहे वो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारा

0: यूपीआई जैसा पेमेंट सिस्टम हो, या हम लोग ये भी देखे है कोरोना के टाइम पे अपना कोविन जो है, ये जो नया अभी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जो कि सिटीजन सेंट्रिक प्लेटफॉर्म है, ये क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत एडवांसमेंट हुआ है, जो कि खाली देश के अंदर ही नहीं, ये विदेशों में भी ये एक मॉडल बन के आया है बाकी डेवलपिंग कंट्री के लिए, इवन की डेवलप कंट्रीज के लिए। क्योंकि हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार किया है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है और इतना वर्सेटाइल है कि अभी हम लोग कोई भी डिजिटल टेक्नोलॉजी, चाहे AI हो, चाहे क्वांटम हो, या कोई भी डेटा इकोसिस्टम हो, सब कुछ हम लोग बना सकते हैं इसके। तो ये जो ग्राउंड वर्क किया गया है ये 11 साल में मतलब रिमार्केबल मतलब उपलब्धि है।
1: तो सुन जी, अगर आपसे मैं बात करूं, आपसे जानना चाहूं, तो डिजिटल इंडिया की जब शुरुआत हुई 2015 में, तब शायद किसी ने इतना नहीं सोचा होगा कि दुनिया का एक बहुत बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में तैयार होगा। तो आपके हिसाब से इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ी सोच क्या रही और कौन से ऐसे अहम फैसले थे जो इस बदलाव के भागीदार बने?
2: डिजिटल इंडिया के ये 11 वर्षों को ऐसा देखता हूँ कि लाइन में लगने वाली अर्थव्यवस्था को ऑनलाइन अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर दिया डिजिटल इंडिया ने पिछले 11 वर्षों में। और उसके तीन महत्वपूर्ण जो उपलब्धियां या माइलस्टोन मैं कहूंगा, पहला डिजिटल पहचान जो हमारा आधार है, दूसरा हमारा डिजिटल भुगतान जो UPI है, तीसरा जो सरकार की सेवाएं हैं, चाहे वो आप पासपोर्ट देख लीजिए, टैक्स देख लीजिए, शिक्षा का क्षेत्र देख लीजिए, मेडिकल सर्विसेज, उसका डिजिटाइजेशन, ये तीन बड़े स्तंभ हमने ना सिर्फ खड़े किए, उसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करके एक ग्लोबल बेस्ट केस सिनारियो हमने क्रिएट किया है।
1: डिजिटल इंडिया के स्तंभों की अक्सर चर्चा की जाती है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विषय में क्या कहा।
3: डिजिटल इंडिया के चार पिलर्स की पहचान की थी, डिवाइस की कीमत कम होनी चाहिए, दूसरा

0: सबकी पहुंच में होना है। और चौथा, डिजिटल फर्स्ट ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए।
1: और हर स्तंभ की अपनी एक विशेष भूमिका रही है, तो आपको क्या लगता है कि सबसे प्रभावशाली स्तंभ कौन सा रहेगा, किसे आप चुनना पसंद करेंगे?
2: मुझे लगता है सबसे पहला है डिजिटल पहचान, वो सबसे बड़ा स्तंभ था और वो जिस तरीके से हमने इंप्लीमेंट किया है, मुझे नहीं लगता कहीं पे भी पूरे विश्व में इतने बड़े लार्ज स्केल पे डिजिटल आइडेंटिफिकेशन का कोई प्रोजेक्ट हुआ है सक्सेसफुली। जब हमें डिजिटल पहचान मिली, उसी के बेस पे हम सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे वो भुगतान हो, चाहे वो सब्सिडीज हो, चाहे वो स्कॉलरशिप्स हो, चाहे वो मतलब आजकल हेल्थ इंश्योरेंस हो या पेंशन हो। तो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण जो डिजिटल पहचान हमने दी अपने सारे नागरिकों को, वो सबसे बड़ा माइलस्टोन रहेगा इसका।
1: उत्पल जी, आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे?
3: मैं सहमत हूँ सुन जी से, क्योंकि डिजिटल पहचान जो है, आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद जो भुगतान जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो मॉडल है, ये मॉडल कोई भी जगह नहीं है। इतना यूपीआई जैसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा खराब हुआ है, और आज खाली यूपीआई नहीं, फ्यूचरिस्टिकली अगर हम लोग देखें तो अगर कोई भी अगर ऐसा जो कि कंट्री को एंटर पॉपुलेशन को सर्विस देने जैसा अगर कुछ बनाना है कल को, तो वो कर सकते हैं। वो एग्जाम्पल मैं बोला कि हम लोग कोरोना के टाइम पे देखा कि हम लोग कितना जल्दी, मतलब ये जो कोविन एप्लीकेशन है उसको हम लोग लॉन्च कर दिए, और हमारा जितना भी वैक्सीनेशन है ये कितना अच्छी तरीके से हो गया, और ये भी एक बहुत बड़ी मॉडल के जैसे बाकी देशों के सामने आ गया।
1: प्रसून जी, आज भारत में अगर हम बात करते हैं तो मोबाइल कनेक्टिविटी बहुत ही लार्ज स्केल पर फैल चुकी है, गांव-गांव तक इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुंच रही है, 5G पहुंच चुका है लोगों के पास तक, तो असली चुनौती सिर्फ कनेक्टिविटी देना तो नहीं रहा होगा। हालांकि जो डिजिटल सेवाएं हैं हमारी, जिनको हमने शुरू किया है, जो आज बड़े पैमाने पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनको सिखाने में खासतौर पर जो सरकार की भूमिका रही, उसे आप किस तरह देखते हैं कि सरकार ने कितना बढ़ चढ़ करके इस चीज को किया?
2: सरकार ने इसकी नींव रखी, जैसे सड़कें हमारी फिजिकल अर्थव्यवस्था को चलाती है, वैसे ही डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल अर्थव्यवस्था को चलाती है। तो वो जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने क्रिएट किया, उसके ऊपर चाहे वो सरकारी सुविधाएं हों या हमारे तकरीबन 2 लाख स्टार्टअप्स हैं जो उसमें सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सरकार का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में बहुत बड़ा योगदान रहा है, और वो फ्यूचरिस्टिक रहा है, और वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव रहा है। ना सिर्फ कनेक्टिविटी, कंप्यूट एप्लीकेशंस भी रीजनल भाषाओं में दी जाए ताकि वो एकदम लास्ट माइल तक पहुंच सके, और लोकल सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स जो कि स्टार्टअप या एमएसएमई के थ्रू हो। तो मेरे हिसाब से सरकार ने एक बहुत अच्छा अगले 100 साल के लिए एक बेस प्रोवाइड किया है डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए।
1: डिजिटल अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, मैं इस चीज को समझ पा रहा हूँ कि पहले एक दशक पहले की अगर हम बात करते हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, तो सरकारी काम कराने या किसी भी तरह के काम कराने के लिए लंबी कतारें देखी जाती थी, कई सारे कागज हमें इस्तेमाल करने होते थे, पेपर वर्क बहुत सारा होता था, चक्कर भी लोगों को लगाने पड़ते हैं। आज जो हमारे पास डिजी लॉकर की हम बात करते हैं, सीएससी की बात करते हैं, सिंगल ऑन स्क्रीन की बात करते हैं, सिंगल विंडो की बात करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि डिजिटल गवर्नेंस ने आज हमारे जीवन को पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा आसान बना दिया है?
2: जी बिल्कुल, ना सिर्फ आसान बना दिया, अब हम उसमें एक लीडिंग एग्जांपल्स भी दे रहे हैं। हम डिजिटल इंडिया से अब एआई इंडिया मिशन की तरफ जा रहे हैं, जिसमें एआई से हमें समय कम लगेगा, हमारे काम जल्दी होंगे, और जो रूटीन काम थे जैसे पेपर वर्क वाले, और वो काफी हद तक कम हो जाएंगे, उसमें जो भी खर्चा था या समय था। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ना सिर्फ भारतीयों के लिए, ये पूरे विश्व के लिए। ये पहले अगर आप डिजिटल अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी की बात करें, सिर्फ 2 ही डिजिटल इकोनॉमी थी पूरे ग्लोब में। पहला था यूएस ओरिएंटेड, जिसको हम गैफैम बोलते हैं, गूगल एप्पल वो प्रोवाइड करते थे। तीसरा चाइना सपोर्टेड था, जिसमें बायदू अलीबाबा आते हैं, दूसरा। और तीसरा अब हमारा है, भारत का जो ऑप्शन उन्होंने दिया है, जिसमें जो मेन कोर भारत के डिजिटल इकोसिस्टम का जो कोर है, वो है टू बेनिफिट कॉमन मैन। हमारा प्रॉफिट ओरिएंटेड एम नहीं है। इसके बेस पे ना सिर्फ हम भारत के कॉमन सिटीजन्स को इंक्लूड कर रहे हैं डिजिटल, फाइनेंशियल और अदर एस्पेक्ट में, हम ग्लोबली भी ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं डेवलपिंग नेशंस को, कि कॉमन सिटीजन्स को हम इंक्लूड कर सके बाकी सारी सर्विसेज।
1: इसमें एक चीज अगर ये हम जोड़े कि जैसे कुछ समय पहले तक टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना सभी के लिए बहुत आसान नहीं था, लोग घबराते थे कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें या ना करें, इससे हमारा नुकसान ना हो, लेकिन अभी बीते एक दशक की हम बात करते हैं भारत सरकार के जो डिजिटल प्रयास हुए हैं, क्या आपको लगता है कि ये उसी का असर है कि आज टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा हम एडॉप्ट कर रहे हैं। आपने एआई का जिक्र किया था, बहुत ही तेजी से काम करने में बहुत सहायता हमारी पहुंचाता है। आज आम आदमी भी एआई को बड़ी तेजी से अडॉप्ट कर रहा है।
2: अगर आप सब्जी खरीदने भी जाते हैं और अगर आप क्यूआर कोड पे पेमेंट करते हैं और वो उस पर एक वॉइस कमांड आता है कि जिसमें आपका अगर 200 रुपए का भुगतान हुआ, वो भी एआई है। वो भी हमारे गांव में अभी जाने अनजाने में लोग यूज कर रहे हैं, वो भी एआई का एक एप्लीकेशन है। ऐसे ही अगर आप किसानों के लिए कुछ एप्लीकेशन है जिसमें वो मतलब अपने एआई बॉट से बातचीत करके पता कर सकते हैं कि किस तरीके का खाद डालना है, किस तरीके के बीज और कहां से लेना है। तो भारतीय सरकार ने ना सिर्फ इकोसिस्टम प्रोवाइड किया, उन्होंने जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स है उनको अनेबल भी किया। और इसमें जो नॉलेज एस्पेक्ट था, जैसे भारत ही एक सबसे विभिन्न तरीके से जीपीयू प्रोवाइड करा जो सबसे सस्ता है
1: जी।
2: पूरे विश्व में वो एमएसएमईज और स्टार्टअप्स को प्रोवाइड किया जा रहा है। हमारा जो एआई कोष है उसमें जो हमारी रीजनल लैंग्वेजेस के जो एलएलएम्स या उसके रिलेटेड जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अनेबलमेंट भी है और सॉल्यूशन एक्सेस भी है, नॉलेज शेयरिंग ग्लोबल लेवल पे, वो जो भी बेस्ट चिप्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं और एक्सपर्ट्स हैं उनको भारत यहां ला रहा है।
1: उत्पल जी, स्वास्थ्य और न्याय की अगर हम बात करते हैं तो ई हॉस्पिटल, ई संजीवनी और ई कोर्ट्स जैसी पहल आज हमारे सामने बहुत ही आसानी से उपलब्ध हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इन सारी चीजों ने आम लोगों के जीवन पर किस तरह से असर डाला, आप कैसे देखते हैं इसे?
3: ये तो बहुत ही अच्छी चीजें हैं, बिकॉज हम अगर इंडिया का बात करें तो हमारा जो दूर दराज का एरिया है जिधर के मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू से हम लोग, वो स्टार्ट हुआ टेलीमेडिसिन से, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो ऐसा भी स्टार्टअप्स और ऐसा भी इनिशिएटिव्स है जो कि डिजिटली उधर से डायग्नोसिस कर सकता है कुछ कुछ डिजीजेस का, और वो रिमोटली डॉक्टर के साथ उसको कंसल्ट करके उसका ट्रीटमेंट होता है। हमारा एक स्टार्टअप को जिसको कि यूनाइटेड नेशंस एआई फॉर गुड में जिसको भी किया गया है, जो कि प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन को वो लोग डिटेक्ट कर सकता है एक छोटा सा डिवाइस, अफोर्डेबल डिवाइस से, और वो गांव का दूर दराज एरिया में लेके जा सकता है और उसको ये कर सकता है। और इसका पूरा श्रेय जाता है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, क्योंकि वो बैकबोन अगर नहीं होते तो हम लोग ये बाकी जितना भी चीज है ये करने, तो बहुत ऐसा कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है जो कि बिट्स एंड पीसेस में स्टार्ट किया और मैक्सिमम जो काम किया वो प्राइवेट सेक्टर ने किया या प्राइवेट बड़ा बड़ा कंपनी ने किया। लेकिन इंडिया का जो मॉडल है ये एक यूनिक मॉडल है। इसमें क्या किया, जो बेस लाइन है और जो बेस है और जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है ये गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया और इसको ओपन कर दिया पब्लिक के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, बाकी कंपनीज के लिए कि इसको एक्सेस करें। तो इसीलिए आप अगर देखोगे आज ऑथेंटिकेशन करने के लिए हम लोग आधार का सर्विस यूज कर सकते, तो इट इज ए ओपन प्लेटफॉर्म, हम कोई भी एपीआई कॉल करके आधार से ऑथेंटिकेट, जो कि सबसे अच्छा ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है। ऐसा कोई भी हमारा अगर कुछ भी जो

0: पेमेंट्स का मैं अगर अगर ई कॉमर्स साइट करना चाहता हूँ या कोई भी चीज ऐसा करना चाहता हूँ, अगर पेमेंट इको सिस्टम चाहिए तो मेरे पास यूपीआई है, मैं इजिली इंटीग्रेट करके कर सकता हूँ। तो ये मॉडल जो है इट्स ए यूनिक मॉडल कि गवर्नमेंट ने आपको पूरा का पूरा बेसलाइन प्रोवाइड किया, इको सिस्टम प्रोवाइड किया, ऑन टॉप ऑफ द इको सिस्टम आप क्या कर सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो। एंड वही एआई का अभी आप सुन जी ने बात किया कि एआई कोशा में जो सब्सिडाइज रेट में जीपीयूज दे रहे थे, एंड ऑल अदर थिंग्स आर ऑल पार्ट ऑफ दैट।
1: उत्पल जी, जब सरकार की व्यवस्थाओं की हम बात कर रहे हैं तो आज कितना आसान हो गया है कि माई गॉव जैसे प्लेटफॉर्म जो है वो बड़ी आसानी से हमें जानकारी उपलब्ध करा देते हैं सरकार की चीजों के बारे में, और ये कितना आसान है कि लोग सीधे सरकार से जुड़ सकते हैं। तो आपको लगता है कि सरकार ने अब तकनीकी रूप से अपने नागरिकों के बीच संवाद करने की पहल को और ज्यादा खुला, पारदर्शी और सहभागी बनाया है?
0: डेमोक्रेसी में जो होता है, जो सिटीजन है, सरकार के पास रहना चाहिए। तो वो पास का जो जरिया है वो है कम्युनिकेशन, वो कैसे हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं ऐसे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में जो होता है कि सरकार से जो जनता है वो दूर में चला जाता है, क्योंकि उसका वो जो जरिया है वो नहीं है। लेकिन ये जो सरकार हमारा है बीते 11-12 साल में, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि आप जो सिटीजन है वो सरकार के साथ जोड़ सके। और ये जितना भी है माई गॉव आप देख रहे हो, बाकी जितना भी है, ये चैनल्स है सरकार के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। अपना कोई भी जो प्रॉब्लम्स है या कोई भी आइडियाज है या कुछ भी है उसको सरकार के पास तक के लेके जाना। तो मैं समझता हूँ ये जो दीज आर ओनली चैनल्स, आप देखोगे फ्यूचर में और भी ऐसा चैनल आएगा जो कि सिटीजन को सरकार के और पास लेके जाए, एंड दैट्स द रियल डेमोक्रेसी।
1: तो सुन जी, उमंग, जीएसटीएन, पोषण ट्रैकर और पीएम गति शक्ति जैसे जो प्लेटफॉर्म है आज अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और सरकारी व्यवस्थाओं को लोगों तक पहुंचाने में बड़ी सहायता करते हैं, तो ये जो डिजिटल इकोसिस्टम है सरकारी सेवाओं को आगे पहुंचाने का, आपको क्या लगता है कि काफी आगे तक बढ़ चुका है या इसमें भी और भी काम करने की जरूरत है?
2: काफी आगे तक बढ़ चुका है और आगे डेफिनेटली और इवॉल्व होगा, क्योंकि एक ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलपमेंट हो रहा है। अगर आप देखिए इसमें काफी सर्विसेज हैं, इवन प्रोक्योरमेंट जिसमें सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी चाहिए थी और एनेबलमेंट चाहिए थी। हमारे स्टार्टअप्स अब किसी भी सरकारी टेंडर में भाग ले सकते हैं, हमारे स्टार्टअप्स को जो भी ग्रांट्स हैं वो सब ऑनलाइन हो चुका है। इवन जो आपको सर्टिफिकेशन, उद्यम सर्टिफिकेट चाहिए, डीपीआईटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, आप ऑनलाइन अप्लाई करिए और आपको निश्चित समय में वो उसका जवाब मिलता है, और अगर कोई क्लैरिफिकेशन भी होता है तो वो डिजिटल माध्यम से ही होता है। तो तकरीबन अगर आप देख रहे हैं, हम दुनिया की टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में इसीलिए ही आए हैं क्योंकि ये अनेबलमेंट हुआ है, ग्रांट डिसबर्समेंट हो रही है, प्रोजेक्ट्स में वो पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। अब हम डिजिटल यूजर से डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो गए ग्लोबल इकोसिस्टम में, ना सिर्फ कॉमन सर्विसेज में, अब रिसर्च ओरिएंटेड सर्विसेज में, जिसमें आप आजकल डीप टेक, जैसे हमारे भारत इनोवेट में प्रधानमंत्री ने भी कई फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सॉल्यूशन दिखाए, जैसे 3D प्रिंटेड हमारा पहला रॉकेट दिखाया गया वहां पे। तो ये तभी संभव हुआ जब हमारे पास डिजिटल एक्सेस आया, ट्रांसपेरेंसी थी, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हुए इस डिजिटल एक्सेस के थ्रू, और पार्टिसिपेशन मिला रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टार्टअप्स और एमएसएमई को।
1: जी उत्पल जी, जनधन, आधार और मोबाइल यानी कि जैम ट्रिनिटी जिसे हम बोलते हैं, वो हमारी डिजिटल इंडिया की एक तरह से मेरुदंड है। तो आपके हिसाब से इस मॉडल ने आम नागरिक तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाने की बात हो तो किस तरह से इसमें बदलाव लाया है?
0: पहला जो है वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होना बहुत जरूरी था, क्योंकि आइडेंटिटी जब हो जाएगा तभी मिडिलमैन कोई नहीं रहेगा बीच में। और इसीलिए क्या हो रहा है, जितना भी गवर्नमेंट का बेनिफिट्स है, जितना कुछ है, डायरेक्टली सिटीजन तक के पहुंच रहा है। तो ये तो डायरेक्ट चैनल एस्टैब्लिश तभी हो पाया जब भी हम लोग आइडेंटिटी किया। सेकेंड थिंग है कि जो ये पूरा बैंकिंग सिस्टम को, बैंकिंग इकोसिस्टम जो है, और इसमें हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री प्लस हमारा आरबीआई का एंड हमारा नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है कि ये जो इकोसिस्टम बनाया है, ये इकोसिस्टम को यूटिलाइज करके अभी पेमेंट्स या जो ट्रांसफर हम लोग बोलते हैं जो बहुत इजी हो गया है, वेदर डोमेस्टिक और क्रॉस बॉर्डर, तो और भी बहुत बेनिफिट हो रहा है कि हम लोग का जो पहले बहुत कुछ जो ये हो रहा था, मतलब कि पैसे के लेन देन में बहुत कुछ जो गड़बड़ी हो रहा था, वो सब भी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस जितना भी है, अभी वो इजीली कोई भी फ्रॉडुलेंट केस, मनी लॉन्ड्रिंग केस को आइडेंटिफाई कर सकता है। क्योंकि क्या है, जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है वो पूरा क्लीन हो गया है। उसके साथ साथ डिमोनिटाइजेशन का भी बहुत बड़ा हाथ है कि हमारा पूरा डिजिटल इकोनॉमी लाने जो आ गया, उससे बहुत कुछ करप्शन छोटे लेवल पे जो कुछ भी करप्शन ये सब है वो सब हट गया। तो ये जितना भी बेनिफिट्स आप देख रहे हैं, दीज आर ऑल सिटीजन सेंट्रिक, मतलब एक पहल है जो कि सिटीजन को मतलब मिडिल में रखते, सेंटर स्टेज में रखते हुए सब कुछ बनाया गया है। और आई थिंक इससे बहुत बड़ी दूरदर्शिता का काम किया है।

0: अभी प्रसून जी ने बताया कि 100 साल के बारे में सोच के बनाया है, तो मैं भी सहमत हूं उनसे।
1: अब प्रसून जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सेमिकॉन की हम बात करते हैं। आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में क्या जानकारी दी।
2: सेमीकंडक्टर चिप जो होती है वो पूरी की पूरी इसके ऊपर इस डिजाइन को इसके ऊपर सिलिकॉन वेफर के ऊपर कंप्लीट फैब्रिकेशन किया जाता है और उसके बाद में इसमें से इंडिविजुअल चिप्स को निकाल के सेमीकंडक्टर की चिप्स का उपयोग किया जाता है। तो बहुत खुशी की बात है कि भारत में पूरा इकोसिस्टम आ गया है। ये एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है। सेमीकंडक्टर है तो आप बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। हर चीज के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स चाहिए, तो देश के लिए बहुत बड़ी एक जरूरत है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे बहुत फोकस दिया और अब अपने 10 प्लांट में से 4 प्लांट की पायलट लाइन रेडी है। टीजी सेमी में प्रोडक्शन चालू हो गया। पहली मेड इन इंडिया चिप भी माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट की गई और साथ ही साथ भारत में टैलेंट को डेवलप करने के लिए बड़ा काम चल रहा है। 278 यूनिवर्सिटीज में सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग दी जा रही है और बहुत ही खुशी की बात है कि जो सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग लिए हुए स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 20 चिप्स ऑलरेडी डिजाइन की है, डिजाइन करके उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है।
1: डिजिटल इंडिया को हम पूरा का पूरा तकनीक से जोड़कर देखते हैं और इसका कहीं ना कहीं एक पहलू रोजगार भी है, तो आईटी, एआई, सेमीकॉन और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए जो अवसर निकल रहे हैं उन पर आपके क्या विचार हैं?
3: डिजिटल इंडिया ने हमें डिजिटल एक्सेस प्रोवाइड किया, एआई सेमीकंडक्टर हमें डिजिटल इंटेलिजेंस और सोवर्निटी प्रोवाइड करेंगे। और आपने बात की साइबर सिक्योरिटी और सेमीकॉन जैसे, इसका मूल है कि चिप, अगर आप देखिए मोबाइल, कार और जितने भी होम अप्लायंसेस है उसका जो भी प्रोसेसिंग है या इंटेलिजेंस यूनिट वो चिप होता है। तो पहले हम ऑलमोस्ट सारे ही चिप हम आयात करते थे, अब हम खुद बनाने लगे। नॉर्मली चिप बनाने में भी 10 से 15 साल लगते हैं, पर जिस स्पीड से भारतीय इकोसिस्टम में वो डेवलप हुआ है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज जो लिया था भारत सरकार ने वो सक्सेसफुली डिलीवर किया। अब हम चिप बना रहे हैं यहाँ पे और उसके साथ जो पूरी सप्लाई चेन है वो भी हमने खड़ी करी। तो ये एक इंटेलिजेंस युग में हम जा रहे हैं जिसमें ना सिर्फ हम यूजर हैं, हम सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, ना सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए पर पूरे विश्व के लिए। और अब सबसे बड़ी बात आजकल चल रही है टेक सोवरेनिटी की, जगह सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट में अगर आप देखिए तो इन डिजिटल एक्सेस के थ्रू ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये इंक्लूशन एम्पावरमेंट की कहानी है। अब हमारा खुद ऑपरेशन सिंदूर में हमारा एक स्टार्टअप था जिसने एंटी ड्रोन एक सॉल्यूशन बनाया जो यूज हुआ, वो इंडिजीनियस है, भारत में बना है। ऐसे ही जो डिफेंस रिलेटेड जो स्टार्टअप चैलेंजेस है आईडेक्स के थ्रू वो भी इस इकोसिस्टम के थ्रू अनेबल हो रहे हैं, उनको ट्रायल्स के लिए फील्ड प्रोवाइड किया जा रहा है और वो सारा ऑनलाइन सिस्टम है। डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप अप्लाई करते हैं, अपना सॉल्यूशन दिखाते हैं, फिर आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट असाइन होती है और अगर आपका वो सॉल्यूशन चल रहा है तो आपका प्रोक्योरमेंट भी किया जाता है। तो ये सारा एक एम्पावरमेंट की तरफ जो पूरा इकोसिस्टम गया है वो एक सराहनीय कदम है, ना सिर्फ भारत के लिए, अब हमारी टेक बाहर के देशों में भी उसकी डिमांड हो रही है। अगर आप देखिए डिफेंस रिलेटेड एस्पेक्ट में हमारे ड्रोन्स, हमारे सर्वेलेंस की मांग काफी बढ़ रही है, हमारे स्पेस टेक की बहुत ज्यादा डिमांड
1: हो रही है। कर रहे हैं हम
3: जी, और अभी जब प्रधानमंत्री यूरोप की यात्रा में थे तो काफी एमओयू साइन हुए स्पेस रिलेटेड स्टार्टअप्स के जरिए। तो ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, भारत को एज अ डीप टेक रिसर्च ओरिएंटेड प्लेयर के रूप में स्थापित करने के।
1: उत्पल जी, अगर भारत की संभावनाओं को थोड़ा सा ध्यान में रखें तो एक समय था जब भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आयात पर सबसे ज्यादा निर्भर करता था, लेकिन आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मोबाइल फोन निर्माता बन चुके हैं। तो ये जो डिजिटल इंडिया की सफलता हमने प्राप्त की है इसके पीछे आप किन चीजों को मानते हैं, कि आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से बदलाव हुए जो ये सफलता हमारे देश को अर्जित हुई?
0: ये पॉलिसीज में है, पॉलिसीज में सुधार हुआ है। उसके बाद स्टार्टअप और बाकी कंपनीज को वो जो एनकरेजमेंट, ओके एंडोर्समेंट जो मिलते हैं उसके वजह से भी हुआ है। तो आप देखिए अभी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टार्ट कर दिए है, काम इलेक्ट्रॉनिक्स में हो रहा है, एआई में ऑलरेडी हो रहा है, हम लोग सोवरेन एआई का बात कर रहे हैं जो कि बहुत जरूरी है कि हम लोग खुद का हमारा इंडिपेंडेंट मॉडल्स रहे, एटलीस्ट हमारा क्रिटिकल सेक्टर जो है, चाहे डिफेंस हो, चाहे हमारा फाइनेंशियल सेक्टर, गवर्नमेंट कुछ कुछ सेक्टर्स हो, हेल्थ केयर कुछ सेक्टर्स हो, तो इस सब में सोवरेन एआई का आ गया है। और जो भी सोवरेनिटी का बात कर रहे हैं मतलब हम लोग खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद अभी क्वांटम आ रहा है, अभी क्वांटम के लिए भी बहुत जगह पे क्वांटम प्रोसेसर, क्वांटम चिप्स जो है वो बनाने का काम चालू हो गया। हमारा जो क्वांटम इंडियन, क्वांटम नेशनल क्वांटम मिशन है उसके तहत हम लोग क्वांटम हब्स बनाए हैं जिसमें कि अलग अलग तरीके का क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च हो रहा है, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग

0: जो है या क्वांटम टेक्नोलॉजी है, ये नेक्स्ट फ्रंटियर है
1: जी।
0: मतलब और ये एआई के साथ कन्वर्ज होगा, मतलब एआई के साथ एक साथ होके एक हम लोगों को नई दुनिया देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वांटम वो स्पीड लेके आएगा, वो पैरालिज्म लेके आएगा, उतना सिक्योरिटी लेके आएगा जो कि आज हम लोग सिक्योरिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कोई भी जगह सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए। तो क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, ये जितना कुछ भी चीज है, ये पूरा सब कुछ ये इकोसिस्टम के ऊपर ही बनेगा। और मैं इसके लिए गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज जो चेंजेस हुआ है, ये बाकी सब कुछ बाय प्रोडक्ट है पॉलिसीज। आप जो भी पॉलिसीज चेंजेस करेंगे तो ये सब ऑटोमेटिकली इसको बढ़ावा मिलेगा।
1: अभी मैंने प्रसून जी से बात की थी सेमीकॉन पर, तो आपको क्या लगता है कि सेमीकॉन की जो संभावनाएं हैं वो दिन प्रतिदिन हमारे लिए बढ़ती जा रही हैं?
0: सेमीकंडक्टर पे हम लोग निर्भर नहीं रह सकते हैं बाहर के कंपनीज को ऑलवेज, क्योंकि क्या हो गया अभी एआई के लिए भी हम लोग को जीपीयू चाहिए। अभी जीपीयू अगर जो देखा जाए तो दो तीन कंपनी है जो कि बाहर का कंपनी है उनके ऊपर हम लोग निर्भर रहे हैं, लेकिन हम लोग को खुद का जीपीयू चाहिए। हम लोगों को वो माइक्रो चिप्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, वो नैनो लेवल पे जो भी अभी काम हो रहा है वो सब, वो फैब्रिकेशन का जरूरत है। अगर हम वो नहीं कर पाएंगे तो एआई तो शायद हमारा खुद का हो जाएगा, हमारा बाकी भी चीज शायद खुद का हो जाएगा, लेकिन वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो रन करता है, जो जीपीयू पे रन करता है, वो फिर भी बाहर के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट रह जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स रिवोल्यूशन एक इंडिया में आया है और इसको आगे लेके जाए और इसको पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिपेंडेंस के तक के जाए, तो सो दैट कि हम लोग किसी के ऊपर भी इलेक्ट्रॉनिक्स में डिपेंडेंट ना रहे।
1: जी प्रसून जी, जैसे भी डिजिटल व्यवस्था की जो हम बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब जिक्र होता है तो तमाम चीजें हमारे सामने आती है, किस तरह से हम अपने काम को करेंगे, जो सेफ्टी एक बड़ा पैरामीटर हमारे लिए, खासतौर पे जब हम बैंकिंग की बात करते हैं या फिर जहां पर पैसे से रिलेटेड चीजें होती हैं, वहां पर किस तरह की चीजें आपको लगती हैं कि और ऐड की जा सकती है या फिर उन पर हम काम कर रहे हैं?
2: तो ये डिजिटल सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड एस्पेक्ट, आई थिंक काफी इनिशिएटिव भारत सरकार ले रही है, खासकर अवेयरनेस रिलेटेड कि कैसे इसको यूज किया जाए। जैसे अगर आप देखिए सरल भाषा में, हमें एड्स या वॉइस एड्स आते हैं कि ओटीपी शेयर नहीं करना है, ऐसे वो आ रहे हैं, पर उसको आगे और सुदृढ़ करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी लैंग्वेजेस में कम्युनिकेशन करना चाहिए। जैसे इनिशिएटिव हुआ है कि जो बैंक्स भी आपको ट्रांजैक्शंस या एसएमएस या वॉइस बेसिस भेजते हैं, क्या वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में भेज सकते हैं क्या, बंगाली, मराठी, गुजराती? क्योंकि जो भी ये हैकर्स हैं मोस्टली वो इंग्लिश या जो प्रेवलेंट लैंग्वेजेस हैं, थोड़ी बहुत हिंदी में वो अटैक कर सकते हैं, पर हमारे पास एक इनहेरिट स्ट्रेंथ है डिफरेंट लैंग्वेजेस की, हम उसको अगर यूज करने लगे तो वो हमारी सोवर्निटी, सिक्योरिटी और ट्रस्ट के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगी। और आई थिंक ये रिकॉग्नाइज हुआ भी है हमारे कुछ इकोसिस्टम में, रीजनल लैंग्वेजेस को डिजिटल कम्युनिकेशन में और सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में यूज करना शुरू कर दिया गया है। तो आई थिंक ओवरऑल इसमें भारत सरकार काफी इनिशिएटिव्स ले रही है, जैसे हमने भी एक आईआईटीज के थ्रू एमएसएमईज को अवेयर करने के लिए कि इनको कैसे यूज किया जा सकता है और बेसिक साइबर सिक्योरिटी के क्या प्रैक्टिसेस वो ली जा सकती है, उसके बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है। पर उसमें मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर्स को भी आगे आके उसमें कंट्रीब्यूशन करना चाहिए अवेयरनेस में, ये सिर्फ गवर्नमेंट पे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, यूजर प्राइवेट कॉर्पोरेट्स को भी आना चाहिए इसके आगे और कंट्रीब्यूट करना चाहिए।
1: आपने एमएसएमई का जिक्र किया, तो जब एमएसएमई की हम बात करते हैं तो ये कह सकते हैं कि छोटे कारोबारियों को ज्यादा मौके देने की बात होती है, इसमें ओएनडीसी जैसी पहल या फिर जीईएम जिसे हम जेम भी बोलते हैं उस तरह की पहल, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपको लगता है कि सभी को अब आज के समय में पर्याप्त अवसर दिए जा रहे हैं और बराबर के अवसर दिए जा रहे हैं?
2: जी बिल्कुल, और ये सरकार की कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम डेवलपमेंट है। अगर आप देखिए पहले उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बनाया, वहां पे उन प्रोडक्ट्स के जो एमएसएमईज हैं उनको अनेबल किया, अब उनके प्रोडक्ट्स को वो डिजिटल कैटलॉग्स में ओएनडीसी पे ला रहे हैं। फिर अगर आप देखिए हमारी सरकार ने मल्टीपल एफटीए साइन कर रहे हैं, अब ओएनडीसी के थ्रू वो अपना एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और जो एक्सपोर्ट के लिए उनको चीजें चाहिए जैसे वहां की सर्टिफिकेशन चाहिए, क्वालिटी चेक्स चाहिए, उनके रीजनल भाषाओं में कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि चाहे वो हमारे फार्मर्स हो या हमारे हैंडीक्राफ्ट मेकर्स हो, वो समझ सके और उनके ज्यादा प्रोडक्ट्स बिक सके। तो ये अगर आप देखिए सारे लेयर्स पे अनेबलमेंट सरकार कर रही है, पहले उनके प्रोडक्ट को हाईलाइट और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे ला रही है, फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म में डिस्प्ले कर रही है, फिर बाहर के मुल्कों के साथ एफटीए कर रही है और उसके थ्रू उनको एक नई मार्केट का एक्सेस दे रही है।
1: इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, आज का दिन पहले जुलाई का दिन है और आज से कुछ साल पहले जीएसटी हमारे देश में आज के दिन ही पेश किया गया था, इसी से मैं इसको जोड़ना चाहूंगा कि जीएसटी जैसी पहल जो पूरी तरह से डिजिटल थी या उसके साथ में जो टैक्सेशन की जितनी भी चीजें थी, इस तरह से उनको डिजिटल किया गया कि कारोबार करना हमारे देश

0: आसान हो जाए, चाहे छोटा व्यापारी हो बड़ा व्यापारी हो, पूरे देश में कहीं भी व्यापार कर सके और आसानी से अपनी चीजों को फैला सके और उससे अपनी अर्निंग कर सके।
1: जी, टैक्सेशन और खासकर एमएसएमईज को ये कंप्लायंस के बर्डन से काफी हद तक मुक्त किया गया है, काफी हद तक उन चैलेंजेस को हटाया गया, बट अभी भी काफी चैलेंजेस हैं, पर आई थिंक वो इवॉल्व हो रहा है सिस्टम एंड सरकार आई थिंक ओपन है डिस्कशंस या इम्प्रूवमेंट्स के सजेशन के लिए, और वो मल्टीपल फोरम्स में एंगेज हो रही है सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, चाहे वो एमएसएमई हो, चाहे उनके रिप्रेजेंटेटिव हो, और चाहे वो जैसे अब पॉलिसी एडवोकेसी वाले लोग हो, क्योंकि अगर हमारे एमएसएमई के जो प्रोडक्ट्स हमें बाहर बेचने हैं एफटीए के थ्रू बेचने हैं तो उसमें भी कुछ ट्वीकिंग चाहिए होंगी हमारे टैक्सेशन सिस्टम में। तो आई थिंक काफी इंप्रूवमेंट हुआ है, कुछ होना बाकी है, पर उसके लिए सरकार इंगेज है ग्राउंड लेवल पे।
0: उत्तल जी, माई भारत जो हमारी पहल है वो युवाओं को, और एग्रीस्टैक जो किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बना रही है, तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, इनको आप इस तरह से देखते हैं कि लोगों के पास अब नए अवसर बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं और ये एक तरह से व्यापक अभियान का रूप ले चुके हैं?
2: हाँ जी जरूर, जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसका जो अल्टरनेटिव्स है, हम लोगों को अल्टरनेटिव्स ढूंढना पड़ेगा, और वो हमारे जो सरकार है वो बहुत अच्छी तरीके से अल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा है कि हमारा जो स्किल्ड, अगर आपके पास स्किल है तो आपको खाली जॉब का जरूरत नहीं है, आप जॉब के सिवा भी बहुत कुछ कर सकते हैं, वो फ्रीलांसिंग हो, वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हो या एंटरप्रेन्योरशिप हो, बाकी जो कुछ भी आप कर सकते हैं स्किल। सो मेरे ख्याल से जो स्किल के ऊपर अगर हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे, जो कि ऑलरेडी वो हो रहा है ये सब पहल के माध्यम से, तो क्या होगा, हमारा जो जॉब के ऊपर जो हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग जॉब सीकर्स से जॉब प्रोड्यूसर्स ज्यादा बन जाएंगे, और क्या करेंगे, हमारा स्किल को हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे कि बाहर का काम करने के लिए, क्योंकि बहुत ऑनलाइन जॉब्स है, बहुत कुछ ये है जो कि हम लोग देख रहे। तो दीज आर सम प्लेटफॉर्म्स, ये सब कुछ कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो प्लेटफॉर्म्स के थ्रू से हमारा जो यूथ है, यूथ को एम्पावर करने का कोशिश किया जाता है, और इसका जो सेंटर स्टेज पे है वो है स्किल, क्योंकि अगर स्किल है तो हमारा जो एंटायर जो इकोसिस्टम है वो डिग्री बेस्ड या सर्टिफिकेशन बेस्ड इकोसिस्टम से अभी स्किल बेस्ड इकोसिस्टम पे ट्रांसफर हो रहा है, और ये खाली इंडिया का नहीं, ये पूरा दुनिया में ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है एक सिस्टम से। कमिंग टू हेल्थ केयर जो आपने बात किया, उसमें भी बहुत कुछ चीजें हमारा हो रहा है जो की एक मॉडल होके निकलेगा। इंडिया ये अभी अलग तरीके से कर रहा है, बिकॉज मैं क्या देखता हूँ, इंडिया का जो मॉडल है ये यूनिक मॉडल देखता हूँ, ये कॉपी पेस्ट नहीं है कोई भी कंट्री के साथ, तो ये तो मैं बोल सकता हूँ।
0: श्रोताओं, चर्चा का विषय में आज बस इतना ही। हमने आज बात की डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष पूरे होने पर, जिसमें चर्चा की गई एआई, सेमिकॉन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर। हमारे साथ खास मेहमान आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे डिजिटल इंडिया के 11 वर्ष, एआई, सेमीकंडक्टर और डिजिटल बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे एआई विशेषज्ञ प्रसून शर्मा और एआई एवं तकनीकी विशेषज्ञ उत्पल चक्रवर्ती। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
4: चर्चा का विषय है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेस को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
6: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
5: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145

0: करोड़ रुपए है।
1: दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में, कानपुर से भोपाल का सेक्शन है बीच में, आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर का, ये कानपुर से कबराई, कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। 242 किलोमीटर का है ये एक्सेस कंट्रोल।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 10 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे अल्पसंख्यक कल्याण, संकलन शिखा दीक्षित का, आलेख मनोज कुमार का और प्रस्तुति अवधेश कुमार गौतम की है।

0: भाषाएं अनेक
1: लेकिन भाव सबका एक,
0: पंथ अनेक
1: लेकिन लक्ष्य सबका एक,
0: बोलियां अनेक
1: स्वर सबका एक,
0: रंग अनेक
1: लेकिन हमारा प्यारा तिरंगा एक,
0: रिवाज अनेक
1: सबके संस्कार एक,
0: योजनाएं अनेक
1: लेकिन सबका मकसद एक,
0: राहें अनेक
1: सभी की मंजिल एक,
0: चेहरे अनेक
1: लेकिन सभी की मुस्कान एक।
0: ऐसा ही है मेरा, आपका, हम सबका प्यारा भारत देश। एक मिसाल है हम पूरी दुनिया के लिए, जहां सब एक साथ प्यार मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहते हैं। यही तो है हमारी संस्कृति, तभी तो सारे जहां से अच्छा है हिंदोस्ता हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुल सीता हमारा।
1: कैशर शमीम लिखते हैं, मेरा मजहब इश्क का मजहब, जिसमें कोई तफरीक नहीं, मेरे हल्के में आते हैं तुलसी भी और जामी भी। ऐसा ही है हम सबका हिंदुस्तान, जहां सभी धर्मों के बाशिंदे प्यार मोहब्बत और बड़े एहतराम के साथ रहते हैं।
0: सभी धर्मों के लोग एकता और भाईचारे की सीख देते हैं। यदि कोई पीछे रह भी जाए तो हाथ पकड़कर साथ चलने की हिम्मत भी देते हैं।
1: यही इंसानियत और मानवता भी कहती है, आदमी का आदमी हर हाल में हमदर्द हो, एक तवज्जो चाहिए इंसान को इंसान की तरफ। कहा जाता है कि मानवता सेवा ईश्वर की पूजा करने के बराबर है। आप किसी की मुस्कुराहट का कारण बनो, ऐसा कारण जिससे कोई भी व्यक्ति प्रेम महसूस करे और लोग अच्छाई पर विश्वास करें। किसी भी देश की तरक्की में जरूरी है सभी का साथ और उन्नयन। सभी धर्मों के उत्थान के लिए योजनाएं बने, पिछड़े तबकों को मुख्य धारा से जोड़ा जाए,
0: मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाए, तो देश तरक्की के विकास पथ पर आगे बढ़ चलेगा। हमारी सरकारें लगातार इस तरफ ध्यान भी दे रही हैं। भारतीय संविधान ने कुछ समुदायों को अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया है।
1: मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के सदस्यों को अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता दी है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2C के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के रूप में परिभाषित किया है।
0: हमारी सरकारें अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण हेतु लगातार जन कल्याणकारी कदम उठा रही हैं, चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य की सरकारें। सभी का मकसद एक है, अल्पसंख्यक वर्ग का कल्याण। सभी रोजगार से जुड़े, सरकारी योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचे, सभी का विकास हो, सभी का कल्याण हो। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी यही चाहते हैं।
2: हमें विश्वास जीतना है। 1857 का स्वतंत्र संग्राम इस देश की हर कौम, हर जात, हर पंथ कंधे से कंधा मिला करके अंग्रेज सल्तनत के खिलाफ लड़ाई लड़ करके आजादी का बिगुल बजाया था 1857। आज देश की एकता और अखंडता के लिए, भारत के संविधान की शपथ लेने वाले हम सबके लिए दायित्व तो बनता है कि 1857 के स्पिरिट को फिर से एक बार पैदा करें और उस समय 1857 में गुलामी से मुक्ति के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के लड़े थे, अब सुराज्य के लिए लड़ना है, गरीबी से मुक्ति के लिए लड़ना है, कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ना है और सबको साथ लेकर के चलना है। एक बहुत बड़ी दायित्व है, उस दायित्व को हमें निभाना है। देश ने हमें, और जैसे मैंने कहा, जो हमने वोट देते हैं वो भी हमारे हैं, जो हमारा घोर विरोध करते हैं वो भी हमारे हैं, क्योंकि हम 130 करोड़ देशवासियों के लिए, हमारे लिए कोई भेद नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं आज इस संविधान के साक्ष्य में, वो संविधान है जिस पर देश के उन महापुरुषों का हस्ताक्षर है, जिस पर बाबा साहब अंबेडकर के एक एक शब्द पर उनकी कलम का असर है, और इसलिए उसके साक्षी में आज हम मन में संकल्प करके चले कि देश के सभी वर्गों को, और पुराने तरीके तो काम नहीं आएंगे जी, वो तरीके उनको मंजूर है, हमें तो एकमात्र मार्ग, हम सबने मिलकर के 21वीं सदी में हिंदुस्तान को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। कोई पीछे नहीं रहना चाहिए, कोई इस विकास यात्रा में छूट नहीं जाना चाहिए। पंथ के आधार पर, जात के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस संकल्प को और मजबूती से हम करते आए हैं और अधिक ताकत से करते रहना है और उसको प्राथमिकता देते हुए चलना है, और इसलिए इस जिम्मेवारी को भी हम निभाएंगे, तभी तो देश हम पूरी तरह सबको साथ लेकर के चल सकते हैं और सबका साथ सबका विकास और अब सबका विश्वास, ये हमारा मंत्र है।
1: सभी धर्म विश्व शांति और मानव कल्याण की शिक्षा देते हैं, तो वहीं भारत सरकार की तरफ से अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण हेतु अनेक कार्यक्रम भी क्रियान्वित किए जाते हैं। अनेक कल्याणकारी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के माध्यम से अल्पसंख्यक वर्ग को सशक्त बनाना है, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। मोहम्मद खालिद, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जनपद बदायूं।
3: भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए, जिसमें के 6 समुदाय आते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी, भारत सरकार ने सच्चर कमेटी की रिपोर्टों को आधार मानते हुए उनके आधारभूत ढांचे में सुधार के लिए अनेक कार्यक्रम बनाए। 15 सूत्री कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो उनके आधारभूत ढांचे को में विकास करना है, जिसमें मुख्य रूप से उनके आर्थिक विकास, शैक्षिक विकास और सामाजिक विकास है। आर्थिक विकास के दृष्टिगत उनको विभिन्न प्रकार के तकनीकी शिक्षाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जैसे सीखो और कमाओ योजना, उस्ताद योजना आदि। इसी प्रकार से उनके शैक्षिक विकास के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, जिसका पूर्ववर्ती नाम MSDP था, उसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल और कौशल विकास के लिए उन्होंने आधारभूत ढांचा स्थापित करने का बीड़ा उठाया, जिसमें आज लगभग 25% शिक्षण संस्थान MSDP के योजना के अंतर्गत बन के तैयार हो चुके हैं और वो अपना फंक्शन कर रहे हैं। इसके अलावा जो सामाजिक उत्थान के लिए विभिन्न प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिसमें कि भारत सरकार अपना समय समय पर योगदान दे रही है, विशेष तौर पे उनके लिए आर्थिक सहायताएं उपलब्ध कराई जाती है, जैसे टर्म लोन है, जैसे उनको और प्रकार का शैक्षिक लोन उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा जो भारत सरकार के द्वारा शिक्षा के और ज्यादा उत्थान के लिए या गरीब तबकों के वृद्धि के लिए उनको छात्रवृत्ति दी जाती है भारत सरकार द्वारा, और भारत सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जो हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उन सबको छात्रवृत्ति से लाभान्वित किया जाता है।
1: छोटे छोटे प्रयासों से ही देश के विकास की शुरुआत होती है। गलियों, कस्बों, नगरों से निकलकर ये प्रयास मूर्त रूप लेते हैं। इन प्रयासों को मूर्त रूप देने में हमारे जन प्रतिनिधियों की अहम भूमिका होती है। आइए सुनते हैं इस विषय पर रामपुर विधानसभा क्षेत्र से माननीय विधायक श्री आकाश सक्सेना जी के विचार।
4: सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि अल्पसंख्यक समाज में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं आते, सामान्यतः सिख, जैन, पारसी आदि धर्मों के बारे में ध्यान कभी जाता ही नहीं है। आज की सबसे बड़ी जरूरत है कि अल्पसंख्यक समाज के सभी वर्गों को समान रूप से देखा जाए और समान रूप से शिक्षा, विकास, समृद्धि, कानून अधिकार दिलाने के लिए कार्य किया जाए। यदि सामाजिक मुद्दों की बात की जाए तो सभी धर्मों की अलग अलग चुनौतियां हैं, किंतु सबसे अधिक चुनौतियां मुस्लिम समुदाय के साथ है, और इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो सिर्फ यही है कि इस समाज का सिर्फ राजनीतिक रूप से हमेशा इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन अब लोगों को, खासकर मुस्लिम भाइयों को,

0: जा नहीं सकता। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का ये कर्तव्य है कि हम हर योजना का लाभ एक आखिरी व्यक्ति के घर तक पहुंचा सकें, और ऐसा हम कर रहे हैं। मेरा सिर्फ यही संदेश है कि हमारे समाज की सुंदरता उसकी विविधता में है। धर्म, भाषा, जाति, संस्कृति और पहचान की अनेक धाराएं मिलकर हमारी सामाजिक गंगा बनती है। लेकिन विविधता तभी समृद्ध बनती है जब उसमें न्याय, समानता और सम्मान की भावना हो। अल्पसंख्यक समुदाय सिर्फ संख्या में छोटा है, लेकिन उनके अधिकार, उनके सपने, योगदान किसी से कम नहीं है। उनके हितों की रक्षा करना केवल एक सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हमारी संवैधानिक प्रतिबद्धता और मानवता की कसौटी भी है। हम मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां पर हर आवाज को सुना जाए, जहां पर हर परंपरा का सम्मान हो और जहां हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का समान अवसर मिले। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप देखते होंगे, बिना किसी भेदभाव के हर योजना का लाभ या हर कोई ऐसी चीज जो हर पात्रता के आधार पर है, वो सीधे उसका लाभ उसको मिलता है। क्योंकि जब समाज का सबसे छोटा हिस्सा सुरक्षित और सशक्त होता है, तभी पूरा समाज मजबूत बनता है। सम्मान, संवाद और समावेश ही सच्चे विकास के मूल है।
1: अल्पसंख्यक कल्याण विभाग विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए काम करता है। सरकार की मंशा भी यही है कि अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जोड़ा जाए, इनके कल्याण हेतु योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए। अल्पसंख्यक वर्ग के बारे में उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बता रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर रजा पीजी कॉलेज रामपुर मोहम्मद नासिर।
2: वर्तमान में भारत में लगभग 20% आबादी अल्पसंख्यकों की है, जिनमें 20 करोड़ मुस्लिम, 3 करोड़ ईसाई, 2 करोड़ सिख, लगभग 45 लाख जैन एवं 60,000 पारसी हैं। भारत में विभिन्न अल्पसंख्यकों की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति में भी काफ़ी अंतर है। सिख, पारसी और जैन संपन्न अल्पसंख्यक हैं। मुसलमान भारत में सबसे बड़े धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, जो आर्थिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक प्रतिनिधित्व में काफ़ी पिछड़े हैं। मुस्लिम महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति काफ़ी दयनीय है। 2011-12 के दौरान अल्पसंख्यक समुदायों की रोजगार स्थिति पर आधारित राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की रिपोर्ट में कहा गया है कि विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय की रोजगार दर अन्य समुदायों की तुलना में कम है। सरकार द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे सरकार के सबका साथ, सबका विकास, सबका कल्याण विजन को पूरा किया जा सके। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम का प्रारंभ अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सड़क आदि के विकास हेतु प्रारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के जीवन स्तर में सुधार लाना है और ये उनके क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के माध्यम से किया जाना है। इस योजना का फोकस उन क्षेत्रों पर है जहां अल्पसंख्यकों की जनसंख्या 25% या उससे अधिक है। सरकार हाई स्कूल तक के अल्पसंख्यक स्टूडेंट्स के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, कक्षा 11 से स्नातकोत्तर के छात्रों हेतु पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एवं व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम हेतु मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप प्रदान करती है, जिसका लाभ लाखों छात्र छात्राओं को मिलता है। प्रशासन में अल्पसंख्यकों की सहभागिता बढ़ाने हेतु नई उड़ान योजना को प्रारंभ किया गया है, जिसमें सिविल सेवा सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अल्पसंख्यक समुदायों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 2015 में प्रारंभ की गई नई मंजिल योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक युवाओं को रोजगार पर कौशल प्रदान करना है। उस्ताद योजना के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के कारीगरों एवं शिल्पकारों के कौशल का उन्नयन कर उनकी पारंपरिक कला एवं शिल्प का संरक्षण किया जा रहा है। नई रोशनी योजना के माध्यम से अल्पसंख्यक महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर उनमें आत्मविश्वास का संचार किया जाता है, ताकि वो अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हों और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। सीखो और कमाओ योजना के माध्यम से अल्पसंख्यक युवाओं को कौशल विकास और रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त बनाया जाता है। सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के बाद अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु 15 सूत्रीय कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं बुनियादी ढांचे में अल्पसंख्यकों हेतु समान अवसर सुनिश्चित करना है। सरकार द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित इन योजनाओं से शिक्षा के प्रसार में सहायता मिली है। स्कॉलरशिप योजनाओं

0: से लाखों छात्र छात्राएं लाभान्वित हुए हैं। उत्साह एवं सीखो और कमाओ योजनाओं से न केवल पारंपरिक शिल्प एवं कौशल को बढ़ावा मिला है, बल्कि कुछ इलाकों में रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। बीते कुछ वर्षों में सिविल सेवा में भी अल्पसंख्यकों ने अपने प्रदर्शन में कुछ सुधार किया है। अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तकनीक आदि में अल्पसंख्यकों की पहुंच बढ़ रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों में अल्पसंख्यक समुदाय की काफी हिस्सेदारी है। यह भी सच है कि इन कल्याणकारी योजनाओं का जमीनी स्तर पर पूरी तरह क्रियान्वयन नहीं हो पाया है, जिसके प्रमुख कारण इन वर्गों की अशिक्षा, जागरूकता की कमी, सूचना का अभाव, डिजिटल शिक्षा का अभाव, भ्रष्टाचार, महिलाओं के लिए सामाजिक रुकावटें आदि हैं। सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसी वर्ग या समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करती है, किंतु बिना समाज के सहयोग से उनकी सफलता संभव नहीं है।
1: NCM नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज यानी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान हेतु बने इस आयोग की स्थापना साल 1992 में हुई थी, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारों की रक्षा करना और उनके साथ होने वाले भेदभाव को दूर करना है।
2: NCM केंद्र सरकार को अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित मामलों पर सलाह देता है। जिस प्रकार केंद्र में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग कार्य करता है, योजनाएं बनाता है अल्पसंख्यकों के हित के लिए, उसी प्रकार देश के राज्य भी अपने प्रदेश की अल्पसंख्यक जनता के लिए लाभकारी योजनाएं बनाता है। क्या कहते हैं रामपुर निवासी अंकित अग्रवाल?
3: नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित अग्रवाल, सनदी लेखाकार, आज भारत में अल्पसंख्यक वर्ग के विषय में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। दोस्तों, भारत विविधताओं का देश है। यहाँ अनेक धर्म, जाति, भाषा और संस्कृति है, लेकिन इस विविधता में ही भारत की ताकत छुपी हुई है। सबका साथ सबका विकास इसी विचारधारा का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य है कि देश के प्रत्येक नागरिक तक विकास की रोशनी पहुंचाई जाए, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या धर्म से संबंधित हो। भारत में अल्पसंख्यक वर्ग भी समाज का अभिन्न अंग है। इनके उत्थान और विकास के बिना समावेशी विकास अधूरा है। जब समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिलेंगे, तभी हम सच्चे अर्थों में विकसित राष्ट्र बन पाएंगे। भारत में अल्पसंख्यक उन समूहों को कहा जाता है जिनकी जनसंख्या राष्ट्रीय स्तर पर कम है। भारत सरकार ने 6 धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों को आधिकारिक रूप से मान्यता दी है, जिसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन शामिल हैं। ये सभी वर्ग आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से कई बार पिछड़ जाते हैं, इसलिए उनकी उन्नति के लिए विशेष योजनाएं और कार्यक्रम बनाए जाते हैं। महिलाओं, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा में लाकर ही सामाजिक समरसता संभव है। भारत की एकता तभी सशक्त होगी जब हर नागरिक को समान अधिकार, सम्मान और अवसर मिलेगा। अल्पसंख्यक कल्याण, समावेशी विकास और सबका साथ सबका विकास केवल नारे नहीं है, बल्कि एक व्यवहारिक नीति है जिसे जमीनी स्तर पर लागू करना हम सबकी जिम्मेदारी है। यदि हर नागरिक, संस्था और सरकार इस दिशा में मिलकर कार्य करें, तो एक समृद्ध, समावेशी और समृद्ध भारत का सपना अवश्य साकार होगा। धन्यवाद।
1: हर प्रदेश का अपना अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है और उन्हें जमीनी स्तर पर लाभ पहुंचाने के लिए सतत रूप से प्रयासरत रहता है। हमारी उत्तर प्रदेश सरकार भी अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिनसे कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य वंचित न रहे, जिनमें मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना, मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति योजना, व्यवसायिक शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति योजना, अल्पसंख्यक वर्ग की लड़कियों के लिए शादी अनुदान, अल्पसंख्यक युवाओं के लिए स्वरोजगार ऋण योजना मुख्य रूप से है।
2: अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है, जो कि महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिससे प्रमाणित होता है कि कोई व्यक्ति अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य है। यही प्रमाण पत्र सरकार की विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़ने और उनका लाभ लेने के लिए एक आवश्यक सर्टिफिकेट है। सरदार लखविंदर सिंह, जो अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, आइए जानते हैं उनके विचार।
4: मेरा नाम सरदार लखविंदर सिंह है, पेशे से मैं किसान हूं। मैं एक सक्षम और जागरूक नागरिक होकर मैं अपने अल्पसंख्यक समुदाय का एक हिस्सा हूं। मेरे अनुभव में प्रधानमंत्री नई योजना और प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जैसी योजना

0: बहुत असरदार रही हैं। ये ना सिर्फ बच्चों के शिक्षा के लिए प्रेरित करती हैं, बल्कि माता पिता का भी विश्वास बढ़ाती हैं कि सरकार हमारे भविष्य को लेकर गंभीर है। इसके अलावा नई मंजिल नई योजना ने बहुत से युवाओं को रोजगार की तरफ मोड़ा है, जिसका उद्देश्य इन अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं की सहायता करना था, जिनके पास औपचारिक स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र नहीं था। उन्हें औपचारिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया, ताकि उन्हें संगठित क्षेत्र में बेहतर रोजगार और आजीवन का अवसर मिले। मेरी नज़र में शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में अल्पसंख्यक को सक्षम बनाने के लिए जिन प्रयासों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो है जानकारी की पहुंच। कई लोग योजनाओं के बारे में जानते ही नहीं, फिर जरूरत है स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण और रोजगार मेलों की, ताकि युवा घर पर ही अवसर देख सकें। और तीसरी चीज है मैट्रिक शिक्षा और गाइडेंस, जिसके युवाओं को सही दिशा मिले। और अगर बात की जाए कि युवाओं के लिए स्कॉलरशिप कोचिंग स्कीम प्रशिक्षण योजनाओं की जानकारी सभी तक पहुंच पा रही है, तो ईमानदारी से कहूं तो जानकारी अभी भी कुछ सीमित वर्गों तक ही सीमित है। गांवों और छोटे कस्बों में जागरूकता की कमी है। सरकार को स्कूलों पंचायतों और धार्मिक स्थानों के माध्यम से जानकारी को और विस्तार देना चाहिए। रेडियो जैसे माध्यम इसमें बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। हमें एक नागरिक होने के नाते समाज और एकता को बढ़ावा देना चाहिए। हमें गुरुद्वारों के जरिए सभी धर्मों और जातियों के लोगों को लंगर सेवा, सही संस्कृति विभाग की कई योजनाएं ऐसी हैं जो अलग अलग समुदायों को एक मंच पर लाती हैं। इससे भाईचारा भावना मजबूत होती है, जो आज समय में बहुत जरूरी है।
1: सभी को हकीकत में योजनाओं का लाभ मिले। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए कल्याणकारी योजनाएं अल्पसंख्यकों हेतु बनती रहें। सामाजिक न्याय उनको मिले तो अल्पसंख्यक समुदाय के जीवन स्तर में निश्चित रूप से सुधार आएगा। ऐसे प्रयास लगातार सरकारों की तरफ से होते रहें और हम सब भी एक प्रयास अपनी तरफ से करें अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु। साथ दें सरकार का, अल्पसंख्यकों का, तो सबके साथ और प्रयास से देश तरक्की और विकास के पथ पर आगे बढ़ चलेगा। हमारे आकाशवाणी संवाददाता मोहम्मद नईम ने अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित योजनाओं के लाभार्थियों से बात की।
2: केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के तहत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की। 5 धार्मिक समुदाय अर्थात मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया। इसके बाद 27 जनवरी 2014 को केंद्र सरकार की अधिसूचना के तहत जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में शामिल किया गया। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नई दिल्ली का गठन किया और राज्य सरकार ने अपने अपने राज्य की राजधानियों में राज्य अल्पसंख्यक आयोगों का गठन किया। इन संगठनों की स्थापना भारत के संविधान में प्रदान की गई और संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा अधिनियमित कानून के अनुसार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा और सुरक्षा के लिए की गई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अल्पसंख्यकों का जीवन स्तर सुधारने के लिए जैसे शिक्षा, आवास, व्यापार आदि पहलुओं पर काम कर रही है। अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई और जैन सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर जीवन स्तर में सुधार ला रहे हैं। जमीनी स्तर पर अल्पसंख्यकों को सरकार की योजनाओं का लाभ मुहैया हो पा रहा है। आज हमारे साथ अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ लाभार्थी हैं, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें अल्पसंख्यक कल्याण के तहत कौन कौन से लाभ मिले हैं और उनके जीवन स्तर में कितना बदलाव आया है।
3: मेरा नाम सुहाली है, मैं इंटर की छात्रा हूँ। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन हाई स्कूल से मुझे लगातार छात्रवृत्ति मिल रही है, जिससे मेरी पढ़ाई में होने वाले खर्चों में काफ़ी मदद मिलती है। सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए विशेष सुविधा दी है, जिससे मुझे जैसे बच्चे तमाम अपनी पढ़ाई कर पा रहे हैं। मैं केंद्र और राज्य सरकार की बहुत बहुत आभारी हूँ।
4: मेरा नाम मोहम्मद फराज।

0: अंसारी है। मैं एक टैक्सेशन एडवोकेट हूँ। मुझे अपने एलएलबी के सेकंड सेमेस्टर के दौरान स्कॉलरशिप का लाभ मिला था जो कि 21,500 रुपये थी। इसकी प्रक्रिया बहुत आसान थी, मैंने खुद ही की थी क्योंकि मैं कंप्यूटर चलाना जानता हूँ, इसलिए मैंने इसको खुद ही फिल कर लिया था। और इसकी प्रक्रिया वैसे भी आसान होती है, अगर किसी को ये प्रक्रिया कराना है तो घर के पास किसी भी कैफे में जा कर के फॉर्म फिल कर सकता है अपनी स्कॉलरशिप का। इस स्कॉलरशिप से मेरे जीवन में ये बदलाव आया कि इसी स्कॉलरशिप के पैसे से मैंने नेक्स्ट ईयर की फीस भी जमा की, जिससे मुझे बहुत ही आसानी हुई अगला नेक्स्ट ईयर कम्प्लीट करने में। मैं चाहूँगा कि दूसरे लोग भी जो स्टूडेंट्स हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं या कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए भी ये गवर्नमेंट अवसर देती है कि वो स्कॉलरशिप फॉर्म भरें, तो वो भी उनको भी स्कॉलरशिप फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए।
1: Myself मारुफान फ्रॉम बिलासपुर। देखिए, आर्थिक सशक्तिकरण, स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार योजनाओं के माध्यम से आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देना, कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार के अवसर को पैदा करना, सामाजिक सुरक्षा, सांप्रदायिक घटनाओं की रोकथाम और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करना, दंगों के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए योजनाएं लागू करना। इसमें सरकार अन्य महत्वपूर्ण कदम भी उठा सकती है, जैसे कि राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करना और अल्पसंख्यक के कल्याण के लिए योजनाओं को लागू करना। मुझे भी सरकार की योजना का लाभ मिला जिसमें छात्रवृत्ति योजना शामिल है, कौशल विकास केंद्र में भी मैंने जो है अपना पढ़ाई करी, वहाँ पे कौशल विकास केंद्र पे वहाँ से सीखा मैंने व्यापार किस तरीके से करते हैं, समाज में किस तरीके से रहते हैं। कौशल विकास केंद्रों का सरकार को बढ़ावा देना चाहिए, अल्पसंख्यकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है और उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल कर सकती है। अल्पसंख्यकों के लिए कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम भी है। इस योजना से हमारे जीवन में अनेक बदलाव आए, इससे हमें बहुत लाभ मिले। सरकार का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
2: लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहल की थी अनेकता के अलगाव की विषमता को एकता के सूत्र में पिरोकर, हमारी विविधता को साथ रखकर अखंड भारत का निर्माण किया। सभी साथ होंगे, एकता में रहेंगे, सभी के हित की बात होगी तो निश्चित रूप से हमारा प्यारा भारत विकसित होगा। हमारा धर्म प्रेम होना चाहिए और जाति केवल मानवता। मानवता को क्रोध से नहीं बल्कि प्रेम से जीता जा सकता है।
3: महात्मा बुद्ध कहते हैं, एक दिए से कई दिए जलाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से दिए का जीवन घटता नहीं है। इसी प्रकार खुशियां बांटने से कभी भी कम नहीं होती। सभी की मदद करें, मानवता और इंसानियत दिखाएं, सभी को साथ लेकर चलें, कदम डगमगाएं तो हौसला और हिम्मत दें।

अभी आप सुन रहे थे मेरी माटी मेरा देश का पुनः प्रसारण। विषय था अल्पसंख्यक कल्याण। संकलन शिखा दीक्षित का, आलेख मनोज कुमार का और प्रस्तुति अवधेश कुमार गौतम की थी। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 10:31 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतांजलि।

सभी सुनने वालों को शाजिया परवीन का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम की ये पहली फरमाइश हमें लिख भेजी है रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। गांधी समाधि रोड रामपुर से गफ्फार खान, राजिया खान, सिमरन खान, रूमा खान, बॉबी खान, शमा खान, मिक्की खान, बुशरा खान, आसिम खान। जिला अस्पताल के पास से गजन खान, शमा परवीन, शमशाद अली अजम, गुलफ शाह, शहनाज बाबू अंसारी, राजिया गफ्फार और हबीब अहमद इदरीसी। मोहल्ला मजार चांद शामिया, जिला रामपुर से मोहम्मद रमजान साहब, अदनान अली मंसूरी, अरमान अली मंसूरी, रायना चांदनी, फौजिया रोशनी, शायना काजल, अनमता और आशुभाई मंसूरी। कोल सिटी बरकाकाना से अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी साहनी और मोहम्मद अफजाल इब्राहिमी। जमशेदपुर से डॉक्टर तस्नीम कौसर, डॉक्टर इशिता साहनी, डॉक्टर प्रियंका मोदी, डॉक्टर सोनम और अफजाल मलिक। महादेवघाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तानी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और बाबू रयांश ठाकुर। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम। चंदन नगर सतारा से सतीश वाघमारे, अतीश वाघमारे, स्वाति वाघमारे, वर्षा वाघमारे, श्रमण वाघमारे और श्रमेण वाघमारे। कोल्हापुर से विजय चेहवाण, तेजस्विनी चेहवाण, अंकिता चेहवाण, अनिकेत चेहवाण, माया चेहवाण, कोटवा नारायणपुर से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार और सुजाता पोहरकार। बोरखेड़ा पिरामल जिला उज्जैन से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूणत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पंवार, दीक्षा कुश मूणत। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से श्रीमती उषा राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का गजभिये और तन्मय गजभिये। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर कुमार सानू की आवाज़ में ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म खामोशी से। फरमाइश आप सबकी। पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता। जिला मुरादाबाद संभल रोड बस्तौर से अतर सिंह सैनी, मुन्नी पवित्रा, अजय सैनी, आंचल आकांक्षा, आकाश, विक्की सैनी, छवि, दक्ष, देवव्रत सैनी, मानवी रुद्र मझोली से खमानी सिंह, हीरावती देवी और सभी सैनी परिवार। नाज मंजिल महसोल सीतामणि बिहार से अकरम हुसैन, प्रिंस बेगम इशरत, अकरम वसीम, अकरम रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, अमन अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, बच्चू शेख और चीना शेख। क्वाड बिहार से शेख जफर हसन और नरगिस जफर। नूर महल महसोल से हुमेरा नाज, सुमेरा नाज, अबीहा नाज, अरहान बाबू, हमजा बाबू और मुजम्मिल बाबू। डाबर तालाब लोनी से रजा अहमद, आरिश हुसैन, ईशान हुसैन, मरियम और बुशरा। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनेद अब्बासी। लक्षमपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। कोल्हापुर से तुषार कुरुणे, प्रसिक कांबले, एकता कांबले, मेघना कुरुणे, उत्कर्षा कांबले, अरुण यलगुणकर। इनके साथ हैं अतुल गौतमी, धम्मदिना, अरुण काले, एडी कांबले। सरोचो कमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा सालिया, शोएब खान, मुश्तबा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। परिमहल कासगंज से आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान और असलम सैफी। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहाँ। पंजूसराय संभल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी, सईद मुख्तार अंसारी और असद अंसारी। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर अलका याग्निक और हरी हरन को।

बठिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लेवा खेल मोहल्ला चांदूर बिस्वा से नारायण भाव विठल राव खर्चे, ललिता रानी खर्चे, परिसंजना खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, ब्रोनो ऊषा सोरना खर्चे, स्वाति प्रियाग चौधरी और मालती चौधरी, चरडोंगरी पिपरिया जिला कबीरधाम से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, किशन साहू, जय कुमार, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी और माया साहू, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेक बिरक और मीका बिरक, मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा रानी और हिना कौसर, जामरून तारधापुर से दुर्गादास जोशी, गंगाधर जोशी, गजानन जोशी, संजय जोशी, आशीष जोशी, पृथ्वीराज जोशी, साध्वी जोशी, परभणी हूण और गणेश हरगांवकर, अफजलपुर पट्टी तहसील सदर जिला रामपुर से राहुल गौतम, दिलीप सिंह, विशाल, चमनलाल मिस्त्री, रूमा मंजू, प्रियंका, शीतल, पूजा, कविता और आशु गौतम, पुणे से पंकज वाड़ोदे, आर्या, प्रियंका, जरूर वरूर से बाबा साहेब वाड़ोदे, मीनाक्षी चरपे और चंद्रप्रभा वाड़ोदे, करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान, नावेद खान, सिंधोली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गमाड़कर राही, श्रीमती सरिता गमाड़कर, प्रिंस एकांश गमाड़कर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से श्रीमती वैशाली शैलेश गमाड़कर, श्वेता सुमित गमाड़कर, ध्वनि गमाड़कर उर्फ परी, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गमाड़कर, प्रणीता गमाड़कर और लाडला टुक टुक गमाड़कर, श्री रोगडेश्वर नगर पांगरा शिंदे तहसील वसमत जिला हिंगोली महाराष्ट्र से टेलर रामचंद्र धोंडीबा इंगोले, सिद्धांत इंगोले, टिकू इंगोले, रमाबाई सुरेंद्र इंगोले, मयूरी सुरभि मंजुषा गौतम इंगोले, नामदेव राव शिंदे पाटिल, मास्टर विलास शिंदे पाटिल, सुनील जबडे, अशोकनगर वसमत जिला हिंगोली महाराष्ट्र से दीपाली राजू ठोके, पार्वती सखाराम ठोके, रोहित सोनू मोनू ठोके, जीजा माता नगर हिंगोली महाराष्ट्र से लक्ष्मी उत्तम कांबले, तामसा रोड तहसील हदगांव से श्याम राव पटघणे बेबी और बिट्टू पटघणे। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर फिल्म हमजोली से ये गीत।

कार्यक्रम का अगला व अंतिम गीत फरमाइश आप सबकी। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावन मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गोड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नाज। सिराजपुर गणेशपुर से हिना कौसर, मोहम्मद वकील राही, फिरोज आलम और नाज प्रवीण। बोराला धरण से दत्ता घायल, सुनीता घायल, गजानन घायल। बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढूमने, वैष्णवी ढूमने, चंचल ढूमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सव्वा शेरे। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान, माहिरा नूर। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धा नंद आर्य, अभय नंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित व मोहित। राज पैलेस मंगनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक वर्मा, आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मंगनाथ भंजन से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, रितेश कृष्णा और पीहू स्वर्णकार एवं इनका समस्त परिवार। बीड शहर से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप पगारिया, केशव पटेल और रामनिवास अग्रवाल। छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, सरोजनी कुंती साहू। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा। डबवाली हरियाणा से जेके बोकोलिया, श्रीमती सुनीता बोकोलिया, संजय अनिल मीनू बोकोलिया। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अंतिम गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

कब तक हम आहें भरेंगे, आजा तो बात करेंगे, छुप के मुलाकात करेंगे।

0: अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतांजलि। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 11 बजे हैं। अब दिल्ली केंद्र से समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे, पहले हिंदी में फिर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार।

0: और उत्तर प्रदेश में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो बड़ी राजमार्ग सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इसमें दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे को वसंत कुंज से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 148 AE के लिए 6 लेन की सड़क सुरंग का निर्माण शामिल है।
1: पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर की ये टनल एक तरीके से कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज को, रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है, ये प्रपोजल है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एम्स और महिपालपुर के बीच एलिवेटेड कॉरिडोर का भी प्रस्ताव किया है। परियोजना से लगभग 7,54,000 प्रत्यक्ष रोजगार और 9,80,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 के करीब एक्सेस कंट्रोल्ड कानपुर कबरई खंड के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इसकी अनुमानित कुल लागत 7,145 करोड़ रुपये है। सरकार ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री का कार्यकाल 14 जुलाई 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज विदेश सचिव का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने की अनुमति दी। श्री मिश्री 1979 के बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। विदेश सचिव ने 15 जुलाई 2024 को अपना कार्यभार संभाला था। श्री मिश्री ने 3 प्रधानमंत्रियों इंद्र कुमार गुजराल, डॉ मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं। विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी अधिनियम आज से लागू हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। केंद्र सरकार ने योजना के अंतर्गत मजदूरी की नई दरें भी अधिसूचित कर

0: दी है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये अधिनियम लाखों ग्रामीण श्रमिकों के लिए गरिमा, आत्मसम्मान और आजीविका सुनिश्चित करने का नया अध्याय है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज मोटर दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों या घायल दावेदारों की वार्षिक आय का निर्धारण आयकर रिटर्न के आधार पर करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मोटर दुर्घटना मुआवजे में एकरूपता लाने के लिए शीर्ष न्यायालय ने कहा कि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में वार्षिक आय दर्शाने के लिए केवल पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न ही पर्याप्त होगा। स्वरोजगार व्यक्तियों के मामले में न्यायालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों तक के आईटीआर में घोषित औसत आय को सामान्यतः संदर्भ बिंदु के रूप में माना जाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने जनसांख्यिकी परिवर्तनों पर गठित उच्च स्तरीय समिति से अपनी सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने को कहा है। नई दिल्ली में एक बैठक में समिति ने गृहमंत्री को बताया कि वो जनसांख्यिकी परिवर्तनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और प्रशासनों के साथ समन्वय करेगी। जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची भारत की 3 दिन की यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। उनका ये भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। वे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के साथ साथ पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ कल होने वाली वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस बैठक से भारत जापान की विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत मिलेगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज एपी मॉलर मॉर्स्क समूह के एस्टेट स्ट्रेटेजी प्रमुख अहमद हसन के साथ भारत के समुद्री क्षेत्र को मजबूत बनाने पर चर्चा की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टरली स्ट्रीट में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12वें ओवर में 3 विकेट पर 114 रन बना लिए हैं। दूसरा T20 मैच शनिवार को मैनचेस्टर में होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में इंग्लैंड और डीआर कांगो के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक डीआर कांगो ने 1-0 की बढ़त बना ली है। वहीं देर रात 1:30 बजे बेल्जियम का मुकाबला सेनेगल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। The government today approved 2 major highway infrastructure projects worth combined over 14,000 crore rupees. Briefing media in the national capital about the Union Cabinet's decisions, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the Cabinet has approved the construction of an 8.1 kilometer long 6-lane road tunnel in Delhi on NH-148AE connecting the Dwarka Expressway with Nelson Mandela Mark in Vasant Kunj. Mr. Vaishnaw said the Cabinet also approved the construction of the 117.7 kilometer long Kanpur-Kaburai section of National Highway 34 in Uttar Pradesh as a 4-lane access-controlled corridor. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission, Grameen or Viksit Bharat G. Ramji Act 2025 has come into force across the country today. Under the Act, eligible rural households will now have a statutory entitlement to 125 days of guaranteed wage employment. The government also notified revised wage rates under the VBG Ramji Act 2025 for all states and union territories. Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan described today as an unprecedented day for rural India. Prime Minister of Japan Sanae Takaichi arrived in New Delhi this evening on a 3-day visit to India. Prime Minister Takaichi was received by Minister of State Dr. Jitendra Singh. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. She will attend the 16th India-Japan Annual Summit tomorrow with Prime Minister Narendra Modi. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between the two leaders. Prime Minister Narendra Modi today said that he is looking forward to the wide-ranging discussions with Japanese Prime Minister that will further deepen India-Japan's special strategic and global partnership. In a social media post, Mr. Modi said that he is delighted to host her on her first visit to India. Prime Minister Modi said that through their joint efforts, India and Japan will continue to advance peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. Union Home Minister Amit Shah has asked the High-Level Committee on Demographic Changes to submit its recommendations at the earliest. Mr. Shah gave the direction during a meeting with the committee in New Delhi. The committee informed the Home Minister that they will visit various states and union territories to obtain first-hand information on demographic changes and interact with various administrations. The panel informed the Home Minister that a detailed questionnaire has been prepared to seek relevant information from states and union territories in advance, making its field visits more meaningful and interactive. India has strongly condemned the demolition of the historic 125-year-old sacred Gurudwara Sri Guru Singh Sabha Sahib in Farrukhabad, Pakistan, calling it highly deplorable and a targeted act of vandalism. In response to media queries regarding the reported demolition, External Affairs Ministry spokesperson Ranthir Jaiswal said, "The systemic targeting of religious minorities and their places of worship in Pakistan continues unabated. India has called upon Pakistan to expeditiously investigate this matter and bring the perpetrators of this act to justice." India and Pakistan today exchanged lists of civil prisoners and fishermen in each other's custody through diplomatic channels in New Delhi and Islamabad. The External Affairs Ministry said in a statement that India has shared lists of 386 civil prisoners and 53 fishermen in its custody, who are Pakistani or believed to be Pakistani. Pakistan has shared list of 52 civil prisoners and 198 fishermen in its custody who are Indian or believed to be Indian.

0: And in men's cricket, India were 124 in 13.3 overs against England in the first T20 international of the five-match series at the Riverside Ground in Chester-Lower Street when reports last came in. Earlier, Indian skipper Shreyas Iyer won the toss and opted to bat first. Spinners Varun Chakravarti and Ravi Bishnoi have returned to the playing 11 for India, while Vaibhav Suryavanshi has been kept on bench. The men in blue will look to bounce back from the shocking 2-0 defeat to Ireland in the last series. And that is the end of this news bulletin.
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11:10 हुए हैं और समय हो चला है कार्यक्रम फिल्म संगीत का।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 11:10 हुए हैं। हमारी द्वितीय सभा के कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होते हैं। इन्हीं मीटर्स पर कल सुबह 5:55 पर अपनी कल की पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि।

11:10 हुए हैं। हमारी द्वितीय सभा के कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होते हैं। इन्हीं मीटर्स पर कल सुबह 5:55 पर अपनी कल की पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि।